सुप्रभात। आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। मीडियम भी 546.45 मीटर यानी 549 किलोहर्ट्ज़ तथा एफएम 100.5 मेगाहर्ट्ज़ पर। आज बुधवार है, सितंबर 1948 की आषाढ़ मास की 10वीं तिथि, तदनुसार ईस्वी सन 2026 के जुलाई महीने की पहली तारीख। सुबह के 5:58 हुए हैं। प्रातःकालीन सभा के कार्यक्रमों में हम आपका स्वागत करते हैं।

0: आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। सुबह के 6 बजे हैं। अब हमारे दिल्ली केंद्र से समाचार प्रसारित किए जाएंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन ग्रामीण अधिनियम आज से लागू हो रहा है। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कहा कि वीबीजी रामजी अधिनियम के अंतर्गत प्रत्येक वित्तीय वर्ष में 125 दिन के रोजगार की गारंटी होगी। इससे ग्रामीण भारत सशक्त बनेगा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि वर्तमान वित्तीय वर्ष में इस योजना के कार्यान्वयन के लिए 95,692 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल ईरान के राष्ट्रपति डॉ मसूद पेजश्कियान के साथ टेलीफोन पर बातचीत की। राष्ट्रपति पेजश्कियान ने श्री मोदी को पश्चिम एशिया के हाल के घटनाक्रम की जानकारी दी। प्रधानमंत्री ने विभिन्न पक्षों के बीच मौजूदा सहमति का स्वागत किया तथा सभी मुद्दों का समाधान बातचीत और राजनयिक माध्यम से किए जाने का भारत का रुख दोहराया। श्री मोदी ने पश्चिम एशिया में स्थायी शांति और स्थिरता तथा सुरक्षित नौवहन और वाणिज्य के लिए सतत प्रयासों पर भी बल दिया। जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची 3 दिन की भारत यात्रा पर आज शाम नई दिल्ली पहुंच रही हैं। भारत की उनकी ये पहली आधिकारिक यात्रा है। वे कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ 16वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगी। ये सम्मेलन दोनों देशों को द्विपक्षीय सहयोग के सभी पहलुओं की समीक्षा और इसे सुदृढ़ बनाने के साथ ही परस्पर हित के क्षेत्रीय तथा वैश्विक मुद्दों पर चर्चा का अवसर प्रदान करेगा। श्रम और रोजगार मंत्री डॉ मनसुख मांडविया ने नई दिल्ली में कर्मचारी राज्य बीमा निगम की बैठक की अध्यक्षता की। बीमित व्यक्तियों के लिए बेरोजगारी भत्ता योजना अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना को कल से अगले वर्ष 30 जून तक बढ़ा दिया गया है। इसके साथ ही नए ईएसआई अस्पतालों का प्रबंधन अब सीधे निगम द्वारा किया जाएगा, जिससे उच्च गुणवत्ता वाली स्वास्थ्य सेवाएं सुनिश्चित की जा सकेंगी। उत्तराखंड की मदरसा शिक्षा व्यवस्था में आज से एक बड़ा बदलाव लागू होगा। नई व्यवस्था के अंतर्गत उत्तराखंड मदरसा शिक्षा बोर्ड को समाप्त कर दिया जाएगा। राज्य में अल्पसंख्यकों के सभी शैक्षणिक संस्थान नए ढांचे के अंतर्गत संचालित होंगे। जम्मू कश्मीर में श्री अमरनाथ जी यात्रा के लिए सभी आवश्यक प्रबंध कर लिए गए हैं। तीर्थयात्रियों का पहला जत्था कल भगवती नगर आधार शिविर से रवाना होगा। हमारे जम्मू संवाददाता ने बताया, उपराज्यपाल मनोज सिन्हा कल सुबह 4 बजे पहले जत्थे को रवाना करेंगे। श्री मनोज सिन्हा अमरनाथ श्राइन बोर्ड के अध्यक्ष भी हैं। 57 दिन की यात्रा पारंपरिक नुनवान पहलगाम मार्ग और गांदरबल जिले के बालतल मार्ग से 3 जुलाई को शुरू होगी। उत्तर रेलवे ने वार्षिक अमरनाथ यात्रा के लिए सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए विस्टाडोम विशेष रेलगाड़ियों का परिचालन 2 महीने के लिए कम कर दिया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि आमतौर पर कटरा और बडगाम रेलवे स्टेशनों के बीच चलने वाली विस्टाडोम रेलगाड़ी आज से 31 अगस्त तक या अगले आदेश तक सिर्फ बनिहाल और बडगाम के बीच चलेगी। यह फैसला जम्मू कश्मीर पुलिस से मिली सुरक्षा जानकारी और सुझावों के आधार पर लिया गया है। रेलवे ने 200 करोड़

0: करोड़ रुपए की लागत से दक्षिण पूर्व रेलवे में शेष 48 फाइबर ऑप्टिकल फाइबर केबल लगाने को मंजूरी दे दी है। इससे रेलवे का डिजिटल संचार नेटवर्क मजबूत होगा। इस परियोजना से दक्षिण पूर्व रेलवे के चार बड़े संभाग में 1600 किलोमीटर से अधिक क्षेत्र में 48 फाइबर ओएफसी कनेक्टिविटी उपलब्ध होगी। दक्षिण पश्चिम मानसून के अगले दो दिन में दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब में आगे बढ़ने की संभावना है। इस दौरान उत्तरी अरब सागर, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, दमन और दीव तथा राजस्थान में भी मानसून के आगे बढ़ने की संभावना है। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की T20 क्रिकेट श्रृंखला आज से इंग्लैंड में शुरू हो रही है। श्रृंखला का पहला मैच भारतीय समयानुसार रात 10 बजे चेस्टर ली स्ट्रीट में खेला जाएगा। फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड 32 के मैच में फ्रांस ने स्वीडन को 3-0 से हरा दिया है। इसके साथ ही उसने अंतिम 16 में जगह पक्की कर ली है। इससे पहले नॉर्वे ने आइवरी कोस्ट को हराकर राउंड 16 में जगह बनाई। अब नॉर्वे का मुकाबला रविवार को ब्राजील से होगा। मोरक्को, पैराग्वे, ब्राजील और कनाडा भी राउंड 16 में पहुंच चुके हैं। राउंड 32 के एक अन्य मैच में आज शाम मैक्सिको का सामना इक्वाडोर से होगा। आज रात 9:30 बजे इंग्लैंड और कांगो आमने सामने होंगे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। आइए सुनते हैं खेती किसानी, जानकारी लेते हैं खरीफ दलहन की खेती के बारे में। वाचन है अनीता तिर्की का।
2: खरीफ मौसम में दलहनी फसलों में उड़द, मूंग, अरहर और कुल्थी की खेती की जाती है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि दलहनी फसल प्रोटीन का एक बहुत बड़ा स्रोत है, अतः इसे खाने में अवश्य इस्तेमाल करना चाहिए। जून के आखिरी सप्ताह से पूरे जुलाई तक अरहर, उड़द, मूंग लगा सकते हैं, लेकिन कुल्थी यदि आप लगाना चाहते हैं तो उसकी बुआई का उचित समय अगस्त है। किसान भाई खेत तैयार करते समय कुछ बातों का ध्यान रखें, जैसे खेत की गहरी जुताई करके 2 से 3 बार हल चलाकर मिट्टी को भुरभुरा बना दें। अंतिम जुताई के समय गोबर की सड़ी हुई खाद 5 टन प्रति हेक्टेयर की दर से खेत में अच्छी तरह बिखेर दें। इनकी खेती ऊपर की जमीन में करना चाहिए, जहां पानी का उचित जल निकास की जो है वो व्यवस्था है। अम्लीय मिट्टी में चूना का प्रयोग 3 क्विंटल प्रति हेक्टेयर नाली में डालकर उपयोग करने से उपज में वृद्धि होती है। अरहर की फसल के लिए 20 किलो बीज प्रति हेक्टेयर पर्याप्त है। अगर आप संकर अरहर ले रहे हैं तो 8 से 10 किलो बीज प्रति हेक्टेयर काफी होगा। उड़द और मूंग में बीज दर 30 किलो प्रति हेक्टेयर और कुल्थी में 20 किलो प्रति हेक्टेयर बीज दर का प्रयोग करना उचित रहता है। इन फसलों के उन्नतशील प्रभेदों में अगर हम अरहर की बात करें तो बिरसा अरहर एक है। इसकी बुआई की जो दूरी है कतार से कतार 70 सेंटीमीटर और पौधा से पौधा 20 सेंटीमीटर है। तैयार होने का समय बिरसा अरहर एक जो है करीब 185 दिनों में पककर तैयार हो जाते हैं और इसकी औसत उपज है 15 से 20 क्विंटल प्रति हेक्टेयर। सबसे बड़ी बात है इसके जो विशेष गुण हैं वह है कि यह उकठा और बांझपन दोनों अवरोधी है और फली छेदक के प्रति सहनशील है। इसीलिए किसान भाइयों को अगर अरहर की खेती करनी है तो वो बिरसा अरहर एक को लगा सकते हैं। इसी तरह बहार भी एक अच्छी किस्म है। इसके लिए कतार से कतार की दूरी 90 सेंटीमीटर और पौधा से पौधा की दूरी 25 सेंटीमीटर रखते हैं। इसके तैयार होने का समय करीब 225 से 30 दिन है। औसत उपज 20 से 25 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। यह बांझपन रोग से अवरोधी है और फली छेदक के प्रति सहनशील है। इसी तरह ICPH 2671, अगर आप इस किस्म को लगाते हैं तो कतार से कतार की दूरी 90 सेंटीमीटर और पौधा से पौधा की दूरी 25 सेंटीमीटर रख सकते हैं। तैयार होने का

0: में करीब 200 दिन है और इसकी जो उपज क्षमता है 25 से 30 क्विंटल प्रति हेक्टेयर, यह भी उकठा और बांझपन रोग से अवरोधी है। इसी तरह अरहर की एक बढ़िया किस्म है उपास 120, यह करीब 130 दिनों में पककर तैयार हो जाती है। इसमें भी कतार से कतार की दूरी 60 सेंटीमीटर और पौधा से पौधा की दूरी 20 सेंटीमीटर रखते हैं। उपज 10 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है और सबसे बड़ी बात है कि यह मिश्रित खेती के लिए अच्छी मानी गई है। इसी तरह उड़द की टी 9, पंत यू 19 लगा सकते हैं। मूंग की उन्नत किस्मों में खरीफ के डैश 851, पूसा विशाल, गर्मा SML 668, इसी तरह कुल्थी के लिए बिरसा कुल्थी 1 लगा सकते हैं।
1: खेती किसानी कार्यक्रम में अभी आप जानकारी ले रहे थे खरीफ दलहन खेती के बारे में। वाचन था अनीता तिर्की का। आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। आइए सुनते हैं चिंतन।

0: संस्कृत में एक श्लोक का आशय है कि चलते रहो चलते रहो। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने एक बंगाली देशभक्ति गीत में कहा था, एकला चलो रे, जिसका मतलब है आप अपनी मंजिल की तरफ अपने ढंग से आगे बढ़ते रहें। कहा जा सकता है कि जो बैठ जाता है उसकी तकदीर भी बैठ जाती है, और जो उठकर चलने लगता है उसकी तकदीर भी उठकर खड़ी हो जाती है। जीवन के किसी भी मोड़ पर रुक जाना यानी मंजिल तक पहुंचने से पहले ही सफलता की उम्मीद छोड़ देना है। ऐसा सिर्फ निराशावादी लोग ही करते हैं। जीवन में आगे बढ़ते रहना ही किसी भी क्षेत्र में सफलता पाने का मूल मंत्र है। इसलिए हमें हर स्थिति में अपना काम करते हुए आगे बढ़ते जाना चाहिए। सफलता कोई पेड़ पर लगा फल नहीं है कि पेड़ पर चढ़े और तोड़ लिया। अपनी मेहनत के बलबूते पर ही सफलता हासिल की जा सकती है। इसके लिए हमें अपनी मेहनत पर भरोसा करना चाहिए। अनुशासन और कड़ी मेहनत ही सफलता का असली मार्ग है। यदि आप में हुनर है तो आपसे कोई चूक नहीं होगी। प्रकृति बहुत बड़ी शिक्षक है। हमें जीवन में निरंतर आगे बढ़ते रहने के लिए प्राकृतिक चीजों पर दृष्टि डालनी चाहिए। पानी बहता रहता है तो साफ स्वच्छ रहता है, और रुक जाता है तो सड़ने लगता है। इसलिए जीवन को नदी के समान माना गया है जो निरंतर बहता रहे। नदी ही क्यों, चांद, सितारे, सूर्य, पृथ्वी और ग्रह हरदम चलते रहते हैं। जीवन में चलते रहने के लिए हमें इन सब की तरफ भी देखना चाहिए जो कभी रुकते ही नहीं। जो चलते जाते हैं उन्हें कभी थकान परेशान नहीं करती। कोई भी व्यक्ति संपूर्ण नहीं होता, सब में कोई ना कोई कमी अवश्य रहती है। इसलिए अपनी कमियों के बारे में जानकर यह स्वीकार करें कि आप में भी कुछ कमियां हैं। कहा जाता है कि ईश्वर ने प्रत्येक व्यक्ति को इस संसार में किसी खास गुण के साथ भेजा है। जरूरत इस बात की है कि आप अपनी काबिलियत को पहचानें। अनुसरण का सिद्धांत प्रसिद्ध यूनानी दार्शनिक अरस्तु के जमाने से ही चला आ रहा है। हमें ऐसे लोगों का हरदम अनुसरण करना चाहिए जो जीवन में सफल हुए हैं। हमें पता लगाना चाहिए कि उन्होंने सफल होने के लिए क्या क्या किया। इससे हमें मालूम पड़ेगा कि ऐसे लोगों ने रुकना तो कभी सीखा ही नहीं। इसलिए ऐसे लोगों के लिए सफलता के दरवाजे खुले रहे।
1: आप सुन रहे थे चिंतन, संकलन और वाचन था दिनेश कुमार लाल का। आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। आइए सुनते हैं आराधना।

देशभक्ति गीत अभी आप सुन रहे थे अनूप जलोटा के स्वर में। और आइए सुनते हैं कुछ भक्ति संगीत लता मंगेशकर का गाया हुआ। शब्द रचना है पंडित नरेंद्र शर्मा की, संगीत है सुधीर फड़के का।

और आइए अब सुनते हैं लता मंगेशकर कहीं गाया हुआ ये भजन। शब्द रचना है साहिल लुधियानवी की, संगीत जयदेव का।

पंडित नरेंद्र शर्मा की रचना अभी आप सुन रहे थे लता मंगेशकर के स्वर में। संगीत था हृदयनाथ मंगेशकर का। और आइए अब सुनते हैं लता मंगेशकर का ही गाया हुआ एक और भजन, जिसे लिखा है आनंद बख्शी ने, संगीतबद्ध किया है राहुल देव बर्मन ने।

लता मंगेशकर के स्वर में अभी आप सुन रहे थे आनंद बख्शी की रचना, संगीत था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का। इसके साथ ही संपन्न हुआ भक्ति गीतों का कार्यक्रम आराधना, आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। आइए सुनते हैं श्री रामचरितमानस से संगीतमय पाठ।

श्री राम की कोई भी सीख, कोई भी तर्क लक्ष्मण के उनके साथ वन जाने के संकल्प को नहीं डिगा सका, तो श्री राम को समर्पित छोटे भाई की अनुनय विनय माननी पड़ी। तब उन्होंने लक्ष्मण से जाकर माता की अनुमति ले लेने को कहा। हर्षित हृदय से लक्ष्मण माता के पास पहुंचे और उन्हें विस्तार से सब कुछ कह सुनाया। घटना चक्र की गति से माता सुमित्रा इस प्रकार सहम गईं, जैसे जंगल में लगी आग से हिरनी भयभीत हो जाती है। कैकेयी की करनी पर उन्होंने अपना सिर पीट लिया। श्री राम तथा सीता के प्रति लक्ष्मण के प्रेम और आदर तथा समर्पण की भावना से वो भली भांति परिचित थीं। बोली, हे पुत्र, जानकी तुम्हारी माता हैं और तुम पर अथोर स्नेह रखने वाले श्री राम तुम्हारे पिता के समान हैं। जहां उनका निवास हो वही अयोध्या है। यदि वे वनगमन करें तो तुम्हारे यहां होने का कोई अर्थ नहीं है। गुरु, पिता माता, भाई देवता तथा स्वामी की प्राणपण से सेवा करनी चाहिए। जो भी पूजनीय तथा प्रिय लोग हैं वे केवल राम के कारण पूज्य और प्रिय हैं। अतः श्री राम और सीता के साथ वन जाओ और जीवन को सार्थक करो। मैं बड़भागी हूं जिसके पुत्र का श्री राम चरणों में ऐसा अनुराग है। तुम्हारे ही भाग्य से श्री राम वन को जा रहे हैं, अतः वन में तुम पूरी निष्ठा, मन, वचन और कर्म से उनकी सेवा करना।

आप सुन रहे थे श्री रामचरितमानस से संगीतमय पाठ। आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। आइए आपको जानकारी दे दें हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले मुख्य मुख्य कार्यक्रमों के बारे में।

स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम में आप सुनेंगे भेंट वार्ता, किडनी में पत्थर होना कारण और बचाव। भेंट वार्ताकार होंगे डॉक्टर जय कुमार, उनसे बातचीत करेंगे संजीव कुमार लाल। सुबह सुरीली आप सुनेंगे 7:15 पर। खुला आकाश का वक्त होगा 7:45 पर। समाचार प्रभात 8 बजे से, मॉर्निंग न्यूज 8:15 पर और प्रादेशिक समाचार 8:30 पर। 8:45 पर आप सुनेंगे लोक रंग, लोक गीतों के इस कार्यक्रम में आप सुनेंगे डिम्बा मुंडा और साथियों से मुंडारी लोकगीत रसरंजन 9 बजे से। शास्त्रीय संगीत आप सुन सकेंगे 9:30 पर। आप सुनेंगे श्री चीर सत्य ठाकुर द्वारा सितार पर राग रागेश्वरी में आलाप और जोड़ के बाद दो गते, विलंबित गत 3 ताल और द्रुत गत 1 ताल में निबद्ध होगी। तबले पर संगत करेंगे संदीप चटर्जी।

बढ़ते कदम 10 बजे से। इस कार्यक्रम में आप सुनेंगे भेंट वार्ता, JSLPS महिलाओं को बना रहा सशक्त और स्वावलंबी। प्रस्तुति स्वर कमलेश कुमार मिश्र की, प्रस्तुति होगी प्रभु शरण की। जोहार रांची आप सुनेंगे 10:30 पर, आपकी पसंद 11:30 पर। महिलाओं के लिए विशेष कार्यक्रम गृहलक्ष्मी आप सुनेंगे 12 बजे से। इस कार्यक्रम में आप सुनेंगे चर्चा, वन है तो हम हैं, एक पेड़ जरूर लगाएं। प्रस्तुति होगी गौरव कुमार पांडे की। अनुरंजनी का वक्त होगा 1:20 पर, आप सुनेंगे शोभा गुट्टू द्वारा गाए कुछ उपशास्त्रीय संगीत। सुगम संगीत आप सुनेंगे 1:45 पर।

जय भारती 2:30 बजे से, प्रायोजित कार्यक्रम उमंग आप सुनेंगे 3 बजे से, रांची मेलोडीज 3:30 पर, सांझ सरगम 4:35 पर।

0: युवा दोस्तों को संबोधित कार्यक्रम युवाणी आप सुनेंगे शाम 5:02 पर। प्रस्तुति होगी गौरव पांडे की। 5:30 का वक्त होगा श्रमिक लोक का। आप सुनेंगे वन है तो हम है, नशा मुक्त भारत अभियान के बारे में भी इस कार्यक्रम में आपको जानकारी मिलेगी। प्रस्तुति होगी प्रशांत गौरव की। खेती बारी शाम 6:02 पर आप सुनेंगे चर्चा फूलों की व्यावसायिक खेती के बारे में। प्रस्तुति होगी संजीव कुमार लाल की। आप जानकारी ले रहे थे हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले मुख्य मुख्य कार्यक्रमों के बारे में। आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। अब हमारे दिल्ली केंद्र से समाचार प्रसारित किए जाएंगे।
1: आकाशवाणी संप्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्। प्रवाचिका निधिः झा। अथ वार्ताः। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ह्यः ईरानस्य राष्ट्रपतिना डॉ मसूद पेजेश्कियन इत्यनेन सह दूरभाषमाध्यमेन सम्भाषणम् अकरोत्। सम्भाषणावधौ राष्ट्रपतिना पेजेश्कियन इत्यनेन पश्चिमेशियायाः घटनाक्रमस्य विषये प्रोदीरितम्। प्रधानमन्त्रिणा उभयोर्देशयोर्मध्ये सञ्जातं सहमतिं स्वागतीकृतम्। सहैव तेन भारतस्य निरन्तरनीतिः पुनः प्रतिपादिता यत् सर्वेषां समाह्वानानां समाधानं केवलं संवादेन सुष्ठुनीत्या एव भवितुमर्हति। विकसित भारत रोजगार एवं आजीविका मिशन ग्रामीण वीबीजी रामजी इत्याख्यः अधिनियमः अद्यारभ्य अर्थात जुलाई मासस्य एक दिनांकात् कृत्स्नेही ग्रामीण भारते प्रवृत्तो भविष्यति। ग्रामीण विकास मंत्रालयेन प्रतिपादितं यत् अयम् अधिनियमः प्रत्येकं वित्तीय वर्षे 25-उत्तरैकशत दिनानां सवेतन वृत्तेः प्रतिभूतिं प्रदाय ग्रामीण भारतस्य सशक्तिकरणं विधास्यति। देशे अस्य नूतन तन्त्रस्य क्रियान्वयनार्थं अस्य वित्तीय वर्षस्य कृते 92.6 लाख 95 हजार करोड़ रूपयकाणां प्रावधानं विहितम्। उपक्रमस्य अस्य प्रवर्तने केन्द्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहानः अवोचत् यत् कोऽपि अर्हः ग्रामीण श्रमिकः एकमपि दिनं कार्यं विना न भवेत्। श्री चौहानेन स्पष्टीकृतं यत् सर्वकारेण राज्यैः केन्द्रशासित प्रदेशैः च साकं दृढ समन्वयं विधाय अस्याः नूतन व्यवस्थायाः निर्बाध संचालनाय सर्वाः प्रशासकीय वित्तीय च सज्जता विहिता। अवधेयास्पदं वर्तते यत् 25-उत्तरैकशत दिनानां वर्धिता अयं वृत्त्यवसरः ग्रामीण आजीविकां सुदृढां करिष्यति, चिरस्थायि सामुदायिक सम्पत्तीनां निर्माणं च विधास्यति। अनेन सहैव विकसित भारतस्य संकल्पं तीव्रगत्या प्रवर्तयिष्यते। जापान देशस्य प्रधानमंत्री साने तकाइची अद्य सायं त्रिदिवसीय भारत यात्रा प्रसंगे नवदेहलीं प्राप्स्यति। इयं तस्याः प्रथमा आधिकारिकी भारत यात्रा वर्तते। सा श्वः प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्र मोदिना सह षोडशे भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलने भागं ग्रहीष्यति। इदं शिखर सम्मेलनम् उभयोर्देशयोः कृते द्विपक्षीय सहयोगस्य समग्र क्षेत्रस्य समीक्षां सुदृढीकरणं च विधातुं सहैव पारस्परिक हितस्य क्षेत्रीय वैश्विक विषयेषु विचाराणां विनिमयीकरणं कर्तुमेकं प्रकृष्टम् अवसरं प्रदास्यति। उत्तराखण्ड राज्यस्य मदरसा शिक्षा प्रणाल्याम् अद्यारभ्य एकं बृहत् परिवर्तनं प्रवृत्तं सञ्जातम्। अस्याः नूतन व्यवस्थायाः अन्तर्गतं उत्तराखण्ड मदरसा शिक्षा परिषद् पूर्णतया निष्क्रियो भविष्यति। सहैव राज्यस्य सर्वाः अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थाः एकेन विनूत्नेन

0: यन्त्रेण सञ्चालिताः भविष्यन्ति। अद्य जुलाई मासस्य एकदिनांकतः उत्तराखण्ड मदरसा शिक्षा बोर्ड उत्तराखण्ड मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियमः 20-26 तथा उत्तराखण्ड सर्वकारीयेतर अरबी एवं फारसी मदरसा मान्यता नियमावली 20-19 इत्येते सर्वे निष्प्रभाविनः अभवन्। राज्य प्रशासनेन उत्तराखण्ड अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था अधिनियमस्य अन्तर्गतम् एका नूतना व्यवस्था प्रवर्तिता। अस्य प्रत्यग्र तन्त्रस्य अन्तर्गतम् उत्तराखण्ड राज्य अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरणमेव शिक्षायै उत्तरदायी भविष्यति। इति वार्ताः।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन ग्रामीण अधिनियम आज से लागू हो रहा है। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कहा है कि वीबीजी रामजी अधिनियम के अंतर्गत प्रत्येक वित्त वर्ष में 125 दिन के रोजगार की गारंटी होगी। इससे ग्रामीण भारत सशक्त बनेगा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि वर्तमान वित्त वर्ष में इस योजना के कार्यान्वयन के लिए 95,692 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल ईरान के राष्ट्रपति डॉ मसूद पेजेश्कियान के साथ टेलीफोन पर बात की। राष्ट्रपति पेजेश्कियान ने श्री मोदी को पश्चिम एशिया के हाल के घटनाक्रम की जानकारी दी। प्रधानमंत्री ने विभिन्न पक्षों के बीच मौजूदा सहमति का स्वागत किया और सभी मुद्दों का समाधान बातचीत और राजनयिक माध्यम से किए जाने का भारत का रुख दोहराया। श्री मोदी ने पश्चिम एशिया में स्थायी शांति और स्थिरता तथा सुरक्षित नौवहन और वाणिज्य के लिए सतत प्रयासों पर बल दिया। जापान के प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची 3 दिन की भारत यात्रा पर आज शाम नई दिल्ली पहुंच रही हैं। भारत की उनकी ये पहली आधिकारिक यात्रा है। वे कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ 16वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगी। ये सम्मेलन दोनों देशों को द्विपक्षीय सहयोग के सभी पहलुओं की समीक्षा और इसे सुदृढ़ बनाने के साथ ही परस्पर हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा का अवसर प्रदान करेगा। बीमित व्यक्तियों के लिए बेरोजगारी भत्ता योजना अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना आज से अगले वर्ष 30 जून तक बढ़ा दी गई है। इसके साथ ही नए ईएसआई अस्पतालों का प्रबंधन अब सीधे निगम द्वारा किया जाएगा, जिससे उच्च गुणवत्ता वाली स्वास्थ्य सेवाएं सुनिश्चित की जा सकेंगी। केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री डॉ मनसुख मांडविया की अध्यक्षता में नई दिल्ली में आयोजित कर्मचारी राज्य बीमा निगम की बैठक में ये फैसले किए गए। 29वां राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन आज से जयपुर में आयोजित किया जाएगा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस सम्मेलन को प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा राजस्थान सरकार मिलकर आयोजित कर रहे हैं।
2: सम्मेलन में 1000 से अधिक स्टार्टअप, शैक्षणिक संस्थाओं के 400 से ज्यादा प्रतिनिधियों सहित करीब 2700 प्रतिभागी हिस्सा लेंगे। पहले दिन 3 प्लेनरी और 6 ब्रेकआउट सत्र होंगे, वहीं दूसरे दिन 3 प्लेनरी सत्रों के बाद राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार वितरण के साथ सम्मेलन का समापन होगा। सम्मेलन में कृत्रिम बुद्धिमत्ता, डीप टेक, क्वांटम कम्प्यूटिंग, वॉइस फर्स्ट सॉल्यूशंस और सुरक्षित डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर सहित अन्य विषयों पर चर्चा होगी। यह आयोजन समावेशी, पारदर्शी और नागरिक केंद्रित डिजिटल शासन की दिशा में महत्वपूर्ण मंच साबित होगा। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर।
1: सरकार ने पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष को देखते हुए महत्वपूर्ण पेट्रो रसायन उत्पादों को 15 जुलाई तक पूरी तरह सीमा शुल्क से मुक्त कर दिया है। पहले कल मंगलवार तक ये छूट दी गई थी। ये रियायत घरेलू बाजारों में पेट्रोकेमिकल उत्पादों की पर्याप्त उपलब्धता को बनाए रखने के लिए की गई है। उत्तराखंड की मदरसा शिक्षा व्यवस्था में आज से एक बड़ा बदलाव लागू होगा। नई व्यवस्था के अंतर्गत उत्तराखंड मदरसा शिक्षा बोर्ड को समाप्त कर दिया जाएगा। राज्य में अल्पसंख्यकों के सभी शैक्षणिक संस्थान नए ढांचे के अंतर्गत संचालित होंगे।

0: भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की T20 क्रिकेट श्रृंखला आज से इंग्लैंड में शुरू हो रही है। श्रृंखला का पहला मैच भारतीय समय के अनुसार रात 10 बजे चेस्टर ली स्ट्रीट में खेला जाएगा। फीफा विश्व कप के राउंड 32 के मैच में फ्रांस ने स्वीडन को 3-0 से हरा दिया है और इसके साथ ही उसने अंतिम 16 में अपनी जगह पक्की कर ली है। इससे पहले नॉर्वे ने आइवरी कोस्ट को हराकर राउंड 16 में जगह पक्की की। अब नॉर्वे का मुकाबला रविवार को ब्राजील से होगा। मोरक्को, पैराग्वे, ब्राजील और कनाडा भी राउंड 16 में पहुंच चुके हैं। आज रात 9:30 बजे इंग्लैंड और कांगो आमने सामने होंगे। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है, आइए सुनते हैं स्वास्थ्य चर्चा। सुनते हैं भेंटवार्ता, किडनी में पत्थर होना कारण और बचाव। भेंटवार्ताकार हैं डॉक्टर जय कुमार, भेंटकर्ता संजीव कुमार लाल।
2: मित्रों जोहार, नमस्कार। मित्रों, बदलती जीवन शैली में एक बीमारी किडनी में पत्थर हो जाना आजकल बहुत कॉमन होता जा रहा है। चाहे वो छोटे बच्चे हों, हमारे युवाजन हों या फिर बड़े बुजुर्ग या वृद्धजन, किडनी में पत्थर क्यों हो जा रहा है, क्या कारण है, क्या हमारा खान पान इसके लिए जिम्मेदार है या और भी कोई कारण है, और किडनी में जब पत्थर हो जाता है तो इसके लक्षण क्या है, ताकि समय रहते हम इसका उपचार शुरू कर दें। इस विषय पर बातचीत करने के लिए आज आमंत्रित हैं किडनी एवं मूत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर जय कुमार। डॉक्टर साहब स्वागत है।
3: धन्यवाद, नमस्कार।
2: डॉक्टर साहब, ये किडनी में पत्थर हो जाना बहुत कॉमन होता जा रहा है, प्रायः छोटे बच्चों को भी सुनने में मिल जाता है, ऐसा क्यों हो जा रहा है?
3: क्योंकि मैं इस फील्ड का स्पेशलिस्ट हूँ, आपका जो सवाल है ये काफ़ी कॉमन सवाल है। हर दिन हमारे पास में पेशेंट्स आते हैं, इसी समस्या से ग्रसित रहते हैं। तो ये समस्या नया या ये समस्या आज से हजारों साल से लोगों में देखा जा रहा है, क्योंकि हमारा जो किडनी होता है इसका मुख्य कारण कार्य क्या रहता है, इसका मुख्य कार्य रहता है शरीर में फिल्ट्रेशन कराना। जिस तरह हम पानी का फिल्टर यूज़ करते हैं तो उसमें देखते हैं कि थोड़े दिन के बाद में उसमें सेडिमेंट या गंदगी जमते रहता है, उसी तरह से हमारा शरीर में भी किडनी एक फिल्टर होता है। तो ये जब शरीर में ब्लड फिल्टर करता है तो उसमें से जो सेडिमेंट या गंदगी निकलता है वो सिंपल भाषा में बोले तो किडनी में जमने लगता है, और जब जमता है तो आस्ते आस्ते ये पत्थर का रूप ले लेता है। यहाँ तक कि देखा गया है कि कुछ ममीज में भी किडनी का स्टोन पाया गया है। कहने का मतलब है जब से इंसान का एग्जिस्टेंस है तब से किडनी स्टोन का एग्जिस्टेंस है, लेकिन आजकल ये समस्या बढ़ते जा रही है, ये फैक्ट है। अब ये फैक्ट है क्यों, उसके पीछे बहुत से कारण हैं। जैसे किडनी स्टोन बनने का तो देखा जाए तो ऐसे 3 मेन कारण होता है। एक तो होता है कि पानी का कमी हो जाना, दूसरा खान पान में गड़बड़ होना, और तीसरा जो कारण होता है वो जेनेटिक या हमारे ब्लड में कुछ प्रॉब्लम होने से ऐसा होता है।
2: तो जब इस तरह की बात सामने आ जाती है कि किडनी में पत्थर बनना शुरू हो गया है, तो शुरुआती लक्षण क्या इसके हो जाते हैं?
3: अगर हम देखें तो मोस्ट ऑफ द टाइम किडनी स्टोन जो होता है लोगों को पता नहीं चल पाता है कि किडनी स्टोन बन रहा होता है, लेकिन जब पता चलता है इसका मतलब है कि किडनी स्टोन उस पेशेंट में या किडनी में कुछ रुकावट कर रहा है या किडनी में स्वेलिंग कर रहा है, तभी उसको पता चलता है। पता चलने का मतलब क्या हुआ, उसे तेज़ दर्द होने लगता है पेट में, मतलब पेट के बगल में फ्लैंक्स में जहाँ किडनी हमारा रहता है। इसके अलावा पेशेंट को उल्टी, बुखार, पेशाब में जलन, पेशाब में कभी कभी ब्लड आना, ये सब भी किडनी स्टोन का ही लक्षण है। ये लक्षण का सीवियरिटी अलग अलग केसेस में अलग अलग हो सकता है। जैसे अगर छोटा मोटा पत्थर है तो माइल्ड सिम्टम्स हुआ, पेशेंट उसके बाद में आराम हो जाता है, लेकिन जब पत्थर बड़ा होता है या किडनी में स्वेलिंग ज़्यादा हो जाता है तो उसी तरह से सिम्टम्स भी ज़्यादा बड़े या सीवियर हो जाते हैं। लेकिन कभी भी इस तरह का प्रॉब्लम हो तो हमारा तो सलाह यही रहता है कि आप जल्द से जल्द अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें और प्रॉपर डायग्नोसिस कराएं ताकि आपका इलाज जल्द से जल्द हो सके।
2: जी डॉक्टर साहब, इलाज की हम बात करें, जैसा आपने बताया कुछ पत्थर ऐसे होते हैं कि मामूली सा दर्द हुआ और फिर ठीक हो जाता है, थोड़ा सा आराम कर लिया, और कुछ बेचैनी वाले दर्द भी हो जाते हैं। तो ये जो कम दर्द वाले हैं और बेचैनी वाले दर्द हैं, तो कम दर्द को लोग इग्नोर कर जाते हैं, तो लंबे समय तक पत्थर बना हुआ है आपके किडनी में, तो क्या नुकसान कर बैठता है ये?
3: किडनी का जब पत्थर बनता है तो ये किडनी का जो ड्रेनेज होता है, मतलब किडनी से जो यूरिन बन रहा होता है वो नीचे पेशाब के नली मूत्र मार्ग से पेशाब के थैली ब्लैडर में आता है। अब मान लीजिए हमारा कोई

0: में ड्रेन है, नाली है, अगर वो किसी कारण से अटक गया, ऑब्स्ट्रक्शन हो गया, रुकावट आ गया कोई, तो क्या होगा, नाली ओवरफ्लो होने लगेगा, फंस जाएगा। उसी तरह से जब किडनी में जब यूरिन बन रहा होता है लेकिन अगर रुकावट हो रहा होता है किसी स्टोन के वजह से, तो किडनी में स्वेलिंग या आम भाषा में बोले तो उसमें सूजन आने लगता है। सूजन आने से क्या हो जाता है, किडनी का फंक्शन खराब होने लगता है, और अगर लॉन्ग टर्म में देखा जाए तो किडनी जो है सो फंक्शन काफ़ी हद तक उसमें इम्पेयर या डैमेज होने का भी संभावना रहता है।
1: मतलब किडनी को भी ये प्रभावित करना शुरू कर देता
0: बिल्कुल
1: है
0: बिल्कुल।
1: जी। डॉक्टर साहब, इलाज कैसे किया जाता है? क्या दवाइयाँ गोलियों से भी ठीक हो जाती है या फिर सर्जरी इसका लास्ट उपाय है?
0: ये सवाल आपका बहुत ही पर्टिनेंट सवाल है, मतलब ये सवाल हमारे पास डेली ये पेशेंट्स आते हैं, क्या मेरा पत्थर हो गया है तो मुझे ऑपरेशन ही कराना पड़ेगा। तो ये जो है सवाल जो है सो बिल्कुल रिजनेबल है, लेकिन इसका जवाब भी उतना ही आसान है। कभी भी हमारा पत्थर होता है किडनी में तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको सर्जरी या ऑपरेशन ही कराना पड़े, क्योंकि मैंने बताया कि पत्थर का ट्रीटमेंट जो होता है किडनी पत्थर का, वो डिपेंड करता है 3 चीज़ों पे। एक तो पत्थर का साइज़ क्या है, दूसरा किडनी में कहाँ पे है, वो किडनी में है, मूत्र नली में है, पेशाब की थैली में है, या और तीसरा किडनी में वो कितना इफेक्ट देखा जा रहा है। तो देखा जाता है कि किडनी का जो साइज, पत्थरी का जो साइज़ होता है वो कभी कभी काफ़ी छोटा होता है, 4 mm, 5 mm, 6 mm का स्टोन होता है, तो मोस्ट ऑफ द टाइम जो होता है उसको वो मेडिकल थेरेपी दवा से, हाइड्रेशन से निकल जाता है। इसके अलावा जो इससे थोड़े बड़े होते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं मीडियम साइज स्टोन, जनरली 8 mm, 9 mm का स्टोन जो होता है, वो इनिशियल फेज़ में तो आपको दर्द काफ़ी कराता है, लेकिन उसके लिए भी मेडिकल एक्सपेंसिव थेरेपी, मतलब कुछ मेडिसिन अवेलेबल रहते हैं जो कि उसको निकालने में और उसको गलने में भी हेल्प करते हैं। लेकिन इससे बड़ा अगर स्टोन हो जाता है, जनरली 10 mm, 11 mm, 12 mm, तो जनरली वो देखा जाता है कि वो पत्थर जो है मेडिकल थेरेपी से नहीं ठीक होता है, तब उस हालत में हम लोग सर्जरी का सलाह देते हैं। इसके साथ में ये देखने का बात ज़रूर है कि किडनी में कोई वो प्रॉब्लम या फंक्शनल इम्पेयरिटी या फंक्शनल लॉस तो नहीं करा रहा है। कभी कभी क्या होता है कि किडनी का स्टोन जो होता है वो छोटा रहता है, लेकिन फिर भी वो फंक्शनल किडनी का फंक्शन में ज़्यादा इफेक्ट कर जाता है, तब उस हालत में हम, या किडनी में इन्फेक्शन हो जाता है, खासकर उन लोगों को जैसे पहले से उनको कोई बीमारी है, जैसे शुगर हो गया, हाइपरटेंशन हो गया, डायबिटीज़ हो गया, तो इन सब केसेस में हो सकता है कि पेशेंट को वो छोटा पत्थर ही ज़्यादा प्रॉब्लम करा रहा हो, तब उस हालत में हम सर्जरी का सलाह देते। कहने का मतलब है किडनी स्टोन हो गया इसका मतलब आपको सर्जरी करना है, ऐसा बात नहीं है, बहुत सारे ट्रीटमेंट मोडलिटीज़ अवेलेबल है जिससे आपको किडनी स्टोन से छुटकारा मिल जाता है।
1: जी, और यदि सर्जरी करना भी पड़ सकता है तो घबराने की जरूरत नहीं है।
0: हाँ बिल्कुल, आजकल तो सर्जरी जो है, जैसे जैसे हमारा साइंस एंड टेक्नोलॉजी डेवलप हो रहा है, आजकल किडनी सर्जरी तो मिनिमल इन्वेसिव, मतलब दूरबीन से बिना कोई चीरफाड़ के ही किया जाता है, जिससे कि हॉस्पिटल स्टे भी काफ़ी कम रहता है, पेशेंट का डिस्चार्ज भी उतना जल्दी हो जाता है, और साथ में ऑब्वियसली जब इतना जल्दी आपका ट्रीटमेंट हो रहा है तो आप बैक टू वर्क भी उतने जल्दी हो जाते हैं। तो अगर इनकेस आपको सर्जरी का ज़रूरत बढ़े भी तो पहले के जैसा आप घबराने का ज़रूरत नहीं है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, लेज़र की सहायता से, एंडोस्कोपिक सर्जरी की सहायता से आप बिल्कुल सर्जरी के बाद तुरंत ही, आप कुछ दिनों के अंदर ही अपने नॉर्मल रूटीन में वापस आ सकते हैं।
1: डॉक्टर साहब, एक अहम सवाल कि किडनी में पत्थर बनना शुरू ही नहीं हो, हम अपने खान पान को व्यवस्थित करें, दिनचर्या को ठीक से हम रखें, किन किन बातों का ख्याल रखा जाए, खाने में किन किन चीज़ों से दूरियां बनाई जाए?
0: सबसे पहले तो हम लोग जैसे जानते हैं कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, तो हमारा साइंस में भी यही मानना है कि कोई चीज़ अगर हम प्रिवेंट कर सके तो ये तो सबसे बड़ा बात है। अब प्रिवेंशन के लिए हम लोग जो है जैसे पेशेंट्स को जनरली 3 चीज़ का सलाह देते हैं। सबसे पहले तो है प्रॉपर हाइड्रेशन, क्योंकि हमने बताया कि किडनी में स्टोन बनने का कारण होता है किडनी का फिल्ट्रेशन प्रोसेस, तो किडनी का फिल्ट्रेशन प्रोसेस को अच्छे करने के लिए प्रॉपर हाइड्रेशन, मतलब पानी बहुत ज़रूरी है। कितना पानी पिए, जनरली हम लोग सलाह देते हैं कि दिन भर में कम से कम 2 से 2.5 लीटर पानी तो पीना ही चाहिए। इसके अलावा मौसम गर्मी है तो ज़्यादा पीना है, अगर आपका फिजिकल एक्टिविटी वाला काम है, गर्मी में ज़्यादा एक्सपोज है, ज़्यादा स्वेटिंग है, तो उसी हिसाब से 500-600 ml पानी की मात्रा बढ़ाना चाहिए। सेकेंड बात हो गया खान पान में, देखा जाता है कि बहुत सारे खान पान जो होते हैं वो किडनी में स्टोन बन के जमने का उनका प्रवृत्ति ज़्यादा रहता है। जैसे सिंपल चीज़ों में आप देखें तो हो गया आपका भिंडी हो गया, पालक साग हो गया, टमाटर हो गया, ऐसे बहुत सारा खान पान होता है जिसमें एक्चुअली ऑक्सलेट्स होते हैं, वो किडनी में जमते हैं और वो जाके वहाँ पथरी का रूप ले लेते हैं। तीसरा जो मैंने बताया कि बहुत सारे स्टोन्स होते हैं जो कि जेनेटिक भी होते हैं, जो कि आपके खानदान में हो, पेरेंट्स में, ग्रैंड

0: पेरेंट्स में, उनके पूर्वजों में हो रहा होता है, तो उन लोगों में स्टोन रिकरेंस या फॉर्म होने का टेंडेंसी, प्रवृत्ति ज़्यादा रहती है। तो ऐसे पेशेंट्स जिनको कि फैमिली में स्टोन होने का टेंडेंसी जाता है, ज़्यादा है, उनको हम यही सलाह देते हैं कि आप रेगुलर चेकअप कराते रहे। चेकअप का मतलब होता है कुछ ब्लड टेस्ट होता है, यूरिन टेस्ट होता है, अल्ट्रासाउंड होता है, ताकि आप वो प्रॉब्लम जो कि आपके फैमिली में चल रहा है और आपको होने का चांस ज़्यादा है, तो आप उनके बचे रहने का प्रयास करें। लेकिन जो भी हो, ये सब काफ़ी सिंपल सा चीज़ है, ये सब हम अपने डेली लाइफस्टाइल में चेंज करें और अपना खान पान में परहेज करें, तो काफ़ी हद तक हम किडनी स्टोन से बच सकते हैं।
1: जी, ज़्यादा प्रोटीन का इंटेक लेने से भी किडनी में पत्थर बनना शुरू हो जाता है?
0: बिल्कुल,
1: क्योंकि आजकल हमारे युवा साथी प्रोटीन का इंटेक काफ़ी बढ़ाते हैं।
0: बिल्कुल, मैंने जैसे आपको बताया कि एक कारण होता है हमारा ब्लड का, ब्लड में कंपोनेंट होता है यूरिक एसिड बोलते हैं उसको, तो यूरिक एसिड जो होता है वो जनरली प्रोटीन रिच, मतलब प्रोटीन वाले खाना में, जैसे हो गया नॉनवेज हो गया, सोयाबीन हो गया, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स हो गया, इसमें जनरली ज़्यादा होता है और ये शरीर में टूटकर यूरिक एसिड बनता है, और यूरिक एसिड जो है सो हमारे किडनी में डिपॉजिट जब होने लगता है तो वहाँ पे स्टोन बन जाता है, तो उसके कारण भी ज़्यादा प्रोटीन रिच खाना हमारे किडनी के लिए ठीक नहीं।
1: जी डॉक्टर साहब, अंत में क्या सलाह देंगे? हमारे युवा साथी, बड़े बुजुर्ग खुश रहें, स्वस्थ रहें, किडनी में पत्थर बने ही नहीं।
0: मेरा सलाह यही है कि आप स्वस्थ रहें, किडनी स्वस्थ रखें, क्योंकि किडनी तो हमारे लाइफ के लिए सबसे ज़रूरी अंग है, और उसका बचाव के लिए जैसे मैंने बताया, खान पान में परहेज, पानी ज़्यादा पीना, और सबसे ज़रूरी बात है कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम हो तो उसको इग्नोर ना करें। अगर इस तरह के, अगर मान लीजिए, अगर ये सब प्रिवेंशन के बाद भी अगर आपका दिक्कत है, पत्थर बन गया है, तो बिल्कुल घबराए ना, ट्रीटमेंट तो बहुत आसान है, जल्द से जल्द अपना इलाज कराए और स्वस्थ रहे।
1: जी, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर जय कुमार, किडनी एवं मूत्र रोग विशेषज्ञ, आज आप इस कार्यक्रम में आए और किडनी में स्टोन होने का क्या कारण है इस पर आपने बातचीत की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मित्रों, अपना ख्याल रखिएगा, हंसते रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा, और आज का दिन आपके लिए शुभ एवं मंगलमय हो। कल फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ। नमस्कार।
2: स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम में आप सुन रहे थे भेंट वार्ता, किडनी में पत्थर होना, कारण और बचाव। भेंट वार्ताकार थे डॉक्टर जय कुमार, भेंट करता संजीव कुमार लाल। आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। सुबह सुरीली के लिए बस थोड़ा इंतजार।

येसुदास के स्वर में अभी आप सुन रहे थे फिल्म हैसियत का गीत। शब्द रचना थी इंदिवर की, संगीत था बप्पी लाहिरी का। और आइए अब सुनते हैं फिल्म दुल्हन वही जो पिया मन भाई का ये गीत, जिसे लिखा है और संगीतबद्ध किया है रविंद्र जैन ने। स्वर है

0: यदि माँ एचआईवी से संक्रमित हो तो नवजात शिशु को एचआईवी का संक्रमण हो सकता है। इसलिए गर्भावस्था के पहले 3 माह के अंदर माँ की एचआईवी जांच अपने निकटतम सरकारी अस्पताल में अवश्य कराएं, ताकि शिशु को एचआईवी के संक्रमण से बचाया जा सके। जांच जितनी जल्दी, सुरक्षा उतनी पक्की। अधिक जानकारी के लिए नाको टोल फ्री नंबर 1097 पर संपर्क करें या नाको एड्स ऐप डाउनलोड करें। झारखंड राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी।
1: और आइए अब सुनते हैं फिल्म उपकार का ये गीत महेंद्र कपूर के स्वर में। गुलशन बाबरा के बोल हैं, संगीत है कल्याण जी आनंद जी का।

और आइए सुनते हैं फिल्म पूरब और पश्चिम का ये गीत, इंदिवर का लिखा हुआ। कल्याण जी आनंद जी का संगीत है, स्वर है महेंद्र कपूर का।

और आइए सुनते हैं फिल्म गोलमाल का ये गीत, किशोर कुमार का गाया हुआ, गुलजार के बोल हैं, संगीत है आर डी बर्मन का।

0: किशोर कुमार के गाए फिल्म गोलमाल के इस गीत के साथ ही संपन्न हुआ सुबह सुरीली। आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है, आइए सुनते हैं खुला आकाश, सुनते हैं रवि भूषण की वार्ता विश्व फलक पर हिंदी कविता।
1: स्थान विशेष और भाषा विशेष में सीमित केंद्रित रहने के बाद भी एक बड़ा कवि किसी स्थान विशेष और भाषा विशेष में बंधा नहीं होता। कवि विश्व नागरिक है और उसकी चिंता में यह समस्त चराचर जगत है। मनुष्य होकर भी उसका संसार केवल मनुष्य तक ही सीमित नहीं है, पूरी प्रकृति पृथ्वी से आकाश तक सभी कविताओं में ध्वनित चित्रित वर्णित होते हैं। रविन्द्रनाथ ठाकुर को विश्व कवि कहा जाता है। तुलसी, कबीर, मीरा, जायसी जैसे भक्तिकालीन कवियों के साथ हिंदी के अन्य कई मूर्धन्य कवि भी इसी आधार पर मात्र हिंदी कवि न होकर भारतीय कवि हैं, जिन्हें हम उनकी वैश्विक चिंताओं के कारण विश्व कवि भी कह सकते हैं। कवि की काया वर्तमान में रहती है, पर उसकी कविताओं में एक साथ तीनों काल, स्मृति, यथार्थ और कल्पना के रूप में विद्यमान होते हैं। कवि विजनरी होता है, भविष्य दृष्टा और स्वप्नदर्शी। उसकी रचनाशीलता का महत्व किसी रचनाशील समाज में ही समझा जा सकता है। हिंदी कविता का इतिहास हजार वर्ष से अधिक का है, सरहपा से लेकर आज तक। इस सुदीर्घ काल यात्रा में हिंदी कविता विकास के कई चरणों से गुजरी है। यह काव्य समृद्धि चकित विस्मित करती है। कविता का विषय बदला, रूप शिल्प बदला, इस सतत परिवर्तनशीलता के साथ वह जिस मूल भित्ति पर अवस्थित होती है वह प्रायः सभी भाषाओं की कविताओं में लगभग समान है, क्योंकि कविता निर्माण करती है। मुक्तिबोध ने कविता को कालयात्री कहा है और यह लिखा है कि वह कहीं भी खत्म नहीं होती। कविता की यात्रा कई रूपों में होती है। छापे खाने के आविष्कार और पुस्तकों के प्रकाशन के बाद कविता भौगोलिक और भाषाई सीमा में बंधी नहीं रही, वाचिक और मौखिक परंपरा में भी वह भ्रमण करती रही है। पर अपने देश और भूभाग से निकलकर वह दूसरे देशों और भूभागों में कम पहुंचती रही थी। 21वीं सदी में हिंदी कविता जिन रूपों में विश्व फलक पर है उस रूप में वह पहले नहीं थी। एक ध्रुवीय विश्व और भूमंडलीकरण तथा विश्व ग्राम के दौर में हिंदी कविता ने अपनी सर्वत्र उपस्थिति दर्ज कराई और यह उपस्थिति अनेक रूपों में है। 19वीं शताब्दी के अंत से पहले हिंदी की किसी प्रमुख काव्यकृति का अनुवाद अंग्रेजी में नहीं हुआ था। यूरोपीय उदासीनता केवल हिंदी कविता और साहित्य के प्रति न होकर पूरे भारतीय साहित्य और ज्ञान के प्रति थी। मैकाले के उस सुप्रसिद्ध कथन की याद अब भी की जाती है कि भारत का सारा साहित्य और ज्ञान भंडार एक अलमीरा में है। समय बदला, दृष्टि बदली, 19वीं सदी से जिस तुलनात्मक भाषा साहित्य और अनुवाद कर्म का आरंभ हुआ वह 20वीं सदी के अंत तक उस मुकाम पर पहुंच गया जिसे देखकर आश्चर्य होता है। गारसा दत्तासी और जॉर्ज ग्रियर्सन जैसे हिंदी साहित्य के आरंभिक इतिहासकारों के बाद भी उस समय हिंदी कविता की पहचान की बात तो दूर रही, प्रमुख काव्यकृतियों के अनुवाद भी फ्रेंच और अंग्रेजी में नहीं हुए थे। 1872 ईस्वी तक यूरोप के अधिकांश प्राच्यविद विद्वान संस्कृत, पाली और प्राकृत के अध्ययन में जुटे थे। ब्रिटिश म्यूजियम और प्राय सभी यूरोपीय संस्थाओं, विश्वविद्यालयों में हिंदी की न तो पुस्तकें थीं न पांडुलिपियां। 19वीं सदी में अनुवाद को हतोत्साहित किया गया और हिंदी साहित्य के प्रति एक नकारात्मक और निषेधात्मक दृष्टिकोण था। 19वीं शताब्दी के 70 के दशक में पहली बार यूरोप के पुस्तकालयों में

में मात्र आधा दर्जन हिंदी पुस्तकें थी। बिम्स ने मध्यकालीन हिंदी ग्रंथों को साहित्यिक उपलब्धियों की दृष्टि से महत्वपूर्ण माना था, पर वे तुलनात्मक भाषा शास्त्र की दृष्टि से हिंदी को देख रहे थे। ब्रिटिश राज के औपनिवेशिक प्रशासकों ने हिंदी साहित्य को सामान्य रूप से खारिज किया था। उनके अनुसार यह साहित्य अर्थहीन और सामान्य था। 1876 की उत्तर पश्चिमी राज्य और अवध की रिपोर्ट में यूरोपीय दृष्टि से हिंदी की मात्र 4 पुस्तकों को सामान्य मूल्य का माना गया था, जिसमें हिंदी की एक भी पुस्तक का उल्लेख नहीं था। यह भारतेंदु हरिश्चंद्र और उनके मंडल के सहयोगियों साथियों का साहित्य समय था। 1878 और 1883 की रिपोर्ट भी अनुकूल नहीं थी। उस समय केवल ब्रॉकहास हिंदी साहित्य के संबंध में कुछ कह रहे थे और चंदवरदाई कबीर तुलसी का नामोल्लेख कर रहे थे। इंग्लैंड में ही नहीं, जर्मनी में भी स्थिति समान थी। वहाँ की सबसे पुरानी ओरिएंटल सोसाइटी, जो टैले में थी, में बिम्स और होयरनल द्वारा पृथ्वीराज दासो का अनुदित एक संक्षिप्त संस्करण 1873 का था। अंग्रेजी में अनुवाद किसी भी प्रमुख हिंदी काव्यकृति का तुलसीकृत रामचरितमानस का फ्रेडरिक ग्रोज का था, जिसे 1877-80 में संपन्न किया गया था। यह अनुवाद सामान्य पाठकों को ध्यान में रखकर किया गया था। गार्सा दत्तासी और जॉर्ज ग्रियर्सन द्वारा लिखित हिंदी साहित्य इतिहास के अतिरिक्त उस समय प्रकाशित कई जर्नलों के जरिए हिंदी कवियों और उनकी कविताओं से बाहर के लोग परिचित हुए। 19वीं सदी के अंत से आज तक स्थितियां काफी बदल चुकी हैं। उस समय विश्व फलक पर हिंदी कविता कहीं नहीं थी। आज विश्व फलक पर हिंदी कविता की अपनी पहचान है और किसी भी भाषा की कविता की तुलना में हिंदी कविता कम नहीं है। कबीर पर बाहर जितना काम हो रहा है और केशव दास सहित अनेक मध्यकालीन कवियों पर उनकी कवि दृष्टि पर उस समय पर जितनी गंभीरता के साथ कार्य हो रहे हैं, उनसे भारतीय विश्वविद्यालयों के अधिकांश हिंदी प्रोफेसर अपरिचित हैं। तुलनात्मक साहित्य और अनुवाद कर्म को महत्व देने के साथ ही हिंदी कविता विश्व में फैल गई है। प्रवासी भारतीयों की बात छोड़ दें, जिनका संबंध भारत और हिंदी भाषा साहित्य से अब भी बना हुआ है, विश्व के प्रायः सभी देशों में कहीं कम कहीं अधिक हिंदी कविता मौजूद है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, विशेषतः स्वतंत्र भारत में, हिंदी में जो नई कविता का दौर है, उसमें यूरोपीय देशों के साथ अन्य देशों में हिंदी कवियों का काव्य पाठ एवं व्याख्यानादि के लिए जाना आरंभ हुआ। बच्चन ने बाहर से ऊंची शिक्षा प्राप्त की। अज्ञेय काव्य पाठ और व्याख्यान के लिए कई विदेशी विश्वविद्यालयों में जाते रहे। बाहर की दुनिया में हिंदी कविता अनुवाद, भाषण, व्याख्यान, कार्यशाला, वार्तादि के रूप में पहुंचने लगी। 21वीं सदी में सारे बंधन टूटे, भौगोलिक और भाषाई दूरियां मिटी, प्रत्येक भाषा का कवि अपना कवि दिखाई देने लगा। 70 के दशक से सभी प्रमुख विदेशी कवियों के हिंदी में अनुवाद हुए। आज किसी भी भाषा, चाहे उसके बोलने वालों की संख्या कुछ लाखों में ही क्यों न हो, के प्रमुख कवियों का हिंदी में अनुवाद हो चुका है। खिड़कियां खुल चुकी हैं और एक व्यापक काव्य परिसर में सभी प्रमुख कवि एकत्र हैं। अशोक वाजपेयी ने भारत भवन में वर्षों पहले विश्व कविता का एक गंभीर आयोजन किया था, जिसमें कई नोबेल पुरस्कार से सम्मानित कवि मौजूद थे। 19वीं सदी के अंत से लगभग 1950 तक हिंदी कविता कहीं से भी विश्व फलक पर मौजूद नहीं थी। स्वतंत्र भारत में इसमें गति आई और आज यह स्थिति है कि हिंदी का कोई भी ऐसा प्रमुख चर्चित समकालीन नहीं है जिनकी कविताओं का विश्व की कई भाषाओं में अनुवाद न हुआ। भक्तिकालीन हिंदी कवियों पर जितना गंभीर काम भारत में हो रहा है, उससे कम से कम 10 गुना अधिक गंभीर काम बाहर हो रहा है। कबीर इनमें सबसे प्रमुख हैं। फ्रैंकफुर्ट विश्वविद्यालय से लेकर केवल जर्मनी में ही नहीं, अन्य देशों के कई विश्वविद्यालयों में कबीर पर गंभीर आयोजन हुए हैं। अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठियां हुई। प्राय सभी प्रमुख देशों के प्रमुख विश्वविद्यालयों में दक्षिण एशियाई देशों और उनके साहित्य संस्कृति के जो विभाग हैं, उनमें अनेक में हिंदी का अध्ययन अध्यापन होता है।
कई विश्वविद्यालयों में हिंदी का स्वतंत्र विभाग है। हिंदी के प्रायः सभी प्रमुख कवि विश्व की प्रायः सभी भाषाओं में अनुदित हो चुके हैं। कविता का एक स्वतंत्र विश्व बन रहा है। सभी प्रमुख कवियों को पढ़ा जा रहा है। अंग्रेजी, रूसी, जर्मन, फ्रेंच, इतालवी, स्पेनिश, पोलिश आदि भाषाओं में हिंदी कविताओं के अनुवाद हो रहे हैं।

0: पोलिश में कई समकालीन कवियों अशोक वाजपेयी समेत की कविताओं के अनुवाद हो चुके हैं। अनेक दूतावासों की मुख्य भूमिका रही। विश्व के करीब 100 विश्वविद्यालयों में हिंदी कविता का अध्ययन अध्यापन और उस पर गंभीर शोध कार्य हो रहा है, अनुवाद हो रहा है, कार्यशालाएं हो रही और अनेक हिंदी कवि वहां जाकर काव्य पाठ कर रहे हैं, इन भाषाओं के कवियों से मिल रहे हैं। यह कवि संवाद जो विश्व स्तर पर जारी है उसे और अधिक बढ़ाने की आवश्यकता है। विश्व में कई विमर्श डिस्कोर्स जारी, उनमें स्त्री विमर्श वुमेन डिस्कोर्स विशेष प्रमुख है। लैंगिक जेंडर और स्त्री अध्ययन के दौर में ही पश्चिम में मीराबाई की कविताओं के अनुवाद और अध्ययन पर विशेष ध्यान दिया गया है। मुख्य रूप से भक्तिकालीन कवियों और समकालीन कवियों की कविताएं विश्व फलक पर अपनी पहचान बना रही, जिनमें भक्तिकालीन कवियों की कविताओं पर विशेष ध्यान है। कालेवारेट की द मिलियनियम कबीर, चार्लोट व्राडेविले की द वेवर नेम्ड कबीर, जी एच वेस्टकॉट की कबीर एंड कबीर पंथ के साथ कई ऐसे पुस्तकों की सूची बनाई जा सकती है जो कबीर और कबीर पंथ पर केंद्रित हैं। लिंडा हेस और डेविड लारेंजन के काम से अधिकांश लोग परिचित हैं। विश्व फलक पर हिंदी कविता की उपस्थिति कई रूपों में, कवियों की कविताओं के अनुवाद कई प्रकार से संपन्न हो रहे हैं, विषय को केंद्र में रख कर भी कविताओं के अनुवाद हो रहे हैं और पुस्तकें प्रकाशित हो रही हैं। फिलहाल एक उदाहरण डच भाषा में प्रकाशित एक जग डे स्टैड का है, जो मैंने शहर देखा का डच अनुवाद है। यह शीर्षक मंगलेश डबराल के कविता शीर्षक शहर से लिया गया है। इस संकलन का प्रकाशन 2006 में हुआ, जिसमें कुंवर नारायण, केदारनाथ सिंह, त्रिलोचन, अशोक वाजपेयी, मंगलेश डबराल, नीलाव, कुमार विकल, विष्णु खरे, अरुण कमल, कात्यायनी, अनामिका, जावेद अख्तर, अनीता वर्मा, सविता सिंह और गुलजार की कुछ नगर केंद्रित कविताओं का डच भाषा में अनुवाद है, जो अमस्टर्डम के इंडिया इंस्टीट्यूट से डिक पलुक्कर और लोडे विस्क द्वारा अनुदित है। कवि की स्वतंत्र कविता पुस्तक, कुछ कविताएं, थीम आधारित कविताओं का चयन, आधुनिक और समकालीन हिंदी कविताओं के अनुवाद के साथ ही कवियों के व्याख्यान, उनसे अंतरंग वार्ता, सब के जरिए हिंदी कविता विश्व फलक पर पहचान बना चुकी है। उसकी विविधता और समृद्धि से, उसके गहरे कंसर्न से, उसके कथ्य रूप शिल्प के साथ चमकीली लय से अब बाहर की दुनिया परिचित हो रही है। बड़े बड़े पुरस्कार और सम्मान हिंदी कवियों को बाहर प्राप्त हो रहे हैं। कुंवर नारायण को एक बड़ा कवि सम्मान प्राप्त हो चुका है। उनके साथ केदारनाथ सिंह, अशोक वाजपेयी, विष्णु खरे, मंगलेश डबराल, अरुण कमल सहित 200 अनेक समकालीन हिंदी कवि विदेश की यात्राएं कर चुके हैं। जहां तक कविताओं के अनुवाद का प्रश्न है, वह देश के भीतर भी हो रहा है। कई अंग्रेजी प्रकाशकों ने हिंदी कवियों की और हिंदी कविताओं के अनुवाद प्रकाशित किए। कुंवर नारायण की चयनित कविताओं का एक अंग्रेजी संकलन नो अदर वर्ल्ड है, जिसे रूपा ने 2008 में प्रकाशित किया था। भारत के कई विश्वविद्यालयों के विदेशी भाषा विभाग, साहित्य अकादमी मुख्य रूप से इस भूमिका में। हिंदी कविता आज अपने घर में, विश्वविद्यालयों में भले उपेक्षित हो, बाहर वह उपेक्षित नहीं है। हिंदी कविता के जो विविध स्वर हैं, वे बाहर सुनाई दे रहे हैं। बाहर गंभीर शोध कार्य हो रहे हैं। हिंदी कविता अब केवल हिंदी प्रदेशों में ही सिमटी नहीं रही है, भारतीय भाषाओं में उसका स्थान है। हिंदी में तनाव जैसी पत्रिका प्रकाशित हो रही है, जिसका प्रत्येक अंक किसी विदेशी भाषा के प्रमुख कवि की कविताओं के अनुवाद पर केंद्रित होता है। आज विश्व फलक पर हिंदी कविता अपने विविध रूपों में, अपने सशक्त और समृद्ध रूप के साथ मौजूद है।
1: खुला आकाश कार्यक्रम में आप सुन रहे थे श्री रवि भूषण की वार्ता, विश्व फलक पर हिंदी कविता। आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है।

0: मुख्य समाचार। मनरेगा के स्थान पर विकसित भारत जी राम जी अधिनियम आज से लागू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति डॉ मसूद पेजेश्कियान से बात की। पश्चिम एशिया में स्थायी शांति और स्थिरता बहाल करने तथा सुरक्षित नौवहन और वाणिज्य के लिए सतत प्रयासों पर बल दिया। जापान के प्रधानमंत्री सनाए तकाइची 3 दिन की भारत यात्रा पर आज नई दिल्ली पहुंचेंगी। फीफा विश्व कप फुटबॉल में फ्रांस ने स्वीडन को हराकर अंतिम 16 में जगह बनाई और क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की T20 श्रृंखला आज से। और अब समाचार विस्तार से। विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन ग्रामीण अधिनियम आज से लागू हो रहा है। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कहा है कि वीबीजी रामजी अधिनियम के अंतर्गत प्रत्येक वित्त वर्ष में 125 दिन के रोजगार की गारंटी होगी। इससे ग्रामीण भारत सशक्त बनेगा। हमारे संवाददाता ने बताया कि वर्तमान वित्त वर्ष में इस योजना के कार्यान्वयन के लिए 95,692 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है।
1: वीबीजी रामजी अधिनियम ने 20 साल पुराने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 की जगह ली है। इस नए कानून का उद्देश्य ग्रामीण परिवारों को एक वित्तीय वर्ष में मिलने वाले रोजगार की कानूनी गारंटी को 100 दिनों से बढ़ाकर 125 दिन करना है। इस बढ़ी हुई रोजगार गारंटी का मकसद ग्रामीण विकास की तेज रफ्तार को बढ़ावा देना है, लोगों की आय को अधिक सुरक्षित बनाना और ग्रामीण परिवारों को आर्थिक रूप से सशक्त करना है। इस कानून में मजदूरी का भुगतान समय पर पारदर्शी और जवाबदेही के साथ सुनिश्चित करने पर विशेष जोर दिया गया है। अगर तय समय के भीतर काम उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो इस कानून में बेरोजगारी भत्ता देने का भी प्रावधान किया गया है। वीबीजी रामजी एक व्यापक कानून है जिसका उद्देश्य वर्ष 2047 तक विकसित भारत के राष्ट्रीय लक्ष्य के अनुरूप ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बढ़ाना है। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: केंद्र सरकार ने विकसित भारत जी रामजी अधिनियम के अंतर्गत संशोधित पारिश्रमिक दरें अधिसूचित कर दी हैं। ये दरें आज से लागू हो जाएंगी। एक रिपोर्ट।
2: राष्ट्रीय औसत पारिश्रमिक मनरेगा के 298.80 रूपये से बढ़ाकर विकसित भारत जी रामजी के अंतर्गत 327.40 रूपये प्रतिदिन कर दिया गया है। इस प्रकार पारिश्रमिक दर में 10% से अधिक की औसत वृद्धि हुई है। 21 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में जहां पहले मजदूरी 300 रूपये से कम थी, वहां अब नई दरें लागू हो गई हैं। उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश और हिमाचल प्रदेश मजदूरी दर में 15 से 25% की वृद्धि वाले राज्यों में शामिल है। मंत्रालय ने बताया कि अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड में लगभग 24.5% की सर्वाधिक वृद्धि की गई है। हरियाणा में अब मजदूरी दर 409 रूपये, गोवा में 406 रूपये और केरल में 401 रूपये प्रतिदिन होगा। सिक्किम की ऊंचाई वाली ग्राम पंचायतों में यह दर 450 रूपये प्रतिदिन निर्धारित की गई है। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस संशोधन को गांवों की वृद्धि के माध्यम से विकसित भारत के लक्ष्य की दिशा में ऐतिहासिक कदम बताया। मंत्रालय ने कहा है कि यह कदम गरीब कल्याण, अंत्योदय और 2047 तक विकसित भारत की सरकार की प्रतिबद्धता में मील का पत्थर है। सकलेन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से नवीन सक्सेना।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल ईरान के राष्ट्रपति डॉ मसूद पेजेश्कियान के साथ टेलीफोन पर बातचीत की। राष्ट्रपति पेजेश्कियान ने श्री मोदी को पश्चिम एशिया के हाल के घटनाक्रम की जानकारी दी। प्रधानमंत्री मोदी ने विभिन्न पक्षों के बीच बनी सहमति का स्वागत किया तथा सभी मुद्दों का समाधान बातचीत और राजनयिक माध्यम से किए जाने के भारत के रुख को दोहराया। श्री मोदी ने पश्चिम एशिया में स्थायी शांति और स्थिरता तथा सुरक्षित नौवहन वाणिज्य के लिए सतत प्रयासों पर बल दिया। ईरान के राष्ट्रपति ने शांति, स्थिरता और क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देने में प्रधानमंत्री मोदी के व्यक्तिगत प्रयासों की सराहना की। ईरानी दूतावास ने बताया कि बातचीत के दौरान राष्ट्रपति पेजेश्कियान ने भारत में ब्रिक्स देशों के ऊर्जा मंत्रियों की बैठक के सफल

0: आयोजन पर संतोष व्यक्त किया। जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची 3 दिन की भारत यात्रा पर आज शाम नई दिल्ली पहुंच रही हैं। वे कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ 16वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ये सम्मेलन दोनों देशों को द्विपक्षीय सहयोग के सभी पहलुओं की समीक्षा और इसे सुदृढ़ बनाने के साथ ही परस्पर हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा का अवसर प्रदान करेगा।
1: भारत और जापान के बीच द्विपक्षीय संबंधों को वर्ष 2014 में विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी का दर्जा दिया गया था। अगले वर्ष दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंधों की स्थापना के 75 वर्ष पूरे होने वाले हैं। इस अवसर की ओर बढ़ते हुए दोनों देशों के बीच व्यापार और निवेश, आर्थिक सुरक्षा, रक्षा एवं सुरक्षा, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, संस्कृति तथा जन से जन संपर्क सहित विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग लगातार गहरा हो रहा है। भारत जापान व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता 1 अगस्त 2011 से प्रभावी है। पिछले वित्तीय वर्ष में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार 27 अरब डॉलर से अधिक रहा। सुपर्णा सैकिया के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष को देखते हुए महत्वपूर्ण पेट्रो रसायन उत्पादों को 15 जुलाई तक सीमा शुल्क से पूरी तरह मुक्त कर दिया है। पहले ये छूट कल मंगलवार तक के लिए दी गई थी। ये रियायत घरेलू बाजारों में पेट्रोकेमिकल उत्पादों की पर्याप्त उपलब्धता को बनाए रखने के लिए की गई है। इस छूट से प्लास्टिक पैकेजिंग, कपड़ा, फार्मास्यूटिकल, रसायन, मोटर वाहन और पेट्रो रसायन उत्पादों पर आधारित कई सेक्टर्स को लाभ होगा। बीमित व्यक्तियों के लिए बेरोजगारी भत्ता योजना अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना आज से अगले वर्ष 30 जून तक के लिए बढ़ा दी गई है और इसके साथ ही नए ईएसआई अस्पतालों का प्रबंधन अब सीधे निगम द्वारा किया जाएगा, जिससे उच्च गुणवत्ता वाली स्वास्थ्य सेवाएं सुनिश्चित की जा सकेंगी। केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री डॉ मनसुख मांडविया की अध्यक्षता में नई दिल्ली में आयोजित कर्मचारी राज्य बीमा निगम की बैठक में ये फैसले लिए गए। 29वां राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन आज से जयपुर में आयोजित किया जाएगा। हमारे संवाददाता ने बताया कि सम्मेलन को प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा राजस्थान सरकार मिलकर आयोजित कर रहे हैं।
2: सम्मेलन में 1000 से अधिक स्टार्टअप, शैक्षणिक संस्थाओं के 400 से ज्यादा प्रतिनिधियों सहित करीब 2700 प्रतिभागी हिस्सा लेंगे। पहले दिन 3 प्लेनरी और 6 ब्रेकआउट सत्र होंगे। वहीं दूसरे दिन 3 प्लेनरी सत्रों के बाद राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार वितरण के साथ सम्मेलन का समापन होगा। सम्मेलन में कृत्रिम बुद्धिमत्ता, डीप टेक, क्वांटम कम्प्यूटिंग, वॉइस फर्स्ट सॉल्यूशंस और सुरक्षित डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर सहित अन्य विषयों पर चर्चा होगी। यह आयोजन समावेशी, पारदर्शी और नागरिक केंद्रित डिजिटल शासन की दिशा में महत्वपूर्ण मंच साबित होगा। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर।
0: उत्तराखंड की मदरसा शिक्षा व्यवस्था में आज से एक बड़ा बदलाव लागू हो जाएगा। नई व्यवस्था के अंतर्गत उत्तराखंड मदरसा शिक्षा बोर्ड को समाप्त कर दिया जाएगा। राज्य में अल्पसंख्यकों के सभी शैक्षणिक संस्थान नए ढांचे के अंतर्गत संचालित होंगे।
3: उत्तराखंड सरकार ने शिक्षा व्यवस्था को अधिक आधुनिक, पारदर्शी और समान बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। समाज कल्याण एवं अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री खजानदास ने बताया कि वर्तमान में संचालित सभी मान्यता प्राप्त मदरसों को उत्तराखंड अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण के अधीन लाया जाएगा। साथ ही इन संस्थानों को उत्तराखंड विद्यालयी शिक्षा परिषद से संबद्ध किया जाएगा ताकि विद्यार्थियों को राष्ट्रीय शिक्षा मानकों के अनुरूप शिक्षा मिल सके। उन्होंने ये भी बताया कि ये व्यवस्था केवल मुस्लिम समुदाय तक सीमित नहीं होगी, बल्कि सिख, जैन, बौद्ध, ईसाई और पारसी समुदायों के अल्पसंख्यक शिक्षक संस्थानों पर भी सामान्य रूप से लागू होगी।
4: भारत में शिक्षा एक समान सबको होनी चाहिए, उसी के निमित्त हमारी सरकार ने 452 मदरसों को चिन्हित किया और उनसे कहा भी गया कि आप उत्तराखंड की जो हमारा शिक्षा प्रणाली है उससे संबंध होइएगा।
3: सभी मदरसों को यूडायस, यूनाइटेड डिस्ट्रिक्ट इन्फॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन नंबर आवंटित किया जाएगा। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार।

0: देहरादून।
1: देशव्यापी जनगणना के अंतर्गत आज केरल में घर घर जाकर आंकड़ों के सत्यापन का चरण शुरू हो रहा है। इस बारे में अधिक जानकारी हमारे संवाददाता से।
2: स्वगणना की प्रक्रिया पूरी होने के बाद फील्ड सत्यापन का चरण शुरू हो गया है। यह प्रक्रिया कल खत्म हुई। इस दौरान परिवार जनगणना पोर्टल के जरिए अपने सदस्यों की जानकारी डिजिटल रूप से जमा कर सकते थे। जिन लोगों ने ऑनलाइन पंजीकरण पूरा कर लिया है, उन्हें घर पर आने वाले जनगणना कर्मचारी को सेल्फ एन्यूमरेशन आइडेंटिफिकेशन नंबर देना होगा। इसके बाद कर्मचारी यह जाँच करेगा कि ऑनलाइन दी गई जानकारी मौजूदा रिकॉर्ड से मेल खाती है या नहीं। अगर कोई अंतर मिलता है या किसी परिवार ने स्वगणना पूरी नहीं की है तो कर्मचारी घर पर आने के दौरान जरूरी जानकारी फिर से इकट्ठा करेंगे। स्मृति एम पुल्लुरुथि की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
1: उत्तर प्रदेश सरकार ने सेवारत शिक्षकों के लिए अलग से शिक्षक पात्रता परीक्षा टीईटी आयोजित करने का निर्णय लिया है। यह निर्णय यूपी टीईटी की समीक्षा बैठक में लिया गया। टीईटी परीक्षा गुरुवार से 4 जुलाई तक राज्य के 60 जिलों के 955 परीक्षा केन्द्रों पर आयोजित की जाएगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज अनंतपुरम जिले के जंतुलुरु में आंध्र प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय के पहले दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। राष्ट्रपति स्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम पूरा करने वाले 1268 छात्रों को उपाधि प्रदान करेंगी। आज राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस मनाया जा रहा है। ये दिवस जन स्वास्थ्य की रक्षा के प्रति डॉक्टरों के समर्पण और उनके अमूल्य योगदान को रेखांकित करता है। ये दिवस हर साल 1 जुलाई को डॉक्टर विधान चंद्र रॉय की जयंती और पुण्यतिथि की स्मृति में मनाया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह ने डॉक्टर दिवस पर देश के सभी चिकित्सकों को शुभकामनाएं दी हैं। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने आज राष्ट्रीय डॉक्टर दिवस के अवसर पर सभी चिकित्सकों को हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की टी20 क्रिकेट श्रृंखला आज से इंग्लैंड में शुरू हो रही है। श्रृंखला का पहला मैच भारतीय समय अनुसार रात 10 बजे चेस्टर ली स्ट्रीट में खेला जाएगा। फीफा विश्व कप के राउंड 32 के मैच में फ्रांस ने स्वीडन को 3-0 से हरा दिया है और इसके साथ ही उसने अंतिम 16 में जगह पक्की कर ली है। इससे पहले नॉर्वे ने आइवरी कोस्ट को हराकर राउंड 16 में जगह पक्की की। राउंड 32 में मैक्सिको और इक्वाडोर के बीच मुकाबला जारी है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। और अब समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं विशाल शर्मा।
3: धन्यवाद मुनीश। देश की राजधानी से प्रकाशित हिंदी समाचार पत्रों की सुर्खियों में आज राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खबरों के साथ ही बाजार की स्थिति और पर्यावरण के सरोकारों को भी जगह दी गई है। दैनिक भास्कर ने केंद्र सरकार के स्पष्टीकरण को शीर्ष समाचार बनाया है। एथेनॉल से पेट्रोल गाड़ियों को किसी नुकसान का कोई सबूत नहीं। अखबार ने यह भी स्पष्ट किया है कि E20 पेट्रोल का इस्तेमाल करने से गाड़ी की बीमा पॉलिसी पर असर नहीं पड़ता है। पत्र ने सोने चांदी के भावों और सेंसेक्स में गिरावट की स्थिति अगले 6 माह में सुधरने की आशा की है। पंजाब केसरी ने अपनी पहली खबर को शीर्षक दिया है पीएम की हाई लेवल मीटिंग और बॉक्स में प्रकाशित किया है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस समेत कई मुद्दों पर पीएम ने चर्चा की और कहा कि सेवाओं को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाया जाए। ईरान के राष्ट्रपति से बात करते हुए हॉर्मुज में प्रधानमंत्री की ओर से नौवहन की स्वतंत्रता पर विशेष बल दिए जाने को भी पत्र ने शीर्ष समाचार बनाया है। नवभारत टाइम्स की पहली खबर है ओजोन प्रदूषण बना रहा दिल्ली एनसीआर को बीमार। अमर उजाला ने अपने संपादकीय पृष्ठ पर आलेख प्रकाशित किया है एक नए दौर की शुरुआत। लेख में कहा गया है कि आज भारत के 2 पड़ोसी चीन और पाकिस्तान परमाणु शक्ति संपन्न हैं और उनकी वायुसेनाएं तेजी से आधुनिक हो रही हैं। ऐसे में डीआरडीओ द्वारा नेत्र प्रणाली को अंतिम परिचालन की मंजूरी मिलना भारत की हवाई निगरानी क्षमता और तकनीकी आत्मनिर्भरता के एक नए दौर की शुरूआत जैसा है।
1: और अंत में सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। मनरेगा के स्थान पर विकसित भारत जी राम जी अधिनियम आज से लागू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति डॉ मसूद पेजिश्कियान से बात की। पश्चिम एशिया में स्थायी शांति और स्थिरता बहाल करने तथा सुरक्षित नौवहन और वाणिज्य के लिए सतत प्रयासों पर बल दिया। जापान की प्रधानमंत्री सनाए तकाईची 3 दिन की भारत यात्रा पर आज नई दिल्ली पहुंचेंगी। फीफा विश्व कप फुटबॉल में फ्रांस ने स्वीडन को हराकर अंतिम 16 में जगह बनाई। और क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की

0: to our website www.newsonair.gov.in and News on AIR app. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
1: आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं पूनम केरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। विकसित भारत रोजगार गारंटी और आजीविका मिशन ग्रामीण अधिनियम 2025 आज से लागू। 100 की जगह 125 दिनों का मिलेगा रोजगार। राज्य सरकार ने तमिलनाडु गैस रिसाव हादसे में प्रभावित सभी 42 प्रवासी श्रमिकों की सुरक्षित वापसी सुनिश्चित की। ट्रेन से झारखंड के लिए हुए रवाना। अपराध नियंत्रण में लापरवाही पर जमशेदपुर के एसएसपी और सरायकेला के एसपी पद से हटाए गए, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दिया निर्देश। राज्य के नवनियुक्त सूचना आयुक्तों का लोक भवन में शपथ ग्रहण समारोह आज। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार दिलाएंगे शपथ। और मौसम विभाग ने राज्य में अगले 4 दिन तेज बारिश, आंधी और वज्रपात का ऑरेंज अलर्ट किया जारी। और अब समाचार विस्तार से। विकसित भारत रोजगार गारंटी और आजीविका मिशन ग्रामीण वीबीजी रामजी अधिनियम 2025 आज से पूरे ग्रामीण भारत में लागू हो गया है। यह अधिनियम प्रत्येक पात्र ग्रामीण परिवार के लिए वैधानिक वेतनभोगी रोजगार गारंटी को 100 दिनों से बढ़ाकर 125 दिन करता है। एक रिपोर्ट।
2: वीबीजी रामजी अधिनियम ने 20 साल पुराने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 की जगह ली है। इस नए कानून का उद्देश्य ग्रामीण परिवारों को एक वित्तीय वर्ष में मिलने वाले रोजगार की कानूनी गारंटी को 100 दिनों से बढ़ाकर 125 दिन करना है। इस बढ़ी हुई रोजगार गारंटी का मकसद ग्रामीण विकास की तेज रफ्तार को बढ़ावा देना है, लोगों की आय को अधिक सुरक्षित बनाना और ग्रामीण परिवारों को आर्थिक रूप से सशक्त करना है। इस कानून में मजदूरी का भुगतान समय पर पारदर्शी और जवाबदेही के साथ सुनिश्चित करने पर विशेष जोर दिया गया है। अगर तय समय के भीतर काम उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो इस कानून में बेरोजगारी भत्ता देने का भी प्रावधान किया गया है। वीबीजी रामजी एक व्यापक कानून है जिसका उद्देश्य वर्ष 2047 तक विकसित भारत के राष्ट्रीय लक्ष्य के अनुरूप ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बढ़ाना है। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: केंद्र सरकार ने विकसित भारत जी राम जी अधिनियम के तहत संशोधित पारिश्रमिक दरें अधिसूचित कर दी हैं। ये दरें आज से लागू हो गई हैं। ग्रामीण विकास मंत्रालय से जारी अधिसूचना के अनुसार सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में पारिश्रमिक दर बढ़ा दी गई है। मंत्रालय ने बताया कि पहली बार 300 रुपये प्रतिदिन का अंतरिम आधार पारिश्रमिक दर लागू किया गया है और सुनिश्चित किया गया है कि इस कार्यक्रम के तहत कोई भी अधिसूचित दर इससे कम न हो। उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश और हिमाचल प्रदेश मजदूरी दर में 15-25% की वृद्धि वाले राज्यों में शामिल हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश पर तमिलनाडु के तिरुवल्लूर जिले में अमोनिया गैस रिसाव हादसे में प्रभावित झारखंड के सभी 42 प्रवासी श्रमिक सुरक्षित ट्रेन से झारखंड के लिए रवाना हो गए हैं। श्रम विभाग और राज्य प्रवासी श्रमिक नियंत्रण कक्ष ने तमिलनाडु प्रशासन, रेलवे और अस्पताल प्रशासन के साथ समन्वय कर श्रमिकों की सुरक्षित वापसी सुनिश्चित की। इस हादसे में धनबाद की प्रीति देवी की उपचार के दौरान मृत्यु हो गई। झारखंड सरकार ने मृतका के परिजनों को नियम अनुसार मुआवजा और अन्य वैधानिक लाभ दिलाने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पूर्वी सिंहभूम के वरीय पुलिस अधीक्षक पीयूष पांडे और सरायकेला खरसावां के पुलिस अधीक्षक निधि द्विवेदी को उनके वर्तमान पद से हटाने का निर्देश दिया है। विधि व्यवस्था नियंत्रित करने में विफलता और आपराधिक गतिविधियों को रोकने में लापरवाही के कारण पद से हटाने का आदेश दिया गया है। वहीं आयुक्त चाईबासा और एडीजी रांची को लगातार कैंप करने का आदेश दिया गया है। डीआईजी भी जमशेदपुर में ही कैंप करेंगे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने देर रात सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि जनता की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है, अपराधियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई होगी और किसी भी स्तर पर लापरवाही या जवाबदेही से बचने की अनुमति नहीं दी जाएगी। जमशेदपुर के बिष्टुपुर स्थित बार के बाहर चाकूबाजी और हत्या के मामले में पुलिस जांच तेज हो गई है। जोनल एडीजी सह एडीजी सीआईडी मनोज कौशिक ने कल घटनास्थल का निरीक्षण किया तथा सुरक्षा व्यवस्था और पुलिस की कार्रवाई की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि मामले में जो भी दोषी पाए जाएंगे उनके खिलाफ कानून के अनुसार सख्त कार्रवाई

0: कार्रवाई की जाएगी।
1: तो इसमें लापरवाही हुई है, कुछ चूक रही है, तो जिस जिस की भी लापरवाही और चूक है उन पे एक्शंस ऑलरेडी कुछ लोगों पे ले लिए गए हैं, पूरा रिव्यू करेंगे, उसके बाद में जिसकी भी जिस स्तर पे भी लापरवाही होगी उस पे एक्शंस होंगे। और साथ ही साथ इंसिडेंट जितने क्रिमिनल्स इन्वॉल्व हैं और जितने साथ में उनके को एक्यूज, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। टाइम बाउंड तरीके से तो टीम्स को निकाला गया है और जैसे ही टीम्स निकलेंगे उसके बाद में इस पे डेफिनेटली।
0: धनबाद के सोनाडी ओपी क्षेत्र के टंडाबाड़ी में भूधसान प्रभावित इलाके को खाली कराने की दिशा में कार्रवाई करते हुए कल बीसीसीएल प्रबंधन ने 21 अवैध आवासों में से 16 को ध्वस्त कर दिया। बीसीसीएल प्रबंधन का कहना है कि यह क्षेत्र भूधसान की दृष्टि से अत्यंत संवेदनशील है और किसी भी संभावित हादसे से लोगों के जानमाल की सुरक्षा के लिए यह कदम उठाया गया है। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR News_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। राज्य के नवनियुक्त सूचना आयुक्तों का शपथ ग्रहण समारोह आज सुबह 11:30 लोकभवन में आयोजित होगा। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार चारों नवनियुक्त सूचना आयुक्तों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। झारखंड उच्च न्यायालय द्वारा आयु सीमा में छूट से संबंधित सभी याचिकाओं का निस्तारण किए जाने के बाद जेपीएससी संयुक्त सिविल सेवा प्रतियोगिता परीक्षा 2025 की प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम जारी करने का रास्ता साफ हो गया है। अदालत ने कहा कि अधिकतम आयु सीमा तय करना राज्य सरकार का नीतिगत अधिकार है और सरकार पहले ही अभ्यर्थियों को 4 वर्ष की आयु सीमा में छूट दे चुकी है। झारखंड उच्च न्यायालय ने वर्ष 2020 के कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान कई जिलों में हुई अवैध पेड़ कटाई मामले की जांच में हो रही देरी पर राज्य सरकार और सीआईडी को फटकार लगाई है। अदालत ने जांच को केवल पलामू तक सीमित रखने पर चिंता जताते हुए पूरे मामले में संभावित बड़ी साजिश की व्यापक जांच कर विस्तृत जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया। मामले की अगली सुनवाई 2 सप्ताह बाद होगी। चतरा पुलिस ने प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन टीएसपीसी के 2 उग्रवादी को पिपरवार से गिरफ्तार किया है। एसडीपीओ प्रभात रंजन बरवार ने बताया कि कई मामलों में वांछित दोनों उग्रवादी लंबे समय से फरार चल रहे थे।
2: टीपीसी के 2 क्रियावादी सक्रिय क्रियावादी मसीह टिग्गा और किरण नगड़वार, इन दोनों को गिरफ्तार किया गया है। ये पूर्व से भी पिपरवार थाना कांड संख्या में वांछित थे, फरार चल रहे थे। कल एक विशेष सप्ताहमंत्री दल का गठन करते हुए इन दोनों को गिरफ्तार किया गया।
0: खूंटी जिले के अड़की थाना क्षेत्र के एक फास्ट फूड दुकान में छापेमारी कर भारी मात्रा में मिलावटी अवैध शराब जब्त की गई है। डीएसपी मंगल सिंह जामुदा ने बताया कि दुकानदार को गिरफ्तार किया गया, इसके साथ 5 लोगों के ऊपर मामला दर्ज किया गया है।
3: में अड़की बाजार में कुछ अवैध शराब की खरीद बिक्री हो रही है, उसके सूचना पर हम लोग ने छापेमारी की गई। कुल 460 बोतलें बरामद हुई जो विभिन्न ब्रांड की शराब की बोतलें हैं। उसके बाद एक व्यक्ति जो पकड़ाए हैं, फास्ट फूड का दुकान चलाते हैं, उनके भाई के साथ।
0: मौसम विभाग ने राज्य में आज से 4 जुलाई तक तेज बारिश, वज्रपात और तेज हवा की संभावना को देखते हुए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने खराब मौसम के दौरान अनावश्यक रूप से घर से बाहर नहीं निकलने तथा सुरक्षित स्थानों पर रहने की सलाह दी है। हॉकी इंडिया ने बेल्जियम दौरे के लिए 22 सदस्यों की जूनियर अंडर-21 पुरुष हॉकी टीम की घोषणा कर दी है। मैच 5 से 18 जुलाई तक खेले जाएंगे। भारतीय टीम की कप्तानी अनमोल एक्का को सौंपी गई है। भारत अपने अभियान की शुरुआत 7 और 8 जुलाई को ऑस्ट्रेलिया के साथ मैच से करेगा। अब अखबारों की सुर्खियां। रांची से प्रकाशित प्रमुख अखबारों ने कानून व्यवस्था को लेकर मुख्यमंत्री की कार्रवाई की खबर को पहले पन्ने पर प्रकाशित किया है। दैनिक भास्कर ने लिखा है, पूर्वी सिंहभूम एसएसपी और सरायकेला एसपी हटाए गए, एडीजी संभालेंगे कमान। हिंदुस्तान के शब्द हैं, राज्य के 48 शहरी निकायों में एफएसटीपी बनाएगी सरकार।

दैनिक जागरण ने लिखा है, वेतन निकासी मामले में एसआईटी ने 21 बैंक खातों को कराया फ्रीज। प्रभात खबर की सुर्खी है, झारखंड के 12 जिलों में सूखे का साया, अब तक 54% कम बारिश। और अब अंत में मुख्य समाचार। विकसित भारत रोजगार गारंटी और आजीविका मिशन ग्रामीण अधिनियम 2025 आज से लागू। 100 की जगह 125 दिनों का मिलेगा रोजगार। राज्य सरकार ने तमिलनाडु गैस रिसाव हादसे में प्रभावित सभी 42 प्रवासी श्रमिकों की सुरक्षित वापसी सुनिश्चित की। ट्रेन से झारखंड के लिए हुए रवाना। अपराध नियंत्रण में लापरवाही पर जमशेदपुर के एसएसपी और सरायकेला के एसपी पद से हटाए गए। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दिया निर्देश। राज्य के नवनियुक्त सूचना आयुक्तों का लोक भवन में शपथ ग्रहण समारोह आज। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार दिलाएंगे शपथ। मौसम विभाग ने राज्य में अगले 4 दिन तेज बारिश, आंधी और वज्रपात का ऑरेंज अलर्ट किया जारी। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 10 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: घर घर तक पहुंचाएं आपका विज्ञापन। आकाशवाणी और दूरदर्शन के विभिन्न चैनल देश के किसी भी कोने में विज्ञापन देने के लिए प्रसार भारती के मार्केटिंग प्रभाग से संपर्क कीजिए।
1: आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। आपके साथ है आपका दोस्त विनोद। बने रहे हमारे साथ हमारे कार्यक्रमों के साथ।

रक्तदान महादान है। एक स्वस्थ व्यक्ति प्रत्येक 3 महीने पर रक्तदान कर सकता है और अपने जीवन काल में कई जिंदगियां बचा सकता है।

डिम्बा मुंडा और साथियों के गाए इस नागपुरी मुंडारी लोकगीत के साथ ही संपन्न हुआ आज का लोकगीतों का कार्यक्रम लोकरंग। आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। अगला कार्यक्रम आप सुनेंगे अब से बस थोड़ी ही देर में।

0: रस रंजन। आइए सबसे पहले सुनते हैं फिल्म घरौंदा का ये गीत, जिसे गाया है रूना लैला और भूपिंदर ने। शब्द रचना है गुलजार की, संगीत जयदेव का।
1: दीवाना,
2: एक दीवाना शहर में,
1: एक दीवाना नहीं एक दीवानी भी।
2: दो दीवाने शहर में।

आप सुन रहे थे फिल्म याराना का गीत, किशोर कुमार का गाया हुआ, शब्द रचना थी अनजान की, संगीत था राजेश रोशन का। और आइए सुनते हैं फिल्म घर का ये गीत, लता मंगेशकर और किशोर कुमार के स्वर में, शब्द रचना गुलजार की, संगीत आर डी बर्मन का।

एसएच बिहारी का लिखा गीत अभी आप सुन रहे थे मोहम्मद रफी और आशा भोसले के स्वर में। फिल्म थी कश्मीर की कली, संगीतकार थे ओपी नैयर। और आइए अब सुनते हैं फिल्म गुड्डी का ये गीत, वाणी जयराम का गाया हुआ। गुलजार के बोल हैं, संगीत है बसंत देसाई का।

0: QR कोड स्कैन करो, 5,000 का कैशबैक पाओ। वाह, दिन बन गया।
1: UPI पिन एंट्रिंग सिर्फ पैसे भेजने के लिए है।
2: RBI कहता है
1: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: और आइए अब सुनते हैं फिल्म दाग का ये गीत, किशोर कुमार का गाया हुआ। शब्द रचना है साहिर लुधियानवी की, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

किशोर कुमार के गाए फिल्म दाग के इस गीत के साथ ही संपन्न हुआ आज का रसरंजन। आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। आइए सुनते हैं शास्त्रीय संगीत। सुनते हैं श्री चिर सत्य ठाकुर द्वारा सितार पर राग रागेश्वरी में आलाप और जोड़ के पश्चात दो गतें, विलंबित गत तीन ताल और द्रुत गत एक ताल में निबद्ध है। तबले पर संगत कर रहे हैं संदीप चैटर्जी।

0: आप सुन रहे थे श्री चीर सत्य ठाकुर द्वारा सितार पर राग रागेश्वरी में आलाप और जोड़ के पश्चात दो गतें, विलंबित गत तीन ताल और द्रुत गत एक ताल में निबद्ध थी। तबले पर संगत कर रहे थे संदीप चटर्जी। इसके साथ ही संपन्न हुआ आज का शास्त्रीय संगीत।
1: से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
0: आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। आइए सुनते हैं बढ़ते कदम। प्रस्तुति स्वर है कमलेश कुमार मिश्रा का, प्रस्तुति प्रभु शरण की।

0: नमस्कार, बढ़ते कदम कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कमलेश कुमार मिश्र। जब भी एक नए अंक के साथ आता हूं तो मैं बहुत ज्यादा उत्साहित रहता हूं, क्योंकि हमेशा हम बात अपने जिंदगी में आगे बढ़ने की करते हैं, एक कदम आगे बढ़ाने की करते हैं, अपने मंजिल को पाने की करते हैं, सरकार की उन योजनाओं की करते हैं जो हमें आर्थिक रूप से मजबूत बनाता है, हमें स्वावलंबी बनाता है। आज के कार्यक्रम में भी हम स्वावलंबन की बात करेंगे। आज के कार्यक्रम में JSLPS की हम कुछ दीदियों से बात करेंगे, एक अधिकारी से बात करेंगे कि किस तरीके से JSLPS महिलाओं की जिंदगी बदल रहा है, विशेषकर जब ग्रामीण महिलाओं की बात करते हैं। एक समय था कि जब आप गाँव में जाते थे तो आप महिलाओं से अगर बात करते ना तो आपको जवाब नहीं मिलता, वो बहुत हेजिटेट करते थे, उनमें आत्मविश्वास की कमी होती थी। लेकिन JSLPS से जुड़कर आज झारखंड की ग्रामीण महिलाएं कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ रही हैं और उनका जो आत्मविश्वास है वो देखते ही बनता है। आज उनके बिना, यानी उनके तैयार किए गए प्रोडक्ट के बिना हमारी जो जिंदगी है ना वो थोड़ी सी अधूरी होगी, क्योंकि हम आज ऑर्गेनिक फूड्स की बात करते हैं, आज हम बेहतरीन आचार की बात करते हैं, बड़ी पापड़ की बात करते हैं और इवन डिजाइनर ड्रेसेस की बात करते हैं और बहुत सारे आज ऑर्नामेंट्स भी वो तैयार कर रही हैं। तो ये जो खुशबू है वो झारखंड की खुशबू है और उन्हीं खुशबुओं को समेट कर आज का हमारा ये कार्यक्रम हमने तैयार किया है। आज के कार्यक्रम में हमारे साथ गोड्डा जिले के पथलगामा प्रखंड की BTM यानी ब्लॉक प्रोग्राम मैनेजर इंचार्ज सुरैया होंगी और इनसे हम जानेंगे कि किस तरीके से आज पथलगामा में एक आजीविका संसाधन केंद्र चल रहा है, जहां सैकड़ों महिलाएं जुड़कर अपनी जिंदगी बदल रही हैं और सरकार के द्वारा जो स्कीम्स चलाए जा रहे हैं, जो ट्रेनिंग प्रोग्राम्स चलाए जा रहे हैं, जो एक्सपोजर्स विजिट हो रहे हैं, उनके माध्यम से वो अपनी जिंदगी को बदल रही हैं। सुरैया जी, कार्यक्रम बढ़ते कदम में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: धन्यवाद
0: सुरैया जी। सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे, आज बहुत सारे श्रोता इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं, बहुत सारी महिलाएं सुन रही हैं, आपके केंद्र का नाम क्या है और मुख्यतः इस केंद्र का उद्देश्य क्या है?
1: मेरा केंद्र का नाम है संजीवनी आजीविका संसाधन केंद्र परसपानी, ब्लॉक पथरगामा, डिस्ट्रिक्ट गोड्डा। और इसका मेन जो ऑब्जेक्टिव है, मेन जो उद्देश्य है इस आजीविका संसाधन केंद्र का बनाने का, इसके नाम में ही आजीविका रिलेटेड है। आजीविका मीन्स कैसे दीदी एक महिला अपने आजीविका को बढ़ा पाए। और ये सिर्फ एक महिलाओं के लिए नहीं है, ये हजारों सैकड़ों हमारी गोड्डा डिस्ट्रिक्ट के सभी महिलाओं के लिए है। ये इनका मुख्य उद्देश्य जो था कि यहाँ विभिन्न प्रकार का क्षमता वर्धन हो, यहाँ पर डेमोस फील्ड वगैरह है, किस तरह दीदी लोग आगे अपना काम कर सके, फिर विभिन्न प्रकार के हमारे सरकार

0: सरकार के द्वारा जो डिजिलॉक के उत्पादों को जो एक ब्रांड मिला है पलास ब्रांड, उस ब्रांड के तहत कैसे हमारा जो यहाँ पे महिलाएं हैं जो विभिन्न प्रकार के संगठन बनाए हुए जैसे समूह है, ग्राम संगठन है, क्लस्टर स्तरीय संघ है, और सरकार के द्वारा जो इन्हें राशि प्रदान की गई है उसका उपयोग कैसे लाएं। मतलब इंडिविजुअली तो दीदी लोग कर ही रही थी, दीदी लोग मन में एक आया क्यों ना हम लोग संगठन के माध्यम से कुछ करें। और जो आजीविका संसाधन केंद्र का उद्देश्य यही था कि संगठन के माध्यम से ही आजीविका को बढ़ाने का कोशिश करना है। तो दीदी लोग ने एक छोटा सा पहल स्टार्ट किया पलास ब्रांड को लेके, अपना एक आटा चक्की का छोटा सा प्लांट यहाँ पे सेट किया है, फिर एक तेल मिल भी है सरसों तेल का, और एक दाल मिल भी है जिससे दीदी लोग अपना उत्पादन कर रही है। ये तकरीबन 1 से 1.25 साल पहले से स्टार्ट हुआ है। और दीदी लोग जैसा कि पत्थरगामा ब्लॉक जो रहा, यहाँ पे खेती बाड़ी का बहुत ज्यादा क्षेत्र है, ये यहाँ पे गेहूँ चावल सब्जी सरसों मसाला बहुत ज्यादा उत्पादन है, यहाँ पे मसाला में सिर्फ मिर्च का बहुत ज्यादा है यहाँ पे। तो ये सबको लेते हुए सर्वे करते हुए जो हमारे यहाँ विभिन्न प्रकार के जो कैडर है कोऑर्डिनेटर्स है उन लोग से बातचीत करके जो दीदी लोग को निष्कर्ष लगा कि क्यों ना हम लोग रॉ मटेरियल जब हमारे यहाँ अवेलेबल है उसको क्यों ना हम लोग वैल्यू एडिशन करके मार्केट में लेके आए। इसी को स्टार्ट करने के लिए यहाँ पे विभिन्न प्रकार के मशीन वगैरह उपलब्ध कराए गए। और सबसे बड़ा जो हमारा यहाँ पे सरकार का और हमारा जो एडमिनिस्ट्रेशन का जो बहुत बड़ा योगदान है दीदी लोग के साथ, ये एक भवन उनको उपलब्ध कराया गया। और ये भवन ही है जो भवन पे दीदी लोग इतना सोच पा रही है कि उनके पास जगह है तो उन लोग अपना काम स्टार्ट करें। और जगह के साथ साथ अभी भी जैसे नीड बढ़ता जाता है, लोग जब काम करते हैं तो अभी भी सहयोग रहा है वहाँ पे। जो बिल्डिंग तो था, भवन तो था, लेकिन बाउंड्री नहीं था। तो अभी हमारा जो जिला प्रशासन है, प्रखंड प्रशासन, सबसे मिलके वहाँ पे बाउंड्री उपलब्ध कराया गया। दीदी लोग का वहाँ पे जो भवन तो बना तो एक रोड पीसीसी रोड उपलब्ध कराया गया। अभी स्टोरेज के लिए दीदी लोग को थोड़ा सा दिक्कत हो रहा था तो वो भी सर के द्वारा बात करके, हमारे जो जिला प्रशासन के द्वारा वहाँ पे क्षेत्र भ्रमण भी किया जाता है बार बार, जो भी आवश्यक दिशा निर्देश है वो भी दिया जाता है। और वहाँ पे अभी बात भी चल रही है और जेई के माध्यम से वहाँ पे सारा नाप जो करके अभी फूड ग्रेन का स्टोरेज का भी भवन की बात हो रही है
1: जी।
0: तो हम लोग दीदी लोग को आशा है कि अगले साल तक का भी काम पूर्ण हो जाएगा। आजीविका संसाधन केंद्र का मेन ऑब्जेक्टिव भी यही है कि जीविका को बढ़ाना और एक संगठित तरीके से जीविका को बढ़ाना। क्योंकि
1: आज बढ़ते कदम कार्यक्रम को जितनी भी महिलाएं सुन रही हैं, जितने भी लोग सुन रहे हैं, जितने भी श्रोता हमारे हैं, आज हम आपको गोड्डा जिले की कहानी को इसलिए आपके बीच में ला रहे हैं कि ये एक ऐसी सफलता है जहां पर अगर महिलाएं सशक्त हों और महिलाएं कदम से कदम मिलाकर सरकार की योजनाओं का लाभ लेकर आगे बढ़े तो एक बहुत बड़ा बदलाव आता है समाज में। और वो बदलाव वहां पे आ रहा है, एक ऐसा भवन तैयार किया गया जहां ना सिर्फ आटा चक्की है बल्कि वहां पे तेल मिल भी है, वहां पे दाल भी निकाला जाता है, मसाला भी बनाया जाता है। मुझे जहां तक मालूम है सुरैया जी कि यहां पे आप लोग के बहुत सारे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स भी चलते हैं, आप उस ट्रेनिंग प्रोग्राम्स बारे में बताएं कि क्या क्या चीजें वहां पे होती हैं, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में क्या बताया जाता है, कैसे जो समूह की दीदियां हैं उनको आप लोग तैयार करती हैं, नई नई चीजें बताती हैं।
0: सबसे पहले मैं थोड़ा सा संजीवनी आजीविका संसाधन केंद्र का जो भवन है उसका जो एरिया है जो बना हुआ है उस पर थोड़ा मैं बात करूंगी। इसमें एक सबसे बड़ा एक ऑडिटोरियम है, उसके बाद 3 कमरे हैं जिसमें दीदी लोग रात में रुकती भी हैं और आवासीय ट्रेनिंग वगैरह भी होता है। फिर अपना एक किचन भी है जहाँ पे खाना पीना भी बनता है दीदी लोग के लिए, तीनों टाइम चारों टाइम का खाना पीना है, वहाँ रहने का भी सुविधा है। फिर पीछे एक जो बिल्डिंग है वो एक बहुत बड़ा हॉल टाइप का है, उसमें हम लोग पार्टीशन करके आटा तेल वगैरह मिल जो लगाए हुए आटा तेल और दाल का उत्पादन करवाते हैं, दीदी लोग ही करती है। ठीक है, उसके बाद जो बड़ा ऑडिटोरियम है, सबसे पहले उसी से शुरुआत हुई थी हमारा सितंबर अक्टूबर के 2021, वहां से सबसे पहले वहां ट्रेनिंग प्रोग्राम स्टार्ट हुआ। तो हमारा JSLPS के थ्रू जितना भी ट्रेनिंग होता है वहां पे पूरा गोड्डा डिस्ट्रिक्ट का क्षमता वर्धन जो होता है दीदी लोग का, कैपेसिटी बिल्डिंग हम लोग इसको बोल सकते हैं, कैपेसिटी बिल्डिंग हुआ, आखिर वो SMIB जो सोशल मोबिलाइजेशन और इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग होता है दीदी लोग का, मतलब उनका सोशल मोबिलाइज किया जाता है, सोशली कैसे वो एक इंस्टीट्यूशन बिल्ड करे और उस पर काम करे उनका ट्रेनिंग होता है। फिर उसमें जो खाता बही रहता है उसको कैसे लिखना है, क्योंकि आम हम गाँव के दीदी के साथ काम कर रहे हैं तो उनका क्षमता वर्धन विकास के लिए उनको मतलब रेगुलर तरीके से बार बार जब तक ट्रेनिंग नहीं मिलेगा तो फिर दीदी लोग कैसे कर पाएगी, तो उस टाइप का होता है। सही हिसाब किताब जो भी पैसा सरकार के थ्रू RFCIF जैसे हम लोग बोलते हैं सामुदायिक निवेश निधि जो मिलता है उसके बाद रिवॉल्विंग फंड जो मिलता है, उसमें बैंक लिंकेज जो बैंक से लोन मिलता है, वो सारा का हिसाब किताब सही से हो सके। उसके लिए आपका समूह में भी खाता है, ग्राम संगठन में भी खाता है, क्लस्टर में भी खाता है, इवन आजीविका संसाधन केंद्र का अपना खुद का खाता भी सारा अकाउंटेंट लेखापाल नाइट गार्ड वगैरह सब होते हैं वो सारा चीज का देखरेख करने के लिए, वो सारा चीज का ट्रेनिंग होता है। दूसरा फाइनेंशियल इंक्लूजन पे हम लोग आए, जैसे कि बैंक सखी है हमारी, बीसी सखी है, FLCRP, हर तरह का ट्रेनिंग समूह में जैसे जाना। दीदी पैसा तो कमा रही है लेकिन पैसा का उपयोग कैसे करेगी, है ना? क्योंकि हम लोग जो पैसा कमाते हैं एक आम लोग भी, तो उसका कुछ सेविंग जरूर करते हैं। तो वैसे दीदी लोग में भी वो चीज डालना है कि आपको पूरे साल का प्लान बनाना है कि क्या पैसा कितना खाने पीने में जाएगा, बीमारी में जाएगा, बच्चे की पढ़ाई में जाएगा, शादी ब्याह में जाएगा, पर्व त्यौहार में जाएगा, उस सारा चीज को, और कितना हम सेव करेंगे, उस सारा चीज का ट्रेनिंग वगैरह फाइनेंशियल लिटरेसी दीदी के माध्यम से होता है। उन लोग का क्षमता वर्धन का विकास वहां कराया जाता है, फिर वो लोग जाके गांव में ट्रेनिंग देती है। उसके बाद बीसी सखी जो हमारे गांव में दीदी लोग होती है, कभी कभी क्या होता है बैंक थोड़ा दूर होता है, दीदी लोग को आने में दिक्कत होता है, तो वो लोग अपना पैसा कैसे जमा करे, तो गांव की दीदी को एक आजीविका मिल गया, उनको किसी भी बैंक से उनको टाई अप किया जाता है, जैसे SBI है, JRDB है, बैंक ऑफ इंडिया है, इंडियन बैंक है, सबसे जोड़ के उनको वहां BCID कोड दिलाया जाता है। वो समूह में दीदी का घर में अगर कोई बुजुर्ग है तो उनके यहाँ जाके, उनका घर से जाके उनको मॉर्फो उपलब्ध करवाया जाता है, जाके उनका पैसा निकलवा सके और पैसा जमा करो। तो ये भी एक बहुत अच्छा उपलब्धि है जो एक हमारी दीदी कर रही है, जो ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं वाले मैट्रिक पास इंटर पास दीदी है, और वो लोग ये चीज सीख रही है और जाके वहाँ पे गांव में इसका कर रही है, इस तरह का ट्रेनिंग भी होता है। उसके बाद JSLPS के थ्रू जो बैंक सखी हर बैंक में दिया गया है, जैसे दीदी लोग जो जाती है वो लोग ज्यादा पढ़ी लिखी तो होती नहीं है, उनका विड्रॉल और जमा का डिपॉजिट फॉर्म वगैरह भरना, उनका बैंक लिंकेज का फॉर्म भरना, उनका खुद का फॉर्म भरना, उनका समूह का खाता खोलना, उनका इंश्योरेंस कराना, वो सारा चीज का क्षमता वर्धन भी उनका यहाँ करवाया जाता है, ताकि वो लोग यहाँ पे सीखे और सीख के फिर अपना क्षेत्र में उसी तरह से काम करें। उसके बाद थर्डली जो होता है आजीविका का, जो खेती बाड़ी जो होता है, खेती बाड़ी का जो ट्रेनिंग होता है उसमें जैसे उन्नत तरीके से खेती करना, सब्जी खेती हो गया, उसके बाद आप सब धान हो गया, SRI विधि से धान करना, दाल लगाना, हर चीज का एडवांस तरीके से जो होता है उस टाइप का ट्रेनिंग दिया जाता है। नर्सरी डेवलप करना, कैसे पहले दीदी नर्सरी डेवलप करे धान का, उसके बाद खेती करे ताकि उसको कम जमीन में ज्यादा पैदावार हो, है ना? और उसके बाद जैसे मचान खेती में हम लोग आ गए, जो सब्जी का लगता है उसमें एक मतलब छोटे से जमीन पे तीन तरह का सब्जी एट अ टाइम हो जाता है। आपका नीचे में ओल हो गया, फिर बैगन हो गया, फिर झींगली हो गया, फिर बीच में आपका करेला हो गया, वो सारा चीज एक साथ हो रहा है, तो वो भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि हो जाती है दीदी लोग को। जो छोटे किसान होते हैं वो लोग क्या करेंगे, उनके पास तो ज्यादा जमीन होता नहीं है, इसलिए छोटे जमीन पे वो लोग कैसे अपने आजीविका को बढ़ा पाए। और देखा भी गया है, कुछ हमारा शेयरिंग भी है, कुछ कुछ दीदी एक एक सीजन में 50,000-60,000 का कद्दू करेला बेच, एक एग्जाम्पल मैंने आपको बताया, ठीक है। थर्डली हम लोग इसी में आते हैं, ये तो खेती बाड़ी हो गया, एक लाइव स्टॉक भी है हमारा है। लाइव स्टॉक में जैसे मुर्गी है, बकरी है, उन लोगों को कैसे हमारी APS दीदी लोग है यहाँ पे, आजीविका पशु सखी जिसको बोलते हैं, वो लोग कैसे टीकाकरण करेगी, कैसे उसका कृमिकरण करेगी, उसके लिए यहाँ पे डीप फ्रीजर भी अवेलेबल है। आज जो है वो बाहर वेंडर से उनका दवाई वगैरह मंगवाते हैं, दवाई वगैरह मंगवा के दीदी लोग कुछ कम प्राइस में आता है, दीदी लोग कुछ 50 पैसा या 1 रुपए मुनाफे में उसको यहाँ से खरीदती है, ले जाती है, उसके फिर उनको भी वहाँ पे गांव में भी एक बकरी पर 5-6 रुपए करके उनका भी जो भी मुनाफा हो जाए, और फिर दीदी इस तरह से सेकंड जो दीदी है, सामने वाली जो दीदी है जिनको करवा रही है उनका, जैसे होता है कि ठंड में बकरी ज्यादा मरती है, मुर्गी ज्यादा मरती है, तो इस तरह का केस बहुत कम होता है। तो एक विश्वास भी जगता है लोगों में, और अदर दीदी को देख के जो उनके गार्जियन होते हैं वो लोग भी खुश होते हैं, दादा लोग भी खुश होते हैं कि चलिए इस तरह से इस प्रोग्राम से कहीं ना कहीं दीदी एक अच्छा ये कर रही। कल के दिन क्या होता था, दीदी पैसा मांगती थी अपने हस्बैंड से कि हमको पैसा दीजिए, हमको बकरी खरीदा, आज दादा जो है उनके हस्बैंड जो वो पैसा मांग रहे कि तुम बकरी बेच के हमको दो, हम ये काम करेंगे। तो ये सबसे बड़ी उपलब्धता है हमारी दीदियों के लिए,
1: बहुत बड़ा बदलाव सुनिए जी, जैसे कि आपने बताया, क्योंकि पहले तो हम अपने श्रोताओं को बताएं कि सरकार JSLPS के माध्यम से, यानी झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी के माध्यम से दीदियों को ट्रेंड करती है, समूह तैयार करवाती है, यहाँ तक कि फिर इनको लोन प्रोवाइड करती है, ताकि आप जिस जगह भी हैं, झारखंड राज्य के किसी भी जिले में हैं, आप अपना कुछ करना चाहती हैं, आप कर सकती हैं, समूह में भी कर सकती हैं, आप सिंगल भी कर सकती हैं। और जब हम संजीवनी आजीविका संसाधन केंद्र जैसे संस्थान की जगह की बात करते हैं, जहां सरकार अपने हर स्कीम्स को एक जगह लाकर महिलाओं को बढ़ाने का काम करती है, तो एक बदलाव नजर आता है। मुझे आप बताइए कि जैसे आपने बताया था कि पलाश ब्रांड आप लोगों को एक मिल गया, वो उसके माध्यम से आप लोग काम करती हैं और उनके एक जीवन में बदलाव आ रहा है। आज जब आप अपने क्षेत्र के महिलाओं से मिलती हैं या उनके परिवार से मिलती हैं, एक सबसे बड़ा जो बदलाव आपको नजर आता है वो कौन सा बदलाव नजर आता है?
0: जैसे कि अभी हम लोग बता रहे हैं आपको, छोटी छोटी जो दीदी लोग अपना अपना पंचायत में जो अपना अपना स्टॉल लगाती है, जैसलपीएस का जो स्टॉल लगता है, तो ये सारा निर्मित है। ऐसा नहीं सिर्फ आटा तेल जो हम लोग उत्पादन कर वही बेच रहे हैं। जैसे दीदी लोग घर में बरी तैयार करती है, अचार तैयार करती है, उसमें भी वो लोग अपना ब्रांड लगाती है, प्लास का ब्रांड जो सरकार के द्वारा दिया गया। और वो दीदी लोग इतना उत्सुकता के साथ उस स्टॉल में लेके जाती है और इतना उत्सुकता के साथ उसको बेचती है। इवन अपने जो हमारे बीडीओज जो होते हैं, सीओज जो होते हैं, सीडीपीओज जो है, उन लोग को प्रेरित करती है कि सर हम लोग का यूज करके देखिए। और अभी इसमें कोई शक नहीं, एक से दो साल में जो बदलाव आया है, मुझे फोन पे आता है कि कौन सी दीदी आपका अचार बना रही है, हमको 5 किलो अचार चाहिए, या मेरा बेटी का शादी है तो हमको इतना तेल चाहिए।
1: यानी आप लोग वो ऑर्डर्स भी पूरा करती हैं?
0: हाँ, तो ये सारा चीज है कि अभी हम लोग बहुत बड़े मात्रा में तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो दिन दूर नहीं है कि बहुत बड़े मात्रा में ये होगा। ये तो अभी हमारा स्टार्टिंग फेज था, जो स्टार्टिंग फेज चल रहा है। स्टार्टिंग फेज में ही तो हम लोग बहुत कुछ सीखे, थोड़ा सा थोड़ा बहुत, ज्यादा मुनाफा तो नहीं कर पाए, कम किए हैं, लेकिन हम लोग कभी भी लॉस में नहीं गए हैं। और हम लोग का आगे का जो जिस तरह से काम हो रहा है, ये उम्मीद है कि वो दिन दूर नहीं जब दीदी लोग लाखों और करोड़ों में पैसा तो जरूर कमाए।
1: क्या बात है, चलिए ये आत्मविश्वास बना रहना चाहिए। और जिस तरीके से सरकार महिलाओं को सशक्त बनाने की प्रयास कर रही है, जिला प्रशासन काम कर रहा है, तो आप लोग बेहतर जरूर करेंगे। वहाँ पे कुछ इस तरह के भी प्रोग्राम्स होते हैं, क्योंकि जब ज्यादातर हम सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों की बात करते हैं तो वहाँ पर बाल विवाह जैसी समस्याएं,
0: समस्याएं,
1: इस पे भी काम होता है।
0: वही मैं बताना चाह रही थी, यहाँ सिर्फ पैसा लेना, बैंक के साथ जुड़ना और खेती बाड़ी भी, पशुपालन हो गया, या फिर बैंक से लोन लेके नॉन फार्म भी करना, वो सब चीज हो। उसके साथ साथ यहाँ पे जैसे हमारे जेंडर सीआरपी, जी सीआरपी जो काम होता है, उन लोग काम करती है सोशल डेवलपमेंट पे, सामाजिक कार्य पे। जैसे कि अभी आप देखिएगा जीपीडीपी का फेज चलेगा कुछ दिन में, हमारा वीपीआरपी, पहले इसका नाम था गांव गरीबी निराकरण योजना, अभी इसका नाम हो गया है गांव सुदृढ़ीकरण योजना। इसमें क्या हो रहा है कि कैसे हम गांव को विकास की ओर लेके जाए। पैसा तो हो गया, क्या नाम है, हम ट्रेंड हो गए, ट्रेनिंग हो गया, लेकिन जो सोच होता है लोगों का, जो सोच है कि महिलाएं पुरुष के पीछे रहेंगी, इस सोच पे भी दीदी लोग काम कर रही है। लिंग, अभी जो हमारा फेस चल रहा है कि लिंग आधारित हिंसा पर सब जगह रैली के माध्यम से दीदी लोग इसका रैली निकाल रही है, प्रदर्शन कर रही है, नुक्कड़ नाटक कर रही है, किस तरह हम लोग इसको रोकथाम करें। इवन दीदी लोग ने अपना SHG में, CLF में, VO में भी प्रण लिया है कि जो भी बेटी के लिए अगर कर्जा लिया जाता है शादी के लिए, तो उनका आधार कार्ड, उनका स्कूल का सर्टिफिकेट जांच करके ही उनको पैसा देंगे, कि लड़की का उम्र 18 वर्ष से कम ना। और रहा घरेलू हिंसा पे, तो घरेलू हिंसा के लेकर भी PCI जो है यहाँ पे गोड्डा में काम कर रहे हैं, वो भी जैसल केस के साथ काम कर रहे हैं, उसमें उन लोगों का भी बहुत बड़ा योगदान रहता है। इसमें उन लोग सारा चीज, विभिन्न प्रकार का ट्रेनिंग वगैरह जितना भी होता है उनके क्लस्टर में, ग्राम संगठन में, सब में जाके वो लोग ट्रेनिंग दे रही हैं। आप SHG में, VO में, CLF में इस चीज की चर्चा भी होती है कि क्यों हम लोग क्यों ना, हम लोग जैसे घरेलू हिंसा हो रहा है, इस पे हम लोग काम करें। बच्चियां की जो पढ़ाई होती है उस पे भी हम लोग काम कर रहे हैं कि हम लोग, कोई भी लड़की ऐसी नहीं होना चाहिए कि हम लोग उसका पढ़ाई छुड़वा के उसका शादी हो। और अगर बच्ची पढ़ भी ले, मान लीजिए 16 साल तक उसका मैट्रिक या इंटर कम्प्लीट हो जाता है, तो उसको दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल विकास योजना जो चल रही है, DDU JKY जो हम लोग बोलते हैं, वहाँ पे भेज के उनका ट्रेनिंग करवाते हैं। उनको नर्सिंग का ट्रेनिंग हो गया, उनका टेलरिंग का ट्रेनिंग हो गया, उनको लॉजिस्टिक का ट्रेनिंग हो गया, कंप्यूटिंग हो गया, उनको हर तरह का ट्रेनिंग भी दिलवाने में दीदी लोग अपना कदम उठा रही है। और बहुत हद तक हम लोग पथरगामा प्रखंड जो हमारा रहा है, इसमें एक रजौन कला गाँव जो था वो सही में बहुत बड़ा चाइल्ड मैरिज का हब था, लेकिन अभी हम लोग हमारे BDO सर के सहयोग से हम लोग उस पर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और इस साल तकरीबन हमारा जो डेटा है, बहुत अप्रोप्रिएट तो हम नहीं बोल पाएंगे इस डेटा को, लेकिन 11 जो ऐसा शादी है हम लोग रोक पाए हैं, जिसमें हमारे BDO सर, हमारे थाना प्रभारी सर का बहुत बड़ा योगदान रहा है। बधाई के सहयोग में,
1: बधाई है आपको। आप बहुत सारी झारखंड की महिलाएं सुन रही हैं, आप क्योंकि क्लोजली ऐसी महिलाओं को देख रहे हैं, तो आप उनसे क्या कहना चाहेंगे, अगर वो भी इस तरह का कुछ करना चाहती हैं, वो JSLPS से तो जुड़ी हैं लेकिन कुछ और बेहतर करना चाहती हैं, तो उनसे आप क्या कहना चाहेंगे?
0: हम यही कहना चाहेंगे, हम ये नहीं बोल रहे कि पत्रगामा की दीदी लोग बहुत बहुत सबसे अच्छा काम कर रही है, लेकिन मेरा ये है कि एक पहल इन्होंने स्टार्ट किया है और जहां भी अच्छा काम हो रहा है वहां की दीदी जरूर एक्सपोजर करे एक दूसरे का। ऐसा नहीं कि खूंटी की दीदी पत्रगामा आ सकती है, पत्रगामा की दीदी खूंटी जा सकती है, क्योंकि होता क्या है लोग ना करते करते नहीं सीखता है लेकिन देख के करके ज्यादा सीखता है।
1: बिल्कुल,
0: क्योंकि हमारा

0: जन्म होता है, जब बच्चे बड़े होते हैं तो ज्यादातर आप देखिएगा न्यूक्लियर फैमिली के बच्चे ज्यादा ज्यादा नहीं हो पाते सीख पाते, लेकिन ज्वाइंट फैमिली के बच्चे ज्यादा सीख पाते हैं। तो संगठन का यही उद्देश्य भी होता है। क्या होता है जब 10 दीदी मिलकर एक ग्रुप बनाती है, 10 से 12 दीदी, तो सब दीदी एक जैसी होती नहीं है, लेकिन अध्यक्ष सचिव देखिएगा कुछ ही दीदी चुना जाती है, और हमेशा दीदी लोग बोलती है आप लोग चुनिए, लेकिन बदलाव जो होता रहता है 2 साल में, यही क्षमता वर्धन के लिए होता है कि आप भी एक मौका लीजिए और आप भी जाके सीखिए कि कैसे काम करना है, कैसे बैंक जाना है, कैसे बैंकर से बात करना है, कैसे समूह में जाना है, कैसे ग्राम संगठन में अपने आप को रखना है। इस चीज के लिए इसका बदलाव होना बहुत जरूरी है, और एक दूसरे का देखना, एक दूसरे को देखने से अगर हम कुछ सीखते हैं तो जरूर जाना चाहिए और जरूर सीखना चाहिए।
1: श्रेया जी बहुत बहुत शुक्रिया महिलाओं को इतनी अच्छी जानकारी देने के लिए। जो संजीवनी आजीविका संसाधन केंद्र है वो इतने अच्छे तरीके से काम कर रहा है, जिला प्रशासन के सहयोग से, सरकार के स्कीम के सहयोग से। मैं चाहूँ कि अब जो आपके आजीविका संसाधन केंद्र से जुड़ी महिलाएं, मैं उनसे भी बात करूं और उनसे समझूं कि उनके जिंदगी में क्या बदलाव आया है।
0: तो मैं यहाँ पे जैसे कि हमारी जो क्लस्टर स्तरीय जो संघ है, क्लस्टर स्तरीय संघ जो है उसमें भी उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है आजीविका संसाधन केंद्र में। थोड़ा सा मैं ब्रीफ कर दूं कि कैसे रहा है कि इनको जो सामुदायिक निवेश निधि मिली थी, जो SHG BO में लोग देती है दीदी को व्यक्तिगत लोन लेके अपना काम करने के लिए, उसका कुछ छोटा सा भाग इन्होंने आजीविका संसाधन केंद्र में इन्वेस्ट किया है, ताकि वहाँ पे जो मिल वगैरह का खर्चा है वो लोग निकल पाए और वो लोग मिल खरीद के वहाँ पे काम करे, और वहाँ से आजीविका संसाधन केंद्र से भी उनको वही सूद प्राप्त होता है जो उनको ग्राम संगठन से होता है। तो यही सोच के उनका एक सोच बना कि वो कैसे अपना छोटा सा पार्ट को वहाँ पे देके एक काम स्टार्ट करे। डॉली देवी हैं, हरियाली महिला क्लस्टर संघ की।
1: और अब श्रोताओं हम डॉली जी से बात करते हैं जो इस संसाधन केंद्र से जुड़कर अपनी जिंदगी को जिन्होंने बदली है। डॉली जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है।
2: जी
1: डॉली जी बताएं सबसे पहले तो कितना एक बदलाव आपके जिंदगी में आया, आप जब से समूह से जुड़ी, इन कामों से जुड़ी, कितना एक बदलाव आया आपकी जिंदगी में?
2: मेरी जिंदगी में बहुत बदलाव आया है। हम लोग पहले मतलब अपने से मैंने अपने जैसे पति की कमाई पर रहते थे, अब तो हम लोग मैंने थोड़ा हम लोग का भी अच्छे खासा पैसा आने लगा कम भी, और सब समूह की दीदी संगठन एक बनाकर हम लोग वहाँ आजीविका संसाधन केंद्र में भी करते हैं, और अपना दीदी सब मिलजुल कर अपना भी यहाँ आजीविका बढ़ा रही है। मेरा तो ये है कि मेरी बेटी भी पढ़ने चल गई है बाहर, ना हम लोग का ये हुआ, पहले तो हम लोग किसी तरह पढ़ा रहे थे, घर घर से दीदी सब नहीं निकलती थी, आज हर दीदी के जो है बाहर जा रही है, बैंक जा रही है, सब ये सब बहुत सा बदलाव आया है अभी हमारी जिंदगी में।
1: आपको कितना अच्छा अब लगता है कि जब आपको 20 रुपए का कोई सामान खरीदना है, 100 रुपए का कोई सामान खरीदना है, इसके लिए आपको किसी से पैसे मांगने की जरूरत नहीं, आप अपने पैसे से खरीद सकती है, तब हाँ, आप कितना हाँ, अच्छा महसूस करती हैं?
2: मैं बहुत अच्छा से महसूस करते हैं कि ये पैसा मेरा है, बस ये लगता।
1: समाज में एक बदलाव आया, लोगों का नजरिया आप लोगों के प्रति बदला, क्या क्या पाती है समाज में?
2: समाज में बहुत पट्टा है कि हाँ ये लोग जा रही है, ये लोग ब्लॉक जा रही है, ये लोग 10 दीदी से मिल रही है, थाना जा रही है, मतलब बहुत सारा जगह हम लोग को इज्जत मिलता है कि ये दीदी SHG की दीदी है, ग्राम संगठन CLF से ये लोग जुड़ी हुई है और ब्लॉक से जुड़ी हुई है।
1: नई नई दीदियां आपसे पूछती हैं, महिलाएं पूछती हैं कि दीदी हम लोग कैसे जुड़ सकते हैं या हम लोग कैसे काम कर सकते हैं, ये सब पूछती हैं आप लोगों से?
2: हाँ हाँ पूछती है, और हम लोग दीदी लोग को प्रेरित करते हैं कि जैसे हम लोग जुड़कर आज इतना खुशहाल है, आप लोग भी जुड़िए, और बहुत दीदी हर घर में जी जुड़ गई है।
1: क्या कहेंगे आप, बहुत सारी महिलाएं आपको सुन रही हैं जो घर से निकलकर बाहर काम करना चाहती हैं, उनसे आप क्या कहेंगे?
2: हम तो यही कहना चाहेंगे जो निकल रही है वो तो अपना आजीविका बढ़ा ही रही है, आज तक मैंने इतना दीदी से मिलने को मिलता है, और सभी दीदी को हमको लगता है कि हम धन्यवाद करेंगे कि वो घर घर से निकल रही, पहले घूंघट में रहती थी दीदी, अब बाहर निकल रही है।
1: और जो नई दीदी घर से निकलकर काम करना चाहती हैं उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे, उनसे क्या कहना चाहेंगी?
2: उनको भी कहेंगे कि जैसे हम निकले हैं, सभी दीदी निकले हैं, और आप भी निकलिए, आप SHG से जुड़िए, BO से जुड़िए, CLF से जुड़िए, अपना आजीविका बढ़ाइए, अपने परिवार को खुशहाल।
1: डॉली जी हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
2: जी आपको भी।
1: और अब कार्यक्रम बढ़ते कदम में हमारे साथ एक और दीदी है जो आजीविका संसाधन केंद्र से जुड़कर उन्होंने भी अपनी जिंदगी बदली है। कविता जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। कविता जी क्या करती हैं आप वहाँ जुड़कर, आप क्या कर रही हैं पहले ये बताएं।
3: सर हम तो यहाँ जुड़ के अपना उन्नति के लिए जुड़े हैं, अपना आजीविका के लिए जुड़े हैं, अपना पहचान के लिए जुड़े हैं, एक नया पहचान मिला हमको इससे जुड़ के।
1: क्या करती हैं आप वहाँ पे?
3: हम यहाँ पे दीदी को प्रेरित करते हैं, और जो मतलब कि जो दीदी घर में रह के कुछ नहीं कर सकती थी, अपना मतलब अपने आप को जो दीदी अपने आप को नहीं पहचान रही थी वो दूसरे का पहचान बन रहा है, और मतलब कि दीदी सब अपने से उत्साहित हो के अपना आजीविका मतलब अपना आजीविका का कमाई से जो उनको उन्नति हो रहा है उनमें उनको बहुत मतलब आनंद आ रहा है।
1: आप अपने जिंदगी के बारे में बताएं कि पहले आप कैसी थी और समूह से जुड़ने के बाद आपके जिंदगी में क्या बदलाव आया?
3: हाँ सर, वो पहले मेरा जिंदगी मतलब जैसे हम पहले थे जो कि हम अपना मोहल्ले के लोगों को नहीं पहचानते थे, अपना घर में रहते थे सिर्फ अपना घूंघट में, ना तो किसी को जानती थी ना पहचानती थी, और घर में जैसे कि लगता था मतलब कुछ नहीं है हम लोग का वजूद, और अब हमको एसएजी से जुड़ के मतलब बाहर निकलने को मिल रहा है, हम थाना जाते हैं, बैंक जाते हैं, ब्लॉक जाते हैं, हम अपना संगठन बनाए हैं, मतलब बड़े बड़े लोगों से मिलना जुलना होता है, बहुत कुछ सीखे हम।
1: कितना आज आत्मविश्वास में कितना एक बदलाव आया है?
3: बहुत बदलाव आया है सर, जो हमारा जिंदगी था वो मतलब लग रहा नहीं था कि हम कुछ हैं, लेकिन अभी हम लगते हैं हाँ हम कोई तो है और मेरा कुछ वजूद है।
1: अब हाँ। ऐसा है कि आप अपने कमाई से अपने अपने बच्चों के लिए कुछ कर पाती हैं?
3: हाँ बिल्कुल, हाँ। हम अपने बच्चे को एकदम अच्छे से शिक्षा प्रदान कर सकते हैं, बच्चे को मतलब कुछ चीज का जरूरत पड़ता था तो पहले हम अपना हस्बैंड से मांगा करते थे और अब हमें मांगने का जरूरत नहीं होता है, अपने से हम पूरा कर सकते हैं।
1: चलिए बहुत बहुत बधाई है। एक बात बताएं, आज बहुत सारी महिलाएं आपको सुन रही हैं, वो भी काम करना चाहती हैं, वो भी जुड़ना चाहते हैं, उनसे क्या कहेंगे आप?
3: हम उनसे सिर्फ यही कहना चाहेंगे कि जो भी महिलाएं हो वो अपना अपना अंदर अपना स्वंदर ऐसा मजबूती लाए और अपना एसएजी में जुड़े, एसएजी से जुड़ के अपना आजीविका को बढ़ाए, बढ़ा के अपना परिवार एकदम साल जिंदगी जिए वो, और अच्छे से मिलजुल के काम करने से जैसे हम अकेले कमाई जो होते थे हस्बैंड का उनका अकेले उनके अकेलेपन का कमाई से अपना जो मतलब खुशहाल जिंदगी नहीं जी पाते थे, मतलब जैसे खाना पीना में ही खत्म हो जाता था गरीब लोगों का, और अभी जो हम दो लोग कमाते हैं तो हम अच्छे से बच्चा का शिक्षा भी करवा सकते हैं, पढ़ा भी सकते हैं और अपना जिंदगी भी खुशहाल जी सकते हैं।
1: अब तो ऐसा भी होता होगा कि परिवार में आपसे भी लोग सलाह लेते होंगे कि क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए, वो भी बदलाव?
3: बिल्कुल, हमारे परिवार में जो कि हमें नहीं पूछते थे अभी हमको बुला के पूछा जाता है कि हम ये काम करें या ना करें, सलाह लिया जाता है।
1: यानी एक नजरिया में भी बदलाव नजर आता है समाज में भी, समाज के लोगों में?
3: हाँ बिल्कुल, हमें तो अब आम सभा होते हैं, क्या कहते हैं जैसे पंचायत भवन में पंचायत होता है वहाँ भी बुलाया जाता है, पहले तो हम लोग को कोई अलाउड नहीं था वहाँ जाने का, अब तो उनके साथ बैठ के बात को रखने का, बात का निष्कर्ष निकालने का भी मौका मिलता है।
1: बहुत बहुत बधाई है, ऐसे ही आप लोग मुस्कुराते रहें, अच्छा काम करते रहें, और बढ़ते कदम कार्यक्रम में आप सभी का जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।
3: यस सर,
4: बढ़ते कदम कार्यक्रम के आज के इस अंक में बस इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ कि जब भी बात हम विश्वास की करते हैं, जब भी बात हम एक नई ऊर्जा की करते हैं, जब भी बात हम एक नई शुरुआत की करते हैं तो हमारे सामने हम खुद आते हैं। आप भी शुरुआत कीजिए एक विश्वास के साथ, एक सकारात्मक सोच के साथ, आपके जिंदगी में भी वो बदलाव नजर आएगा। कार्यक्रम के अगले अंक में फिर हाजिर होंगे एक नए मेहमान नए विषय के साथ। कार्यक्रम की प्रस्तुति थी प्रभु शरण की। अब मुझे यानी कमलेश कुमार मिश्र को दीजिए इजाजत। नमस्कार।

ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। मीडियम वेव 546.45 मीटर यानी 549 किलो हर्ट्ज तथा एफएम 100.5। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में दिन के 10:30 हो चुके हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम जोहार रांची।

0: जोहार रांची सुनने वाले सभी श्रोता साथियों को मीता बोले तो आपकी मीत का प्यार भरा नमस्कार जोहार
1: और विनोद का भी नमस्कार जोहार
0: आपको भी हमारा नमस्कार विनोद जी
1: नमस्कार आपको भी
0: और हम इतने प्यारे से प्रोग्राम को शुरू कर रहे हैं तो उससे पहले एक प्यारा सा गीत अगर हम सुन ले तो कैसा रहेगा
1: बिल्कुल

0: और विनोद जी कहिए क्या हाल है, गर्मी और बारिश का एक साथ आनंद उठा रहे हैं ना?
1: बिल्कुल, और आनंद के साथ साथ रोमांच की बात हम लोग करें कि कब
0: बिल्कुल
1: कब मतलब कि धूप खिली रहेगी और कब बारिश हो जाएगी,
0: कुछ कहा
1: अंदाजा
0: नहीं जा
1: लगाना
0: सकता।
1: मुश्किल है।
0: वैसे विनोद जी, लगता है अब गर्मी से कुछ राहत मिलने वाली है, क्योंकि आज सरायकेला, खरसावा और पूर्वी सिंहभूम को छोड़कर राज्य के अधिकांश हिस्सों में अच्छी बारिश की संभावना जताई गई है।
1: बिल्कुल, बारिश और तेज हवा के कारण 2 दिनों में अधिकतम तापमान में 5 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट आई है, जिससे थोड़ी तो राहत मिली ही है।
0: बिल्कुल बिल्कुल, 30 जून से यानी कल से 2 जुलाई तक मानसून पूरे झारखंड में सक्रिय रहेगा। अधिकांश जिलों में तेज बारिश, वज्रपात और लगभग 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने की संभावना है, जिसकी वजह से गर्मी से राहत तो होगी ही, लेकिन लोगों को सतर्क रहने की सलाह भी दी गई है। ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी है ना?
1: बिल्कुल, और अगर हम बात करें तो अरब सागर के कुछ हिस्सों और गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार में मानसून सक्रिय रहेगा। इसके प्रभाव से झारखंड में अच्छी बारिश की संभावना है। जुलाई में बंगाल की खाड़ी से आने वाली नमी के कारण बारिश का सिलसिला जारी रहने की उम्मीद है।
0: लेकिन विनोद जी, लगातार और भारी बारिश से खेतों में तैयार हो रहे धान के बीजों को नुकसान पहुंच सकता है और मक्का, अरहर और दूसरे जो खरीफ फसलों के खेतों में जल जमाव से बीज सड़ सकते हैं। इसलिए हमारे जो किसान हैं वो सावधान रहें, अपने खेतों पर ध्यान दें, पानी जमा ना होने दें।
1: बिल्कुल, निकासी का जो भी है उत्तम प्रबंध करें और मौसम की बातों में

0: बेहद प्यारा सा ये गीत था विनोद जी, और हम समझते हैं कि हमारे श्रोता जो इसमें सुन रहे होंगे, बारिश तो अभी थमी हुई है लेकिन गीतों के माध्यम से वो जरूर बारिश का लुत्फ ले रहे होंगे।
1: और बिल्कुल उन्हें अपनी पुरानी भी बहुत सारी बातें याद आ रही होंगी इस गीत के माध्यम से।
0: बिल्कुल बिल्कुल, और जो उस जमाने के हमारे श्रोता होंगे वो तो खासा इंजॉय कर रहे होंगे इस गीत को।
1: बिल्कुल।
0: क्योंकि अपने वक्त की बातें ही कुछ और होती है नहीं। वैसे विनोद जी, बड़े लोगों की बातें भी बड़ी होती हैं और उनसे जीवन का रहस्य सीखा समझा जा सकता है।
1: बिल्कुल सही कहा आपने, महान लोगों का अनुभव हमारे लिए अच्छा पथ प्रदर्शक वाला होता है।
0: जी हाँ, 20वीं सदी के महान स्पेनिश चित्रकार, मूर्तिकार, कलाकार, क्यूबिक कला शैली के सहजनक पाब्लो पिकासो ने कहा है, आप जो भी कल्पना कर सकते हैं वह आप कर सकते हैं, यानी वो आपके लिए संभव है।
1: बिल्कुल, हर असंभव कार्य का बस तरीका एक ही है, कड़ी मेहनत, तो हर कार्य फिर संभव हो जाएगा।
0: ऑस्कर वाइल्ड ने कहा है, अनुभव सबसे कठिन शिक्षक होता है, वह पहले परीक्षा लेता है उसके बाद सीख देता है।
1: बिल्कुल, जिंदगी के अनुभव ही गलत और सही की अगर हम बात करें तो हमारी कमियों को बताते हैं जिनसे सीखकर सफलता हासिल की जा सकती है। अमेरिकी लेखक पेंटिस मूलफोल्ड का कहना है कि कल की चिंता आज की ऊर्जा का दुश्मन है, वर्तमान में जिए, शांति खुद कदम चूमेगी।
0: बिल्कुल बिल्कुल, बहुत से लोग होते हैं विनोद जी कि अतीत की यादों में खोए रहते हैं, अगर कुछ बुरा घटित हुआ तो और उसके लिए सोच सोच के रोते रहते हैं, और अगर कुछ बहुत अच्छा बीता हुआ हो तो फिर अफसोस करते रहते हैं, आह वो भी क्या दिन थे, हम तो ऐसे थे, हम तो वैसे थे, हमने ये किया, हमने वो किया, लेकिन वो गुजर चुका होता है।
1: बिल्कुल, और उन्हें यह भी सोचना चाहिए कि जिंदगी जो है वो सतत चलने का नाम है।
0: बिल्कुल।

0: रुकने से सभी कुछ जिंदगी ठहर नहीं जाती है, और खुद को सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ें, खुद को ऊर्जान्वित रखें, यही जीने का फलसफा है।
1: और क्या, आप अपने लक्ष्य को निर्धारित करें और फिर उस पर आगे बढ़ते चले जाएं, चाहे जितना भी हो कठिन रास्ता, आप उसको कर सकते हैं। वैसे विनोद जी, किसी भी काम में पूर्णता संभव तो नहीं है, लेकिन आप अगर कोशिश करेंगे तो सफल भी होंगे और उत्कृष्टता को हासिल कर सकते हैं।
0: बिल्कुल, एक कदम आगे बढ़ाएं, आगे आपको कहीं ऐसे भी मोड़ दिख सकते हैं जहां से कि आपको कुछ नजर नहीं आएगा, लेकिन जब आप मोड़ पर पहुंचेंगे तो फिर आगे आपको राह दिखता चला जाएगा और फिर जिंदगी जो है आसान होती चली जाएगी।

0: छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी। हम भी कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं विनोद जी। और जैसा कि हमने कार्यक्रम की शुरुआत में बात की थी कि मौसम जो है वो बदल चुका है, मानसून आ चुका है, और बारिश के इस मौसम में सबसे खास ख्याल हमें सेहत का रखना होता है। जरा सी लापरवाही और स्वास्थ्य खराब, फिर पड़ जाते हैं लेने के देने।
1: बिल्कुल, सेहत के लिए बारिश में अगर छोटी छोटी बातों का ध्यान रखा जाए तो हमारे बीमार पड़ने की संभावना काफी कम हो जाएगी,
0: क्योंकि बीमार पड़ना यानी आपका सब कुछ प्रभावित हो जाता है। और आप अगर, जैसा कि विनोद जी ने कहा दोस्तों, अगर छोटी छोटी बातों का ख्याल रखें तो आप स्वस्थ रह सकते हैं। जैसे कि आप घर से बाहर जब निकलें तो छाता तो आपके साथ होना ही चाहिए, रेनकोट होना ही चाहिए, पानी से बचने की हर सुविधा अपने साथ रख कर के चलें। लेकिन अगर आप भीग जाए तो तुरंत ही घर पहुंचते के साथ अपने आप को साफ करें, पोछें, और अपने जूते मोजे तो तुरंत ही उठाएं, क्योंकि जो जूतों में फंगस होने की संभावना होती है अगर भीग रहे। और जूते सुखाने का एक उपाय भी है, उसमें पेपर डाल दीजिए, है ना, सूखे पेपर अगर डालेंगे, आपको कम पता होगा, आपके घर में यह सब मिल जाता होगा, व्यवस्था किया हुआ, लेकिन

0: ढके हुए नहीं होते हैं, और बीच में अपनी शहर की ही बात करें, रांची की ही बात करें, तो कई जगह आपको मतलब कि मुख्य सड़क के बीच में भी मेन होल मिल जाएगा, और कई उसमें जो रहते हैं कि उसके उसका ढक्कन नहीं रहता है या फिर ढक्कन धस जाया करता है, तो ऐसी स्थिति में बहुत विकट स्थिति हो जाती है, खतरा बना रहता है।
1: हाँ, तो थोड़ा संभल कर रहने की आवश्यकता, थोड़ा एक्स्ट्रा अलर्ट तो बरसात के दिनों में होना ही पड़ता है। और जो आप नहाने के बाद या ऐसे बाहर से आने के बाद जो भीगे तौलिए है उसको इधर उधर ना फेंकें, क्योंकि इन दिनों सूर्यदेव के दर्शन थोड़े कम होते हैं विनोद जी, तो फंगस होने की संभावना बहुत बढ़ जाती है, खुजली और रैशेज भी पड़ सकते हैं अगर गीले गीले आप रहे तो। इन सब के लिए आपको सुखाना भी जरूरी है, आपके घर को भी सूखा रहना चाहिए, और इस मौसम में बाहर के खाने को तो अवॉइड करना ही चाहिए।
0: बिल्कुल। और
1: हमारी बहनें जो है वो बहुत चाट फुचका की शौकीन होती हैं, उन्हें थोड़ा सा कंट्रोल में रहना पड़ेगा।
0: और आप देख भी रही हूँ कि समाचार पत्रों में भी बहुत सारी से खबरें आ रही हैं कि फूड पॉइजनिंग के कारण बहुत परेशानियां बढ़ जा रही हैं, तो खासकर मतलब कि जो भी बरसात के समय में जो भी खाना हो, मतलब कि खाना ताज़ा रहे, ऐसा नहीं कि मतलब कि फ्रिज में रख दिया और सुबह खा रहे हैं दोपहर में खा रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए, कम से कम बरसात में तो इससे बचाव जरूरी है,
1: बहुत जरूरी है। और रास्ता चलते हम अपने बच्चों को जरूर समझाएं कि वो बिजली के खंभों से दूर रहें, ट्रांसफार्मर ये सब से दूर रहें, और खुद भी गीले हों और तो गीली दीवारों को ना छुएं या गीले रहने पर बिजली के उपकरणों को ना छुएं, है ना।
0: बिल्कुल।
1: उन सब का तो खास ध्यान रखना चाहिए, और बारिश में पेड़ के नीचे भी नहीं खड़े होना चाहिए।
0: खासकर ये हमारे जो ग्रामीण क्षेत्र के जो भाई हैं, हमारे जो किसान बंधु हैं, उन्हें सर विशेष मतलब कि ध्यान केंद्रित करके रखना चाहिए। और खासकर आज की बात करें तो पहले वाली बात आज रही नहीं, हम तकनीकी युग में जी रहे हैं, और जो हमारा मौसम विज्ञान विभाग है वो हर मतलब अगर आप देखेंगे तो वो आधे आधे घंटे पे हमें अलर्ट करता है,
1: बिल्कुल,
0: है ना, कि
1: बिल्कुल।
0: दो घंटे के बाद बारिश होनी है, संबंधित क्षेत्र में बारिश होनी है, कहाँ वज्रपात होना है, तो ऐसे इसमें बचने की पूरी कोशिश हम सभी को करनी चाहिए।
1: बिल्कुल। और बारिश के इस मौसम में बारिश का तो लुत्फ उठाएं हमारे दोस्तों, क्योंकि ये मौसम बहुत सुंदर होता है, और आप गर्मी से इस समय परेशान भी हैं तो जाहिर सी बात है जब बारिश की बूंदें गिरेंगी तो भीगने का मन तो करेगा, लेकिन आप अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिए, हम आपके मनोरंजन का ख्याल रखते हैं।
0: बिल्कुल।

0: और विनोद जी, अब हम इतिहास के कुछ पन्नों को पलटते हैं, क्या ख्याल
1: बिल्कुल
0: है?
1: बिल्कुल
0: तो चलिए साझा करते हैं अपने श्रोताओं से वो बातें जो आज की तारीख में घटित हुई। आज यानी 1 जुलाई को भारतीय इतिहास में सबसे बड़े आर्थिक सुधार के रूप में 2017 में वस्तु एवं सेवा कर यानी GST लागू किया गया था। इसे संपूर्ण भारत में एकीकृत कर प्रणाली स्थापित करने के लिए देश दुनिया के प्रमुख इतिहास में याद किया जाता है। भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना 1 जुलाई 1955 को इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण करके भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना की गई थी।
1: और अगर आज की बात करें तो देश में प्रतिवर्ष 1 जुलाई को CA दिवस मनाया जाता है और त्रावणकोर कोचीन राज्य का विलय भी 1 जुलाई 1949 को हुआ था।
0: विश्व की घटनाओं पर अगर हम बात करें तो 1 जुलाई 1867 को कनाडा को ब्रिटिश साम्राज्य से स्वतंत्रता मिली थी। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान 1916 में इसी दिन फ्रांस में ये ऐतिहासिक लड़ाई शुरू हुई थी, जिसमें पहले ही दिन ब्रिटिश सेना को भारी नुकसान झेलना पड़ा था।
1: और अगर 1863 की बात करें तो आज के ही दिन अमेरिका के पेंसिल्वेनिया में गेटिसबर्ग की प्रसिद्ध और खूनी लड़ाई शुरू हुई थी। अगर हम बात करें 1908 की तो आज के ही दिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर SOS जो कि संकटकालीन संदेश है, संकेत को आधिकारिक रूप से अपनाया गया था।
0: आज भारत के 8वें प्रधानमंत्री चंद्रशेखर का जन्मदिन है। प्रसिद्ध बांसुरी वादक हरिप्रसाद चौरसिया का जन्म भी आज ही के दिन यानी 1 जुलाई 1938 में हुआ था। वेल्स की राजकुमारी डायना, जो ब्रिटेन की राजकुमारी डायना थी।

0: उनका जन्म भी आज ही के दिन 1961 में हुआ था। 1 जुलाई 1847 को संयुक्त राज्य अमेरिका के डाकघर ने अपना पहला आम डाक टिकट जारी किया था और ये डाक टिकट जॉर्ज वाशिंगटन के सम्मान में 10 सेंट का डाक टिकट जारी किया गया था। पहले अमेरिकी डाक कार्ड 1873 में, पहले स्मारक डाक टिकट 1893 में और पहले हवाई डाक टिकट 1918 में जारी किए गए थे। 1 जुलाई 1858 में भारत का शासन आधिकारिक रूप से ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन के अधीन चला गया।
1: और आज के ही दिन 1862 में भारत में पहली बार उच्च न्यायालयों, जिसमें कलकत्ता, बंबई और मद्रास शामिल है, की स्थापना की प्रक्रिया शुरू हुई थी। 1879 में आज के ही दिन भारत में पोस्ट कार्ड सेवा की भी शुरुआत हुई थी।
0: प्रसिद्ध क्रिकेटर कपिल देव का जन्म भी आज ही के दिन हुआ, 1 जुलाई को 1962 में। 1968 में भारत सरकार ने भारतीय पर्यटन विकास निगम की स्थापना की। 1991 में 1 जुलाई में भारत में नई आर्थिक नीतियों के तहत रुपये का पहला अवमूल्यन किया गया और 1857 में हांगकांग आधिकारिक रूप से ब्रिटेन से चीन को सौंपा गया। 2002 में अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय ने आधिकारिक रूप से कार्य करना शुरू किया और 1 जुलाई 2013 को क्रोएशिया यूरोपीय संघ का 28वां सदस्य बना।
1: और आज एक और महत्वपूर्ण दिवस है, राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस की हम बात कर रहे हैं।
0: जी हाँ,
1: तो आज का दिन जो है, सबसे पहले हम सभी जितने भी डॉक्टर्स हैं उन्हें शुभकामनाएं देते हैं और धन्यवाद भी देते हैं, क्योंकि भाई अगर वो हैं, जो कहा जाता है कि धरती के आप भगवान हो, तो निश्चित तौर पे जब परिस्थितियां विपरीत होती हैं तो हमारे लिए सहायक होते हैं,
0: वही सहायक तो, होते हैं। जब कहीं कोई आसरा नहीं दिखता फिर हम डॉक्टर की ही शरण में जाते हैं, ये ऐसा कह सकते हैं कि शरणागत हो जाते हैं हम उनके।
1: बिल्कुल बिल्कुल। और अगर कहा जाए तो राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस केवल चिकित्सकों का को सम्मान देने का अवसर नहीं, बल्कि चिकित्सा पेशे के मूल उद्देश्य, सेवा, समर्पण और मानवता को याद करने का भी दिन है। चिकित्सकों ने अनगिनत अवसरों पर अपनी दक्षता, संवेदनशीलता से असंख्य लोगों को नया जीवन दिया है, इसलिए समाज में उनका स्थान अत्यंत सम्माननीय है। लेकिन यह भी कटु सत्य है कि चिकित्सा क्षेत्र के बढ़ते व्यवसायीकरण ने इस पवित्र पेशे की छवि को धूमिल भी किया है।
0: विनोद जी, हम सबसे महत्वपूर्ण बात हम अपने श्रोताओं को बताएं कि राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस है जो डॉक्टर विधान चंद्र राय की जयंती और पुण्यतिथि के सम्मान में मनाया जाता है।
1: और चिकित्सक को धरती का भगवान इसलिए कहा जाता है क्योंकि उसके निर्णय पर किसी की जिंदगी टिकी होती है। ऐसे में चिकित्सा को केवल, जो हम आज जो व्यवसायीकरण की अभी बात कर रहे थे, तो सिर्फ उसका मकसद न रहे, नैतिकता और सामाजिक जिम्मेदारी के साथ ही इस क्षेत्र में जो भी संकल्प के साथ और सेवा भावना के साथ काम करते हैं, लोगों की जो यहाँ जो पूरी आबादी है उनसे यही उम्मीद करती है कि भाई सेवा के साथ जब आप डॉक्टर के पास जाएं, तो कभी कभी होता है कि बहुत ज़्यादा जब भीड़ होती है तो डॉक्टर सही ढंग से आपको देख नहीं पाते हैं, आपको सही ढंग से परामर्श नहीं कर पाते हैं। और कभी कभी आप ये भी देखती होंगी कि कुछ डॉक्टर्स ऐसे भी होते हैं कि जो आप वहाँ गई, आपके बारे में वो इतना, मतलब कि पॉजिटिव थिंकिंग उनका रहेगा या आपको इतना वो ऊर्जान्वित कर देंगे कि आधी बीमारियां लगेगी, जैसे कि
0: मतलब ये एक भरोसा होता है अपने डॉक्टर पर ना कि हम सही हाथ में हैं और अब हमारी हर परेशानी दूर हो जाएगी। तो जो मरीज होता है ना, उसकी आधी समस्या यूं ही खत्म हो जाती है, बस वो सुकून से अपने आप को डॉक्टर के हाथों में सौंप देते हैं, जैसे कि हम ईश्वर के हाथों में अपने आप को सौंप देते हैं, उनके चरणों में जाते हैं, मंदिर जाते हैं और सोचते हैं बस हमारी सारी समस्याओं का समाधान अब हो ही जाना है। उसी तरह से जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो लगता है बस हमारी बीमारी अब छुमंतर हो ही जाएगी।
1: बिल्कुल, कहने का आशय यही है कि चिकित्सा सेवा का आधार करुणा, ईमानदारी और पारदर्शिता के साथ होनी चाहिए।
0: बिल्कुल, तो हम एक गाना भी अपने श्रोताओं को सुनवा दें।

0: आओगे जब तुम साजना। ऐसा ही कुछ मंजर होता है हमारी लाइफ में भी, हमारी ज़िंदगी में, है ना विनोद जी। हम भी किसी के इंतज़ार में होते हैं, लेकिन किसी का इंतज़ार घर में बैठ के करने से बेहतर है, क्यों ना कहीं बाहर निकल के किसी अपने को ढूंढा जाए।
1: बिल्कुल
0: हमारे मानसिक स्वास्थ्य और बौद्धिक विकास के लिए पर्यटन एक बेहतरीन साधन है, और शायद इसलिए हमारे प्रधानमंत्री जी अक्सर पर्यटन को बढ़ावा देने की बातें करते हैं।
1: और देखा जाए तो पर्यटन की बात हम कर रहे हैं तो ये एक पार्ट ऑफ एजुकेशन भी है।
0: बिल्कुल
1: और अगर हम जो ये कह रहे हैं कि और अभी 2 दिन पहले ही झारखंड के मुख्यमंत्री की भी एक तस्वीर वायरल हुई है, जिसमें कि वो अपनी पत्नी के साथ, जो कि विधायक भी हैं गिरिडीह की,
0: बिल्कुल बिल्कुल
1: कल्पना सोरेन के साथ नजर आ रहे हैं।
0: पर्यटन आर्थिक विकास के

0: साथ साथ रोजगार को भी बढ़ावा देता है। वैसे साथियों, इन दिनों बारिश का मौसम शुरू हो चुका है, हरियाली की चादर ओढ़े प्रकृति काफी खूबसूरत लग रही है, रास्ते काफी खूबसूरत लग रहे हैं, झील तालाब झरने भी काफी खूबसूरत और आकर्षक लग रहे हैं। तो विनोद जी, क्या कहते हैं आप?
1: बिल्कुल, कहीं दूर निकल जाए फिर।
0: हमारा झारखंड तो प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर है।
1: और ये भी है कि जहाँ तक हम दूर जाने की बात करते हैं, तो पहले जो है कि अपने झारखंड को हम सही ढंग से देखें, और जहाँ तक आप कहीं भी पूरे देश के अगर किसी भी पर्यटन स्थल की आप बात करेंगी, मैं उसे झारखंड से कोरिलेट कर दूंगा। बहुत हद तक अगर देखा जाए, मान लीजिए कि आप बादलों की बात करती हैं, ज्यादा दूर नहीं, यहाँ से केवल ओरमांझी पार करते हुए आप सिकिदरी पहाड़ पर चले जाएं, बादल आपको पार करता हुआ नजर आएगा, आपको टच करते हुए वो निकलता हुआ नजर आ जाएगा, और फिर जाकर देखिए वहाँ का क्या वातावरण है। और इसी तरह से अगर मान लीजिए आप घाटियों की बात करें, तो बहुत ज्यादा दूर नहीं, आप केवल पतरातू घाटी चले जाएं, देखिए आप रोमांचित हो जाएंगे।
0: और नेतरहाट जो है वो तो हमारे झारखंड की शिमला है ही, वहाँ का सनसेट और सनराइज देखने लायक होता है।
1: और फिर आगे अगर हम लोग बढ़ते हैं, तो जलप्रपात की अगर बात करें, वाटरफॉल की बात करें, तो ये दृश्य तो हमें लगता है कि जितना आपको यहाँ देखने को मिलेगा शायद यहाँ कहीं मिलेगा। यहाँ तो हर 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 2 किलोमीटर
0: और झरनों का शहर ही है हमारा रांची।
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: हमारी रांची में इतने तालाब हैं, इतने तालाब और उतने ही झरने, खूबसूरत खूबसूरत, बेहद खूबसूरत झरने, दसम हो गया, जोना है, हुनरू है, लेकिन इसमें एक लेकिन किंतु परंतु लग जाता है विनोद जी, कि बारिश के दिनों में पानी वाली जगहों से थोड़ी दूरी ही बनाए रखना बेहतर है। आप देखने जाएं, इसकी खूबसूरती तो बरसात में ही निखर के आती है, लेकिन थोड़ा दूर से,
1: हाँ, थोड़ा अलर्ट रहने की आवश्यकता है। अगर देखा जाए तो सरकार ने भी बहुत प्रयास किए, जितने भी यहाँ पे फॉल्स हैं सुरक्षा के पूरे प्रबंध किए गए हैं, लेकिन फिर भी अगर मान लीजिए जैसे हम दशम फॉल की बात करें, और सबसे ऊंचाई से करीब 144 फीट की ऊंचाई से कांची नदी से होते हुए ये जलप्रपात वहाँ पे बह रहा है, तो अगर देखा जाए तो उसमें कई सा, अभी अगर देख लीजिए आप, तो आपको कभी गई होंगी तो आप देखेंगे वहाँ करीब 4 ऐसे पॉइंट्स बने हुए हैं जहाँ से कि जाकर आप उसका लुत्फ उठा सकती हैं। अच्छा। आप नीचे से भी उठा सकती हैं और ऊपर भी कई करीब 50 फीट ऊपर से भी देख सकती हैं, नीचे जाकर 20 फीट नीचे से भी देख सकती हैं कि कितना विहंगम और जलप्रपात है। लेकिन फिर अगर उससे भी नीचे, जो कि वहां से प्रतिबंधित क्षेत्र है, अगर इससे अगर आप आगे जाती हैं तो निश्चित ही परेशानी हो सकती है, तो ऐसे में तो हमें खुद ही सचेत रहना होगा।
0: बिल्कुल बिल्कुल, आनंद लीजिए लेकिन दुर्घटनाओं से संभल के दुर्घटनाओं को निमंत्रण ना दीजिए। और बस हमने, और विनोद जी ने तो इतनी सारी बातें कह दी आपसे, इतने सारे जगहों के नाम ले लिए, कि हम तो समझते हैं कि इस वक्त आपको भी मन कर रहा होगा कि चल कहीं दूर निकल जाएं।

0: तो कहिए दोस्तों, कहाँ जाने का प्लान किया है आपने? वैसे विनोद जी, हम इंसान तो इंसान, हमारे भगवान जी भी इन दिनों भ्रमण के मूड में है। फिलहाल तो वो बीमार पड़े हुए हैं। आपको तो पता ही होगा कि 29 तारीख को उन्होंने जो खूब सारा स्नान किया हुआ है,
1: बिल्कुल, जो ये सदियों से जो चली आ रही है परंपरा हमारी है, रथ यात्रा से पहले बहुत सारे विधि विधान होते हैं, इसी में एक महास्नान का भी जो है वो परंपरा है। और इसमें है कि 108 घड़ा सुगंधित जल से भगवान को स्नान कराया जाता है। महाप्रभु जगन्नाथ जी स्नान करते हैं और कहा जाता है कि वो शीतल जल होता है तो इससे प्रभावित होकर भगवान बीमार पड़ जाते हैं और फिर 15 दिनों के लिए एकांतवास में चले जाते हैं।
0: अभी वो एकांतवास में ही है, अभी उनकी लीला चल रही है, ये एकांतवास में है वो, और उसके बाद उनका भी भ्रमण शुरू होगा। 16 जुलाई को रथ यात्रा शुरू होगी, मतलब वो अपने मौसी के घर जाने के लिए निकलेंगे, है ना? तो हमारे श्रोताओं को बेसब्री से इंतजार है भगवान जी के दर्शन का। तो फिलहाल तो उन्हें एकांतवास करने दीजिए और हम उनके शरणागत होते हैं, एक प्यारा सा ये गीत सुनते हैं।

0: और विनोद जी, अब खबरें खेल की। तो सबसे पहले हम ये बताएं अपने श्रोताओं को कि इंग्लैंड के दिग्गज ऑलराउंडर और टेस्ट कप्तान बेन स्टोक्स ने इंटरनेशनल क्रिकेट को अलविदा कह दिया है। न्यूजीलैंड के खिलाफ ट्रेंट ब्रिज टेस्ट के चौथे दिन उन्होंने अपने संन्यास का ऐलान कर क्रिकेट जगत को चौंका दिया। 15 साल के अपने शानदार करियर में स्टोक्स ने तीनों फॉर्मेट्स को मिलाकर 279 इंटरनेशनल मैच खेले। उन्होंने अपने आखिरी व्हाइट बॉल मैच भारत में हुए 2023 वनडे क्रिकेट वर्ल्ड कप में खेला था। अपनी आक्रामक बल्लेबाजी, घातक गेंदबाजी और कभी हार ना मानने वाले अपने जज्बे से उन्होंने टेस्ट क्रिकेट खेलने का तरीका ही बदल दिया। गेंद और बल्ले दोनों से उन्होंने ऐसे कीर्तिमान स्थापित किए हैं जो उन्हें क्रिकेट इतिहास के सबसे महान ऑलराउंडर्स की लिस्ट में शुमार करते हैं।
1: और अगर बात करें हार्दिक पांड्या की, तो टीम इंडिया के ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या ने अपना ठिकाना बदल लिया है।
0: अच्छा।
1: वे अब मुंबई से अस्थायी रूप से बेंगलुरु शिफ्ट हो गए हैं। इसका मुख्य कारण BCCI के सेंटर ऑफ एक्सेलेंस को अपने करियर के बाकी समय के लिए परमानेंट ट्रेनिंग बेस बनाना है।
0: और महिला वर्ल्ड कप की बात करें तो T20 में ऑस्ट्रेलिया 8वीं बार फाइनल में है। और हम अपने बॉयज की बात करें तो आज मैच होने वाला है। आयरलैंड के खिलाफ 0-2 से चौंकाने वाली सीरीज हार के बाद अब टीम इंडिया आज इंग्लैंड से भिड़ेगी।

0: होगी। दोनों देशों के बीच 5 मैचों की T20 सीरीज का पहला मुकाबला चेस्टरली स्ट्रीट में खेला जाएगा।
1: और अगर मुकाबला तो मुकाबला भारतीय समय अनुसार रात 10 बजे शुरू होगा, जिसका सीधा प्रसारण विभिन्न टीवी चैनलों पर दिखाया जाएगा। और नए T20 कप्तान श्रेयस अय्यर पर इस सीरीज में टीम को जीत की पटरी पर लौटाने का भारी दबाव भी होगा।
0: जी हाँ, और विनोद जी, बातें तो ढेर सारी, खबरें भी खेल की ढेर सारी हैं, लेकिन अब घड़ी की सुइयां हैं जो इशारा कर रही हैं कि हमें अपने श्रोताओं से विदा लेना चाहिए। तो इस प्यारे से गीत के साथ हम अपने श्रोताओं से लेते हैं विदा। नमस्कार, जोहार, जोहार।

ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। प्रस्तुत है फिल्म संगीत। फिल्म संगीत के इस कार्यक्रम में आइए हम आपको सबसे पहले सुनवाते हैं फिल्म प्रियतमा का ये गीत किशोर कुमार की आवाज में। बोल है आनंद के, माफ कीजिएगा, अनजान के, और संगीत राजेश रोशन का।

और ये गीत है फिल्म तपस्या से, जिसे गाया है किशोर कुमार और आरती मुखर्जी ने, लिखा है एमजी हसमत ने और संगीतबद्ध किया है रविंद्र जैन ने।

जवानी दीवानी, जी हाँ नाम है फिल्म का। सुनते हैं इस फिल्म का दो गीत किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाजों में। नगमा निगार है आनंद बख्शी और मौसीकी है आर डी बर्मन की।

आप सुन रहे थे फिल्म दाग का ये गीत किशोर कुमार की आवाज में। शब रचना की थी साहिर लुधियानवी ने और उसे संगीतबद्ध किया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। आइए सुनते हैं किशोर कुमार की ही आवाज में मजरूह सुल्तानपुरी का लिखा ये गीत। संगीत है RD बर्मन का और फिल्म का नाम है मेरे जीवन साथी।

0: आशिक मुझे बनाया, हंसते हंसते कट जाए रास्ते।
1: अभी आप सुन रहे थे फिल्म खून भरी मांग का ये गीत नितिन मुकेश और साधना सरगम तथा सोनाली की आवाजों में। शब्द थे इंदिवर के और उसे संगीत से सजाया था राजेश रोशन ने। कार्यक्रम के आखिर में हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म अजनबी का ये गीत किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाजों में।

फिल्म अजनबी के लिए किशोर कुमार और लता मंगेशकर के गाए इसी गाने के साथ कार्यक्रम फिल्म संगीत समाप्त हुआ।

आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। दिन के 12 बजे हैं। प्रस्तुत है महिलाओं को संबोधित कार्यक्रम गृह लक्ष्मी, जिसे आज प्रस्तुत कर रही हैं महजबीन परवीन और सुभाषिनी। प्रस्तुति है गौरव पांडे की।

0: बहनों 12 बज चुके हैं और वक्त है आपके मन पसंद कार्यक्रम गृह लक्ष्मी का, जिसे लेकर हाजिर हैं आपकी दो सखियां। मैं हूँ सुभाषिनी और संग है हमारे हमारी एक और रेडियो सखी महजबीन।
1: तो स्वीकार करें बहनों हम दोनों का प्यार भरा नमस्कार। हर दिन की तरह आज भी हम आपसे ढेर सारी बातें करेंगे और साझा करेंगे। आपके लिए होंगी कुछ जानकारियां और साथ में होगा मनोरंजन भी।
0: हाँ और बहनों, लेकिन आज के दिन क्या खास है वो तो बता दे बहनों को। तो बहनों आपको बता दे कि आज से यानी कि 1 जुलाई से 7 जुलाई तक हम राष्ट्रीय वन महोत्सव सप्ताह मना रहे हैं।
1: बिल्कुल सुभाषिनी, हर वर्ष हम 1 से 7 जुलाई के बीच वन महोत्सव सप्ताह मनाते आ रहे हैं। यह एक वार्षिक वृक्षारोपण उत्सव है बहनों, जिसका उद्देश्य है पर्यावरण की सुरक्षा के प्रति लोगों को जागरूक करना और ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाना।
0: हाँ बिल्कुल सही कह रही हो, प्रकृति ने हमें

0: अनेक अनमोल उपहार दिए हैं, जिनमें वन सबसे महत्वपूर्ण है। ये न केवल हमें शुद्ध ऑक्सीजन प्रदान करते हैं, बल्कि पर्यावरण का संतुलन बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाते हैं।
1: तभी तो वन धरती के फेफड़े कहे जाते हैं, यानी वन है तो हम है। वनों के बिना हम मानव पृथ्वी की कल्पना भी नहीं कर सकते। वन प्रकृति का कवच है और हमारे जीवन का आधार भी है।
0: बिल्कुल। और बहनों, गौर करें तो हमारे जो रोज़मर्रा के जीवन की बहुत सी ज़रूरतें हैं ना, वो वनों पर ही निर्भर हैं। जैसे कि वनों से हमें अनेक जड़ी बूटियां प्राप्त होती हैं, जिनसे कई असाध्य रोगों की दवाएं बनती हैं। फर्नीचर के लिए कच्चा माल हमें वनों से ही तो मिलता है।
1: सिर्फ यही नहीं बहनों, वन अनेकों पशु पक्षियों का आशियाना भी कहा जाता है। अगर हम पर्यावरण की बात करें तो वन जलवायु की जो गर्मी है ना, उसे सामान्य बनाए रखते हैं। तेज हवाओं को रोककर उपयुक्त जलवायु का भी निर्माण करते हैं।
0: बिल्कुल। और वर्षा तो कराते ही हैं, साथ ही वर्षा जल को सोख कर भी रखते हैं, जिससे भूमि का जल स्तर गिरता नहीं है और दूर दूर तक कि जो क्षेत्र होते हैं वो हरे भरे रहते हैं। यानी सखियों, वन हमारी जीवन का आधार है। यदि वन सुरक्षित रहेंगे तो हमारा जीवन सुरक्षित रहेगा।
1: सही है सुभाषिनी। कवि सुमित्रा नंदन पंत ने ठीक कहा है कि वृक्ष धरती के गहने हैं। अगर हमें अपना अस्तित्व बचाना है तो वनों को बचाना ही होगा। पेड़ हमारे बिना भी जी सकते हैं, लेकिन हम यानी सभी जीव जंतु पशु पक्षी इसके बिना नहीं जी सकते, क्योंकि पेड़ है तो हम है।
0: बिल्कुल। तो आज के आधुनिक युग में जहाँ एक तरफ कंक्रीट के जंगल यानी इमारतें बढ़ती जा रही हैं, वहीं दूसरी तरफ असली हरे भरे जंगल जो हैं वो घटते जा रहे हैं। ऐसे में हम सबका ये दायित्व बनता है कि वनों के संरक्षण में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें, कम से कम एक पेड़ ज़रूर लगाएं।
1: एक पेड़ लगाएं, ऐसा ना हो कि उस पेड़ को लगाकर आप भूल जाएं। उस पर आप ध्यान दें, उसकी देखरेख करें। मौसम भी अनुकूल है, बारिश का मौसम है। ऐसे में हम एक पेड़ लगाते हैं तो ज़्यादा देखभाल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हमारे द्वारा लगाए गए पेड़ ये जो है सूखेंगे भी नहीं, क्योंकि वो कुदरत की ओर से उसे कुछ ना कुछ नमी प्रदान होते रहेगी। ये हमारे सच्चे मित्र हैं, जो बिना कुछ मांगे भी हमारे जरूरतों को पूरा करते हैं।
0: पर्यावरण को हरा भरा बनाने के लिए आप सरकार द्वारा चलाए गए एक पेड़ माँ के नाम अभियान से भी जुड़ सकते हैं। और अभी तो समय भी अनुकूल है, क्योंकि यह मौसम सिर्फ बारिश का नहीं बल्कि जीवन के पुनर्जागरण का मौसम है। यही वह समय है जब प्रकृति हमें अधिक से अधिक वृक्षारोपण करने और पर्यावरण संरक्षण का संदेश देती है।
1: सखियों, कल्पना करें कि अगर भारत का हर नागरिक साल में सिर्फ एक पेड़ लगा दे तो करोड़ों एक पेड़ लगाना भविष्य में निवेश करने जैसा है। आज अगर 5 साल का बच्चा जो पौधा है, छोटा पौधा लगाएगा, तो 25 साल की उम्र में वही पेड़ उसे छाया, फल और बहुत ही ज्यादा शुद्ध हवा देगा। यानी कि देखा जाए तो एक पेड़ से हमें कई फायदे हैं।
0: बिल्कुल, बहुत ही अच्छी बात बताई तुमने। और बहनों, तुलसीदास की एक प्रसिद्ध पंक्ति है, तरवर फल नहीं खात है, सरवर पिय ही न पान। यानी पेड़ खुद फल नहीं खाते, खुद पानी नहीं पीते, फिर भी सबको जीवन देते हैं। तुलसीदास की इस पंक्ति में जीवन का गहरा राज छुपा है। बहनों, पेड़ के बिना हमारा कोई अस्तित्व नहीं है।
1: तो बहनों, आइए हम प्रण लें कि एक पेड़ जरूर लगाएं और साथ ही साथ उसका संरक्षण भी करें। अपनी बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के लिए प्राकृतिक संसाधनों का भरपूर उपयोग करें, लेकिन उस निर्ममता को के साथ नहीं कि प्राकृतिक का जो संतुलन है वो बिगड़ जाए। यानी कि हम उसके जो संतुलन को बरकरार रखना, हमें ये हमारी जिम्मेदारी भी बनती है।
0: बिल्कुल। वन पर्यावरण और मानव का अटूट संबंध है। मानव अपने खुशी का आनंद वन और पर्यावरण के संग ही तो पाता है। प्रकृति की हरियाली और शीतल वायु सभी का मन मोह लेती है। प्रकृति की गोद में पर्यावरण के संग रहना ऐसा सुखद लगता है बहनों, जिसका वर्णन शब्दों में करना बहुत कठिन है।
1: तो क्यों ना जो प्रकृति की गोद में चलें और प्रकृति के संग उन पलों को महसूस करें, इस खूबसूरत से प्यारे से गीत के माध्यम से।

0: बहुत ही खूबसूरत गीत है ना महजबीन। और इस गीत के बाद हम छोटे से अंतराल एक ले लेते हैं, उसके बाद फिर हम कार्यक्रम में आगे बढ़ेंगे। और लेकिन ये ज़रूरी है कि आज चूंकि वन महोत्सव है तो हम अपने मेहमान से बहनों को ज़रूर मिलवा देते हैं,
1: क्यों नहीं, है ना, मिलते हैं अपने मेहमान से।
0: तो बहनों आपको बता दें कि आज के हमारे खास मेहमान हैं श्रीकांत वर्मा जो कि DFO रांची हैं, और इनसे बातचीत कर रही हैं महजबीन। और आज वन महोत्सव के उपलक्ष्य पर आइए सुनते हैं उनसे क्या बातचीत हुई है।
2: आपको वन सप्ताह के उपलक्ष्य में वन संरक्षण के बारे में जानकारी देंगे, और हमारे आज के मेहमान हैं श्रीकांत वर्मा, DFO रांची। सर आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है, नमस्कार।
3: नमस्कार सभी श्रोताओं को, नमस्कार जोहार। इस बार जो अभी मानसून का समय आ रहा है, वन महोत्सव का समय आ रहा है, झारखंड में वन महोत्सव बहुत हर्षो उल्लास के साथ मनाया जाता है। इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी राज्य स्तरीय

0: प्रोग्राम से पूरे झारखंड वासियों को और देशवासियों को वन महोत्सव की शुभकामनाएं देते हैं। वो कार्यक्रम भी शीघ्र ही समय लेकर आयोजित किया जाएगा। मैं इस मानसून और वन महोत्सव यानी कि वनों के लगाने के उत्सव के विषय में यही कहना चाहता हूं कि ये सरकार के साथ साथ जो कम्युनिटी है, समाज है, वो सभी की भागीदारी से ही ये संभव है। तो आइए हम सब मिलकर अपने वनों की रक्षा करें, जो प्राकृतिक संपदा है उसको समृद्ध करें और आगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट की ओर चलें। हमें वनों के संरक्षण के साथ साथ जल संरक्षण पर भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि मानव एवं जो वन्य प्राणी हैं और वन्य जीव, पेड़ पौधे हैं, जितने भी जीव जंतु हैं, सभी के एग्जिस्टेंस के लिए ये दोनों ही बेहद आवश्यक हैं। तो इन्हीं सब बातों के साथ मैं पुनः कहना चाहूंगा कि हम अपना दायित्व समझें और इसे बखूबी निभाएं, और एक साझा जिम्मेवारी है हम सभी की, शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये इसको निभाने की कोशिश करें तो हमारे आने वाले जनरेशन उस तरह का क्लाइमेट, उस तरह का वेदर देख पाएंगे जो हमने अपने बचपन में देखा है, या उससे भी बेहतर देख पाएंगे। तो इस दिशा में हमको कार्य करना चाहिए। इन्हीं बातों के साथ पुनः आपको बहुत बहुत बधाई इस वन महोत्सव के आने वाले सीजन के लिए, और मैं श्रीकांत वर्मा, DFO रांची, आप सभी को शुभकामनाएं देता हूं कि आपने अच्छे कार्य किए हैं और आगे भी इसी दिशा में करते रहेंगे।
1: सर, एक ये भी बात है कि वन सभी के लिए, यानी जानदार जीव जंतु सभी के लिए एक जीवनदाता का काम करता है, तो सभी इसको जागरूक हो, ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाए, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे?
0: हम कोशिश करते हैं कि देखिए, ग्रामीण परिवेश में लोग जागरूक रहते हैं, उनको प्रकृति से जनरली, यहाँ जो जनजाति समूह है, या हम आप देखें गांव घर में भी लोग करते हैं। अभी माननीय प्रधानमंत्री ने भी एक पेड़ माँ के नाम का लगभग 3 वर्षों से ये स्लोगन चल रहा है, उसके अनुपालन में भी काफी कार्य हो रहा है। लेकिन शहरी क्षेत्रों में वनों की कमी हो गई है। आप देखेंगे पॉल्यूशन, पर्टिकुलर इमिशंस के कारण बहुत बढ़ गया है। तो इस समय में आवश्यक है कि जो सिविल सोसाइटी है वो प्लांटिंग करे, और केवल एक पेड़ नहीं, मैं कहूंगा कि उनको 10 लगाना चाहिए, क्योंकि सामाजिक रूप से अगर आप सशक्त हैं, आर्थिक रूप से सशक्त हैं, तो जो कमजोर वर्ग है, जो 2 जून की रोटी के लिए प्रयासरत है दिन भर, तो उनसे हो सकता है कि हम अपेक्षा ना करें कि वो वृक्षारोपण या पॉल्यूशन या अन्य चीजों पर उनका उतना ध्यान जाएगा। तो इसी के लिए आवश्यक है कि हम उनके शेयर का भी जो काम है वो हम करने की कोशिश करें, उनका भी दायित्व लें, ताकि जो कार्य वो ना कर पाए उसको कंपनसेट किया जा सके। तो यही अपेक्षा करता हूँ कि मैं तो कर रहा हूँ, आप भी कीजिए।
1: और सर, ये भी है कि वनों की कटाई से हमारा जो वातावरण है वो दूषित भी हो रहा है, और हम ये भी देख रहे हैं कि आप जो प्राकृतिक आपदाएं आ रही है बहुत ज्यादा आ रही है, आपका क्या संदेश होगा?
0: देखिए, 1950 में यानी कि हमारी आजादी के 3 वर्ष बाद, जो उस समय जो राष्ट्रीय आंदोलन वगैरह में काफ़ी अच्छी भागीदारी थी उनकी, और बाद में मिनिस्टर हुए, उनका नाम था KM मुंशी, कनेका मनिकलाल मुंशी। इन्होंने इस वन महोत्सव की नींव रखी थी, और ये उस समय भी जुलाई के प्रथम सप्ताह में ही मनाया जाता था, फिर भी ये जो प्रथा है ये चालू है, और इसको वो एक नेशनल एक्टिविटी यानी कि राष्ट्रीय स्तर पर एक विधि के रूप में, या लोगों के मास में, मतलब समूह इसको अडॉप्ट करें, सब लोग करें, ये समझ उस समय भी थी कि अगर जनता इसको अडॉप्ट कर लेगी तो जो अभी समस्याएं हैं जलवायु परिवर्तन इत्यादि की, वो कम से कम होंगी। तो यह जो वन महोत्सव है और इसकी, इसका जो स्पिरिट है, ये अभी भी प्रासंगिक है। इसको हम लोग प्रादेशिक कार्य भी कहते हैं, क्राइम कंट्रोल लॉ एंड ऑर्डर की भी समस्याएं इसमें आती हैं और विभिन्न वन पदाधिकारी इस संबंध में उनको जो भी पावर्स हैं वो निहित हैं कई तरह के अधिनियमों के अंदर कि वो वन्य प्राणी

0: दोनों की सुरक्षा के लिए आवश्यक कदम उठा सकते हैं। ये पहला है। दूसरा है कि वनों के आवरण की बढ़ोतरी, इसके लिए जो वन संपदा है उसका रेगुलर असेसमेंट किया जाता है, उसको समय समय पर आकलन किया जाता है कि कहाँ कितने पौधारोपण की आवश्यकता है, जो खाली भूमि है उन पर किया जाए, या वनों के बाहर लोगों को प्रोत्साहित किया जाए, किसान हैं वो भी अपने जो जमीन है उसके मेड़ हैं उस पर भी वृक्ष लगा सके। तो इस प्रकार से हरित आवरण को बढ़ाना और सुरक्षा करना, ये दोनों कार्य करके ही हम इस चुनौती को पार पा सकते हैं। देखिए, जागरूकता के लिए सब ये वन महोत्सव एक जागरूकता कार्यक्रम ही है, एक सिंबॉलिक कार्यक्रम ही है कि कहीं पर आप बच्चों को, महिलाओं को और ख़ासकर झारखंड से राज्य जो आदिवासी बहुल क्षेत्र हैं वहाँ उस समूह के लोगों को जो वनों पर आश्रित हैं उनको वनों के महत्ता के बारे में फिर से बताइए और उनको जोड़िए अपने साथ कि छोटे मोटे स्वार्थ के लिए हम वनों की कटाई ना करें, वहाँ के ज़मीन को लेने के लिए हम उस पर अतिक्रमण ना करें। ये सब बातें वन महोत्सव के माध्यम से या विश्व पर्यावरण दिवस के माध्यम से या वर्ल्ड अर्थ डे मनाते हैं, इन सब माध्यम से हम समय समय पर लोगों के साथ साझा करते रहते हैं, चाहे सोशल मीडिया हो। आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, इन पर जिन जो भी लोग हैं, मैक्सिमम लोग हैं स्मार्टफोन यूज़ करते हैं, उनके पास इस तरह की जागरूकता प्रतिदिन आती रहती है। ज़रूरत है कि एक थोड़ा ठहर कर उनको समझने की और अपने जीवन के साथ जोड़ने की। ऐसा अगर सभी करेंगे तो अवश्य रूप से वो एक बेहतर धरती की कल्पना कर सकते हैं। जुड़ना है इस कार्यक्रम से, जैसे बहुत सारे कैंपसेस हैं, सरकारी विद्यालय हैं, आंगनबाड़ी है, जहाँ जहाँ ब्लॉक के कार्यालय के जो भी परिसर हैं, अस्पताल के परिसर हैं, वहाँ आप जागरूक होकर जो भी सरकारी पौधशालाएँ हैं उनकी जानकारी आप उस ज़िले में प्राप्त कर लें, वहाँ से जाके पौधा लेकर और आवश्यकता अनुसार आप पौधारोपण करें। दूसरा है कि एक बहुत अच्छी प्रथा शुरू हुई है वृक्षों के रक्षाबंधन की। बहुत सारे लोग एक संस्कृति डेवलप हुई है झारखंड में, खासकर हजारीबाग के में, सिमडेगा में, कि लोग वृक्ष को रक्षा सूत्र बांधते हैं। तो ये बहुत अच्छा सिस्टम है। इस प्रकार के स्पिरिट को अगर लोग फॉलो करें तो ये जनभागीदारी का एक बहुत अच्छा एग्जांपल। देखिए, हम आप रेगुलरली अपने टीवी में, मोबाइल में देखते रहते हैं कि किस प्रकार हम मनुष्य ही इतने फैल चुके हैं कि अपनी धरा को दूषित कर रहे हैं। हम अपने लिए इतना जगह बना ले रहे हैं कि बाकी जो स्पेशीज़ हैं, जैसे जो वनों में रहने वाले जंगली जानवर हैं, हाथी है, टाइगर है, जो हम लोग रेगुलरली चाहते हैं कि हम लोग कभी देखें, टाइगर रिजर्व में जाके, पार्क्स में जाके सामने से देखें, जो बहुत अच्छे लगते हैं, राइनोसेरस है उसको देखने का मन करता है, हाथी की सवारी लोग करना चाहते हैं। तो ऐसे जो जीव हैं ये धरा उनकी भी है और उनको नुकसान ना करें इसके लिए सबसे पहले है कि जो वन है उनको अक्षुण्ण रखने का प्रयास हम सभी को करना है। जो वहाँ पर वृक्ष हैं, जो वहाँ पर पानी का स्रोत है उसको दूषित ना करें, प्लास्टिक का कम से कम उपयोग करें, प्लास्टिक की जगह कपड़े का थैला यूज़ करें, कोशिश करें कि अब बैटरी वाले बाइक्स आ रहे हैं उनका उपयोग करें ताकि पोल्यूशन कम हो। थोड़ी देर अगर कहीं 1-2 किलोमीटर चलना भी हो शॉपिंग जाने के, तो आप चलने का प्रयास करें। हर समय वाहन का उपयोग ना करें, घर से निकलें तो एसी और पंखे और बिजली वगैरह के उपकरण बंद कर दें। इन सब छोटे छोटे तरीक़ों से हम अपनी धरा को एक किसी न किसी प्रकार से बचाते हैं, इसीलिए इस संबंध में जागरूक होकर एक अच्छे नागरिक बनने की आवश्यकता है।
1: मैंने आप अभी सुन रही थी भेंटवार्ता। भेंटवार्ताकार थे श्रीकांत वर्मा, DFO रांची, और इनसे बातचीत कर रही थी महजबीन परवीन। और महजबीन, अब हम बहनों के लिए क्या लाई हो, बहनों को जरा बताओ।
2: अब अपनी बहनों को हम सुनवाते हैं एक और प्यारा सा गीत।
3: वीडियो लाइक करने के पैसे मिलेंगे। So easy.
4: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है,
5: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

0: बहनों, फिर से स्वागत है आपका गृह लक्ष्मी कार्यक्रम में। आज हम आपको बताएंगे कि क्यों जरूरी है एक्सरसाइज। एक्सरसाइज हमारे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए सबसे महत्वपूर्ण और प्रभावी माध्यम है। नियमित रूप से एक्सरसाइज करने से न केवल हमारा शरीर निरोगी रहता है, बल्कि हमारा मन भी शांत और ऊर्जावान बना रहता है। आज की आधुनिक जीवन शैली में एक्सरसाइज का महत्व और भी अधिक बढ़ गया है, क्योंकि लोग जागरूक हो रहे हैं।
1: एक्सरसाइज हमारे लिए इसलिए भी जरूरी है बहनों, क्योंकि न केवल हमारे शारीरिक स्वास्थ्य को बेहतर रखता है, बल्कि हमारा वजन भी नियंत्रित करने, फिर मानसिक तनाव को कम करने और बीमारियों के खतरे को भी कम करके जीवन को सुचारू ढंग से चलाने में हमारी मदद करता है।
0: हाँ बहनों, नियमित एक्सरसाइज रक्त संचार को बेहतर बनाता है और जो शरीर के ऊतकों का तक पर्याप्त ऑक्सीजन और पोषक तत्व पहुंचाता है। इससे ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल नियंत्रित रहते हैं। शारीरिक गतिविधि अतिरिक्त कैलोरी बर्न करने में भी मदद करती है, जिससे मोटापा और उससे जुड़ी अन्य बीमारियों का जो खतरा है कम रहता है। तो बहनों, एक्सरसाइज करने से फेफड़ों और हृदय की कार्य प्रणाली में सुधार होता है, जिससे आप दिन भर ऊर्जावान महसूस करते हैं। एक्सरसाइज

0: जो जिस तरह से आप करती हैं वो मुझसे मूड बेहतर रहता है और तनाव भी कम होता है, साथ में ही अवसाद से भी बचाता है। नियमित शारीरिक श्रम से मांसपेशियां मजबूत होती हैं, जोड़ों का लचीलापन बढ़ता है और उम्र बढ़ने के साथ साथ हड्डियों का जो कमज़ोर होने का खतरा होता है ना, वो कम होता है।
1: बिल्कुल। और बहनों, हम महिलाओं के लिए भी एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है। महिलाओं के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाए रखने के लिए एक्सरसाइज बेहद ज़रूरी है। उम्र जैसे जैसे बढ़ती है, महिलाओं की शरीर में कई तरह के हार्मोनल और शारीरिक बदलाव होते हैं, जिन्हें नियंत्रित करने में एक्सरसाइज मुख्य भूमिका निभाती है।
0: और शारीरिक स्थिति को देखते हुए स्वस्थ जो स्वास्थ्य विशेषज्ञ है ना, उसकी सलाह भी लेना ज़रूरी है, तभी आप एक्सरसाइज की शुरुआत करें। तो बहनों, हम चलते चलते क्यों ना आपको एक और प्यारा सा गीत सुनवा दें।

0: बहनों, आपको बता दें कि इस कार्यक्रम की प्रस्तुति थी गौरव पांडे की अब्दे महजबीन
1: और सुभाषिनी को देविदा। नमस्कार,
0: नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे महिलाओं को संबोधित कार्यक्रम गृह लक्ष्मी। ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। प्रस्तुत है फिल्म संगीत।

फिल्म संगीत में पहला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं, ऐतराज फिल्म का। इस गीत को गाया है उदित नारायण और अलका याग्निक ने, लिखा है समीर ने और इसकी धुन तैयार की है हिमेश रेशमिया ने।

और अब आइए सुनते हैं फिल्म शान का ये नगमा, आशा भोसले और पंकज उधास की आवाजों में। नगमा निगार है आनंद बख्शी और संगीत है SD RD बर्मन का।

मेहरबान है। दोस्तों, जिंदगी हसीन है मगर सिर्फ उनके लिए जिन्होंने प्यार किया है, क्योंकि सिर्फ प्यार करने वाले जानते हैं कि आन बान और शान से जीना किसे कहते हैं, है ना।

कार्यक्रम का अगला गीत हमने लिया है फिल्म अराज से। लिखा है इसे समीर ने और नदीम श्रवण के संगीत निर्देशन में, गाया है उदित नारायण और अलका याग्निक ने।

अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की भूरी भूरी प्रशंसा कर रही है।
1: वो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल हर जगह

0: घटना स्वयं ही घट पड़े।
1: भारतीय सेना।
2: हमारे श्रोता इस समय कुछ फिल्मी गीतों का आनंद उठा रहे हैं आकाशवाणी के रांची केंद्र से, और अब आइए सुनते हैं फिल्म दम लगा के हिस्सा का ये गीत पपून की आवाज में। वरुण ग्रोवर ने लिखा है इसे और संगीतबद्ध किया है अनु मलिक ने।

और अब आइए सुनते हैं कार्यक्रम का आखिरी गीत, आनंद कुमार की आवाज में। इंदिवर के बोल हैं और संगीत है आनंद जी वीर जी शाह का। फिल्म का नाम कुर्बानी।

अभी आप सुन रहे थे फिल्म कुर्बानी का ये गीत। समय अभाव के कारण आप इस गीत को पूरा नहीं सुन पाए, इसका हमें खेद है। हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय दिन के 1 बजने को हैं। थोड़ी ही देर में आप क्रमशः हिंदी और अंग्रेजी में समाचार सुनेंगे, जिसे रिले करेंगे हम अपने दिल्ली केंद्र से। कृपया कुछ पलों की प्रतीक्षा करें।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि डिजिटल इंडिया अभियान ने सुशासन को नई दिशा और देश के समग्र विकास को गति दी है। इसने नागरिकों का सशक्तिकरण भी किया है। डिजिटल इंडिया अभियान के 11 वर्ष पूरे होने पर श्री मोदी ने कहा कि इस पहल का असर लोगों के जीवन के हर क्षेत्र में दिखाई दे रहा है। उन्होंने कहा कि डिजिटल भुगतान और प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के माध्यम से सरकारी सहायता पारदर्शिता के साथ सीधे लाभार्थियों तक पहुंच रही है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार ने डिजिटल कनेक्टिविटी का विस्तार करके डिजिटल शासन को मजबूत करके और सार्वजनिक सेवाओं तक पहुंच में सुधार करके भारत को एक डिजिटल राष्ट्र में बदल दिया है। डिजिटल इंडिया पहल के 11 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में श्री शाह ने कहा कि देश ने इंटरनेट कनेक्टिविटी, डिजिटल बुनियादी ढांचे और प्रौद्योगिकी आधारित शासन में महत्वपूर्ण प्रगति देखी है। विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन ग्रामीण अधिनियम आज से लागू हो गया है। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कहा कि वीबी जीरामजी अधिनियम के अंतर्गत प्रत्येक वित्त वर्ष में 125 दिन के रोजगार की गारंटी होगी। इससे ग्रामीण भारत सशक्त बनेगा। वर्तमान वित्त वर्ष में इस योजना के क्रियान्वयन के लिए 95,692 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है। विकसित भारत जीरामजी अधिनियम के अंतर्गत संशोधित पारिश्रमिक दरें आज से लागू हो गई हैं। राष्ट्रीय औसत पारिश्रमिक मनरेगा के 298.80 रूपये से बढ़ाकर विकसित भारत जीरामजी के अंतर्गत 327.40 रूपये प्रतिदिन कर दिया गया है। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विकसित भारत जीरामजी अधिनियम लागू होने को एक ऐतिहासिक उपलब्धि बताया है। श्री चौहान ने कहा कि ये अधिनियम लाखों ग्रामीण श्रमिकों के लिए गरिमा, आत्मसम्मान और आजीविका सुनिश्चित करने का नया अध्याय है। उन्होंने कहा कि ये अधिनियम हर ग्रामीण परिवार को 125 दिन के रोजगार का वैधानिक अधिकार देता है।
1: आज का दिन ऐतिहासिक दिन है। विकसित भारत जी राम जी योजना आज से लागू हो गई। हमारी कोशिश रही है कि ट्रांजिशन स्मूथ हो जाए। सभी राज्यों ने बजट में प्रावधान किया है। अकेले केंद्र सरकार ने 95,600 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि इस साल विकसित भारत जी राम जी योजना के लिए रखी है। इसमें राज्यों का हिस्सा मिला लिया जाए तो ये 1,51,000

0: न केवल मजदूर भाइयों और बहनों को रोजगार देगी बल्कि विकसित गांव को बनाने में सहायक सिद्ध होगी।
1: प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत सतत जल प्रबंधन और सिंचाई के विस्तार से सिंचाई आधारित कृषि के 10 वर्ष से अधिक हो गए हैं। पहली जुलाई 2015 को शुरू की गई इस योजना ने सिंचाई सुनिश्चित की है, खेतों में जल दक्षता में सुधार किया है और देश में सतत जल संरक्षण को बढ़ावा दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑपरेशन अमिस्ताद के अंतर्गत वेनेजुएला में राहत कार्यों में जुटे भारतीय डॉक्टरों और चिकित्सा कर्मियों की सराहना की है। सोशल मीडिया संदेश में प्रधानमंत्री ने कहा कि कठिन समय में जरूरतमंद लोगों की सेवा के लिए उनका समर्पण प्रेरणादायक है। उन्होंने कहा कि हर संकट की घड़ी में चिकित्सा कर्मी अपनी जिम्मेदारी पूरी निष्ठा से निभाते हैं। थलसेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ ने कहा है कि बदलते सुरक्षा माहौल से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए सेना का तेजी से आधुनिकीकरण किया जाएगा। 31वें थलसेना प्रमुख का पदभार ग्रहण करने के बाद जनरल सेठ ने मीडिया को बताया कि भारतीय सेना सीमाओं और उभरते खतरों पर लगातार कड़ी नजर रख रही है और किसी भी सुरक्षा चुनौती से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान और किरेन रिजिजू बाढ़ की स्थिति तथा आपदा से हुए नुकसान का जायजा लेने के लिए आज अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर पहुंचे। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दोनों केंद्रीय मंत्रियों को भेजने में उनकी तत्परता और समर्थन के लिए आभार व्यक्त किया। इससे पहले गृहमंत्री अमित शाह ने कल मुख्यमंत्री पेमा खांडू से मुलाकात की। इस दौरान श्री खांडू ने गृहमंत्री को मौजूदा स्थिति, राहत बचाव और पुनर्वास के चल रहे प्रयासों के बारे में जानकारी दी। वस्तु और सेवा कर जीएसटी से सरकार को जून महीने में 1,94,812 करोड़ रूपये का राजस्व प्राप्त हुआ। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani. The news are read by Abhishek Mukhopadhyay. Prime Minister Narendra Modi has said Digital India initiative has redefined governance, empowered citizens and accelerated all-round development. Marking the 11 years of the initiative, Mr. Modi said that Digital India has touched every aspect of life. He underscored that seamless digital payments and direct benefit transfers are reaching beneficiaries with transparency. Mr. Modi said that technology has become a powerful instrument for furthering ease of living. Home Minister Amit Shah has said that the government has transformed India into a digital nation by expanding digital connectivity, strengthening digital governance, and improving access to public services. Marking 11 years of the Digital India initiative, Mr. Shah said the country has witnessed significant progress in internet connectivity, digital infrastructure and technology-driven governance. In a social media post, he said that over 103 crore people are now connected to the internet, while more than 2,20,000 villages have been linked through BharatNet. Revised wage rates under the Viksit Bharat G. Ramji Act 2025 have become effective from today. According to the notification issued by the Rural Development Ministry, wage rates have been enhanced across all states and union territories. The ministry said for the first time an interim-based wage rate of 300 rupees per day has been introduced, ensuring that no notified wage under the program falls below this level. The national average wage has risen from 298.8 rupees per day under MG Narega to 327.4 rupees per day under Viksit Bharat G. Ramji. 21 states and administrative units which previously had wages below 300 rupees have now been brought up to the new benchmark. Minister for Rural Development Shivraj Singh Chauhan described the revision as a historic step towards building a Viksit Bharat through prosperous villages. In Uttar Pradesh, 5 people, including 2 minor girls, were killed after a sleeper bus collided with a car on the Agra-Lucknow expressway in the wee hours today. According to the officials, the sleeper bus was travelling from Haryana to Bihar, while the car was heading from Agra towards Lucknow when the speeding bus hit the car from behind. After the collision, the bus fell off the expressway and overturned. The impact was so severe.

0: ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। मीडियम वे 546.45 मीटर यानी 549 किलोहर्ट्ज़ तथा एफएम 100.5 मेगाहर्ट्ज़ पर। प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार।
1: आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं पूनम केरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, डिजिटल इंडिया अभियान ने सुशासन को दी नई दिशा और देश के समग्र विकास को दी गति, सशक्त हुए नागरिक। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने नए सूचना आयुक्तों को पद और गोपनीयता की दिलाई शपथ, लोकभवन में आयोजित हुआ समारोह। जेपीएससी सिविल सर्विस पीटी रिजल्ट जारी होने का रास्ता साफ, उम्र सीमा विवाद पर हाईकोर्ट ने खत्म की सुनवाई। पासपोर्ट आवेदन शुल्क में आज से वृद्धि लागू, 36 पृष्ठों वाले नए पासपोर्ट की लागत अब होगी 2500 रुपए। और आज राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दी शुभकामनाएं, समर्पण और सेवा भाव की सराहना की। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि डिजिटल इंडिया अभियान ने सुशासन को नई दिशा और देश के समग्र विकास को गति दी है। इसने नागरिकों का सशक्तिकरण भी किया है। डिजिटल इंडिया अभियान के 11 वर्ष पूरे होने पर श्री मोदी ने कहा कि इस पहल का असर लोगों के जीवन के हर क्षेत्र में दिखाई दे रहा है। उन्होंने कहा कि डिजिटल भुगतान और प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के माध्यम से सरकारी सहायता पारदर्शिता के साथ सीधे लाभार्थियों तक पहुंच रही है।

0: और डिजिटल इंडिया ने नवाचार को देश के कोने कोने तक पहुंचाया है। वीबी जी राम जी को लेकर केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि आज का दिन ऐतिहासिक है। मनरेगा से बेहतर योजना जिसमें 100 नहीं बल्कि 125 दिन के रोजगार का प्रावधान है, वीबी जी राम जी आज से लागू हुई है।
1: आज का दिन ऐतिहासिक दिन है। कल मनरेगा का समापन हो गया और मनरेगा से बहुत बेहतर योजना जिसमें 100 दिन नहीं 125 दिन का रोजगार मांगने पर मजदूर बहनों और भाइयों को दिया जाएगा। विकसित भारत जी राम जी।

0: भारत जी राम जी योजना के लिए रखी है, इसमें राज्यों का हिस्सा मिला लिया जाए तो ये 1,51,282 करोड़ रुपया होती है। इतनी विशाल राशि न केवल मजदूर भाइयों और बहनों को रोजगार देगी बल्कि विकसित गाँव को बनाने में सहायक सिद्ध होगी।
1: केंद्र सरकार ने विकसित भारत जी रामजी अधिनियम के अंतर्गत संशोधित पारिश्रमिक दरें अधिसूचित कर दी हैं। यह दरें आज से लागू हो गई हैं। एक रिपोर्ट।
2: राष्ट्रीय औसत पारिश्रमिक मनरेगा के 298.80 रूपए से बढ़ाकर विकसित भारत जी रामजी के अंतर्गत 327.40 रूपए प्रतिदिन कर दिया गया है। इस प्रकार पारिश्रमिक दर में 10% से अधिक की औसत वृद्धि हुई है। 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में जहां पहले मजदूरी 300 रूपए से कम थी, वहां अब नई दरें लागू हो गई हैं। उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश और हिमाचल प्रदेश मजदूरी दर में 15 से 25% की वृद्धि वाले राज्यों में शामिल हैं। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस संशोधन को गांवों की वृद्धि के माध्यम से विकसित भारत के लक्ष्य की दिशा में ऐतिहासिक कदम बताया। मंत्रालय ने कहा है कि यह कदम गरीब कल्याण, अंत्योदय और 2047 तक विकसित भारत की सरकार की प्रतिबद्धता में मील का पत्थर है। सकलेन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से नवीन सक्सेना।
1: लोक भवन रांची में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने झारखंड राज्य सूचना आयोग के 4 नए सूचना आयुक्तों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। मुख्य सचिव अविनाश कुमार ने राज्यपाल के नियुक्ति आदेश को पढ़कर सुनाया।
3: झारखंड राज्य सूचना आयोग के सूचना आयुक्तों की नियुक्ति आदेश ऑर्डर ऑफ अपॉइंटमेंट पढ़ने की अनुमति चाहता हूँ। मैं संतोष कुमार गंगवार, झारखंड का राज्यपाल, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 15(3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित व्यक्तियों को झारखंड राज्य सूचना आयोग के सूचना आयुक्त के पद पर अपने पद का प्रभार संभालने की तिथि से नियुक्त करता हूँ। 1 श्री अनुज कुमार सिन्हा, 2 श्री तनुज खत्री, 3 श्री अमूल्य नीरज खलको, 4 श्री शिव पूजन पाठक। मेरे हस्ताक्षर और मुद्रा से आज दिनांक 8 जून 2026 को लोक भवन रांची में दिया गया। संतोष कुमार गंगवार, झारखंड के राज्यपाल।
1: अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के झारखंड प्रभारी के राजू 2 से 6 जुलाई तक राज्य के संगठनात्मक दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वे रांची सहित कई जिलों में पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर संगठन की मजबूती, बूथ सशक्तिकरण और आगामी कार्यक्रमों की समीक्षा करेंगे। रांची में हुई फेडरेशन ऑफ झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज की बैठक में झारखंड की औद्योगिक संभावनाओं, उद्यमिता और निवेश को बढ़ावा देने के मुद्दों पर व्यापक चर्चा हुई। इस बैठक में शिक्षाविद लक्ष्मी नारायण गोयल ने रोजगार सृजन, व्यापारिक वर्ग की भूमिका तथा खनिज संपदा के बेहतर उपयोग के लिए आधुनिक तकनीक और वैश्विक सहयोग पर बल दिया। पासपोर्ट आवेदन शुल्क में आज से वृद्धि लागू हो गई है। 36 पृष्ठों वाले नए पासपोर्ट या फिर से पासपोर्ट बनवाने की लागत अब 2,500 रूपए होगी। 60 पृष्ठों वाले साधारण पासपोर्ट या दोबारा जारी पासपोर्ट की लागत अब 3,500 रूपए निर्धारित की गई है, जबकि तत्काल योजना के तहत ये 6,000 रूपए होगी। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIRNewsAlerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIRNews_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIRNews Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची

0: जी से सुन रहे हैं। झारखंड उच्च न्यायालय द्वारा आयु सीमा में छूट से संबंधित सभी याचिकाओं का निस्तारण किए जाने के बाद जेपीएससी संयुक्त सिविल सेवा प्रतियोगिता परीक्षा 2025 की प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम जारी करने का रास्ता साफ हो गया है। अदालत ने कहा कि अधिकतम आयु सीमा तय करना राज्य सरकार का नीतिगत अधिकार है और सरकार पहले ही अभ्यर्थियों को 4 वर्ष की आयु सीमा में छूट दे चुकी है। कोडरमा के डोमचांच निवासी युवा उद्यमी सचिन प्रजापति ने 15 तरह के शहद निर्माण में सफलता हासिल करते हुए कई युवाओं को स्वरोजगार और आत्मनिर्भरता की प्रेरणा दी है। प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना पीएमएफएमई के तहत 35% अनुदान पर उन्होंने प्रोसेसिंग प्लांट स्थापित किया। आज उनके उत्पादों की मांग देश के विभिन्न राज्यों से आती है।
1: का शुरुआत 2023 में किए थे, इंटरनेट के थ्रू इसके बारे में जानकारी मिला, फिर इसको हम एक्सप्लोर किए। एक्सप्लोर करने के बाद फिर जब देखिए फैमिली के साइड से भी अच्छा सपोर्ट हमको रहा, शुरू से ही बनते रहा, तो शुरू में डिफिकल्टीज का सामना करना पड़ रहा था, देन फिर धीरे धीरे करते करते प्रयास करते करते फिर अभी हम लोग ग्रुपिंग में बी कीपिंग कर रहे हैं। सर लास्ट ईयर हमको पीएमएफएमई की तरफ से प्लांट सेटअप करने के लिए सरकारी मदद मिला, उसमें 35% अनुदान है।
0: राजधानी रांची के सराफा बाजार में आज 22 कैरेट सोने की कीमत 1,33,200 रुपए प्रति 10 ग्राम है, जबकि चांदी की कीमत 2,45,000 रुपए प्रति किलो है। रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट से आज से एयर इंडिया एक्सप्रेस की 4 और इंडिगो की 1 नियमित उड़ान का परिचालन अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया है। इन उड़ानों के बंद होने से रांची से दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद और कोलकाता आने जाने वाले यात्रियों को अस्थायी रूप से असुविधा का सामना करना पड़ सकता है। आज राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस मनाया जा रहा है। यह दिवस जन स्वास्थ्य की रक्षा के प्रति डॉक्टरों के समर्पण और अमूल्य योगदान को रेखांकित करता है। यह दिवस हर वर्ष 1 जुलाई को डॉक्टर विधान चंद्र रॉय की जयंती और पुण्यतिथि की स्मृति में मनाया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने डॉक्टर दिवस पर देश के सभी चिकित्सकों को शुभकामनाएं दी हैं। झारखंड में मॉनसून पूरी तरह सक्रिय हो चुका है, जिससे अगले 4 दिनों तक राज्यभर में भारी बारिश और वज्रपात की संभावना है। मौसम विभाग ने इसके लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि मॉनसून ने राज्य को कवर कर लिया है।
2: झारखंड में जो कवरेज थोड़ा सा बचा हुआ रह गया था पलामू और गोड्डा जिलों के कुछ हिस्सों का, आज वो भी कंप्लीट हो गया है और पूरे झारखंड में मॉनसून कवर करता हुआ अब यूपी तक भी पहुंच गया है और आगे देखा जाएगा कि उसका स्थिति क्या बनता है, आगे और डेवलप करता है, किस दिशा में जाता है, क्योंकि उसका जो दिशा है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर वो हमारे इलाके से गुजरेगा तो और अच्छा बारिश होगा।
0: और अब अंत में मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, डिजिटल इंडिया अभियान ने सुशासन को नई दिशा और देश के समग्र विकास को दी गति, सशक्त हुए नागरिक। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने नए सूचना आयुक्तों को पद और गोपनीयता की दिलाई शपथ। लोक भवन में आयोजित हुआ समारोह। जेपीएससी सिविल सर्विस पीटी रिजल्ट जारी होने का रास्ता साफ। उम्र सीमा विवाद पर हाई कोर्ट ने खत्म की सुनवाई। पासपोर्ट आवेदन शुल्क में आज से वृद्धि लागू। 36 पृष्ठों वाले नए पासपोर्ट की लागत अब होगी 2,500 रुपए। और आज राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शुभकामनाएं दी, समर्पण और सेवा भाव की सराहना की। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन दोपहर 2:55 पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
3: आप सुन रहे थे प्रादेशिक समाचार।

प्रस्तुत है उप शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम अनुरंजनी। आज आप सुनेंगे इस कार्यक्रम में शोभा गुट्टू को। पहले आप प्रस्तुत करेंगे मिश्र खमाज में ठुमरी, उसके बाद दादरा और फिर मिश्र भैरवी में ठुमरी। तो आइए सुनते हैं शोभा गुट्टू का गायन।

अभी आप सुन रहे थे दादरा, आवाज थी शोभा गुरटू की, और इसके साथ ही उपशास्त्रीय संगीत का यह कार्यक्रम अनुरंजनी यहीं समाप्त हुआ।

हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं। दिन के 1:45 हुए हैं। प्रस्तुत है सुगम संगीत। आइए सुनते हैं मिताली सिंह की चंद गजलें।

मिताली सिंह की गाई इसी गजल के साथ सुगम संगीत यही समाप्त हुआ। आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। मिड डे न्यूज के लिए अगला प्रसारण हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। कृपया कुछ पलों की प्रतीक्षा करें।

0: इंटरफेस यूपीआई का इस्तेमाल लगातार बढ़ रहा है। जून महीने में यूपीआई के माध्यम से 22 अरब से अधिक लेन देन हुए। ये पिछले वर्ष जून के मुकाबले 23% अधिक है। इस लेन देन का कुल मूल्य 28 लाख करोड़ रुपए से अधिक रहा। ये पिछले साल के तुलना में 20% की बढ़ोतरी है। विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन जी राम जी अधिनियम आज से लागू हो गया है। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कहा है कि वीबीजी रामजी अधिनियम के अंतर्गत प्रत्येक वित्त वर्ष में 125 दिन के रोजगार की गारंटी होगी। इससे ग्रामीण भारत सशक्त बनेगा। एक रिपोर्ट।
1: वर्तमान वित्तीय वर्ष में इस योजना के कार्यान्वयन के लिए 95,692 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। विकसित भारत जी रामजी अधिनियम के अंतर्गत संशोधित पारिश्रमिक दरें आज से लागू हो गई हैं। राष्ट्रीय औसत पारिश्रमिक मनरेगा के 298.80 रूपए से बढ़ाकर विकसित भारत जी रामजी के अंतर्गत 327.40 रूपए प्रतिदिन कर दिया गया है। इस प्रकार पारिश्रमिक दर में 10% से अधिक की औसत वृद्धि हुई है। 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में जहां पहले मजदूरी 300 रूपए से कम थी, वहां अब नई दरें लागू हो गई हैं। सकलेन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विकसित भारत जी रामजी अधिनियम लागू होने को एक ऐतिहासिक उपलब्धि बताया है। श्री चौहान ने कहा कि ये अधिनियम लाखों ग्रामीण श्रमिकों के लिए गरिमा, आत्मसम्मान और आजीविका सुनिश्चित करने का नया अध्याय है। उन्होंने कहा कि ये अधिनियम हर ग्रामीण परिवार को 125 दिन के रोजगार का वैधानिक अधिकार देता है।
2: आज का दिन ऐतिहासिक दिन है। विकसित भारत जी राम जी योजना आज से लागू हो गई। हमारी कोशिश रही है कि ट्रांजिशन स्मूथ हो जाए। सभी राज्यों ने बजट में प्रावधान किया है। अकेले केंद्र सरकार ने 95,600 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि इस साल विकसित भारत जी राम जी योजना के लिए रखी है। इसमें राज्यों का हिस्सा मिला लिया जाए तो ये 1,51,282 करोड़ रुपया होती है। इतनी विशाल राशि न केवल मजदूर भाइयों और बहनों को रोजगार देगी बल्कि विकसित गांव को बनाने में सहायक सिद्ध होगी।
0: केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान और किरेन रिजिजू ने अरुणाचल प्रदेश दौरे के दूसरे दिन राज्य के मुख्यमंत्री पेमा खांडू के साथ राज्य के प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण किया। इस दल ने पहले पूर्वी सियांग जिले के पासीघाट का सर्वेक्षण किया, जो सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्रों में से एक है, और फिर बोइंग गांव जाकर जमीनी स्तर पर हुए नुकसान का जायजा लिया। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि केंद्र सरकार की ओर से व्यापक वित्तीय और संरचनात्मक सहायता प्रदान की जाएगी।
2: संकट के समय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में केंद्र सरकार पूरी तरह अरुणाचल प्रदेश के साथ खड़ी है। क्षति का आकलन करके कैसे अधिकतम मदद की जाए, अपने भाई बहनों का अरुणाचल प्रदेश का प्रयास किया जाएगा। गृह मंत्री जी की अध्यक्षता में कमेटी होती है, वो पूरी स्थिति का आकलन करके अतिरिक्त सहायता अरुणाचल प्रदेश की करेंगे।
0: राज्य में बाढ़ से अब तक 4 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 21 अन्य घायल हुए हैं। लगभग सभी 28 जिलों में 90,499 लोग प्रभावित हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। थलसेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ ने कहा है कि बदलते सुरक्षा माहौल से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए सेना का तेजी से आधुनिकीकरण किया जाएगा। 31वें थलसेना प्रमुख का पदभार ग्रहण करने के बाद जनरल सेठ ने मीडिया को बताया कि भारतीय सेना का लक्ष्य ऐसी आधुनिक और तकनीक से सशक्त सेना तैयार करना है जो भविष्य की चुनौतियों का सामना करने में पूरी तरह सक्षम हो।
3: इस बदलते सिक्योरिटी एनवायरनमेंट की चुनौतियों का सामना करने के लिए हमें सेना के मॉडर्नाइजेशन को नए उत्साह और दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ाना होगा। हमारा उद्देश्य एक ऐसी टेक्नोलॉजी इनेबल्ड फ्यूचर रेडी आर्मी का निर्माण करना है जो हर तरीके से मल्टी डोमेन में ऑपरेट करने के लिए सक्षम हो।
0: जनरल सेठ ने कहा कि भारतीय सेना सीमाओं और उभरते खतरों पर लगातार कड़ी नजर रख रही है और किसी भी सुरक्षा चुनौती से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है।
3: हम अपनी सीमाओं और उभरते खतरों के प्रति निरंतर सतर्कता बरकरार रखेंगे और राष्ट्रीय सुरक्षा के समक्ष किसी भी चुनौती का प्रभावी ढंग से सामना करने के लिए उच्च स्तर की ऑपरेशनल रेडीनेस बनाए रखेंगे। नवाचार हमारी सोच, कार्य प्रणाली और क्षमता विकास का

0: अभिन्न अंग होगा।
1: एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित ने आज भारतीय वायुसेना के उप प्रमुख का पदभार ग्रहण कर लिया। वे एयर मार्शल नागेश कपूर के स्थान पर नियुक्त हुए हैं, जो चार दशक से अधिक की सेवा के बाद कल सेवानिवृत्त हो गए। एयर मार्शल तेजिंदर सिंह ने आज चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी के अध्यक्ष के एकीकृत रक्षा स्टाफ प्रमुख के रूप में पदभार ग्रहण किया। पदभार ग्रहण करते हुए श्री सिंह ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय समर स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित की। उन्हें तीनों सेनाओं द्वारा गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए युवाओं से समर्पण, ईमानदारी और मजबूत नैतिक मूल्यों के साथ उत्कृष्टता प्राप्त करने का आह्वान किया है। वे आज आंध्र प्रदेश के अनंतपुर में केंद्रीय विश्वविद्यालय के प्रथम दीक्षांत समारोह को संबोधित कर रही थीं। विश्वविद्यालय के दृष्टिकोण की सराहना करते हुए राष्ट्रपति ने विश्वास व्यक्त किया कि ये संस्थान भविष्य में उत्कृष्टता का एक प्रमुख केंद्र बनेगा।
2: I am pleased to know that this university has developed a long-term vision to become a future-ready institution. Its commitment to the sustainable development goals, especially to those on quality education, reflects a sense of responsibility towards inclusive and equitable development.
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑपरेशन अमिस्ताद के अंतर्गत वेनेजुएला में राहत कार्यों में जुटे भारतीय डॉक्टरों और चिकित्सा कर्मियों की सराहना की है। सोशल मीडिया संदेश में प्रधानमंत्री ने कहा कि कठिन समय में जरूरतमंद लोगों की सेवा के लिए उनका समर्पण प्रेरणादायक है। उन्होंने कहा कि हर संकट की घड़ी में चिकित्सा कर्मी अपनी जिम्मेदारी पूरी निष्ठा से निभाते हैं। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि परिश ने कहा है कि भारत संप्रभु फलस्तीन की स्थापना के लिए बातचीत से द्विराष्ट्र समाधान का समर्थन करता है। इसके अंतर्गत एक ऐसे संप्रभु फलस्तीन की स्थापना हो सकेगी जो सुरक्षित और मान्यता प्राप्त सीमाओं के भीतर इसराइल के साथ शांति और स्थिरता से रह सकेगा। उन्होंने इस बात का उल्लेख किया कि भारत ने फलस्तीनी लोगों को 17.5 करोड़ अमरीकी डॉलर से अधिक की सहायता प्रदान की है।
3: India's engagement.
4: भारत फलस्तीन के लोगों की मानवीय आवश्यकताओं और आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए लगातार सहयोग कर रहा है। अब तक भारत फलस्तीन को 17.5 करोड़ अमरीकी डॉलर की सहायता दे चुका है। इसके अलावा भारत समय समय पर मानवीय सहायता, आपदा राहत सामग्री, आपातकालीन दवाइयां और सामान्य उपयोग की आवश्यक औषधियां भी उपलब्ध कराता रहा है।
3: इंक्लूडिंग इमरजेंसी एंड जनरल यूज मेडिसिन।
1: इससे पहले कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति डॉ मसूद पेजेश्कियान से टेलीफोन पर बातचीत की। श्री मोदी ने पश्चिम एशिया क्षेत्र में स्थायी शांति और स्थिरता सुनिश्चित करने तथा नौवहन और व्यापार की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए निरंतर प्रयासों की आवश्यकता पर जोर दिया। पिछले 9 वर्ष में वस्तु और सेवा कर जीएसटी ने भारत के एक भारत श्रेष्ठ भारत के दृष्टिकोण को और मजबूत किया है। जीएसटी से तर्कसंगत कर दरों और मानकीकृत प्रक्रियाओं के माध्यम से पारदर्शिता, जवाबदेही और आर्थिक विकास को बढ़ावा मिला है। ये 2017 में 1 जुलाई से लागू हुई थी। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के 10 वर्ष पूरे हो गए हैं। ये योजना सिंचाई में सुधार, सतत जल प्रबंधन और अधिक कृषि भूमि को सिंचाई के दायरे में लाकर खेती में बड़ा बदलाव लाने में मददगार हुई है। 1 जुलाई 2015 को शुरू की गई इस योजना ने सिंचाई सुनिश्चित की है, खेती में जल के समुचित उपयोग में सुधार किया है और देश में सतत जल संरक्षण को बढ़ावा दिया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @YARNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। अफगानिस्तान की सेना ने पाकिस्तान में आईएसआईएस से जुड़े ठिकानों पर हवाई हमले किए हैं। अफगान मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि ये हमले कल रात पाकिस्तान के बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा प्रांतों में आईएसआईएस के ठिकानों पर किए गए। इन हमलों में आईएसआईएस और उसके समर्थकों को भारी नुकसान पहुंचा और आर्थिक रूप से भी भारी क्षति हुई। मंत्रालय ने कहा है कि इनमें कोई नागरिक हताहत नहीं हुआ है। हाल ही में पाकिस्तान के हवाई हमलों में अफगानिस्तान के 36 नागरिक मारे गए थे और 163 अन्य घायल हुए थे। संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुतरश ने तुरंत शत्रुता समाप्त करने का आह्वान किया है और सभी पक्षों से नागरिकों की सुरक्षा करने का आग्रह किया।

किया है। फीफा विश्व कप के राउंड 32 के मैच में मैक्सिको ने इक्वाडोर को 2-0 से हरा दिया है और अंतिम 16 में पहुंच गया है। इससे पहले फ्रांस ने स्वीडन को 3-0 से और नॉर्वे ने आइवरी कोस्ट को 2-1 से हराकर राउंड 16 में जगह पक्की की। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 2 दिन में दक्षिण पश्चिम मानसून के दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब की ओर बढ़ने की संभावना है। उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, ओडिशा और विदर्भ में अगले 2 दिन मूसलाधार बारिश की चेतावनी जारी की गई है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, डिजिटल इंडिया अभियान ने पिछले 11 वर्ष के दौरान गरीबों और वंचितों को सशक्त बनाया, इससे लाखों लोगों का जीवन आसान हुआ। विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन जी रामजी अधिनियम के अंतर्गत श्रम दरों में बढ़ोतरी आज से लागू। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान और किरेन रिजिजू ने अरुणाचल प्रदेश के बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया। नवनियुक्त सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ ने बदलते सुरक्षा माहौल की चुनौतियों से निपटने के लिए सेना के आधुनिकीकरण पर बल दिया। अफगानिस्तान ने पाकिस्तान में आईएसआईएस के ठिकानों पर हमला किया। मॉनसून के 2 दिन में दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब तक पहुंचने की संभावना। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

बिना कुछ जताए ही हो जाते हैं जो देश पर कुर्बान, वो हैं हमारे जवान। जय भारती सुनने वाले सभी श्रोता साथियों को उम्मीद आबोले तो आपकी मीत का प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, हम सभी अपने देश से बहुत प्यार करते हैं। हर किसी के अंदर ये जज्बात होता है कि हम अपने देश के लिए कुछ करें, लेकिन हर कोई सक्षम नहीं होता। खुश नसीब होते हैं वो लोग जिन्हें देश के लिए कुछ करने का मौका मिलता है, जिन्हें अपनी देशभक्ति दिखाने का, जताने का, बताने का कोई मौका मिलता है, और ये मौका मिलता है हमारे जवानों को। हम नमस्कार करते हैं उनके जज्बात को, उनके एहसास को, उनकी वीरता को, उनकी भावनाओं को। हम आभार प्रकट करते हैं उनका कि उनके होने से हम सुरक्षित हैं, हमारा देश सुरक्षित है। इसलिए हम कोशिश करते हैं कि अपने देश के जवानों के मनोरंजन के लिए हमारा भी थोड़ा कुछ योगदान हो, और इसी हेतु ये कार्यक्रम है। तो चलिए कुछ फिल्मी गाने सुनवाते हैं हम अपने भाइयों को, और उम्मीद करते हैं कि ये वक्त जो इस समय गुजर रहा है उनके लिए बहुत सुंदर हो।

यह देश है वीर जवानों का, और ये देश है हमारे किसानों का भी, जिनकी मेहनत से मिट्टी महक उठती है और हमारा पालन पोषण अच्छे से होता है। हर देशवासी ये चाहता है कि उसका देश हर तरह से खुशहाली के राह पर आगे बढ़े, तरक्की की राह पर आगे बढ़े।

देश के कानूनों का पालन करके राष्ट्र निर्माण में सहयोग करता है। हर तरह से देश की तरक्की के लिए जो सोचे, देश पर कुर्बान हो जाने की जिसकी लालसा का कभी अंत ना हो, वही सच्चा देशभक्त कहला सकता है। दिल से निकलेगी ना मर कर के भी वतन की उल्फत, दिल से निकलेगी ना मर कर भी वतन की उल्फत, मेरी मिट्टी से भी खुशबुए वफा आएगी।

दिल दिया है जान भी देंगे ए वतन तेरे लिए। बस हमारे यही जज्बात हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। देश के लिए कुछ करने की भावनाओं का जन्म होता है ऐसे ही एहसासों से। अपने लिए तो हर कोई जीता है, हर जीव जंतु अपने लिए जीता है, लेकिन एक मनुष्य है जो अपने देश के लिए, अपनों के लिए जीता है। मानव हृदय ही दूसरे का दर्द समझ सकता है, और जिस हृदय में भावनाएं हो तो उस हृदय के लिए हर कोई सामने से नमस्कार करता है, उसका आदर करता है, उसका सत्कार करता है। असल में अगर किसी भी देश की उन्नति और तरक्की अगर किसी में छुपी हुई है तो वो उसके देशवासियों में है। हमारी भावनाएं ही हमें अपने देश के लिए कुछ करने का जज्बा देती है, और जब हम अपने देश के लिए कुछ करना चाहते हैं तो फिर उस देश की तरक्की को कौन रोक सकता है।

ताकत वतन की हमसे है। इसी गाने के साथ कार्यक्रम जय भारती समाप्त करने की आपकी दोस्त मीता बोले तो आपकी मीत आपसे अनुमति चाहती है। नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम जय भारती, ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। मीडियम वेव 546.45 मीटर यानी 549 किलोहर्ट्ज़ तथा FM 100.5 MHz पर। इस समय दिन के 2:55 हुए हैं। प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार।
1: आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं तृप्ति कुमारी। देश में आज डिजिटल इंडिया अभियान के 11 वर्ष सफलतापूर्वक पूरे हो गए हैं। इस अभियान ने सुशासन को नई दिशा देने के साथ साथ देश के समग्र और समावेशी विकास को नई गति प्रदान की है। एक रिपोर्ट।
2: भारत बड़े पैमाने पर इस्तेमाल हो सकने वाले और नागरिकों पर केंद्रित डिजिटल गवर्नेंस प्लेटफॉर्म की मदद से डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर DPI के क्षेत्र में एक ग्लोबल लीडर के तौर पर उभर रहा है। भारत ने इंडिया स्टैक और डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े सहयोग के लिए 24 देशों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इन समझौतों में डिजिटल पहचान, डिजिटल भुगतान, डेटा साझा करने और सरकारी सेवाओं की डिजिटल व्यवस्था जैसे क्षेत्र शामिल हैं। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस UPI अब संयुक्त अरब अमीरात, सिंगापुर, फ्रांस, मॉरिशस और श्रीलंका समेत 8 से अधिक में उपलब्ध है। आधार, डिजीलॉकर, कोविन, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, दीक्षा, उमंग और ई संजीवनी जैसे भारतीय डिजिटल प्लेटफॉर्म दुनिया के कई देशों के लिए डिजिटल शासन के मॉडल बन रहे हैं। डिजिटल इंडिया अभियान अब अपने अगले दशक में प्रवेश कर रहा है। इसके साथ भारत तकनीक को समावेशी विकास, डिजिटल सशक्तिकरण और वैश्विक सहयोग का मजबूत माध्यम बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने देश में पोषण निगरानी प्रणाली को मजबूत करने पर जोर दिया है। सोशल मीडिया पर एक संदेश में उन्होंने कहा कि पोषण ट्रैकर के जरिए भारत में पारदर्शिता और कार्यक्षमता सुनिश्चित की जा रही है। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि ये डिजिटल सिस्टम रियल टाइम डैशबोर्ड, जियो टैग्ड आंगनवाड़ी केंद्रों और टेक होम राशन वितरण के लिए फेस रिकॉग्निशन जैसी आधुनिक तकनीकों के माध्यम से काम कर रहा है। उन्होंने स्मार्ट न्यूट्रिशन स्मार्टर नेशन का नारा देते हुए इसे कुपोषण मुक्त भारत की दिशा में एक बड़ा कदम बताया। रांची के लोकभवन में आज एक गरिमामय समारोह के दौरान राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने राज्य के 4 नवनियुक्त सूचना आयुक्तों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। शपथ लेने वालों में अनुज कुमार सिन्हा, तनुज खत्री, शिवपूजन पाठक और अमूल्य नीरज खलको शामिल रहे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन विशेष रूप से उपस्थित रहे। उन्होंने सभी नवनियुक्त आयुक्तों को बधाई देते हुए पारदर्शिता और जनहित में काम करने की उम्मीद जताई। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। राज्य में कानून व्यवस्था के मुद्दे पर सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने आ गए हैं। राज्य में हाल ही में हुई कुछ आपराधिक घटनाओं को लेकर मुख्य विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी ने सरकार की प्रशासनिक विफलता पर तीखा हमला बोला है। भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव का आरोप है कि राज्य में अपराधियों के हौसले बुलंद हैं और आम जनता असुरक्षित महसूस कर रही है।
3: 1000 से ज्यादा हत्याएं हो चुकी है और सरकार का सजा दिलाने का रिकॉर्ड बहुत खराब है। अब राज्य सरकार ने जनता के बढ़ते दबाव के कारण सरायकेला के SP और जमशेदपुर के SSP का तबादला किया है और जब तक ट्रांसफर पोस्टिंग एक उद्योग बनकर रहेगा, जब तक योग अफसरों की फील्ड में पोस्टिंग नहीं होगी, ऐसी घटनाएं पर रोकथाम बिल्कुल नहीं होगी।
1: दूसरी ओर सत्ताधारी दल झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस ने पलटवार करते हुए कहा है कि पुलिस मुस्तैदी से काम कर रही है और अपराधियों के खिलाफ त्वरित कार्रवाई की जा रही है।

0: राम मंदिर में चंदा लूट लिया इन लोगों ने, एसआईटी का गठन करके लीपापोती हो रहा है। गिरफ्तार कौन हो रहे हैं? तो ड्राइवर, तो चौकीदार और जो बड़े बड़े भाजपा नेता उसमें शामिल है, वो गिरफ्तार क्यों नहीं हो गए? झारखंड में दुर्घटना हुआ, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण, लेकिन आज दिवंगत परिवार को संतुष्टि मिला होगा कि कार्रवाई सिर्फ सिपाही और दरोगा पर नहीं, आईपीएस अफसर, सीनियर एसपी जो वहां, उन पर कार्रवाई होगी।
1: रामगढ़ थाना क्षेत्र की चुट्टू बालू घाटी में एक बड़ा सड़क हादसा हुआ है, जहां एक दर्जन से अधिक गाड़ियां आपस में टकरा गई। राहत की बात है कि हादसे में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। जानकारी के अनुसार लोहे के चक्के लदे एक अनियंत्रित ट्रेलर का ब्रेक फेल हो गया, जिससे आगे चल रही कई कारों और मोटरसाइकिलों को रौंद दिया। इस दुर्घटना में 12 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं, जिन्हें इलाज के लिए रामगढ़ सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस बल मौके पर मौजूद है और राहत कार्य तेजी से जारी है। राजधानी रांची के सभी यातायात थाना क्षेत्रों में नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के खिलाफ एक महीने का विशेष चेकिंग अभियान चलाया गया। यातायात पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में 1 जून से 30 जून तक चलाए गए इस सघन चेकिंग अभियान के दौरान कुल 1,24,144 चालान काटे गए। इसके अलावा गंभीर उल्लंघनों को लेकर कुल 831 मामलों को अभियोजन के लिए माननीय न्यायालय भेज दिया गया है। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार शाम 4 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
2: आप सुन रहे थे प्रादेशिक समाचार, ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। दिन के 3 बजे हैं, प्रस्तुत है प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।

0: उमंग सीआईईटी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: नमस्कार श्रोताओं, मैं हूँ विमलेश। नए महीने जुलाई की बहुत बहुत शुभकामनाएं।
0: और मैं हूँ अजीत। स्वागत है आप सबका कार्यक्रम उमंग में। आइए शुरुआत करते हैं एक सुविचार के साथ, जिसे हमें भेजा है आदित्य जंघेल और अंजलि जंघेल जी ने। लिखते हैं,
2: सफलता की चाबी कड़ी मेहनत और दृढ़ संकल्प में है।
0: धन्यवाद आपके इतने सुंदर संदेश के लिए। और आइए अब सुनते हैं श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है गांव गणेश धाम परसुली पोस्ट खेरथा बाजार जिला बालोद छत्तीसगढ़ से। जितेंद्र दास मानिकपुरी, मिलव दास, जय दास, देवेश दास और धनवंतीन बाई जी का। लिखते हैं, जय जोहार बंदगी विमलेश मैडम जी, अजीत साहेब जी, जय हिंद जी। आगे लिखते हैं,
2: उमंग टीम को बधाई जी। उमंग कार्यक्रम में 3 जून 2026 को पर्यावरण नेत्री गौरा देवी के पर्यावरण के प्रति लगाव वाली कहानी ने दिल छू लिया। हमें बहुत प्रेरणा और सीख मिली। आपने बहुत प्रेरणादायक और रियल स्टोरी सुनाई। धन्यवाद साहेब।
0: आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद इतने अच्छे संदेश के लिए। अगला संदेश हमें मिला है डोंडी लोहारा बालोद छत्तीसगढ़ से। अजय देवता मुरिया, तुषार देवता मुरिया, डॉली, बेबी, पूजा, पुष्कर, लेहान, जिज्ञासा, विराट, तेजस्वी और गौरव तामुरिया जी का।
2: इंदिरा चौक दिल्ली से अजीम वकार, माहिरा अजीम और नीलिमा अजीम।
0: और पुणे से सुयोग बटवे।
2: धन्यवाद आप सबका संदेशों के लिए।
0: स्वागत है एक बार फिर से आप सबका हमारी आपकी सबकी जानी पहचानी श्रृंखला ये भी जानिए कि अगली कड़ी में।
2: जैसा कि आप जानते हैं, इस सप्ताह हम चर्चा कर रहे हैं विभिन्न खनिज पदार्थों की। और इस क्रम में हमने कल चर्चा की थी कोयले की, जिसे जीवाश्म ईंधन भी कहते हैं। तो अजीत जी, आज की चर्चा का विषय तो बताइए, किस खनिज की हम चर्चा करने जा रहे हैं? श्रोताओं की उत्सुकता भी बढ़ती जा रही है।
0: उत्सुकता तो बढ़ेगी ही, क्योंकि हमारा कार्यक्रम होता ही है मजेदार और जानकारियों से भरपूर। पता है, कुछ श्रोता तो रेडियो सुनते समय कागज कलम लेकर बैठते हैं और कुछ तो पूरा कार्यक्रम भी रिकॉर्ड कर लेते हैं ताकि कोई जानकारी न छूट जाए।
2: हम सभी सुधीर श्रोताओं को धन्यवाद देते हैं। तो क्या रहेगा आज हमारी चर्चा का विषय?
0: चलिए मैं कुछ हिंट देता हूँ। श्रोताओं जरा अंदाजा लगाइए, हिंट है ये बहुत ही लोकप्रिय धातु है
2: जी,
0: मूल्यवान भी है। रंग इसका सुनहरा पीला है, सभी इसे बहुत चाहते हैं।
2: अजीत जी, वैसे तो और भी कई धातुएं मूल्यवान हैं, लेकिन यदि हिंट है कि ये पीले रंग का है और बहुत लोकप्रिय है तो बात स्पष्ट हो गई है। कहीं आप गोल्ड या सोने की बात तो नहीं कर रहे हैं?
0: बिल्कुल सही है उत्तर आपका। जी हाँ, मैं सोने या गोल्ड की बात कर रहा हूँ। वैसे इसमें कुछ धातुएं मिला दी जाएं तो इसका रंग बदल भी सकता है। सोना पृथ्वी के बहुमूल्य खनिजों में से एक गिना जाता है
2: जी।
0: तो विमलेश जी, आप जानते हैं कि सोना बनता कैसे है?
2: अजीत जी, बेशक ये पृथ्वी के मूल्यवान खनिजों में से एक है, लेकिन एक बेहद रोचक और आश्चर्यजनक बात बता दूं कि कोयला तो पृथ्वी पर बना, लेकिन सोना पृथ्वी पर बना ही नहीं।
0: कोयला तो पृथ्वी पर बना, लेकिन सोना पृथ्वी पर बना ही नहीं, ये क्या बात हुई?
2: यही तो खास बात है अजीत जी। सोने की उत्पत्ति की कहानी धरती से नहीं, बल्कि अंतरिक्ष में तारों की भीषण टक्कर और विस्फोट से हुई है। सोने की उत्पत्ति अरबों साल पहले सुपरनोवा यानी विशाल तारे के फटने और न्यूट्रॉन तारों की टक्कर से हुई थी। वैज्ञानिकों के अनुसार अंतरिक्ष से विशाल तारों और उल्कापिंडों की टक्कर के कारण उत्पन्न धूल से सोना पृथ्वी पर पहुंचा है।
0: तो ये बात है, शायद इसीलिए सोने और चांदी को स्टार डस्ट भी कहते हैं
2: जी।
0: जब ब्रह्मांड में कोई विशाल तारा या सुपरनोवा अपना जीवन चक्र पूरा करता है ना, तो भयंकर विस्फोट के साथ फट जाता है। और इस प्रक्रिया में अत्यधिक उच्च तापमान और दबाव पैदा होता है।
2: जब कोई तारा फटता है और दबाव और गर्मी इतनी अधिक हो जाती है कि हल्के तत्वों के परमाणु आपस में जुड़कर भारी परमाणु बनाने लगते हैं, इसमें एक नया तत्व बनता है जिसे हम सोना कहते हैं।
0: लेकिन विमलेश जी, एक प्रश्न मेरे मन में आता है। अब वो ये है कि यदि सोना अंतरिक्ष में पैदा हुआ या उत्पन्न हुआ तो वो पृथ्वी तक पहुंचा कैसे?
2: ये जानना भी बहुत रोचक है। सोना पृथ्वी पर अंतरिक्ष से मुख्य रूप से तारों के टूटने और उल्कापिंडों की भारी बौछार मीटेराइट बॉम्बार्डमेंट के जरिए पहुंचा है।
0: इसी बात को चलिए थोड़ा विस्तार और देते हैं। लगभग 4 अरब साल पहले अंतरिक्ष से सोने और अन्य कीमती धातुओं से भरे लाखों विशाल उल्कापिंड पृथ्वी से टकराए। इस भीषण बौछार के कारण उल्कापिंडों में मौजूद सोना पृथ्वी की ऊपरी परत में बिखर गया। आज हम जो भी सोना खदानों से निकालते हैं वह इसी अंतरिक्षीय बारिश की देन है।
2: जी, सोना पृथ्वी की ऊपरी परत पर बिखर गया, लेकिन धीरे धीरे उस पर भी मिट्टी और चट्टानों की परतें जमने लगीं और सोना पृथ्वी की गहराइयों में चला गया। उसी सोने को अब हम खदानों से खोदकर निकालते हैं। अब सोने को ठोस रूप देने के लिए उसमें कई धातुएं भी मिलाई जाती हैं।
0: जी, सच्चाई ये है कि पृथ्वी पर पाया जाने वाला सोना मानव सभ्यता के प्रारंभ होने से भी अरबों वर्ष पहले बन चुका था।
2: अजीत जी, सचमुच बड़ी अद्भुत कहानी है ना सोने की। एक और रोचक बात साझा करना चाहती हूँ। पता है श्रोताओं, सोने को किसी भी रासायनिक विधि द्वारा पृथ्वी पर नहीं बनाया जा सकता। रसायन शास्त्रियों ने, जिन्हें एल्केमिस्ट कहा जाता है, शताब्दियों तक लोहे, तांबे और पारे जैसी सस्ती धातुओं को सोने में बदलने की कोशिश की थी, लेकिन वे हमेशा असफल रहे, क्योंकि रासायनिक रूप से किसी धातु को सोने में बदलना असंभव है। मान्यता ये है कि प्राचीन काल में भारत में एक पत्थर पाया जाता था जिसे पारस पत्थर कहते थे। इसके स्पर्श मात्र से लोहा सोने में बदल जाता था।
0: जी, लेकिन अब आधुनिक विज्ञान ने इतनी उन्नति कर ली है कि आज के समय में परमाणु रिएक्टर के जरिए वैज्ञानिक कुछ धातुओं से सोना बना सकते हैं। लेकिन इस वैज्ञानिक प्रक्रिया में इतनी अधिक ऊर्जा और पैसा खर्च होता है कि 100 रुपए का सोना बनाने में लाखों रुपए लग सकते हैं।
2: एक बात और, शुद्ध सोना बहुत नरम होता है, इसीलिए उसे आकार देने के लिए उसमें तांबा, चांदी, जस्ता और निकेल जैसी धातुएं भी मिलाई जाती हैं। लेकिन एक बात तो है,
0: और वो ये है श्रोताओं कि जब आप सोना या स्वर्ण आभूषण देखते हैं तो याद रखिए, ये मूल रूप से पृथ्वी की वस्तु नहीं लेकिन अरबों वर्ष पहले हुई ब्रह्मांडीय घटनाओं का परिणाम है। इसीलिए ये बहुत कीमती मानी जाती है। दूसरे शब्दों में,
2: आपके हाथ के सोने की अंगूठी कभी किसी तारे के फटने या किसी महाविस्फोट का हिस्सा रही होगी।
0: जी, तो श्रोताओं ये थी जानकारी अंतरिक्ष की मूल्यवान वस्तु सोने की। अब आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से। प्रश्न है, सोने को स्टार डस्ट क्यों कहते हैं? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
2: सोने को स्टार डस्ट क्यों कहते हैं?
0: आप अपना उत्तर हमें हमारे IVRS नंबर 8800440559 पर भेज सकते हैं और हमारे ईमेल पर भी। हमारे ईमेल का पता है audio@ciet.nic.in। और हाँ,
2: इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप हमें फॉलो करना ना भूलिए। और अब बारी है हमारे शैक्षिक कार्यक्रमों की,
0: तो सुनते हैं आज का पहला कार्यक्रम, अरावली की कहानी।
2: ये कार्यक्रम कक्षा 7 की सामाजिक अध्ययन की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित है, जिसमें अरावली पर्वत श्रृंखला की रोचक जानकारी दी गई है और बताया गया है कि पर्यावरण संरक्षण में इस पर्वतमाला की क्या भूमिका है।
0: अरावली की कहानी।
3: नमस्कार।

0: दोस्तों, रेडियो श्रृंखला पर्वत भी बोलते हैं मैं आप सबका हार्दिक स्वागत अभिनंदन। मैं हूं सचिन और मेरे साथ हैं कुछ नन्हे मुन्ने साथी यानी रिद्धि, रिदित, सोहम, नव्या और मनन, जो आज बहुत ही खुश हैं क्योंकि उन्हें जानी मानी भूगर्भ शास्त्री डॉक्टर सुचिता ने आज अपने रेडियो शो में बुलाया है। तो आइए चलते हैं सीधे रेडियो प्रसारण केंद्र में, जहां शुरू होने वाला है हमारा रेडियो शो पर्वत भी बोलते हैं। तो बच्चों, डॉक्टर सुचिता के साथ साथ आप सबका भी हमारे शो में बहुत बहुत स्वागत है।
1: धन्यवाद सर।
0: तो करते हैं शुरुआत। डॉक्टर सुचिता, हम आज बात करने जा रहे हैं पर्वतों की, तो सबसे पहला सवाल तो यही उठता है कि पर्वत आखिर हैं क्या, यानी हम उन्हें परिभाषित कैसे करें?
2: वाह, बहुत अच्छा सवाल। देखिए, पर्वत वे स्थल रूप हैं जो आसपास की भूमि से कुछ अधिक ऊंचे होते हैं। उन्हें खड़ी ढलान यानी चढ़ाई और संकरे शिखरों यानी चोटियों से पहचाना जा सकता है। कुछ पर्वत अपनी अधिक ऊंचाई के कारण हिम से ढके होते हैं। समझ में आया बच्चों?
3: यस मैम।
2: आह, क्या बात है
4: मैम।
2: हाँ बेटी।
4: आपने कहा कि पर्वत वे हैं जो आसपास की भूमि से कुछ अधिक ऊंचे होते हैं।
2: बिल्कुल कहा।
4: हमारे गांव में भी कुछ ऐसे पथरीले स्थान हैं जो भूमि से थोड़े ऊंचे होते हैं। क्या उन्हें भी पर्वत कहेंगे?
2: नहीं रिद्धि, उन्हें पर्वत नहीं कहेंगे। तुम्हारे प्रश्न का उत्तर ये है कि कम ऊंचाई वाले ऊंचे ऐसे स्थान जहाँ कम खड़ी ढलाने और गोल आकार की चोटियाँ होती है, उन्हें पता है क्या बोलते हैं? पहाड़ी कहते हैं।
4: जी, पहाड़ी।
0: अरे वाह। अच्छा, लेकिन सुचिता जी, हमारे श्रोता बड़ी उत्सुकता के साथ प्रतीक्षा कर रहे हैं ये जानने की कि आज हम भला किस पर्वत श्रृंखला के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं।
2: जी सचिन जी, आज हम चर्चा करेंगे अरावली पर्वत श्रृंखला के बारे में। बच्चों, जानना है ना इसके बारे में?
3: यस मैम।
2: देखो, ऐसा माना जाता है कि अरावली पर्वत श्रृंखला भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है।
3: अच्छा।
2: पता है बच्चों, ये उत्तर पश्चिम भारत में स्थित है और देश की जो भौगोलिक संरचना है ना, इसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है ये।
3: अच्छा।
2: तो बच्चों, यदि अरावली पर्वत श्रृंखला की बनावट को ध्यान से देखें तो इसमें मध्यम दर्जे की बहुत सी ऊंची ऊंची चोटियां हैं जो ऊपर से देखने पर वो आरी की तरह दिखती हैं।
3: अच्छा, मैंने भी देखा है।
0: आरा और वली यानी अरावली। अरे वाह सुचिता जी, ये तो बड़ी रोचक बात बताई है आपने।
5: मैम, अरावली के बारे में कुछ और बताइए ना।
2: बिल्कुल, जरूर बताएंगे। आप जानते हैं इसके विस्तार के बारे में। इसकी कुल लंबाई है लगभग 800 किलोमीटर और चौड़ाई है 10 से 100 किलोमीटर।
6: लंबाई 800 किलोमीटर, ये कहाँ से कहाँ तक फैली हुई है?
2: सोहम, ये गुजरात से शुरू होकर दिल्ली तक पहुँचती है और बीच में आने वाले राज्य हैं राजस्थान और हरियाणा। बताओ कौन कौन से?
3: गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और फिर दिल्ली।
0: बहुत अच्छे। तो एक बार जोरदार तालियां सबके लिए। ये हुई ना बात।
2: अब तुम्हें इसे हमेशा याद रखना है, ठीक है?
4: जी मैम, हमेशा याद रखेंगे।
0: तो सुचिता जी, अब हमें ये भी तो बताइए कि गुजरात राज्य में अरावली पर्वत श्रृंखला आखिर शुरू कहाँ से होती है, क्योंकि हम देखें तो गुजरात राज्य तो खासा बड़ा है।
2: जी सचिन, बिल्कुल सही कहा आपने। अरावली पर्वत श्रृंखला गुजरात राज्य के बनासकांठा जिले में अंबाजी नामक स्थान से शुरू होती है। एक बात और, माना जाता है कि ये पहले संभवतः हिमालय से भी ऊंची रही होगी, लेकिन अत्यधिक अपरदन के कारण धीरे धीरे इसकी ऊंचाई कम होती चली गई।
6: अपरदन? ये अपरदन क्या होता है?
2: वाह मनन, अपरदन यानी मिट्टी का कटाव। अंग्रेजी में इसे पता है क्या बोलते हैं? सॉइल इरोजन।
3: सॉइल इरोजन,
2: बिल्कुल ठीक। अरावली पर्वत श्रृंखला की प्रमुख चोटियां हैं गुरु शिखर, जो राजस्थान के माउंट आबू में स्थित है। शेर और अचलगढ़ भी इसकी प्रमुख चोटियां हैं जो राजस्थान में ही हैं।
0: सुचिता जी,

0: अब हम ये भी जानना चाहेंगे कि आखिर अरावली पर्वत श्रृंखला का हमारे यहाँ जलवायु और पर्यावरण पर भला क्या असर पड़ता है।
1: सचिन जी, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। बच्चों जानना चाहोगे ना?
2: जी मैम। यस मैम।
1: अब अरावली पर्वत श्रृंखला राजस्थान के थार मरुभूमि को पूर्व की ओर फैलने से रोकती है, यानी यदि अरावली न हो तो राजस्थान के थार का रेगिस्तान दिल्ली और यहाँ तक कि गंगा के मैदानों तक भी फैल सकता है।
2: यानी ये हमारी पहरेदार हुई।
1: हाँ रिद्धि, बिल्कुल सही है। अरावली श्रृंखला उत्तर भारत को रेगिस्तान बनने से रोकती है। इतना ही नहीं, ये अपने क्षेत्र में भूजल का स्तर भी बनाए रखती है।
3: मैम, जैसा कि हम जानते हैं कि पर्वतों से नदियाँ भी निकलती हैं, क्या अरावली से भी नदियाँ निकलती है?
1: सोहम, अरावली पर्वत श्रृंखला से निकलने वाली जो प्रमुख नदियाँ हैं, उनके नाम इस प्रकार हैं: बनास, साबरमती, लूनी और माही। और हाँ, अरावली पर्वत श्रृंखला बहुत से वन्य जीवों की शरण स्थली है। मैं बताती हूँ, जैसे तेंदुआ, सियार, लोमड़ी, नीलगाय, सांभर, चीतल और जंगली सुअर इत्यादि।
0: अरे वाह सुचिता जी, देखिए अब ये तो आपने हमें बताया नदियों के बारे में और आसपास मिलने वाले जीव जंतुओं यानी पशुओं के बारे में, लेकिन अगर पक्षियों की बात करें तो?
1: सचिन जी, पक्षियों में यहाँ मोर, गिद्ध, सारस, चील, तोता, मैना इत्यादि बहुत अधिक पाए जाते हैं। एक और बात, यहाँ बहुत सारे खनिज पदार्थ भी मिलते हैं, जिनमें मुख्य हैं तांबा, जस्ता, सीसा और लोहा। लेकिन एक बहुत बड़ी चिंता का विषय है।
0: चिंता का विषय है? भला वो क्या?
1: सचिन जी, अब ये पर्वतमाला पर्यावरण के संकट से गुजर रही है। अब जैसे जंगलों का कटना, पानी के स्रोतों का सूखना और इनके कारण वन्य जीवों का धीरे धीरे विलुप्त होना, इसीलिए अरावली को बचाए रखना बहुत आवश्यक है। तो बच्चों, बचाओगे ना अरावली को?
2: जी मैम।
0: भाई वाह, तो बच्चों कैसी लगी आपको ये सारी जानकारी?
2: बहुत अच्छी लगी।
0: तो साथियों, अब हमारे रेडियो शो पर्वतों की कहानी का आज का ये अंक होता है यहीं समाप्त। तो एक बार फिर से जोरदार तालियां सबके लिए। तो डॉक्टर सुचिता, सोहम, रिदित, रिद्धि, नव्या और मनन, आप सभी का हमारी श्रोताओं की ओर से भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे स्टूडियो में आए। तो दोस्तों, इसी तरह से चलता रहेगा हमारा ये रेडियो शो पर्वत भी बोलते हैं। तो अब हम मिलेंगे अगले एपिसोड में। नमस्कार, धन्यवाद।
2: धन्यवाद सर।
4: धन्यवाद मैम।
5: साथियों, अभी आपने सुना ये कार्यक्रम। क्या कार्यक्रम सुनते समय आपके मन में ये प्रश्न आया कि इस पर्वत श्रृंखला का नाम अरावली क्यों पड़ा? तो चलिए हम आपको बता देते हैं। अरावली शब्द की व्युत्पत्ति संस्कृत के दो शब्दों से मिलकर हुई है, अरा और अवली। अरा का अर्थ है पर्वत की चोटी और अवली का अर्थ है कतार या श्रृंखला। इन दो शब्दों से मिलकर बना शब्द अरावली। तो साथियों, कुल मिलाकर अरावली शब्द का अर्थ है चोटियों की कतार या पर्वत शिखरों की श्रृंखला। ये नाम अरावली पर्वतमाला की भौगोलिक बनावट को दर्शाता है, जो लंबी चोटियों वाली पुरानी पर्वत श्रृंखला है।
0: अब आपके लिए कुछ सोचने और करने को। जरा पता लगाइए कि भारत में कितनी पर्वत श्रृंखलाएं हैं और उनसे भला कौन कौन सी प्रसिद्ध नदियां निकलती हैं और वो कहां जाकर सागर में मिलती हैं, और फिर उन जगहों को भारत के मानचित्र पर अलग अलग रंगों से चिन्हित कीजिए और उनके बारे में संक्षेप में लिखिए।
5: अभी आपने सुना कार्यक्रम अरावली की कहानी, और आइए अब सुनते हैं अगला कार्यक्रम। शीर्षक है बांगुई।
6: ये कार्यक्रम अफ्रीका की एक लोक कथा पर आधारित है, जिसके द्वारा संदेश दिया गया है कि पर्यावरण को बचाना हम सबकी जिम्मेदारी है। कार्यक्रम एक सुंदर नाटक द्वारा प्रस्तुत किया गया है।

0: नाम तो आपने सुना होगा। उसके पश्चिमी हिस्से में एक छोटा सा देश है घाना। विश्व के सबसे बड़े रेगिस्तान सहारा के निकट होने के बावजूद घाना में सूखे की नहीं बाढ़ की समस्या प्रबल रहती है। कई छोटी बड़ी नदियां इस देश से होकर बहती हैं और इसे हरा भरा बनाए रखती है, लेकिन अक्सर इन नदियों में बाढ़ आ जाती है और गांव के गांव डूब जाते हैं। आज सुनते हैं व्हाइट वोल्टा नदी के किनारे बसे एक ऐसे ही गांव के आदिवासियों की कहानी।
1: नमस्कार भाई।
2: इतनी सुबह सुबह कहाँ जा रहे हो? अभी तो खेत में काम करने का समय नहीं हुआ।
1: अरे आज खेतों में नहीं, जंगल में काम करने जा रहा हूँ। ये देखो कुल्हाड़ी।
2: अरे ये क्या, हल वाले हाथ में कुल्हाड़ी, लकड़ी काटने जा रहे हो? क्या नया घर बना रहे हो?
1: हाँ भैया, नया घर तो बन रहा है, लेकिन मेरा नहीं, अपने मुखिया बांगुई है ना, वही अपना नया घर बनवा रहे हैं।
2: मुखिया बांगुई का नया घर? लेकिन अभी कुछ ही बरस पहले तो उन्होंने नया घर बनवाया था।
1: तो क्या हुआ, उन्हें अपना वो नया घर अब पुराना और छोटा लगने लगा है। दरअसल जंगल की लकड़ी बेच बेच कर रईस हो गए हैं ना, सो अपनी रईसी की शान दिखाने के लिए फिर नया मकान बनवा रहे हैं।
2: अच्छा तो ये बात है, मुखिया बांगुई ने ही पैसे के लालच में शहर के लोगों को जंगल से लकड़ी काटने की अनुमति दी है। तभी मैं कहूँ कि जंगल से आजकल दिन रात लकड़ी काटने की आवाज क्यों आती है, इस तरह तो जंगल के सारे पेड़ कट जाएंगे।
1: अरे और नहीं तो क्या, जंगल से जिस तरह से ये शहरी लोग दिन रात लकड़ी काट रहे हैं ना, देखना थोड़े दिनों में सारा जंगल साफ हो जाएगा। अरे जंगली जानवर गांव पर हमला करेंगे, नदी की धारा जंगल की रुकावट ना पाकर गांव की तरफ बढ़ने लगेगी।
2: और ये सब जानकर भी तुम कुल्हाड़ी लिए लकड़ी काटने जा रहे हो?
1: हाँ भैया और क्या करूं, मेरे पास खेत तो है नहीं। मुखिया बानगुई के खेतों में काम करता था, लेकिन उन्हें अब खेती बाड़ी में कोई दिलचस्पी नहीं। उन्हें जंगल की कटाई से काफी पैसे मिल जाते हैं ना, बाल बच्चों का पेट पालने के लिए मैंने भी लकड़ी काटना शुरू कर दिया है भैया। फिर शहर के लोग लकड़ी काटने की मजूरी भी अच्छी देते हैं।
2: पर तुम तो मुखिया के मकान के लिए लकड़ी काटने जा रहे हो?
1: हाँ, मुखिया का ये नया मकान शहरी लोग ही बनवा रहे हैं ना, मुखिया ने उन्हें जंगल से लकड़ी काटने की आज्ञा दी है, इसलिए वो लोग उन्हें ऊंची वाली चट्टान पर एक बहुत बड़ा तिमंजिला मकान बना कर दे रहे हैं।
2: तिमंजिला मकान? वो तो बहुत ऊंचा होगा।
1: हाँ, हमारे तीन मकान एक के ऊपर एक रख दिए जाए, इतना ऊंचा होगा।
2: लेकिन ये मकान नदी के इतने नजदीक क्यों बनवा रहे हैं, अगर नदी में बाढ़ आ गई तो?
1: अरे भैया बाढ़ आती है तो तबाही हमारे कच्चे झोंपड़ों की होती है ना, ऊंची चट्टान पर बने तिमंजिले मकान पर बाढ़ का क्या असर होगा भला। फिर हमें से क्या भैया, हमें तो अपनी मजूरी से मतलब है। अच्छा चलता हूँ, बड़ी देर हो गई।
2: अच्छा भाई मैं भी चलता हूँ।
1: कहाँ बड़े चले आ रहे हो? अरे जानते नहीं ये मुखिया बानगुई का मकान है?
3: जानते हैं भाई जानते हैं, तभी तो अपनी फरियाद लेकर यहाँ आए हैं।
1: मैं कहता हूँ भाग जाओ यहाँ से।
3: अरे भाई ये भी कोई
1: इस समय कोई फरियाद वरियाद नहीं सुनी जाएगी। अभी मुखिया जी बांसुरी बजा रहे हैं और जब वो बांसुरी बजा रहे हो तब उन्हें तंग करने का हुक्म नहीं है।
3: लेकिन अगर मुखिया जी हमारी फरियाद नहीं सुनेंगे तो हम कहाँ जाएंगे भैया?
1: अच्छा भाई बोलो क्या बात है, बोलो।
3: मैं बोलूं? अच्छा देखो भैया तुम भी तो हम ही में से एक हो, गांव की हालत तुमसे छुपी नहीं है। मुखिया जी के सारे खेत खाली पड़े हैं, उनमें काम करने वाले मजदूर बेकार हो गए हैं। जिनके पास थोड़ी बहुत अपनी जमीन थी जहां खेती करके थोड़ा अनाज हो जाता था, उन सारे खेतों में बाढ़ का पानी भर गया है भैया। बारिश के मौसम में लकड़ी की कटाई का काम भी बंद हो गया है। हमारे बच्चे भूखे मर रहे हैं भैया, इसीलिए हम मुखिया जी के पास आए हैं।
1: अरे तो इसमें मुखिया जी क्या कर सकते हैं?
4: सुना है

0: मुखिया जी के मकान के एक पूरे खंड में अनाज भरा है। अगर इस संकट के समय हम गरीबों को भी एक एक मुट्ठी अनाज मिल जाता तो
1: अच्छा। और मुखिया जी क्या फाके करे, मैं कहता हूँ भाग जाओ यहाँ से। बढ़िया अनाज मांगने वाले करो।
2: एक बार की बात है, उस इलाके में मूसलाधार वर्षा हुई और लगभग 4 दिनों तक चलती रही।
3: मुखिया जी
4: बदतमीज, ऐसे क्या चिल्ला रहे हो?
3: माफ कीजिएगा, लेकिन बात ही कुछ ऐसी है कि
4: ओ, आप कुछ बोलो भी, क्या हुआ है?
3: गांव में चारों तरफ पानी भर गया है।
4: तो भरने दो।
3: गांव के सभी लोग, औरतें, बच्चे और मर्द गांव छोड़कर जा रहे हैं।
4: अरे तो जाने दो।
3: लेकिन मुखिया जी, इस मकान के चारों तरफ भी पानी पानी है, अगर हम निकलकर जाना भी चाहें तो भी नहीं जा सकते।
4: अरे बेवकूफ, हम यहाँ से जाएंगे ही क्यों? इस ऊंची चट्टान पर बने 3 मंजिले मकान में पानी आएगा कैसे? हमारे पास यहाँ क्या कमी है? अरे खाना है, पानी है और ये हमारी बांसुरी भी है।
3: लेकिन मुखिया जी,
4: वो तुमसे कितनी बार कहा है कि जब हम बांसुरी बजा रहे हो तो हमें परेशान मत किया करो।
3: जी मगर
4: जाओ, चले जाओ यहाँ से। अब क्या है?
5: नीचे वाली मंजिल में बहुत पानी आ गया है।
4: तो यहाँ खड़े खड़े क्या कर रहे हो? जाओ, सब चीजें दूसरी मंजिल पर ले जाओ और हम 3री मंजिल पर जा रहे हैं।
0: मुखिया जी
4: चैन नहीं लेने देंगे। अब क्या है
0: जी? वो दूसरी मंजिल पर भी पानी
4: चढ़ रहा है। अरे तो 3री मंजिल किस लिए है? देखो सब सामान ऊपर ले जाओ, हम छत पर जा रहे हैं।
0: माफ कीजिएगा मुखिया जी, अब हम यहाँ नहीं रुक सकते। बूढ़ा कालू कह रहा है कि ये साधारण बाढ़ नहीं है, बल्कि नदी ने अपनी धारा बदल दी। अब नदी इसी जगह से बहेगी, बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं रह जाएगा। हम लोगों ने लकड़ी के तख्ते जोड़ जोड़ कर एक नाव तैयार की है, हम तो जा रहे हैं। आप चाहें तो हमारे साथ चल सकते हैं।
4: नालायक, डरपोक, अरे भाग रहे हो? इस महल को छोड़कर भाग रहे हो? जाओ, चले जाओ यहाँ से, जाओ तुम लोग, मैं यहीं रहूंगा।
0: जैसी आपकी मर्जी।
4: अरे ये तो सचमुच चला गया। कहीं वो बूढ़ा कालू ठीक ही तो नहीं कह रहा? क्या नदी ने सचमुच अपनी धारा बदल दी है? छत से देखता हूं मैं। ये कैसा भयानक दृश्य है! दूर दूर तक जहां नजर जाती है पानी पानी, कहीं कोई नहीं, ना कोई आदमी, ना जानवर, ना खेत, ना जंगल। अगर अगर मेरे इस मकान की 3री मंजिल में पानी में डूब गई तो ये क्या? ये क्या हो रहा है? नहीं नहीं, ये इतना मजबूत मकान भी गिर रहा। हे भगवान, हे भगवान, अरे कहाँ जाऊँ मैं? ये पानी में डूब रहा हूँ मैं। अरे मैं अपनी जान कैसे बचाऊँ? अरे कोई है? कोई है? अरे बचाओ, बचाओ मुझे! अरे मैं डूब रहा हूँ मैं। नहीं, ये क्या? ये लगता है कोई पेड़ अब भी अपनी मजबूत जड़ें धरती पर धंसाए बैठा है। अगर किसी तरह मैं उसे पकड़ लूं तो मेरी जान बच सकती है। हाँ, मैं उसे पकड़ूंगा किसी तरह मैं उसे पकड़ लूं। लेकिन ये पानी तो मुझे दूसरी तरफ बाहर ले जा रहा है। मैं कोशिश करूंगा, उस पेड़ तक जाने की कोशिश करूंगा मैं। वो पेड़, आखिर पहुंच गया। यहाँ तो इस तरह के कितने ही पेड़ थे जो मैंने कटवा दिए, लेकिन ना जाने यही एक इकलौता पेड़ मुझे शरण देने के लिए कैसे बच गया। शायद शायद मेरी मेरी आंखें खोलने के लिए, हाँ शायद मेरी आंखें खोलने के लिए

0: बांगुई, अभी आपने सुना ये कार्यक्रम। अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अब अपने मित्र अजीत
1: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
0: नमस्कार। उमंग, उमंग, उमंग,
2: उमंग। अभी आप सुन रहे थे NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। थोड़ी देर में आप सुनेंगे रांची मेलोडीज़।

दिल ही तो है। अभी आप सुन रहे थे इस फिल्म का गीत मुकेश की आवाज में। बोल थे साहिर लुधियानवी के और संगीत था रोशन का।

अभी आप सुन रहे थे मुकेश की आवाज़ में फिल्म परवरिश का ये गीत, जिसे लिखा था हसरत जयपुरी ने और संगीत से सजाया था दत्ताराम वाडकर ने। अब आइए सुनते हैं फिल्म कश्मीर की कली का ये गीत मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले की आवाज़ों में। इसे संगीत से सजाया है ओपी नैयर ने।

कार्यक्रम का अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म दूर गगन की छांव में से, जिसे गाया है किशोर कुमार ने, लिखा है शैलेंद्र ने।

औरा भाई सुनते हैं फिल्म किस्मत का ये गीत, एस एच बिहारी का लिखा हुआ, ओपी नैयर के संगीत निर्देशन में इसे गाया है आशा भोसले और शमशाद बेगम ने।

गीतकार मजरू, संगीतकार आरडी बर्मन। यह आवाज़ है किशोर कुमार की फिल्म अनामिका के लिए।

0: ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। शाम के 4 बजे हैं, प्रस्तुत है मुख्य समाचार।
1: नमस्कार, अब तक के मुख्य समाचारों के साथ मैं तृप्ति कुमारी। जमशेदपुर हत्याकांड के विरोध में भाजपा ने राज्य सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू ने आज रांची में घोषणा की कि 2 जुलाई को जमशेदपुर में मशाल जुलूस निकाला जाएगा और 3 जुलाई को जमशेदपुर बंद रहेगा। सरायकेला खरसावा के RIT थाना पुलिस ने एक दुकान में घुसकर रंगदारी मांगने और जानलेवा हमला करने के मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार बीती 30 जून को पीड़ित प्रेमचंद वर्मा की शिकायत पर मामला दर्ज किया गया था। जमशेदपुर के बिष्टुपुर स्थित डबल डाउन पब हत्याकांड के मृतक हिमांशु सिंह के सरायकेला खरसावा स्थित आदित्यपुर आवास पर आज प्रशासन और परिजनों के बीच अहम वार्ता हुई। इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास और विधायक सरयू राय भी मौजूद रहे। हजारीबाग के सांसद मनीष जायसवाल ने अपने 2 साल के कार्यकाल का रिपोर्ट कार्ड जारी किया है। उन्होंने हजारीबाग और रामगढ़ जिलों में PM सड़क योजना, PM आवास और कुसुम योजना के तहत हुए विकास कार्यों की प्रगति की साझा की। साथ ही उन्होंने बरकाकाना रेलवे स्टेशन के कायाकल्प और कोडरमा रेल मार्ग के दोहरीकरण कार्य की भी जानकारी दी। दुमका जिले के मसलिया प्रखंड के चापुड़िया गांव में आज हुए एक सड़क हादसे में एक मोटरसाइकिल चालक की मौत हो गई, जबकि 8वीं कक्षा की एक छात्रा गंभीर रूप से घायल हो गई है। घायल छात्रा को इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जामताड़ा पुलिस ने नारायणपुर और करमानटाड़ थाना क्षेत्र से 2 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। साइबर DSP अमित कुमार ने बताया कि इन अपराधियों के पास से 6 मोबाइल फोन, 7 फर्जी सिम कार्ड और 1 दुपहिया वाहन बरामद किया गया है। राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस के अवसर पर रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने देश के सभी समर्पित डॉक्टरों को हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पर जारी अपने संदेश में उन्होंने चिकित्सकों को स्वस्थ और समृद्ध भारत के निर्माण का सच्चा आधार बताया। इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 5 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

आप सुन रहे थे मुख्य समाचार आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। प्रस्तुत है कार्यक्रम बढ़ते कदम, प्रस्तुति स्वर कमलेश कुमार मिश्रा का और प्रस्तुति है प्रभु शरण की।

नमस्कार, बढ़ते कदम कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कमलेश कुमार मिश्र। जब भी एक नए अंक के साथ आता हूं तो मैं बहुत ज्यादा उत्साहित रहता हूं, क्योंकि हमेशा हम बात अपने जिंदगी में आगे बढ़ने की करते हैं, एक कदम आगे बढ़ाने की करते हैं, अपने मंजिल को पाने की करते हैं, सरकार की उन योजनाओं की करते हैं जो हमें आर्थिक रूप से मजबूत बनाता है, हमें स्वावलंबी बनाता है। आज के कार्यक्रम में भी हम स्वावलंबन की बात करेंगे। आज के कार्यक्रम में JSLPS की हम कुछ दीदियों से बात करेंगे, एक अधिकारी से बात करेंगे कि किस तरीके से आज JSLPS महिलाओं की जिंदगी बदल रहा है। विशेषकर जब ग्रामीण महिलाओं की बात करते हैं, एक समय था कि जब आप गांव में जाते थे तो आप महिलाओं से अगर बात करते ना तो आपको जवाब नहीं मिलता, वो बहुत हेजिटेट करते थे, उनमें आत्मविश्वास की कमी होती थी। लेकिन JSLPS से जुड़कर आज झारखंड की ग्रामीण महिलाएं कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ रही हैं और उनका जो आत्मविश्वास है वो देखते ही बनता है। आज उनके बिना, यानी उनके तैयार किए गए प्रोडक्ट के बिना हमारी जो जिंदगी है ना वो थोड़ी सी अधूरी होगी, क्योंकि हम आज ऑर्गेनिक फूड्स की बात करते हैं, आज हम बेहतरीन आचार की बात करते हैं, बड़ी पापड़ की बात करते हैं और इवन डिजाइनर ड्रेसेस की बात करते हैं और बहुत सारे आज ऑर्नामेंट्स भी वो तैयार कर रही हैं। तो ये जो खुशबू है वो झारखंड की खुशबू है और उन्हीं खुशबुओं को समेट कर आज का हमारा ये कार्यक्रम हमने तैयार किया है। आज के कार्यक्रम में हमारे साथ गोड्डा जिले के पथलगामा प्रखंड की BTM यानी ब्लॉक प्रोग्राम मैनेजर इंचार्ज सुरैया होंगी और इनसे हम जानेंगे कि किस तरीके से आज पथलगामा में एक आजीविका संसाधन केंद्र चल रहा है जहां सैकड़ों महिलाएं जुड़

0: सर अपनी जिंदगी बदल रही हैं और सरकार के द्वारा जो स्कीम्स चलाए जा रहे हैं, जो ट्रेनिंग प्रोग्राम्स चलाए जा रहे हैं, जो एक्सपोजर्स विजिट हो रहे हैं उनके माध्यम से वो अपनी जिंदगी को बदल रही हैं। सुरैया जी, कार्यक्रम बढ़ते कदम में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: धन्यवाद
0: सुरैया जी। सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे, आज बहुत सारे श्रोता इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं, बहुत सारी महिलाएं सुन रही हैं, आपके केंद्र का नाम क्या है और मुख्यतः इस केंद्र का उद्देश्य क्या है?
1: मेरा केंद्र का नाम है संजीवनी आजीविका संसाधन केंद्र परसपानी, ब्लॉक पथरगामा, डिस्ट्रिक्ट गोड्डा। और इसका मेन जो ऑब्जेक्टिव है, मेन जो उद्देश्य है इस आजीविका संसाधन केंद्र का बनाने का, इसके नाम में ही आजीविका रिलेटेड है। आजीविका मीन्स कैसे दीदी एक महिला अपनी आजीविका को बढ़ा पाए। और ये सिर्फ एक महिलाओं के लिए नहीं है, ये हजारों सैकड़ों हमारी गोड्डा डिस्ट्रिक्ट के सभी महिलाओं के लिए है। ये इनका मुख्य उद्देश्य जो था कि यहाँ विभिन्न प्रकार का क्षमतावर्धन हो, यहाँ पर डेमोस फील्ड वगैरह है, किस तरह दीदी लोग आगे अपना काम कर सके, फिर विभिन्न प्रकार के हमारे सरकार के द्वारा जो दीदी लोग के उत्पादों को जो एक ब्रांड मिला है पलास ब्रांड, उस ब्रांड के तहत कैसे हमारा जो यहाँ पे महिलाएं हैं जो विभिन्न प्रकार के संगठन बनाए हुए, जैसे समूह है, ग्राम संगठन है, क्लस्टर स्तरीय संघ है, और सरकार के द्वारा जो इन्हें राशि प्रदान की गई है उसका उपयोग कैसे लाए। मतलब इंडिविजुअली तो दीदी लोग कर ही रही थी, दीदी लोग मन में एक आया क्यों ना हम लोग संगठन के माध्यम से कुछ करें। और जो आजीविका संसाधन केंद्र का उद्देश्य यही था कि संगठन के माध्यम से ही आजीविका को बढ़ाने का कोशिश करना है। तो दीदी लोग ने एक छोटा सा पहल स्टार्ट किया पलास ब्रांड को लेके, अपना एक आटा चक्की का छोटा सा प्लांट यहाँ पे सेट किया है, फिर एक तेल मिल भी है, सरसों तेल का, और एक दाल मिल भी है जिससे दीदी लोग अपना उत्पादन कर रही है। ये तकरीबन 1 से 1.25 साल पहले से स्टार्ट हुआ है। और दीदी लोग जैसा कि पथरगामा ब्लॉक जो रहा, यहाँ पे खेती बाड़ी का बहुत ज्यादा क्षेत्र है, ये यहाँ पे गेहूं, चावल, सब्जी, सरसों, मसाला बहुत ज्यादा उत्पादन है यहाँ पे, मसाला में सिर्फ मिर्च का बहुत ज्यादा है यहाँ पे। तो ये सबको लेते हुए, सर्वे करते हुए, जो हमारे यहाँ विभिन्न प्रकार के जो कैडर हैं, कोऑर्डिनेटर्स हैं, उन लोग से बातचीत करके जो दीदी लोग को निष्कर्ष लगा कि क्यों ना हम लोग रॉ मटेरियल जब हमारे यहाँ अवेलेबल है तो उसको क्यों ना हम लोग वैल्यू एडिशन करके मार्केट में लेके आए। इसी को स्टार्ट करने के लिए यहाँ पे विभिन्न प्रकार के मशीन वगैरह उपलब्ध कराए गए। और सबसे बड़ा जो हमारा यहाँ पे सरकार का और हमारा जो एडमिनिस्ट्रेशन का जो बहुत बड़ा योगदान है दीदी लोगों के साथ, ये एक भवन उनको उपलब्ध कराया गया। और ये भवन ही है जो भवन पे दीदी लोग इतना सोच पा रही है कि उनके पास जगह है तो उन लोग अपना काम स्टार्ट करें। और जगह के साथ साथ अभी भी जैसे नीड बढ़ता जाता है, लोग जब काम करते हैं तो अभी भी सहयोग रहा है वहाँ पे। जो बिल्डिंग तो था, भवन तो था, लेकिन बाउंड्री नहीं था। तो अभी हमारा जो जिला प्रशासन है, प्रखंड प्रशासन, सबसे मिलके वहाँ पे बाउंड्री उपलब्ध कराया गया। दीदी लोग का वहाँ पे जो भवन तो बना, तो एक रोड PCC रोड उपलब्ध कराया गया। अभी स्टोरेज के लिए दीदी लोग को थोड़ा सा दिक्कत हो रहा था, तो वो भी सर के द्वारा बात करके, हमारे जो जिला प्रशासन के द्वारा वहाँ पे क्षेत्र भ्रमण भी किया जाता है बार बार, जो भी आवश्यक दिशा निर्देश है वो भी दिया जाता है। और वहाँ पे अभी बात भी चल रही है और जेई के माध्यम से वहाँ पे सारा नाप जोक करके अभी फूड ग्रेन का स्टोरेज का भी भवन की बात हो रही है
0: जी।
1: तो हम लोग दीदी लोग को आशा है कि अगले साल तक का भी काम पूर्ण हो जाएगा। आजीविका संसाधन केंद्र का मेन ऑब्जेक्टिव भी यही है कि जीविका को बढ़ाना और एक संगठित तरीके से जीविका को बढ़ाना। क्योंकि
0: आज बढ़ते कदम कार्यक्रम को जितनी भी महिलाएं सुन रही हैं, जितने भी लोग सुन रहे हैं, जितने भी श्रोता हमारे हैं, आज हम आपको गोड्डा जिले की कहानी को इसलिए आपके बीच में ला रहे हैं कि ये एक ऐसी सफलता है जहां पर अगर महिलाएं सशक्त हों और महिलाएं कदम से कदम मिलाकर सरकार की योजनाओं का लाभ लेकर आगे बढ़े तो एक बहुत बड़ा बदलाव आता है समाज में। और वो बदलाव वहां पे आ रहा है, एक ऐसा भवन तैयार किया गया जहां ना सिर्फ आटा चक्की है बल्कि वहां पे तेल मिल भी है, वहां पे दाल भी निकाला जाता है, मसाला भी बनाया जाता है। मुझे जहां तक मालूम है सुरैया जी कि यहाँ पे आप लोग के बहुत सारे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स भी चलते हैं, आप उस ट्रेनिंग प्रोग्राम्स बारे में बताए कि क्या क्या चीजें वहाँ पे होती हैं, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में क्या बताया जाता है, कैसे जो समूह की दीदियाँ हैं उनको आप लोग तैयार करती हैं, नई नई चीजें बताती हैं।
1: सबसे पहले मैं थोड़ा सा संजीवनी आजीविका संसाधन केंद्र का जो भवन है उसका जो एरिया है जो बना हुआ है उस पर थोड़ा मैं बात करूंगी। इसमें एक सबसे बड़ा एक ऑडिटोरियम है, उसके बाद 3 कमरे हैं जिसमें दीदी लोग रात में रुकती भी हैं और आवासीय ट्रेनिंग वगैरह भी होता है। फिर अपना एक किचन भी है जहाँ पे खाना पीना भी बनता है दीदी लोग के लिए, तीनों टाइम चारों टाइम का खाना पीना है, वहाँ रहने का भी सुविधा है। फिर पीछे एक जो बिल्डिंग है वो एक बहुत बड़ा हॉल टाइप

0: का है, उसमें हम लोग पार्टीशन करके आटा तेल वगैरह मिल जो लगाए हुए आटा तेल और दाल का उत्पादन करवाते हैं, दीदी लोग ही करती है। ठीक है, उसके बाद जो बड़ा ऑडिटोरियम है, सबसे पहले उसी से शुरुआत हुई थी हमारा सितंबर अक्टूबर के 2021, वहां से सबसे पहले वहाँ ट्रेनिंग प्रोग्राम स्टार्ट हुआ। तो हमारे JSLPS के थ्रू जितना भी ट्रेनिंग होता है वहाँ पे पूरा गोड्डा डिस्ट्रिक्ट का, क्षमता वर्धन जो होता है दीदी लोग का, कैपेसिटी बिल्डिंग हम लोग इसको बोल सकते हैं, कैपेसिटी बिल्डिंग हुआ, आखिर वो SMIB जो सोशल मोबिलाइजेशन और इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग होता है दीदी लोग का, मतलब उनका सोशल मोबिलाइज किया जाता है, सोशली कैसे वो एक इंस्टीट्यूशन बिल्ड करे और उस पर काम करे, उनका ट्रेनिंग होता है। फिर उसमें जो खाता बही रहता है उसको कैसे लिखना है, क्योंकि आम हम गाँव के दीदी के साथ काम कर रहे हैं, तो उनका क्षमता वर्धन विकास के लिए उनको मतलब रेगुलर तरीके से बार बार जब तक ट्रेनिंग नहीं मिलेगा तो फिर दीदी लोग कैसे कर पाएगी, तो उस टाइप का ट्रेनिंग होता है। सही हिसाब किताब जो भी पैसा सरकार के थ्रू RFCIF जैसे हम लोग बोलते हैं सामुदायिक निवेश निधि जो मिलता है, उसके बाद रिवॉल्विंग फंड जो मिलता है, उसमें बैंक लिंकेज जो बैंक से लोन मिलता है, उस सारा का हिसाब किताब सही से हो सके, उसके लिए आपका समूह में भी खाता है, ग्राम संगठन में भी खाता है, क्लस्टर में भी खाता है, इवन आजीविका संसाधन केंद्र का अपना खुद का खाता भी, सारा अकाउंटेंट लेखापाल नाइट गार्ड वगैरह सब होते हैं वो सारा चीज का देख रेख करने के लिए, वो सारा चीज का ट्रेनिंग होता है। दूसरा फाइनेंशियल इंक्लूजन पे हम लोग आए, जैसे कि बैंक सखी है हमारी, बीसी सखी है, FLCRP, हर तरह का ट्रेनिंग समूह पे जैसे जाना, दीदी पैसा तो कमा रही है लेकिन पैसा का उपयोग कैसे करेगी, है ना, क्योंकि हम लोग जो पैसा कमाते हैं एक आम लोग भी, तो उसका कुछ सेविंग जरूरी जरूर करते हैं, तो वैसे दीदी लोग में भी वो चीज डालना है कि आपको पूरे साल का प्लान बनाना है कि क्या पैसा कितना खाने पीने में जाएगा, बीमारी में जाएगा, बच्चे की पढ़ाई में जाएगा, शादी ब्याह में जाएगा, पर्व त्योहार में जाएगा, उस सारा चीज को और कितना हम सेव करेंगे, उस सारा चीज का ट्रेनिंग वगैरह फाइनेंशियल लिटरेसी दीदी के माध्यम से होता है। उन लोग का भी क्षमता वर्धन का विकास वहाँ कराया जाता है, फिर वो लोग जाके गाँव में ट्रेनिंग देती है। उसके बाद बीसी सखी जो हमारे गाँव में दीदी लोग होती है, कभी कभी क्या होता है बैंक थोड़ा दूर होता है, दीदी लोग को आने में दिक्कत होता है, तो वो लोग अपना पैसा कैसे जमा करे, तो गांव की दीदी को एक आजीविका मिल गया, उनको किसी भी बैंक से उनको टाई अप किया जाता है, जैसे SBI है, JRGB है, बैंक ऑफ इंडिया है, इंडियन बैंक है, सबसे जोड़ के उनको वहां BC ID कोड दिलाया जाता है। वो समूह में दीदी का घर में अगर कोई बुजुर्ग है तो उनके यहाँ जाके उनका घर से जाके उनको मॉर्फो उपलब्ध करवाया जाता है, जाके उनका पैसा निकलवा सके और पैसा जमा कर, तो ये भी एक बहुत अच्छा उपलब्धि है जो एक हमारी दीदी कर रही है, जो ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं वाले मैट्रिक पास इंटर पास दीदी है और वो लोग ये चीज सीख रही है और जाके वहाँ पे गांव में इसका कर रही है, इस तरह का ट्रेनिंग भी होता है। उसके बाद JSLPS के थ्रू जो बैंक सखी हर बैंक में दिया गया है, जैसे दीदी लोग जो जाती है वो लोग ज्यादा पढ़ी लिखी तो होती नहीं है, उनका विड्रॉल और जमा का डिपॉजिट फॉर्म वगैरह भरना, उनका बैंक लिंकेज का फॉर्म भरना, उनका खुद का फॉर्म भरना, उनका समूह का खाता खोलना, उनका इंश्योरेंस कराना, वो सारा चीज का क्षमता वर्धन भी उनका यहाँ करवाया जाता है, ताकि वो लोग यहाँ पे सीखे और सीख के फिर अपना अपना क्षेत्र में उसी तरह से काम करें। उसके बाद थर्डली जो होता है आजीविका का, जो खेती बाड़ी जो होता है, खेती बाड़ी का जो ट्रेनिंग होता है उसमें जैसे उन्नत तरीके से खेती करना, सब्जी खेती हो गया, उसके बाद आप सब धान हो गया, SRI विधि से धान करना, दाल लगाना, हर चीज का एडवांस तरीके से जो होता है उस टाइप का ट्रेनिंग दिया जाता है। नर्सरी डेवलप करना, कैसे पहले दीदी नर्सरी डेवलप करे धान का, उसके बाद खेती करे ताकि उसको कम जमीन में ज्यादा पैदावार हो, है ना। और उसके बाद जैसे मचान खेती में हम लोग आ गए, जो सब्जी का लगता है उसमें एक मतलब छोटे से जमीन पे तीन तरह का सब्जी एट अ टाइम हो जाता है, आपका नीचे में ओल हो गया, फिर बैगन हो गया, फिर झींगली हो गया, फिर बीच में आपका करेला हो गया, वो सारी चीज एक साथ हो रहा है, तो वो भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि हो जाती है दीदी लोगों को। जो छोटे किसान होते हैं वो लोग क्या करेंगे, उनके पास तो ज्यादा जमीन होता नहीं है, इसलिए छोटे जमीन पे वो लोग कैसे अपने आजीविका को बढ़ा पाए, और देखा भी गया है कुछ हमारा शेयरिंग भी है, कुछ कुछ दीदी एक एक सीजन में 50,000-60,000 का कद्दू करेला बेच, एक एग्जाम्पल मैंने आपको बताया, ठीक है। थर्डली हम लोग इसी में आते हैं, ये तो खेती बाड़ी हो गया, एक लाइव स्टॉक भी है हमारा है, लाइव स्टॉक में जैसे मुर्गी है बकरी है, उन लोग को कैसे हमारी APS दीदी लोग है यहाँ पे आजीविका पशु सखी जिसको बोलते हैं, वो लोग कैसे टीकाकरण करवाए करेगी, कैसे उसका किरवीकरण करेगी, उसके लिए यहाँ पे डीप फ्रीजर भी अवेलेबल है, आज जो है वो बाहर वेंडर से उनका दवाई वगैरह मंगवाते हैं, दवाई वगैरह मंगवा के दीदी लोग कुछ कम प्राइस में आता है, दीदी लोग कुछ 50 रुपया 50 पैसा या 1 रुपया मुनाफे में उसको यहाँ से खरीदती है, ले जाती है, उसके फिर उनको भी वहाँ पे गांव में भी एक बकरी पर 5 रुपया 6 रुपया करके उनका भी जो भी मुनाफा हो जाए, और फिर दीदी इस तरह से सेकंड जो दीदी है सामने वाली जो दीदी है जिनको करवा रही है उनका, जैसे होता है कि ठंड में बकरी ज्यादा मरती है मुर्गी ज्यादा मरती है, तो इस तरह का केस बहुत कम होता है, तो एक विश्वास भी जगता है एक विश्वास भी जगता है लोगों में, और अदर दीदी को देख के जो उनके गार्जियन होते हैं वो लोग भी खुश होते हैं, दादा लोग भी खुश होते हैं कि चलिए इस तरह से इस प्रोग्राम से कहीं ना कहीं दीदी एक अच्छा ये कर रही। कल के दिन क्या होता था, दीदी पैसा मांगती थी अपने हस्बैंड से कि हमको पैसा दीजिए हमको बकरी खरीदा। आज दादा जो है उनके हस्बैंड जो वो पैसा मांग रहे कि तुम बकरी बेच के हमको दो हम ये काम करेंगे। तो ये सबसे बड़ी उपलब्धता है हमारी दीदियों के लिए।
1: बहुत बड़ा बदलाव सुनिए जी, जैसे कि आपने बताया, क्योंकि पहले तो हम अपने श्रोताओं को बताएं कि सरकार JSLPS के माध्यम से, यानी झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी के माध्यम से दीदियों को ट्रेंड करती है, समूह तैयार करवाती है, यहाँ तक कि फिर इनको लोन प्रोवाइड करती है, ताकि आप जिस जगह भी हैं, झारखंड राज्य के किसी भी जिले में हैं, आप अपना कुछ करना चाहती हैं, आप कर सकती हैं, समूह में भी कर सकती हैं, आप सिंगल भी कर सकती हैं। और जब हम संजीवनी आजीविका संसाधन केंद्र जैसे संस्थान की जगह की बात करते हैं, जहां सरकार अपने हर स्कीम्स को एक जगह लाकर महिलाओं को बढ़ाने का काम करती है, तो एक बदलाव नजर आता है। मुझे आप बताइए कि जैसे आपने बताया था कि पलाश ब्रांड आप लोगों को एक मिल गया, वो उसके माध्यम से आप लोग काम करती हैं और उनके एक जीवन में बदलाव आ रहा है। आज जब आप अपने क्षेत्र के महिलाओं से मिलती हैं या उनके परिवार से मिलती हैं, एक सबसे बड़ा जो बदलाव आपको नजर आता है वो कौन सा बदलाव नजर आता है?
0: जैसे कि अभी हम लोग बता रहे हैं आपको, छोटी छोटी जो जैसे दीदी लोग अपना अपना पंचायत में जो अपना अपना स्टॉल लगाती है, JSLPS का जो स्टॉल लगता है, तो ये सारा निर्मित, ऐसा नहीं सिर्फ आटा तेल जो हम लोग उत्पादन कर रहे हैं वही बेच रहे हैं। जैसे दीदी लोग घर में बरी तैयार करती है, अचार तैयार करती है, उसमें भी वो लोग अपना ब्रांड लगाती है, प्लास का ब्रांड जो सरकार के द्वारा दिया गया, और वो दीदी लोग इतना उत्सुकता के साथ उस स्टॉल में लेके जाती है और इतना उत्सुकता के साथ उसको बेचती है। इवन अपने जो हमारे BDOs जो होते हैं, CEOs जो होते हैं, CDPOs जो है, उन लोग को प्रेरित करती है कि सर हम लोग का यूज करके देखिए। और अभी इसमें कोई शक नहीं, 1 से 2 साल में जो बदलाव आया है, मुझे फोन पे आता है कि कौन सी दीदी आपका अचार बना रही है, हमको 5 किलो अचार चाहिए, या मेरा बेटी का शादी है तो हमको इतना तेल चाहिए,
1: यानी आप लोग वो ऑर्डर्स भी पूरा करती हैं।
0: हाँ, तो ये सारा चीज है कि अभी हम लोग बहुत बड़े मात्रा में तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो दिन दूर नहीं है कि बहुत बड़े मात्रा में ये होगा। ये तो अभी हमारा स्टार्टिंग फेज था, जो स्टार्टिंग फेज चल रहा है, स्टार्टिंग फेज में ही तो हम लोग बहुत कुछ सीखे, थोड़ा सा थोड़ा बहुत, ज्यादा मुनाफा तो नहीं कर पाए, कम किए हैं, लेकिन हम लोग कभी भी लॉस में नहीं गए हैं। और हम लोग आगे का जो जिस तरह से काम हो रहा है, ये उम्मीद है कि वो दिन दूर नहीं जब दीदी लोग लाखों और करोड़ों में पैसा तो जरूर कमाए।
1: क्या बात है, चलिए ये आत्मविश्वास बना रहना चाहिए। और जिस तरीके से सरकार महिलाओं को सशक्त बनाने की प्रयास कर रही है, जिला प्रशासन काम कर रहा है, तो आप लोग बेहतर जरूर करेंगे। वहाँ पे कुछ इस तरह के भी प्रोग्राम्स होते हैं, क्योंकि जब ज्यादातर हम सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों की बात करते हैं तो वहाँ पर बाल विवाह जैसी समस्याएं, जैसी समस्याएं, इस पे भी काम होता है।
0: वही मैं बताना चाह रही थी, यहाँ सिर्फ पैसा लेना, बैंक के साथ जुड़ना, और खेती बाड़ी और पशुपालन हो गया, या फिर बैंक से लोन लेके नॉन फार्म भी करना, वो सब चीज हो, उसके साथ साथ यहाँ पे जैसे हमारे जेंडर CRP GCRP जो काम होता है, वो लोग काम करती है सोशल डेवलपमेंट, सामाजिक सामाजिक कार्य पे। जैसे कि अभी आप देखिएगा GPDP का फेज चलेगा कुछ दिन में, हमारा VPRP, पहले इसका नाम था गांव गरीबी निराकरण योजना, अभी इसका नाम हो गया है गांव शुद्धिकरण योजना। इसपे क्या हो रहा है कि कैसे हम गांव को विकास की ओर लेके जाए। पैसा तो हो गया, क्या नाम है, हम ट्रेंड हो गए, ट्रेनिंग हो गया, लेकिन जो सोच होता है लोगों का, जो सोच है कि महिलाएं पुरुष के पीछे रहेंगी, इस सोच पे भी दीदी लोग काम कर रही है। लिंग, अभी जो हमारा फेस चल रहा है कि लिंग आधारित हिंसा पर सब जगह रैली के माध्यम से दीदी लोग इसका रैली निकाल रही है, प्रदर्शन कर रही है, नुक्कड़ नाटक कर रही है, किस तरह हम लोग इसको रोकथाम करें। इवन दीदी लोग ने अपना SHG में, CLF में, VO में भी प्रण लिया है कि जो भी बेटी के लिए अगर कर्जा लिया जाता है शादी के लिए, तो उनका आधार कार्ड, उनका स्कूल का सर्टिफिकेट जांच करके ही उनको पैसा देंगे कि लड़की का उम्र 18 वर्ष से कम ना। और रहा घरेलू हिंसा पे, तो घरेलू हिंसा के लेकर भी PCI जो है यहाँ पे गोड्डा में काम कर रहे हैं, वो भी JSLPS के साथ काम कर रहे हैं, उन लोगों का भी बहुत बड़ा योगदान रहता है इसमें। वो लोग सारा चीज विभिन्न प्रकार का ट्रेनिंग वगैरह जितना भी होता है उनके क्लस्टर में, ग्राम संगठन में, सब में जाके वो लोग ट्रेनिंग दे रही हैं। आप SHG में, VO में, CLF में इस चीज की चर्चा भी होती है कि क्यों हम लोग क्यों ना, हम लोग जैसे घरेलू हिंसा हो रहा है इस पे हम लोग काम करें, बच्चियां की जो पढ़ाई होती है उस पे भी हम लोग काम कर पाए कि हम लोग, कोई भी लड़की ऐसी नहीं होना चाहिए कि हम लोग उसका पढ़ाई छुड़वा के उसका शादी हो। और अगर बच्ची पढ़ भी ले, मान लीजिए 16 साल तक उसका मैट्रिक या इंटर कम्प्लीट हो जाता है, तो उसको दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल विभाग योजना जो चल रही है, DDUJKY जो हम लोग बोलते हैं, वहाँ पे भेज के उनका ट्रेनिंग करवाते हैं, उनको नर्सिंग का ट्रेनिंग हो गया, उनका टेलरिंग का ट्रेनिंग हो गया, उनको लॉजिस्टिक का ट्रेनिंग हो गया, कंप्यूटिंग हो गया, उनको हर तरह का ट्रेनिंग भी दिलवाने में दीदी लोग अपना कदम उठा रही है और बहुत हद तक

0: हम लोग पटरगामा प्रखंड जो हमारा रहा है इसमें एक रजौन कला गांव जो था वो सही में बहुत बड़ा चाइल्ड मैरिज का हब था, लेकिन अभी हम लोग हमारे वीडियो सर के सहयोग से हम लोग उस पर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और इस साल तकरीबन हमारा जो डेटा है बहुत अप्रोप्रिएट तो हम नहीं बोल पाएंगे इस डेटा को, लेकिन 11 जो ऐसा शादी है हम लोग रोक पाए हैं जिसमें हमारे वीडियो सर हमारे थाना प्रभारी सर का बहुत बड़ा योगदान रहा है।
1: बधाई
0: के सहयोग में
1: बधाई है आपको। आप बहुत सारी झारखंड की महिलाएं सुन रही हैं, आप क्योंकि क्लोजली ऐसी महिलाओं को देख रहे हैं, तो आप उनसे क्या कहना चाहेंगे अगर वो भी इस तरह का कुछ करना चाहती हैं, वो जेएसएलपीएस से तो जुड़ी हैं लेकिन कुछ और बेहतर करना चाहती हैं, तो उनसे आप क्या कहना चाहेंगे?
0: हम यही कहना चाहेंगे, हम ये नहीं बोल रहे कि पत्रगामा की दीदी लोग बहुत बहुत सबसे अच्छा काम कर रही है, लेकिन मेरा ये है कि एक पहल इन्होंने स्टार्ट किया है और जहां भी अच्छा काम हो रहा है वहां की दीदी जरूर एक्सपोजर करे एक दूसरे का। ऐसा नहीं कि खूटी की दीदी पत्रगामा आ सकती है, पत्रगामा की दीदी खूटी जा सकती है, क्योंकि होता क्या है लोग ना करते करते नहीं सीखता है लेकिन देख के करके ज्यादा सीखता है।
1: बिल्कुल,
0: क्योंकि
1: बिल्कुल।
0: हमारा जो जन्म होता है जब बच्चे बड़े होते हैं तो ज्यादातर आप देखिएगा न्यूक्लियर फैमिली के बच्चे ज्यादा ज्यादा नहीं हो पाते सीख पाते हैं, लेकिन ज्वाइंट फैमिली के बच्चे ज्यादा सीख पाते हैं। तो संगठन का यही उद्देश्य भी होता है। क्या होता है जब 10 दीदी मिलकर एक ग्रुप बनाती है 10 से 12 दीदी, तो सब दीदी एक जैसी होती नहीं है, लेकिन अध्यक्ष सचिव देखिएगा कुछ ही दीदी चुना जाती है और हमेशा दीदी लोग बोलती है आप लोग चुनिए, लेकिन बदलाव जो होता रहता है 2 साल में यही क्षमता वर्धन के लिए होता है कि आप भी एक मौका लीजिए और आप भी जाके सीखिए कि कैसे काम करना है, कैसे बैंक जाना है, कैसे बैंकर से बात करना है, कैसे समूह में जाना है, कैसे ग्राम संगठन में अपने आप को रखना है। इस चीज के लिए इसका बदलाव होना बहुत जरूरी है और एक दूसरे का देखना, एक दूसरे को देखने से अगर हम कुछ सीखते हैं तो जरूर जाना चाहिए और जरूर सीखना चाहिए।
1: श्रेया जी बहुत बहुत शुक्रिया महिलाओं को इतनी अच्छी जानकारी देने के लिए। जो संजीवनी आजीविका संसाधन केंद्र है वो इतने अच्छे तरीके से काम कर रहा है जिला प्रशासन के सहयोग से, सरकार के स्कीम के सहयोग से। मैं चाहूँ कि अब जो आपके आजीविका संसाधन केंद्र से जुड़ी महिलाएं, मैं उनसे भी बात करूं और उनसे समझूं कि उनके जिंदगी में क्या बदलाव आया है।
0: तो मैं यहाँ पे जैसे कि हमारी जो क्लस्टर स्तरीय जो संघ है, क्लस्टर स्तरीय संघ जो है उसमें भी उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है आजीविका संसाधन केंद्र में। थोड़ा सा मैं ब्रीफ कर दूं कि कैसे रहा कि इनको जो सामुदायिक निवेश निधि मिली जो SHG VO में ये लोग देती है दीदी को व्यक्तिगत लोन लेके अपना काम करने के लिए, उसका कुछ छोटा सा भाग इन्होंने आजीविका संसाधन केंद्र में इन्वेस्ट किया है ताकि वहाँ पे जो मिल वगैरह का खर्चा है वो लोग निकल पाए और वो लोग मिल खरीद के वहाँ पे काम करे और वहाँ से आजीविका संसाधन केंद्र से भी उनको वही सूद प्राप्त होता है जो उनको ग्राम संगठन से होता है। तो यही सोच के उनका एक सोच बना कि वो कैसे अपना छोटा सा पार्ट को वहाँ पे देके एक काम स्टार्ट करे। डॉली देवी हैं, हरियाली महिला क्लस्टर संघ की।
1: और अब श्रोताओं हम डॉली जी से बात करते हैं जो इस संसाधन केंद्र से जुड़कर अपनी जिंदगी को जिन्होंने बदली है। डॉली जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। डॉली जी बताएं सबसे पहले तो कितना एक बदलाव आपके जिंदगी में आया, आप जब से समूह से जुड़ी इन कामों से जुड़ी कितना एक बदलाव आया आपकी जिंदगी में?
2: मेरी जिंदगी में बहुत बदलाव आया है। हम लोग पहले मतलब अपने से मैंने अपने जैसे पति की कमाई पर रहते थे, अब तो हम लोग मैंने थोड़ा हम लोग का भी अच्छे खासा पैसा आने लगा, और सब समूह की दीदी संगठन एक बनाकर हम लोग वहाँ आजीविका

0: रही है। मेरा तो ये है कि मेरी बेटी भी पढ़ने चल गई है बाहर। ना हम लोग का ये हुआ, पहले तो हम लोग किसी तरह पढ़ा रहे थे, पहले घर घर से दीदी सब नहीं निकलती थी, आज हर दीदी के जो है बाहर जा रही है, बैंक जा रही है, सब ये सब बहुत सा बदलाव आया है अभी हमारी जिंदगी में।
1: आपको कितना अच्छा अब लगता है कि जब आपको 20 रुपए का कोई सामान खरीदना है, 100 रुपए का कोई सामान खरीदना है, इसके लिए आपको किसी से पैसे मांगने की जरूरत नहीं, आप अपने पैसे से खरीद सकती है, तब आप
0: हाँ
1: कितना
0: हाँ
1: अच्छा महसूस करती हैं।
0: मैं बहुत अच्छा से महसूस करते हैं कि ये पैसा मेरा है, बस ये लगता है।
1: समाज में एक बदलाव आया, लोगों का नजरिया आप लोगों के प्रति
0: जी जी
1: बदला, क्या क्या पाती हैं समाज में?
0: समाज में बहुत पट्टा है कि हाँ ये लोग जा रही है, ये लोग ब्लॉक जा रही है, ये लोग 10 दीदी से मिल रही है, थाना जा रही है, मतलब बहुत सा जगह हम लोग को इज्जत मिलता है कि ये दीदी SHG की दीदी है, ग्राम संगठन CLF से ये लोग जुड़ी हुई है और ब्लॉक से जुड़ी हुई है।
1: नई नई दीदियां आपसे पूछती हैं, महिलाएं पूछती हैं कि दीदी हम लोग कैसे जुड़ सकते हैं या हम लोग कैसे काम कर सकते हैं, ये सब पूछती हैं आप लोगों से?
0: हाँ हाँ पूछती है और हम लोग दीदी लोग को प्रेरित करते हैं कि जैसे हम लोग जुड़कर आज इतना खुशहाल है, आप लोग भी जुड़िए। और बहुत दीदी हर घर में SHG जुड़ गई है,
1: क्या
0: बहुत।
1: कहेंगे आप, बहुत सारी महिलाएं आपको सुन रही हैं जो घर से निकलकर बाहर काम करना चाहती हैं, उनसे आप क्या कहेंगे?
0: हम तो यही कहना चाहेंगे जो निकल रही है वो तो अपना आजीविका बढ़ा ही रही है, आज मैंने इतना दीदी से मिलने को मिलता है और सभी दीदी को हमको लगता है कि हम धन्यवाद करेंगे कि वो घर घर से निकल रही, पहले घूंघट में रहती थी दीदी, अब बाहर निकल रही है।
1: और जो नई दीदी घर से निकलकर काम करना चाहती हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे, उनसे क्या कहना चाहेंगे?
0: उनको भी कहेंगे कि जैसे हम निकले हैं, सभी दीदी निकले हैं, और आप भी निकलिए, आप SHG से जुड़िए, VO से जुड़िए, CLF से जुड़िए, अपना आजीविका बढ़ाइए, अपने परिवार को खुशहाल।
1: डॉली जी, हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
0: जी आपको भी।
1: और अब कार्यक्रम बढ़ते कदम में हमारे साथ एक और दीदी हैं जो आजीविका संसाधन केंद्र से जुड़कर उन्होंने भी अपनी जिंदगी बदली है। कविता जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। कविता जी, क्या करती हैं आप वहाँ जुड़कर, आप क्या कर रही हैं पहले ये बताएं।
2: सर हम तो यहाँ जुड़ के अपना उन्नति के लिए जुड़े हैं, अपना आजीविका के लिए जुड़े हैं, अपना पहचान के लिए जुड़े हैं, एक नया पहचान मिला हमको इससे जुड़ के।
1: क्या करती हैं आप वहाँ पे?
2: हम यहाँ पे दीदी को प्रेरित करते हैं, और जो मतलब कि जो दीदी घर में रह के कुछ नहीं कर सकती थी, अपना मतलब अपने आप को जो दीदी अपने आप को नहीं पहचान रही थी, वो दूसरे का पहचान बन रहा है, और मतलब कि दीदी सब अपने से उत्साहित होके अपना आजीविका मतलब अपना आजीविका का कमाई से जो उनको उन्नति हो रहा है, उनमें उनको बहुत मतलब आनंद आ रहा है।
1: आप अपने जिंदगी के बारे में बताएं कि पहले आप कैसी थी और समूह से जुड़ने के बाद आपके जिंदगी में क्या बदलाव आया?
2: हाँ सर, वो पहले मेरा जिंदगी मतलब जैसे हम पहले थे, जो कि हम अपना मोहल्ले के लोगों को नहीं पहचानते थे, अपना घर में रहते थे सिर्फ, अपना घूंघट में, ना तो किसी को जानती थी ना पहचानती थी, और घर में जैसे कि लगता था मतलब कुछ नहीं है हम लोग का वजूद, और अब हमको SHG से जुड़ के मतलब बाहर निकलने को मिल रहा है, हम थाना जाते हैं, बैंक जाते हैं, ब्लॉक जाते हैं, हम अपना संगठन बनाए हैं, मतलब बड़े बड़े लोगों से मिलना जुलना होता है, बहुत कुछ सीखे हम,
1: कितना आज आत्मविश्वास में कितना एक बदलाव आया है।
2: बहुत बदलाव आया है सर। जो हमारा जिंदगी था वो मतलब लग रहा नहीं था कि हम कुछ हैं, लेकिन अभी हम लगते हैं हाँ हम कोई तो है और मेरा कुछ वजूद है।
1: अब ऐसा है कि आप अपने कमाई से अपने अपने बच्चों के लिए कुछ कर पाती हैं अपने?
2: हाँ बिल्कुल, हम अपने बच्चे को एकदम अच्छे से शिक्षा प्रदान कर सकते हैं, बच्चे को मतलब कुछ चीज का जरूरत पड़ता था तो पहले हम अपना हस्बैंड से मांगा करते थे, और अब हमें मांगने का जरूरत नहीं होता है, अपने से हम पूरा कर सकते हैं।
1: चलिए, बहुत बहुत बधाई है। एक बात बताएं, आज बहुत सारी महिलाएं आपको सुन रही हैं, वो भी काम करना चाहती हैं, वो भी जुड़ना चाहते हैं, उनसे क्या कहेंगी आप?
2: हम उनसे सिर्फ यही कहना चाहेंगे कि जो भी महिलाएं हो वो अपना अपना अंदर अपना स्वंदर ऐसा मजबूती लाए और अपना SHG में जुड़े, SHG से जुड़ के अपना आजीविका को बढ़ाए, बढ़ा के अपना परिवार एकदम साल जिंदगी जिए वो, और अच्छे से मिलजुल के काम करने से, जैसे हम अकेले कमाई जो होते थे हस्बैंड का, उनका अकेले उनके अकेले अपन का कमाई से अपना जो मतलब खुशहाल जिंदगी नहीं जी पाते थे, मतलब जैसे खाना पीना में ही खत्म हो जाता था गरीब गरीब लोगों का, और अभी जो हम दो लोग कमाते हैं तो हम अच्छे अच्छे से बच्चा का शिक्षा भी करवा सकते हैं, पढ़ा भी सकते हैं, और अपना जिंदगी भी खुशहाल जी सकते हैं।
1: अब तो ऐसा भी होता होगा कि परिवार में आपसे भी लोग सलाह लेते होंगे कि क्या करना चाहिए, नहीं करना
2: हाँ
1: चाहिए, वो भी एक
2: बिल्कुल सर
1: बदलाव।
2: बिल्कुल, हमारे परिवार में जो कि हमें नहीं पूछते थे, अभी हमको बुला के पूछा जाता है कि हम ये काम करें या ना करें।

0: हाला लिया जाता है।
1: यानी एक नजरिया में भी बदलाव नजर आता है, समाज में भी, समाज के लोगों में।
0: हाँ बिल्कुल, हमें तो अब आम सभा होते हैं, क्या कहते हैं, जैसे पंचायत भवन में पंचायत होता है वहाँ भी बुलाया जाता है। पहले तो हम लोग को कोई अलाउट नहीं था वहाँ जाने का, अब तो उनके साथ बैठ के बात को रखने का, बात का निष्कर्ष निकालने का भी मौका मिलता है।
1: बहुत बहुत बधाई है, ऐसे ही आप लोग मुस्कुराते रहें, अच्छा काम करते रहें, और बढ़ते कदम कार्यक्रम में आप सभी का जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।
2: बढ़ते कदम कार्यक्रम के आज के इस अंक में बस इतना ही। मैं उम्मीद करता हूं कि जब भी बात हम विश्वास की करते हैं, जब भी बात हम एक नई ऊर्जा की करते हैं, जब भी बात हम एक नई शुरुआत की करते हैं, तो हमारे सामने हम खुद आते हैं। आप भी शुरुआत कीजिए एक विश्वास के साथ, एक सकारात्मक सोच के साथ, आपके जिंदगी में भी वो बदलाव नजर आएगा। कार्यक्रम के अगले अंक में फिर हाजिर होंगे एक नए मेहमान नए विषय के साथ। कार्यक्रम की प्रस्तुति थी प्रभु शरण की। अब मुझे यानी कमलेश कुमार मिश्र को दीजिए इजाजत। नमस्कार।
3: इस समय आप सुन रहे थे कार्यक्रम बढ़ते कदम। प्रस्तुति स्वर कमलेश कुमार मिश्रा की थी, प्रस्तुति प्रभु शरण का। मीडियम वेव 546.45 मीटर यानी 549 किलोहर्ट्ज तथा FM 100.5 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। अगले कार्यक्रम से पूर्व आइए आज के कुछ कार्यक्रमों के संबंध में जानकारी प्राप्त करते चलें।

अब से कुछ देर बाद यानी 4:35 पर आप सुन सकेंगे फिल्म संगीत। कार्यक्रम होगा सांझ सरगम। संध्या 5 बजे, संध्या 6 बजे आप सुना करते हैं प्रादेशिक मुख्य समाचार, और संध्या 7 बजे का वक्त हुआ करता है प्रादेशिक समाचारों का।

5:02 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम श्रम युवाणी। युवा श्रोताओं को संबोधित इस कार्यक्रम में आप जानकारी प्राप्त कर सकेंगे वन महोत्सव सप्ताह के संबंध में। आप सुनेंगे फिल्म संगीत, इतिहास में आज का दिन, रोचक तथ्य और समसामयिकी। 5:30 पर श्रमिक बंधुओं का दैनिक कार्यक्रम श्रमिक लोक। कार्यक्रम में आज चर्चा का विषय होगा वन है तो हम हैं, कार्यस्थल पर सुरक्षा जरूरी, नशा मुक्त भारत अभियान। संध्या 6:02 पर कार्यक्रम होगा खेतीबाड़ी। कार्यक्रम में चर्चा की जाएगी फूलों की व्यावसायिक खेती के संबंध में। साथ ही डॉक्टर कुस्मिता धान जानकारी देंगी संरक्षित खेती आज की आवश्यकता। 6:30 पर कार्यक्रम में चर्चा की जाएगी बच्चों को संस्कारवान बनाएं। साथ ही आप सुनेंगे वंदना मुंडा की वार्ता जलवायु परिवर्तन और उसके दुष्परिणाम। आदिवासी अखड़ा आप सुन सकेंगे 7:15 पर। आज का यह कार्यक्रम मुंडारी भाषा में है। कार्यक्रम में चर्चा की जाएगी मच्छर जनित बीमारियां और उसके बचाव के संबंध में। साथ ही आपको जानकारी दी जाएगी जल रस संरक्षण के संबंध में। प्रायोजित कार्यक्रम उड़ान आप सुन सकते हैं 7:45 पर इसी सभा में। रात्रि 8:00 फिल्म संगीत, कार्यक्रम होगा रजनीगंधा। 8:30 पर कार्यक्रम सुर्खियों में, 8:45 पर समाचार संध्या, रात्रि 9:00 न्यूज एट 9 और 9:15 पर उर्दू में समाचार। हिंदी नाटक आप सुन सकते हैं रात्रि 10:00 और 10:30 पर शास्त्रीय संगीत में। आज आप सुनेंगे पंडित हरिप्रसाद चौर

रसिया का बांसुरी वादन। श्रोता, इस समय हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के संबंध में जानकारी प्राप्त कर रहे थे। आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है।

आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। आइए सुनते हैं फिल्म संगीत, कार्यक्रम है सांझ सरगम। कार्यक्रम में सबसे पहले सुनते हैं एसपी बाल सुब्रमण्यम और लता मंगेशकर को फिल्म एक दूजे के लिए में। शब्द रचना अनबक्सी की है, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

कार्यक्रम सहन सरगम में आगे सुनते हैं आनंद बख्शी की शब्द रचना लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के बनाए धुन पर। इस गीत को स्वर दिया है किशोर कुमार, लता मंगेशकर, मोहम्मद रफी और मुकेश नो। फिल्म का नाम है अमर अकबर एंथोनी।

0: आशा भोसले और किशोर कुमार के गाए इस गीत के साथ ही आज का फिल्म संगीत का कार्यक्रम सांझ सरगम अब समाप्त होता है। आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है, आइए सुनते हैं प्रादेशिक मुख्य समाचार।
1: नमस्कार, अब तक के मुख्य समाचारों के साथ मैं तृप्ति कुमारी। रांची में ट्रैफिक नियमों की अनदेखी करने वालों के खिलाफ यातायात पुलिस ने जून महीने में अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई की है। पूरे महीने में रिकॉर्ड 1,24,000

144 वाहनों का चालान काटा गया है, जिससे करीब 9.5 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया है। सरायकेला खरसावा के करणी सेना नेता हिमांशु सिंह हत्याकांड को लेकर सियासत और गर्मा गई है। पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने आज पीड़ित परिवार से मुलाकात के बाद राज्य सरकार और पुलिस प्रशासन को सभी आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया है। लोहरदगा में विशेष सघन पुनरीक्षण अभियान 2026 की शुरुआत हो गई है। जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त संदीप कुमार मीना ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि इस अभियान के तहत बीएलओ घर घर जाकर गणना पत्र का वितरण और संग्रहण करेंगे। साहिबगंज के समाहरणालय परिसर से आज उपायुक्त दीपक कुमार दुबे ने कृषि विभाग द्वारा संचालित बिरसा कृषि रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये रथ 1 जुलाई से 15 जुलाई तक जिले के सभी प्रखंडों की पंचायतों में खरीफ मौसम से पहले किसानों को आवश्यक कृषि तकनीकों की विस्तृत जानकारी उपलब्ध कराएगा। राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस के अवसर पर आज हजारीबाग के जिला संयुक्त औषधालय आयुष भवन में एक गरिमामय कार्यक्रम का दौरान आयोजन किया गया। जिला आयुष चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर एसएन तिवारी के नेतृत्व में चिकित्सकों और स्वास्थ्य कर्मियों ने केक काट कर यह विशेष दिन मनाया। राष्ट्रीय चिकित्सक और चार्टर्ड अकाउंटेंट्स दिवस के अवसर पर गिरिडीह में लायंस क्लब ऑफ गिरिडीह जागृति द्वारा एक विशेष सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में समाज और राष्ट्र निर्माण में उत्कृष्ट योगदान देने वाले शहर के प्रख्यात चिकित्सकों और चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को सम्मानित किया गया। इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 6 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: हेलो एंड गुड इवनिंग दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ, मस्त और हमारे इस प्रोग्राम का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे होंगे। दोस्तों, आज मैं हूं आपका दोस्त निश्चय
1: और मैं हूं आपकी दोस्त स्नेहा।
0: हम दोनों की ओर से आप सभी को हमारा प्यार भरा नमस्कार। तो दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं, यह जुलाई का पहला सप्ताह है और देश भर में वृक्षारोपण सप्ताह के रूप में भी मनाया जाता है। बहुत से लोग ऐसा सोचते हैं कि ये कोई नया सरकारी अभियान है, लेकिन दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं है।
1: बिल्कुल निश्चय, वन महोत्सव का अर्थ केवल पेड़ लगाना नहीं है, बल्कि ये प्रकृति के प्रति हमारे जुड़ाव को फिर से जीवंत करने का एक उत्सव है। इसका इतिहास देखें तो 1950 में तत्कालीन कृषि मंत्री K.M. मुंशी जी ने इसकी शुरुआत अधिक पेड़ लगाओ के संदेश के साथ की थी।
0: और बहुत पुरानी और नेक शुरुआत थी, लेकिन स्नेहा, आज के दौर में इसका महत्व और भी बढ़ गया है। जलवायु परिवर्तन और बढ़ते प्रदूषण के बीच जंगल ही हमारे सबसे बड़े रक्षक हैं। क्या तुम बता सकती हो कि एक पेड़ वास्तव में पर्यावरण को कैसे संतुलित रखता है?
1: हाँ बिल्कुल, एक स्वस्थ बड़ा पेड़ साल भर में लगभग 22 किलोग्राम कार्बन डाइऑक्साइड सोख सकता है और इतना ही ऑक्सीजन छोड़ता है, जो चार लोगों के लिए काफी है। इसके अलावा पेड़ नेचुरल एयर कंडीशनर का काम करते हैं। जहाँ पेड़ ज्यादा होते हैं, वहाँ का तापमान आसपास के क्षेत्रों की तुलना में 3 से 4 डिग्री सेल्सियस तक कम रहता है।
0: यानी पेड़ न केवल हमें ऑक्सीजन देते हैं, बल्कि ग्लोबल वार्मिंग के प्रभाव को भी कम करते हैं। और अब जानते हैं कि आखिर इस पूरे हफ्ते में होता क्या है। इस दौरान देश भर में बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण यानी कि प्लांटेशन ड्राइव चलाई जाती है और स्कूल, कॉलेज और दफ्तरों में लोग मिलकर पौधे लगाते हैं।
1: इसके अलावा पर्यावरण को लेकर जागरूकता रैलियां निकाली जाती है, बच्चों के लिए पेंटिंग और क्विज कॉम्पिटिशन होती है और कई जगहों पर मुफ्त पौधे भी बांटे जाते हैं ताकि हर नागरिक इसमें हिस्सा ले सके। दोस्तों, जुलाई के पहले हफ्ते

0: को इसलिए चुना गया क्योंकि इस समय देश के ज्यादातर हिस्सों में मानसून आ जाता है। इस मौसम में लगाए गए पौधे को बचाने और बढ़ने की संभावना सबसे ज्यादा होती है।
1: लेकिन दोस्तों, इस महोत्सव का असली मकसद तब पूरा होगा जब हम सिर्फ एक दिन फोटो खिंचवाने के लिए पौधा ना लगाएं, बल्कि उसकी पूरी देखभाल करने की जिम्मेदारी भी लें। इस साल आप भी अपने घर के आसपास या किसी खाली जगह पर कम से कम एक पेड़ तो जरूर लगाएं।
0: बिल्कुल, याद रखिए कि प्रकृति हमें बहुत कुछ देती है। अब समय है कि हम भी उसे वापस लौटाएं। इस वन महोत्सव एक पेड़ लगाकर उसे अपने बच्चे की तरह पालने का संकल्प लें। अभी हमने जाना कि पेड़ लगाना कितना जरूरी है, लेकिन क्या केवल पौधे लगा देना ही काफी है? नहीं ना, जितना जरूरी नए पौधे लगाना है उतना ही जरूरी है हमारे मौजूदा वनों का संरक्षण करना। तो अब हम इसी विषय यानी वन संरक्षण पर बात करेंगे।
1: बिल्कुल स्नेहा। और दोस्तों, हम अक्सर कहते हैं कि प्रकृति ने हमें सब कुछ दिया है, लेकिन क्या हमने कभी सोचा है कि हम अपनी भावी पीढ़ी को क्या देकर जा रहे हैं? वन केवल लकड़ी या फल देने वाले संसाधन नहीं है, वे हमारी आने वाली पीढ़ियों की धरोहर है।
0: बिल्कुल, वन संरक्षण का अर्थ है एक ऐसी सुरक्षित और स्वस्थ दुनिया का निर्माण करना जहां आने वाली पीढ़ी चैन से सांस ले सके। लेकिन क्या युवा पीढ़ी इस जिम्मेदारी को समझ रही है?
1: निश्चित रूप से आज के युवा अधिक जागरूक हैं। वे समझ रहे हैं कि यदि जंगल खत्म हुए तो न केवल शुद्ध हवा कम होगी, बल्कि जल संकट भी गहराएगा और वनों का विनाश सीधे तौर पर सूखे और बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदाओं को न्योता देता है।
0: हाँ, जो वन आज हम देख रहे हैं वे हमारे पूर्वजों द्वारा संरक्षित किए गए थे। अगर हम आज जंगलों को काटते रहेंगे तो हमारे बच्चों के लिए सिर्फ कंक्रीट के जंगल और दूषित वातावरण ही बचेगा। संरक्षण ही एकमात्र विकल्प है। इसके लिए हमें तीन मुख्य मंत्र अपनाने होंगे। पहला, न्यूनतम दोहन यानी जरूरत से ज्यादा संसाधनों का उपयोग ना करना। दूसरा, पुनर्रोपण यानी जितने पेड़ हम काटे उससे ज्यादा पेड़ लगाए। और तीसरा, जागरूकता यानी अपनी भावी पीढ़ी को बचपन से ही प्रकृति से जोड़ना।
1: बिल्कुल, और बच्चों को ये सीखना होगा कि पेड़ लगाना एक उत्सव है और उनकी रक्षा करना एक संस्कार। जब एक बच्चा अपने हाथ से पौधा लगाता है तो वह केवल एक पेड़ नहीं बल्कि एक भविष्य की नींव भी रखता है। और दोस्तों, वन संरक्षण केवल सरकार या वन विभाग का काम नहीं है, यह हर नागरिक का नैतिक दायित्व है कि ये हमारे बच्चों के लिए एक ऐसा सेविंग है दोस्तों, जो उन्हें कभी कर्ज में नहीं डूबने देगी।
0: बिल्कुल, याद रखिए हम इस पृथ्वी के मालिक नहीं बल्कि इसके संरक्षक हैं। आज के इस वन महोत्सव के दौरान आइए हम ये संकल्प ले कि हम अपने बच्चों को एक हरा भरा और सुरक्षित भविष्य सौंपेंगे। दोस्तों, बातों का सिलसिला तो यूं ही चलता रहेगा। आइए ले चलते हैं आपको मनोरंजन की ओर और सुनते हैं ये सॉन्ग।

0: तो दोस्तों आइए अब बढ़ते हैं हम अपने आज के खास सेगमेंट की ओर, इतिहास में आज का दिन। कहते हैं ना दोस्तों कि इतिहास सिर्फ पुरानी बातें नहीं होती, बल्कि ये हमें बताता है कि हमारे आज की नींव किन घटनाओं से बनी है।
1: बिल्कुल निश्चय। और आज यानी 1 जुलाई का दिन भी इतिहास के पन्नों में कई महत्वपूर्ण घटनाओं के लिए जाना जाता है। तो चलिए जानते हैं ऐसी ही कुछ रोचक घटनाएं।
0: दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं साल 1867 की, जब 1 जुलाई को यानी कि आज के दिन कनाडा एक स्वशासित राज्य के रूप में अस्तित्व में आया। इसी वजह से आज के दिन वहां कनाडा डे के रूप में भी मनाया जाता है।
1: और निश्चय इसी तारीख को 1863 में अमेरिका का प्रसिद्ध बैटल ऑफ गेटिसबर्ग शुरू हुआ था, जो अमेरिका गृह युद्ध की सबसे बड़ी लड़ाइयों में से एक माना जाता है।
0: और अब बात करते हैं तकनीक की दुनिया की, तो साल 1979 में 1 जुलाई को सोनी कंपनी का वॉकमैन पहली बार बाजार में आया था। उस समय ये एक ऐसी तकनीक थी जिसने लोगों के संगीत सुनने के तरीके को पूरी तरह से बदल दिया था।
1: वाह, यानी आज की तरह मोबाइल और स्ट्रीमिंग से पहले लोगों के पास अपना पसंदीदा संगीत साथ रखने का एक नया तरीका आया था।
0: बिल्कुल।

0: और इसके अलावा 1 जुलाई 2002 को इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट यानी कि आईसीसी की स्थापना हुई थी। इसका उद्देश्य यह था कि युद्ध अपराध, मानवता के खिलाफ अपराध और गंभीर अंतर्राष्ट्रीय अपराधों पर कार्रवाई करना है।
1: और दोस्तों, भारत की बात करें तो 1 जुलाई का दिन हमारे लिए भी खास है। इसी दिन भारत में राष्ट्र चिकित्सक दिवस मनाया जाता है, जो महान चिकित्सक और पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर बिधान चंद्र रॉय की याद में मनाया जाता है।
0: तो दोस्तों, आज की इन घटनाओं से हमें यह सीख मिलती है कि हर तारीख अपने अंदर कई कहानियां छुपाए रखती है। इतिहास हमें सिर्फ पीछे देखने के लिए नहीं, बल्कि आगे बढ़ने की प्रेरणा भी देता है।
1: बिल्कुल।
0: दोस्तों, अब क्या आप जानते हैं कि धरती पर मौजूद सभी चींटियों का कुल वजन मिलाकर लगभग इंसानों के कुल वजन के बराबर माना जाता है? यानी ये छोटी सी दिखने वाली जीव दुनिया में कितनी बड़ी भूमिका निभाती है, इसका अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है। दोस्तों, ये था हमारा पहला रोचक तथ्य। अब ऐसे ही हम आगे और भी रोचक तथ्य जानेंगे जो कि सच में बहुत हैरान कर देने वाले हैं।
1: और एक रोचक बात सुनिए, ऑक्टोपस के 3 दिल होते हैं। इनमें से 2 दिल उसके गलफड़ों तक खून पहुंचाते हैं, जबकि तीसरा पूरे शरीर में। सबसे हैरानी की बात यह है कि जब ऑक्टोपस तैरता है, तो उसका मुख्य दिल कुछ समय के लिए धड़कना बंद कर देता है।
0: और एक ऐसी बात जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी, अंतरिक्ष में अगर कोई रो पड़े तो आंसू नीचे नहीं गिरते। गुरुत्वाकर्षण ना होने के कारण वे आंखों के आसपास ही छोटी छोटी बूंदों के रूप में तैरते रहते हैं।
1: अब सुनिए एक और अनोखा तथ्य। हमारी नाक सिर्फ खुशबू ही नहीं पहचानती, बल्कि हर इंसान की अपनी एक अलग सुगंध पहचान होती है। ठीक वैसे ही जैसे हर व्यक्ति के फिंगरप्रिंट अलग होते हैं।
0: अब एक आखिरी रोचक तथ्य। वैज्ञानिकों का मानना है कि पेड़ पौधे अपनी जड़ों के माध्यम से मिट्टी के अंदर मौजूद फंगस के जाल से मदद से एक दूसरे तक पोषण तत्व और चेतावनी संदेश भी पहुंचा सकते हैं, और इसे कई लोग प्रकृति का वुड वाइड वेब भी कहते हैं।
1: सचमुच हमारी दुनिया रहस्यों और अद्भुत जानकारियों से भरी हुई है। जितना हम सीखते हैं, उतना ही महसूस होता है कि जानने के लिए अभी बहुत कुछ बाकी है।
0: बिल्कुल। और दोस्तों, अब आगे की चर्चा पर तो हम जरूर बढ़ेंगे, मगर आइए लेते हैं एक म्यूजिकल ब्रेक।

0: दोस्तों, अब बात करते हैं समसामयिकी की। आज 1 जुलाई 2026 से देश में कई महत्वपूर्ण नियम लागू हो गए। सबसे पहले 19 किलोग्राम वाले जो व्यावसायिक एलपीजी सिलेंडर है उनकी कीमत लगभग 183.50 रुपीज़ की कमी हुई है। वहीं 14.2 किलोग्राम वाले जो घरेलू एलपीजी सिलेंडर हैं उनकी कीमत इस बार उसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है।
1: इसके अलावा बैंकिंग क्षेत्र में ग्राहकों के हितों की सुरक्षा के लिए कुछ नए नियम लागू किए गए। कई बैंकों ने अपने क्रेडिट कार्ड से जुड़े नियमों में संशोधन किया है। इनमें रिवार्ड पॉइंट अर्जित करने की शर्तें, एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस और कुछ मामलों में शुल्क एवं लाभ में बदलाव शामिल किए गए हैं।
0: वहीं पासपोर्ट सेवाओं में भी बदलाव हुआ है दोस्तों। आज से नए पासपोर्ट आवेदन शुल्क लागू हो गए हैं। सामान्य पासपोर्ट की फीस 1500 से बढ़कर 2500 तक हो गई है और तत्काल पासपोर्ट की फीस 5000 कर दी गई है।
1: केंद्र सरकार ने CBDT यानी केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के अध्यक्ष रवि अग्रवाल का कार्यकाल 31 दिसंबर 2026 तक बढ़ा दिया है।
0: और दोस्तों, फीफा विश्व कप 2026 में नॉकआउट चरण के राउंड ऑफ 32 के मुकाबले जारी हैं। आज इंग्लैंड वर्सेस डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, बेल्जियम वर्सेस सेनेगल और अमेरिका वर्सेस बॉस्निया एवं हर्जेगोविन के बीच अहम मुकाबले खेले जा रहे हैं। इन मैचों की विजेता टीम राउंड ऑफ 16 में अपनी जगह पक्की करेंगी।
1: आज भारत में नेशनल डॉक्टर्स डे, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स डे और GST डे तीनों महत्वपूर्ण दिवस मनाए जा रहे हैं।
0: दोस्तों, अब आगे की चर्चा पर बढ़ने से पहले आइए हम लेते हैं एक और म्यूजिकल ब्रेक।

0: तो दोस्तों, आज के कार्यक्रम के समापन की ओर बढ़ने का समय आ गया है। जाते जाते एक छोटी सी लेकिन बहुत बड़ी बात आप सभी से कहना चाहेंगे। एक पेड़ जरूर लगाएं।
1: बिल्कुल निश्चय। हम अक्सर कहते हैं कि हमें स्वच्छ हवा चाहिए, ठंडी छांव चाहिए और अपने और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक सुरक्षित भविष्य चाहिए, लेकिन यह सब तभी संभव

0: होता दोस्तों, वह हमें ऑक्सीजन देता है, वातावरण को शुद्ध करता है और पक्षियों को आश्रय भी देता है और धरती का संतुलन बनाए रखने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाता है दोस्तों। एक छोटा सा पौधा समय के साथ ना जाने कितनी जिंदगियों का सहारा बन जाता है। तो आइए दोस्तों, आज हम सभी मिलकर एक छोटा सा संकल्प लें, एक पेड़ जरूर लगाएंगे और उसकी देखभाल करेंगे और दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित करेंगे, क्योंकि प्रकृति हमें जीवन देती है और उसका रक्षा करना हमारा कर्तव्य है।
1: दोस्तों, घड़ी की सुइयां अब हमें इजाजत दे रही है, मिलेंगे आपसे नई जानकारियों के साथ। तब तक दीजिए अपनी दोस्त स्नेहा
0: और मुझे निश्चय
1: को इजाजत। नमस्कार।
2: इस समय आप सुन रहे थे युवा श्रोताओं को संबोधित हमारा दैनिक कार्यक्रम युववाणी, आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। आइए सुनते हैं श्रमिक बंधुओं का दैनिक कार्यक्रम श्रमिक लोक।

0: सभी को जुहार नमस्कार। श्रमिक लोक में आप सभी का तहे दिल से हम स्वागत करते हैं।
1: बिल्कुल, मैं आपकी दोस्त मीनाक्षी
0: और मैं पूजा। अब जरा सफर की ओर भी बढ़ लेते हैं मीनाक्षी जी।
1: बिल्कुल, हम तो पूरी तैयारी के साथ हैं। देखो पूजा, श्रमिक साथियों, पहले तो ये बताइए कि क्या हाल है आपके?
0: हाल चाल तो बढ़िया होना चाहिए।
1: बिल्कुल बिल्कुल। श्रमिक साथियों, आज का दिन बेहद खास है। क्यों पूजा? क्योंकि आज से ही शुरू हो रहा है पूरे सप्ताह भर चलने वाला वन महोत्सव, जिसकी जड़ें धरती को बांधे रखती हैं। पत्तों पत्तों में जीवन की सांसें बसती हैं, मत काटो इन्हें, ये बुजुर्गों की निशानी है, जिसे ये उजड़ गए समझो दुनिया वीरानी है।
0: बिल्कुल, क्या बात कहा है आपने। बिल्कुल। और मीनाक्षी जी, मैं अभी इस कड़ी को थोड़ा आगे ले जाना चाहूंगी।
1: जरूर जरूर, इजाजत हो। अरे स्वागत है, बताओ भाई।
0: एक पेड़ लगा दो यारो, एक पेड़ लगा दो यारो, ये कर्ज उतार दो, आने वाली नस्लों के लिए धरती सवार दो।
1: क्या बात है।
0: हरियाली की असली जो सोना है, बाकी सब कुछ नहीं है, सब खोना है कहानी।
1: इसलिए एक संकल्प हमें लेना है, पेड़ बचाएंगे यानी जिंदगी बचाएंगे। और इस जो वन महोत्सव अभी चल रहा है, आज से जिसकी शुरुआत हुई है, उसमें हम सबको एक संकल्प लेना ही होगा। मुझे पता है, एक ऐसा त्यौहार है जिसमें दिए नहीं जलते बल्कि पेड़ लगाए जाते हैं, और ये एक ना ढोल बजते हैं ना नाच गाना होता है, बस मिट्टी और सांसें, इनका जो संपर्क है उसे और इस संबंध को और गहरा करने की कोशिश।
0: और कह सकते हैं कि मिट्टी और सांसों का संबंध सबसे गहरा होता है, क्योंकि जिस मिट्टी में हम जन्मते हैं, जिस मिट्टी में हमें, कह सकते हो, अगर वो मिट्टी ना हो तो हमें सांस नहीं आएगी। बिल्कुल। तो ये जो संबंध है हमारे जीवन से, ये सबसे अनोखा और सबसे अनमोल संगम है।
1: बिल्कुल।
0: तो जैसा कि आपने सही कहा है कि आज से 7 जुलाई तक पूरे भारत में वन महोत्सव मनाया जाएगा, जिसकी शुरुआत कह सकते हैं 1915 में हुई थी। उस वक्त कृषि मंत्री जो रहे हमारे KM मुंशी जी ने इसकी शुरुआत की थी।
1: बिल्कुल। कहते हैं ना श्रमिक साथियों, पेड़ बचाओ पेड़ लगाओ, क्योंकि एक पेड़ 10 AC जितनी ठंडक हवा दे सकता है बिना किसी बिजली बिल के भी। और ये सोचिए, जिनके घरों के आसपास 3-4 पेड़ भी होते हैं, सोचिए कितना अच्छा लगता हो, वो व्यक्ति कितना धनी होता होगा, क्योंकि स्वच्छ वातावरण है, शुद्ध वायु होती होगी, अच्छी ऑक्सीजन सांस के लिए मिल रही होगी, हरियाली होगी जो आंखों को सुकून देगी, पर्यावरण को संरक्षित रखेगी, यानी बहुत सारी ऐसी खूबियां होंगी। एक पेड़ आपको बहुत सारे सुकून दे जाता है।
0: अगर एक पेड़ आपको 10 AC जितना ठंडक दे सकता है, तो हम AC ही क्यों लगाएं, क्यों ना पौधा ही लगा ले।
1: बिल्कुल। और इसमें इतना खर्च भी नहीं आता,
0: खर्च भी नहीं आता, और वो साइंटिफिकली आप देखें तो आपके हेल्थ पे भी कोई नुकसान नहीं होता है, आपके जेब पे भी कोई नुकसान नहीं होता। और एनवायरमेंटल की बात करें, एनवायरमेंट की बात करें, तो वो भी हमेशा शुद्ध रहता है।
1: बिल्कुल। मतलब पूरी बायोडायवर्सिटी को बचा कर रखने के लिए, पूरी जैव विविधता को बचा कर रखने के लिए, जंगलों का होना, पेड़ों का होना, वनों का होना और उनकी देखभाल करना हम सबके लिए बहुत जरूरी
0: है। बिल्कुल। आप देखते हैं कि हमारा जो स्टैंडर्ड लिविंग है वो बिल्कुल

0: गया है। पहले क्या होता था, हम जरूरत के हिसाब से अपने कमरे बनाते थे
1: बिल्कुल
0: और जो जगह बचती थी उसमें हम पेड़ पौधे लगाना
1: लगा
0: पसंद
1: लेते थे,
0: करते।
1: खेती करते
0: अभी
1: थे।
0: क्या हो गया है कि अगर हम दो लोग भी हैं तो हमें बहुत बड़ा
1: बड़ा
0: सा
1: घर
0: घर चाहिए,
1: चाहिए।
0: बड़े बड़े रूम्स चाहिए,
1: हाँ हाँ
0: और जो स्पेस हमें अपने पेड़ पौधों के लिए देनी चाहिए वो
1: वो
0: जगह
1: हमने
0: हमने खत्म,
1: कंक्रीट
0: कंक्रीट
1: में
0: में
1: बदल
0: तब्दील
1: दी।
0: कर दी
1: हाँ
0: है।
1: हाँ
0: तो सोचिए हमें गर्मी लगेगी, जो
1: बिल्कुल
0: प्रदूषण है वो आपके तक पहुंचेगा, क्योंकि
1: बिल्कुल
0: आसपास तो आपने पेड़ ही हटा दिया है।
1: बिल्कुल। तो अगर जैसे तुमने कहा कि अब हमें बड़े घर चाहिए, अपार्टमेंट का कल्चर आ गया है, तो जगहें छोटी हैं, जगह महंगी हो रही हैं, और बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ पर फैक्ट्रियाँ लग गई हैं, स्कूल कॉलेजेस खुल गए हैं, या किसी और काम में आ गया है। तो अगर आपके पास जगह कम है तो भी आप अपनी छतों पर बागवानी कर सकते हैं, छतों पर गमलों में आप पौधे लगा सकते हैं, हरियाली बरकरार रख
0: बिल्कुल,
1: सकते
0: और
1: हैं
0: वनों की हमने बात की है
1: ना।
0: तो इसके कटाव को तो हम सबको रोकना चाहिए।
1: बिल्कुल
0: और
1: बिल्कुल।
0: आप कोशिश कीजिए, जो हम घरों में ना बहुत सारे लकड़ी के ऐसे सामान यूज करते हैं जिससे कई सारी लकड़ियों को काट कर बनाए जाते हैं, आज के डेट में इतने सारे आपके पास ऑप्शंस हैं, तो मुझे लगता है कि उन ऑप्शंस को भी जगह देनी
1: हाँ
0: चाहिए।
1: बिल्कुल। मतलब जो लकड़ी की चीजें हैं उनकी जगह पे हम किसी और मटेरियल के बनी चीजों का
0: जो कि
1: प्रयोग करें,
0: रिसाइकिल हो सके।
1: रिसाइकिल हो
0: बिल्कुल।
1: सके। और इस पे बहुत सारे वैज्ञानिक शोध चल भी रहे हैं, बहुत सारी नई चीजें आ भी रही हैं, पर जरूरत इस बात की है कि हम बहुत संवेदनशीलता के साथ इस पर सोचे
0: बिल्कुल।
1: पूछे
0: और
1: बने।
0: पहले के टाइम की अगर हम बात करें श्रमिक लोक में अगर, तो हमारे श्रमिकों को भी जरूर याद होगा अपने बचपन की बातें, या फिर उनके पेरेंट्स जो बताते थे, जो उनके बने हुए मकान हुआ करते थे। कई मकान तो आज भी बहुत सुरक्षित हैं,
1: सुरक्षित
0: और
1: है।
0: किलो वगैरह की अगर हम बात करें, समुन्दर के अंदर भी वो कह सकते हैं बड़े बड़े किले बनाए
1: बनाए
0: दिए
1: जा
0: जाते थे। लेकिन कैसे, बहुत आसान तरीके में हम सोच सकते हैं कि नहीं, हम तो नहीं बना सकते क्योंकि हमारे पास टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा आ गई है, लेकिन फिर भी हम कंक्रीट बिठा रहे हैं।
1: बिल्कुल।
0: तब क्या होता था पता है,
1: क्या होता था?
0: उस वक्त ना जो जड़ी बूटियां होती है ना, जैसे गुड़ और बहुत सारे ऐसी चीजें होती थी जो
1: प्राकृतिक
0: मिट्टी में
1: चीजें,
0: मिलाकर उसे,
1: प्राकृतिक
0: बिल्कुल,
1: चीजें
0: उसे
1: मिलाकर
0: उससे ईंटें बनाई जाती थी, जो आज भी कह सकते पानी के संपर्क में आने से
1: खराब
0: वो
1: नहीं
0: खराब
1: होती।
0: नहीं होती थी। और
1: वर्षों
0: वो,
1: तक, 100 वर्षों तक वो
0: हाँ, और
1: टिकी
0: आपने
1: हुई
0: देखा
1: है।
0: होगा अगर बड़े बड़े विला की बात करें तो उन विला में बहुत सारे कमरे होते थे, लेकिन जंगल का भी जगह होता था।
1: बिल्कुल। तो ये जंगल की जगह सिर्फ हमारे लिए जरूरी नहीं है पूजा,
0: बिल्कुल।
1: श्रमिक साथियों, ये जरूरी है। हमारे जितने भी वन्य जीव हैं, हमारे पशु पक्षी हैं, हमारे और जो बहुत सारी जंगल की प्रजातियां हैं जो उगती हैं, बहुत औषधीय पौधे हैं जो हमारे लिए लाभकारी हैं, इन सब के लिए जंगलों का होना बहुत ज़रूरी है। और पूजा, कहते हैं एक पेड़ एक जिंदगी, तो ये जिंदगी सबको मिले, क्योंकि आए दिन, पूजा तुमने भी पढ़ा होगा, आए दिन अखबारों में या खबरों में ये आता रहता है कि हाथियों ने गांव में घुसकर हमला कर दिया, या वो किसी रिहायशी इलाके में चले गए,
0: बल्कि बल्कि
1: भालू
0: वो
1: आ गया।
0: घुसते नहीं है,
1: हाँ
0: एक्चुअली हम उनकी जगह पे पहुंच चुके हैं,
1: पहुंच
0: तो
1: चुके हैं
0: वो
1: इसलिए।
0: खाने के लिए कहाँ जाएंगे, क्योंकि
1: हाँ
0: जंगलों को हमने काट दिया है, उनके भोजन की कोई व्यवस्था नहीं है, पानी की
1: बिल्कुल।
0: कोई व्यवस्था नहीं है। जब उनके खाने पीने की व्यवस्था नहीं रहेगी तो वो तो आगे बढ़ेंगे ही।
1: बिल्कुल। तो इसीलिए श्रमिक साथियों, बहुत संजीदगी से इस पे हमें सोचना, और वन विभाग इस पूरे सप्ताह जो काम कर रहा है ना, बहुत सारे जागरूकता के कार्यक्रम किए जा रहे हैं, जैसे वन चौपाल का आयोजन किया जा रहा है, ग्राम चौपाल, जहाँ ग्रामीणों को इकट्ठा करके बताया जाता है कि वनों का क्या महत्व है, कैसे हम वनों को संरक्षित रख सकते हैं। इसके साथ ही साथ बच्चों को इसमें इन्वॉल्व किया जाता है, बच्चों को जागरूक किया जा
0: क्योंकि वो
1: रहा है,
0: हमारी आने वाली पीढ़ी है,
1: पीढ़ी।
0: और
1: हाँ
0: उन्हें ये जरूर जानना चाहिए कि जो हमारा पर्यावरण है वो किन चीजों से बहुत अच्छा बना रह सकता है, और
1: बिल्कुल।
0: उनका नाश करना यानी खुद का नाश करना है, ये जानकारी तो उन्हें देनी होगी। और मुझे बहुत
1: बिल्कुल।
0: खुशी हो रही है ये भी बताते हुए कि जितने हमारे आज के यूथ हैं वो अब बहुत ज्यादा जागरूक हो
1: जागरूक
0: चुके
1: हो गए
0: हैं,
1: हैं और इस
0: और
1: दिशा में
0: कई
1: आगे
0: कई
1: भी बढ़ रहे
0: ऐसे,
1: हैं।
0: बिल्कुल, और कई कई ऐसे लोकेशन हैं जहां पे पेड़ों की कटाई तक उन्होंने रोकने पर मजबूर कर दिया
1: बिल्कुल।
0: है, और सरकार से भी वो सवाल कर रहे हैं कि भाई ये अगर नहीं हो, इसके बियॉन्ड किस तरह से और भी प्रगति की जा सकती है, तो
1: बिल्कुल।
0: ये
1: तो
0: जरूरी
1: पूजा,
0: है।
1: मुझे लगता है कि जो बदलाव की जो पताका है, जो ध्वजवाहक, किसी न किसी को तो बनना ही पड़ेगा। श्रमिक साथियों, अगर आपके घर में कोई भी अच्छा काम हो, किसी का जन्मदिन हो, शादी की की सालगिरह हो, है ना, कुछ ऐसा जब आप बहुत खुश हो जाते हैं तो आप जब ढोल बजाते हैं, पार्टियां करते हैं, उस समय सुबह उठते ही पहला काम ये कर दीजिए कि एक नन्हा सा पौधा लगा दीजिए और उसे बचाकर अपने बच्चे की तरफ प्यार करके उसे बड़ा
0: और मुझे और भी एक अच्छी चीज आपकी बात से याद आई, हम लोग गुल्लक बनाया करते थे, याद है ना,
1: जरूर
0: जब पापा मम्मी जब पैसे छोटे थे
1: पॉकेट
0: मनी भाई बहनों के सबके गुल्लक बनाए जाते थे, तो इस बार के गुल्लक एक पेड़ हो जाए तो
1: बिल्कुल
0: अपने बच्चों के नाम अगर एक छोटा सा पौधा आप लगाए और वो बड़े हो तो
1: और उसकी पत्तियां सिक्कों की तरह जब खनके बड़ा मजा आएगा। तो श्रमिक
0: प्रयास किया
1: जा सकता है, नामुमकिन कुछ भी नहीं है। तो चलिए पूजा, बहुत लंबा सा भाषण हो गया लेकिन हम इतना इसमें डूब गए कि वाकई
0: हम भी प्रयास कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि जितने भी श्रोता हमें सुन रहे हैं वो भी प्रयास जरूर करें।
1: बिल्कुल बिल्कुल। तो जिंदगी के लिए जैसे हरियाली जरूरी है, वन जरूरी है, वैसे ही जिंदगी के लिए गीत और संगीत भी जरूरी है। हमारे सामने बैठे संतोष जी भी शायद यही इशारा कर रहे हैं, तो आइए
0: हो जाए।
1: बिल्कुल बिल्कुल।

0: वहाँ पूजा गीत संगीत का असर बेहद खास होता है। और धन्यवाद संतोष जी को भी, और इसलिए तो कहते हैं साथियों कि नगमों की कड़ियों में प्यार की जो बात है दिल की गहराई तक उसका असर साथ है।
1: बिल्कुल, दिल की घंटियां बज ही जाती है। तो चलिए सफर को आगे बढ़ाते हैं और जो अगली जानकारी वो क्या है?
0: वो है सावधानी हटी दुर्घटना घटी। देखो पूजा, इन दिनों बहुत सारी खबरें आ रही है ना कि आगजनी हो गई, कोई दुर्घटना हो गई, बहुत सारे लोगों की असमय मृत्यु हो जाती है, बहुत ऐसे

0: कहीं बिल्डिंग गिर गई, तो ये सब मुझे लगता है सुरक्षा के जो मानक है ना उनको नजरअंदाज किया जाता है, तब ऐसी घटनाएं होती हैं, दुर्घटनाएं होती हैं, और ये सचमुच दिल को झकझोरने वाली चीजें होती
1: बिल्कुल,
0: हैं।
1: हम वो प्रयास कभी नहीं करते हैं जो हमारी जान बचा सकती है।
0: बिल्कुल।
1: अगर हमें पता है कि अगर हमारे घर पे किसी कारण से भी शॉर्ट सर्किट हो जाए तो हमें क्या करना चाहिए, बस हमें जानते क्या हुआ तो हम निकल जाएंगे,
0: निकल,
1: लेकिन कैसे
0: हाँ
1: निकलेंगे,
0: निकलेंगे
1: क्या
0: ये सारी,
1: उपकरण होंगे, क्या
0: हाँ।
1: व्यवस्था होगी उस वक्त, वो हम कभी ध्यान नहीं
0: और
1: देते।
0: फिर जब ऐसी दुर्घटनाएं होती हैं तो हम इतने नर्वस हो जाते हैं, इतनी
1: आपा खो बैठते, डर
0: हाँ
1: जाते
0: डर
1: हैं।
0: जाते हैं कि उस समय हमें समझ में ही नहीं आता। जानकारियां सब कुछ होती हैं लेकिन उस समय समझ में नहीं आता, या समय उतना नहीं मिलता कि हम ये सब कर सकें। इसलिए हमें पहले से सचेत रहने की जरूरत होती है। और पूजा, हमारे श्रमिक साथी जो कि अक्सर बहुत जोखिम भरी जगहों पर काम करते हैं, ऊंची इमारतें होती हैं, अब तो 15-15, 20-20
1: बहुत
0: तल्ले की
1: ऊंची ऊंची,
0: इमारतें बन
1: बिल्कुल।
0: रही हैं, तो ऐसे में श्रमिक साथियों या बड़ी चिमनियों के सामने काम करें जहां चिंगारियां उठती रहती हैं, वेल्डिंग का काम करें, तो यहां पर श्रमिक साथियों आपको विशेष रूप से सावधान रहने की जरूरत होती है।
1: बिल्कुल, सावधान रहने की जरूरत होती है, और सबसे ज्यादा जरूरत होती है कि जिस भी फील्ड में आप काम कर रहे हैं या फिर आप घर में ही रह रहे हैं, किसी कारण से भी अगर आपके साथ दुर्घटना होती है तो आपको उसकी जानकारी होनी चाहिए। यानी अगर आप आग वाले क्षेत्र में हैं तो
0: हाँ
1: आग से कैसे बचना है,
0: बचना
1: क्या
0: चाहिए।
1: सेफ्टी लेनी है, ये आपको पहले से जानना चाहिए,
0: हाँ
1: क्योंकि जो परेशानियां होती हैं वो बिन बताए आती है,
0: बिल्कुल
1: और
0: बिल्कुल,
1: खास करके जो हमारे कामगार
0: ये सब,
1: श्रमिक
0: हाँ
1: हैं,
0: ये सब जो दुर्घटनाएं
1: हाँ
0: होती हैं वो,
1: वो बहुत ज्यादा लापरवाही करते हैं,
0: हाँ
1: क्योंकि वो कई ऐसे कारखानों में काम करते हैं जहां पे बहुत सारे रूल रेगुलेशन बनाए हुए
0: हाँ
1: हैं
0: लेकिन
1: कि आप
0: उनको फॉलो
1: इस
0: नहीं किया
1: ना
0: जाता।
1: कि आपको कैसे रहना है वहां, अगर आपके पास काम करने जाए तो आपको जूते पहनना है, आंखों में ग्लास लगाना है, आपको पूरी जानकारी होती नहीं है, और आप ऐसे स्थानों पे बिल्कुल कह सकते हैं ध्यान नहीं देते और ऐसे काम करते
0: बिल्कुल
1: हैं जिसमें आप चोटिल भी हो जाते
0: बिल्कुल,
1: हैं,
0: और कई बार सिर्फ चोटिल ही नहीं होते, कई बार
1: जान माल की भी हानि हो
0: जान
1: जाती
0: भी
1: है।
0: चली जाती है। तो श्रमिक साथियों, पहली बात तो हम आपसे यही कहना चाहेंगे कि आप जहां भी काम कर रहे हैं, आप काम जिस दिन पहले दिन आप जब जाते हैं तो जरूर इस चीज को सुनिश्चित कर लें कि आपकी सुरक्षा के तमाम मानक वहां पर हैं कि नहीं, जैसे आग बुझाने का यंत्र है कि नहीं, अगर कोई दुर्घटना होती है तो आप सावधानी से कैसे निकलें, वो रास्ता आपके लिए है कि नहीं, अगर आप किसी बड़ी फैक्ट्री में या बड़े कल कारखाने वाली जगह में काम कर रहे हैं तो वहां एम्बुलेंस की व्यवस्था है कि नहीं, आप ये जानकारी जरूर रखें कि पास का अस्पताल कौन सा है। आप पुलिस के, डॉक्टर के, एम्बुलेंस के नंबर वहां बड़े बड़े चिपका कर रख लीजिए। ये सारी चीजें, इन चीजों की जवाबदेही हालांकि पूजा प्रबंधन की होती
1: बिल्कुल,
0: है
1: और
0: ना।
1: प्रबंधन को भी अपने जितने भी श्रमिक हैं उनके साथ एक मित्रता वाला भाव जरूर करना
0: बिल्कुल।
1: चाहिए, और जब भी कोई नया व्यक्ति आए तो उन्हें उसकी पूरी जानकारी
0: जानकारी
1: दिलानी
0: दी,
1: चाहिए,
0: हाँ
1: और साथ ही समय समय पर एक ट्रायल जरूर करना
0: ट्रायल करना
1: चाहिए।
0: चाहिए, और ये देखना चाहिए कि उसने जो व्यवस्थाएं की वो सुचारू हैं कि नहीं। कई बार हमने ये भी देखा है पूजा कि अग्निशामक यंत्र तो लगे हैं
1: लेकिन वो
0: बट
1: काम ही
0: काम ही
1: नहीं
0: नहीं
1: कर
0: कर
1: रहे
0: रहे
1: हैं,
0: हैं ना,
1: बिल्कुल
0: कई बार पानी के नल हैं बट उसमें पानी
1: पानी
0: नहीं आ
1: नहीं
0: रहा
1: है।
0: है। ये तमाम चीजें ऐसी होती हैं, बहुत छोटी चीजें होती हैं लेकिन जिंदगी को बचाने के लिए
1: बहुत
0: बहुत
1: बड़ी,
0: जरूरी होती हैं। इसलिए श्रमिक साथियों, ये आपकी प्रबंधन के साथ साथ आपकी जवाबदेही है कि आप अपनी जान को सुरक्षित रखें, क्योंकि पूजा कहते भी है ना, जान है तो
1: तो
0: जहान
1: जहान
0: है ना। तो चलो, ये जिम्मेदारी होगी नियोक्ता की, ये जिम्मेदारी होगी हमारे श्रमिक साथियों की। अगर आप बहुत ऊंचे पे काम कर रहे हैं तो जरूर सुरक्षा की पेटी को बांधे रखिए, जैसे आंखों की सुरक्षा के लिए तुमने कहा कि चश्मा पहन के
1: बिल्कुल
0: रखिए, और फेस गार्ड आप लगा कर रखिए, बूट्स पहन के रखिए, हाथों में ग्लव्स लगा के रखिए। ये
1: और खुद की
0: हाँ,
1: सेफ्टी के साथ साथ दूसरों की
0: दूसरों की
1: भी मदद
0: मदद
1: जरूर
0: कीजिए,
1: करिए।
0: बिल्कुल बिल्कुल। और जब भी ऐसा कभी होता है तो अगर आपको कुछ भी नहीं सूझे तो 100 नंबर आप कम से कम डायल कर दीजिए, 100-100 ये जरूर डायल कीजिए। इस पे आपको जरूर सहायता मिलेगी, पुलिस आप तक पहुंचेगी और आपको सहायता पहुंचाएगी। सचेत रहिए, जागरूक रहिए और खुशहाल से जिंदगी में आगे बढ़ते रहिए।
1: बिल्कुल, तो
0: तो
1: फिलहाल एक और गाना
0: जरूर
1: सुन लेते हैं उसे।

0: चलो पूजा, गीत संगीत तो चल ही रहा है और मुझे लग रहा है हमारे साथ साथ हमारे श्रमिक साथियों ने भी इसको एंजॉय किया होगा। लेकिन पूजा, क्या आज अखबारों में एक हेडलाइन तुमने देखी? वो हेडलाइन मुझे बहुत अच्छी लगी।
1: मैंने तो देखी थी, मुझे भी बहुत अच्छी लगी, लेकिन वो हेडलाइन क्या थी थोड़ा हमारे जितने श्रमिक साथी है उन्होंने भी देखी होगी, थोड़ा उन्हें भी बता दीजिए।
0: बिल्कुल, श्रमिक साथी आप तो जानते ही, बहुत काम की, आपके काम की चीज है कि आज पूरे देश में मनरेगा के स्थान पर श्रमिकों को रोजगार गारंटी कानून प्रावधान के लिए VBG रामजी बिल लागू कर दिया गया है, यानी विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एवं आजीविका मिशन। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार व्यवस्था बहुत सुदृढ़ होगी, ये इसमें कहा गया है। और तुम तो जानती हो पूजा के हमारा जो भारतवर्ष है वो ग्रामीण अर्थव्यवस्था वाला देश है, यहाँ पर अगर ग्रामीणों को रोजगार मिलेगा तो जो पलायन हो रहा है गांव से शहरों की ओर ये रुक जाएगा, गांव वालों को अपने ही जगह पे रोजगार मिलेगा तो उन्हें दूसरे राज्यों में या दूसरे देश में जाकर काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
1: बिल्कुल, और प्रयास हमेशा ये किया जाता रहा है कि जितने भी हमारे श्रमिक हैं वो अपने ही स्थान पे रहें, बाहर ना जाए, क्योंकि पलायन बहुत सारी परेशानियों को जन्म देता है।
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: और उसी के साथ उन्हें अगर काम मिलता है तो वो अपने घर पे भी होते हैं, परिवार के साथ भी होते हैं, और उन्हें एक मुश्त पैसा भी मिलता
0: पैसा
1: है,
0: भी मिलता
1: जैसे कि 100 दिनों का जो गारंटी उन्हें मिलता था, अब इसकी भी संख्या बढ़ा दी गई
0: 150 दिन, साल में 125 दिन, मतलब निश्चित है कि आपको रोजगार गारंटी मिलेगी ही। अगर 125 दिन आपने आवेदन दिया और 125 दिन का रोजगार नहीं मिला आपके कार्य क्षेत्र के, आपके रहने वाले इलाके के 5 किलोमीटर के दायरे में, तो आप फिर बेरोजगारी भत्ता के भी हकदार होंगे। यानी सरकार चाहती है कि हमारा ग्रामीण क्षेत्र मजबूत हो, हमारे ग्रामीण

भाई बहन मजबूत हों और उससे हमारी अर्थव्यवस्था और सुदृढ़ हो ना। तो चलो, तो श्रमिक साथियों, हम आपसे ये कहना चाहते हैं कि आप ज़रूर इस रोजगार गारंटी अधिनियम से जुड़िए, इसकी जानकारी लीजिए और इस समय आनंद लीजिए इस प्यारे से गीत का।

0: देखो पूजा, अपने श्रमिक साथियों से बात करते हुए पता ही नहीं चला कि समय कितनी जल्दी बीत गया है ना।
1: बिल्कुल, और ये समय बीता है तो कल फिर वापस आएगा।
0: हाँ, तो कल हम फिर मिलेंगे इसी वादे के साथ। दीजिए अपने दोस्त मीनाक्षी
1: और पूजा को इजाजत। नमस्कार।

0: इस समय आप सुन रहे थे श्रमिक बंधुओं को संबोधित हमारा दैनिक कार्यक्रम श्रमिक लोक, आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। आइए सुनते हैं प्रादेशिक मुख्य समाचार।
1: नमस्कार, अब तक के मुख्य समाचारों के साथ मैं तृप्ति कुमारी। राज्य की मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने कहा है कि विशेष गहन पुनरीक्षण SIR 2026 के तहत वॉलंटियर्स और शिक्षकों की तैनाती केवल BLO को सहयोग देने के लिए की गई है। उनका मुख्य उद्देश्य पात्र नागरिकों को मतदाता सूची से जोड़ना है। प्रदेश कांग्रेस के उपाध्यक्ष सतीश पॉल मुंजनी ने चुनाव आयोग से राज्य के करीब 47 लाख अनमैप्ड और ASTD सूची वाले मतदाताओं का विवरण तत्काल सार्वजनिक करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि आयोग इन सूचियों को अपनी वेबसाइट और प्रत्येक मतदान केंद्र पर प्रदर्शित करे। रामगढ़ पुलिस ने मांडू के सब रजिस्ट्रार बालेश्वर पटेल हत्याकांड में त्वरित कार्रवाई करते हुए सभी 7 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस अधीक्षक मुकेश लोनायत ने बताया कि ये वारदात 11

डिसमिल जमीन के आपसी विवाद को लेकर हुई थी। पूर्व सब रजिस्ट्रार बालेश्वर पटेल की हत्या के विरोध में आज धनबाद जिला निबंधन कार्यालय का कामकाज पूरी तरह ठप रहा। निबंधन कर्मियों ने दिवंगत अधिकारी को श्रद्धांजलि देते हुए अपराधियों की त्वरित गिरफ्तारी और सुरक्षा की मांग की। रांची पुलिस ने आम जनता की शिकायतों के त्वरित निष्पादन के लिए सभी थानों में साप्ताहिक जन शिकायत समाधान शिविर की शुरुआत की है। वरीय पुलिस अधीक्षक राकेश रंजन के निर्देश पर यह कार्यक्रम अब प्रत्येक बुधवार को आयोजित किया जाएगा। पाकुड़ सदर प्रखंड कार्यालय में आज लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस के लिए एक विशेष कैंप का आयोजन किया गया। कैंप के दौरान कुल 60 लोगों ने अपने आवेदन जमा किए। दस्तावेजों की गहन जांच के बाद 32 चालकों को मौके पर ही लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस निर्गत किए गए। रामगढ़ के DDC आशीष अग्रवाल ने आज प्रोजेक्ट इम्पैक्ट NEP पखवाड़ा के तहत 2 CM स्कूल ऑफ एक्सीलेंस का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने गांधी मेमोरियल जिला स्कूल और बालिका स्कूल ऑफ एक्सीलेंस पहुंचकर विभिन्न शैक्षणिक गतिविधियों की समीक्षा की। इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन शाम 7 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: गाछ लगाओ पर्यावरण बचाओ खेती बाड़ी कार्यक्रम सुरैया सब भाई बहन मन के सुरैना बहन बटे जमे जमे जोहार और मोनिका बहन राउर के भी जोहार
1: जोहार दीदी जोहार और कार्यक्रम सुनवाइया सब भाई बहन के भी मोनिका बाटले जोहार और कहो बहन का हाल चाल है।
0: हाल चाल तो सुपर नगदे है बहन
1: नगदे हो गए हाँ।
0: और रौरे बताओ का जिसन
1: मोर भी हाल खबर सब वैसे वैसे है
0: देखते बना थे एकदम वैसे हो भी है कि नहीं एकदम हंसी खुशी जब हंसी खुशी कर संगे जब एक दूसरे से मिलल से ने पता चल जा रहा कि खुश इंसान है और अगर कुछ दुख मन भी है फिर भी एकदम मिजाज के खुश रखे चाहिए कि नहीं
1: एकदम रखे चाहिए थी। और देखो अगर हमरे मन ऐसा रखा थे तो कोनो में काम के कर थी तो बढ़िया से सफलता भी भेटाई है
0: एकदम एकदम। देखो बहन आज तो हमरे कर एकदम सुपर बढ़िया दिन भी है नी देखो ने एक ठो चीज ने कके गो आज दिवस मनाल जाते ने
1: सही बात है
0: जैसे हो गेलक राष्ट्रीय कृषि दिवस और करी लोकर से नी तो ऐसे भी हमरे कर भारत देश कृषि प्रधान देश लगे हाँ। और किसान भाई बहन मने सब घड़ी अपन खेत दोन डार में एकदम लगले रहना और हमरे के सब किसिम कर फसल और खाए पिए के लिए एकदम सुपर भेटायला
1: एकदम नगरकाली बहन। और देखो इनकर माध्यम से हमरे के बहुत सुंदर सुंदर खाए के लिए हो भेटा थे और इनकर माध्यम से हमकर सेहत भी बढ़िया हुआ थे है नी
0: तब एकदम इखे कहना देसी जोगाड़ नी गांव घर में खेती करो डेट के करो एकदम और सवांग भी एकदम शरीर काया गतर भी सुपर मजबूत रही स्वस्थ रही और दूसर बटले देखो कि एकदम खाए पिए के लिए बरन बरन का हरियर हरियर बेस बेस खाए साग मने एकदम मुरुख का ताजा ताजा सब्जी मने भेटाए तो सोचो का एकदम
1: गदगद हो भी गद गद रही
0: हमरे भी खाब और दूसरा के भी खियाब नहीं मतलब हमरे कर एक कमाई कर स्रोत भी हो जाते है और अपन घर परिवार भी चलत है उकरे से छवा पोता मने पढ़त लिखत है
1: देखो
0: वे खर्चा से
1: और अपन घर कर जे हाल है से भी सुधार हुआ थे। और देखो कर खेती कर माध्यम से हमरे कर किसान भाई बहन आज कर युग में बहुत आगे बढ़ते है जाते थे
0: एकदम इन नवा नवा तकनीक और वैज्ञानिक विधि से खेती करके गोटा विश्व में हमरे कर किसान भाई बहन मना के एकदम सुपर योगदान है
1: सुपर कर।

0: और
1: हाँ
0: देखो ना हमारे कर भारत देश कर किसान मन तो अभी इतने प्रसिद्ध हो जाए है कि 100 बार तक कह रहे कि भारत एगो ऐसा देश है कि जहाँ हर चीज भरपूर मात्रा में भेटाएला है नहीं।
1: हर बात के हम कह जाब कि हिन्ने से कांधर कहुने से सीधे कहो ने कि एकदम हिया कर भुइया में मूर्ख सोना उपजत
0: एकदम
1: है
0: सुपर
1: कि
0: कहली।
1: नहीं
0: हाँ सुपर कहली बहन। और देखो इनकर माध्यम से हमरे कर किसान भाई बहन मनकर इतना सहयोग से देखो हमरे के यानी कि हमरे कर सरकार मन भी है से उनके समय समय में पुरस्कार भी देवल जाए उनकर बट से है नहीं।
1: एकदम सुपर नगर बात कहले बहन। और देखो हमरे के रकम रकम कर खाए पिए के लिए भेटात है और सब फसिल के स्वाद हमरे मन ले सकत है, सुपट आनंद उठाते ने। और देखो बहन हमरे कर किसान भाई बहन खेती बाड़ी कर काम धंधा करके विकास कर डहर में एकदम आगे बढ़ते जाते हैं
0: हाँ दिनों दिन बढ़ते ही जाते हैं।
1: एकदम। तो ये होलक नहीं सुपर नगद वाला बात। अब
0: एकदम मतलब
1: आगे और एक दिवस देखो जैसे कि हम नहीं कह लिए जी हमरे कर सुपर दिन लागे से अंतरराष्ट्रीय फल दिवस भी है के बहन
0: सहेले आज रोले बड़का बड़का एप्पल के लाइन रही है नहीं।
1: एकदम। अरे एखन देखो ने वो दादा कर थैला में भी देखो तो एकदम बरन बरन किसिम किसिम कर आंबा हुई एकदम दूरे से
0: अरे
1: एकदम सुपर महकत है एकदम खुशबू वाला आवत है। कैसे खुशबू बता है कैसे महकत है
0: बता
1: एकदम
0: दे वो
1: स्वाद वाला एकदम सुपर मीठा आंबा हुई कहे जैसे। देखो
0: रोले
1: बहन कोई जरूरी न है कि हमरे अब बहुत कोई कहे ना फल सब्जी फल मन खाए के चाहिए तो जेकर निम्न वर्कर आदमी मने उम्र सोचे ना भाई बहन मने हमने कर बहन मने भी कि अरे महंगा महंगा फल तो बड़े आदमी खाए ना लेकिन ऐसा बात ना खे हमरे देखो हमरे तो जे फल मने है नी से के आराम से खा सके रहा। जैसे हो गया कि मौसमी वाला एखन आंबा कर दिन लागे तो कोई जरूरी ना खे आंबा महंगे है आम के हमरे खाब है
0: सही
1: नी
0: बात है बहन। और
1: एकदम
0: देखो
1: मुरुख बाहर निकलो ने
0: गांव
1: गच
0: घर
1: मन
0: में
1: में
0: कदे
1: भेटाई।
0: बता ला है
1: हाँ
0: नहीं।
1: वही आंबा मन के खाओ है नी उकरे स्वाद ले जामुन मन हो गेलक अमरुद मन हो गेलक उके कोई जरूरी ना
0: जी
1: कि सब
0: हाँ
1: महंगे है
0: सही बात है बहन। और जे
1: तब
0: हमरे कर बन जंगल भी भेटावे करते
1: भेटाबे करते
0: जंगल
1: किसिम किसिम
0: जाती तो
1: कर।
0: एक से एक फल किस्म से किस्म भेटाते हैं नहीं।
1: हाँ एकदम सुपट कहते बहन। और एक बात कहे चाहे हमरे कर माए बहन मन बहुत ऐसा है नहीं कि अपन छुआ पुता के खिया देव ना एक ठो कहे नहीं हमरे का खा छुआ मन के दे देवे ला हमरे अपन भाई मन के दे देवे ला लेकिन नहीं ऊ मन के भी खाए बहुत जरूरी है का। लेकिन देखो घर का सारा काम तो ज्यादातर हमरे कर माए बहन मन करत है
0: सही बात है बहन।
1: बेटा
0: और
1: छुआ बेटी छुआ सभी के देवो देवू लेकिन आपने भी खाओ आपने कर भी सेहत कर बहुत राखे के ध्यान देख बहुत जरूरी है
0: अपन संग संग हमरे
1: सबके
0: कर छोट
1: खियाओ
0: भाई बहन उनके भी ध्यान देवे के
1: तब
0: और
1: देखो
0: अपन दोस्त यार के भी खिया के है
1: हमरे
0: नहीं
1: कर। हाँ हमरे
0: सभी
1: कर माए बहन
0: संग।
1: मन ऐसा है बहुत हैं कि मतलब वो मन कर एक शारीरिक क्षमता जो है ने खाए पिए कर मामला में वो मन इतना नहीं सुनना है हमरे छुआ के खियाए देवे ला हमरे नहीं खाए ला
0: सही
1: दिल
0: बात कहली
1: हो गया
0: रोले।
1: जैसे उनकी हो गया जे के माए मने बहुत ऐसा है कि छुआ पोता दूध मन पियात है ने तो वो मन के भी एकदम बहुत जरूरी हो जाएगा कि फल कर सेवन करे कर
0: समय से खाए के ही है
1: खाए
0: नहीं।
1: चाहिए। हाँ सेले सब फल कर एकदम मौसमी फल कर एकदम सुपट आनंद ले मुरुख खाओ पियो नहीं
0: सही बात
1: तब
0: है। और
1: खाओ पियो और
0: हमेशा
1: सब
0: खाए
1: खियाओ
0: पिए
1: भी।
0: खाए और अपन सेहत के भी बढ़िया से ध्यान रखे खे दी।
1: और हाँ हाँ और बहन
0: और
1: ये तो हो
0: देखो
1: गया
0: इकर
1: अंतरराष्ट्रीय फल
0: संगे संगे
1: दिवस
0: हमरे के जे गाछ वृक्ष है से कर भी बगरा ध्यान देवे के
1: और
0: है नहीं।
1: लगाए खाए तबे तो हमरे के
0: हाँ
1: खाए के
0: हाँ
1: लिए भेटा है नहीं
0: हाँ
1: तब
0: एकदम जरूरी है कि
1: हाँ। तो और एक ठो ये तो हो गया हमरे राष्ट्रीय कृषि दिवस हो गया राष्ट्रीय फल दिवस हो गया अंतर्राष्ट्रीय फल दिवस। और एक ठो बताए चाहे बहन कि हमरे एखन आज से शुरू हुए है एक ठो
0: पर्यावरण सप्ताह है नहीं।
1: हाँ वन पर्यावरण सप्ताह जे कि 7 दिन तक चली नहीं 7 तारीख तक
0: सही बात है बहन। तो इकर माध्यम से हमरे के कोशिश करे के कि हमरे कर जे जलवायु परिवर्तन बार बार बिगड़े ला ही नहीं होने हो वेला तो इके बढ़िया से रखे के और इकर चलते हमरे के बगरा से बगरा गाछ वृक्ष भी लगावे
1: लगाए
0: है नहीं
1: खे
0: और उके जतन भी करे थे।
1: जे जे भी रौरे सकत है जे भी गाछ वृक्ष कोई जरूरी न के कि एकदम बड़के बड़का अथी गाछ मन लगाओ छोट छोट भी पौधा मन लगाओ और एकदम मुरुख अपन वातावरण के तरोताजा रखो शुद्ध हवा ले तो हम
0: और
1: अगर
0: ताजा
1: वो
0: ताजा
1: तो
0: फल
1: सिराबे
0: भी।
1: नहीं करत है दादा देखो ने ढेर दिन कर बात भेटाल से हो गया। चलो तो हमरे कार्यक्रम के आगे बढ़ाएला और करेला एगो नागपुरी कृषि गीत से जेके गाए हैं इग्नेश कुमार और संगीमन।

0: तो बहन रो रहे नगर गीत सुनवा ली नागपुरी में,
1: कृषि गीत रहे,
0: गा रहे हैं अग्निश कुमार और संगी मनक मिलके गा रहे थे, बहुत बढ़िया संदेश भी भेटा लग। और चलो गीत कर माध्यम से तो संगीत भेटावे, संगीत कर संदेश भेटावे कर लग। अब हमरे मन जानकारी भी करवाई ला है नी
1: एकदम,
0: तो चलो जानकारी करवाई लग। संरक्षित खेती आज कर आवश्यकता है की, और एक बतावे कुसमीता धान और इनकर से बतिया है कृष्ण जीवन पौराणिक।
2: किसान भाइयों एवं बहनों नमस्कार, हम सभी जानते हैं कि बदलता मौसम और बेमौसम बारिश आज हमारी खेती के लिए कितनी बड़ी चुनौती बन गई है। कभी बारिश तो कभी तेज धूप हमारी मेहनत पर पानी फेर देती है, तो इस परिस्थिति से निबटने के लिए एक तरीका है संरक्षित खेती, जिसे हम अपनी फसलों को एक सुरक्षा कवच दे सकें और मौसम चाहे जैसा भी हो फसल हमेशा लहलहाते रहेगा। तो आज इसी विषय पर विस्तार से चर्चा करने के लिए आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं कुसमिता धान, सहायक प्राध्यापक सहकनीय वैज्ञानिक बिरसा कृषि विश्वविद्यालय कांके रांची। कुसमिता जी आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में, नमस्कार।
3: नमस्कार।
2: आप हमारे किसान भाइयों हमारे श्रोताओं को ये बताएं कि संरक्षित खेती क्या होती है।
3: जोहार किसान श्रोताओं, संरक्षित खेती या संरक्षित कृषि खेती की एक आधुनिक तकनीक है जिसमें फसलों को प्रतिकूल मौसम जैसे कि अत्यधिक गर्मी, ठंड या ओलावृष्टि, कीटों और बीमारियों से बचाने के लिए एक नियंत्रित वातावरण प्रदान किया जाता है। यह विधि कम जगह और कम पानी में उच्च गुणवत्ता वाली और बेमौसम पैदावार लेने में बहुत ही कारगर है।
2: जी, तो संरक्षित खेती के लिए किस प्रकार की संरचनाओं का उपयोग किया जाता है?
3: जी हाँ, यदि हम बात करें संरचनाओं की तो मुख्य रूप से पॉली हाउस यह सबसे लोकप्रिय संरचना है, जिसमें लोहे के ढांचे को पारदर्शी पॉलीथीन से ढका जाता है। यह बेमौसमी सब्जियों और फूलों के लिए सर्वोत्तम होता है। ग्रीन हाउस नेट, ग्रीन हाउस या कांच या कठोर प्लास्टिक की स्थायी संरचना होती है जिसमें पूरी तरह से स्वचालित सिस्टम द्वारा तापमान और आर्द्रता नियंत्रित की जाती है।
2: जी।
3: और इसमें और भी अन्य छोटी संरचनाएं भी शामिल है जैसे कि नेट हाउस और प्लास्टिक मल्चिंग।
2: जी, तो संरक्षित खेती के मुख्य सिद्धांत क्या हैं?
3: इसके तो मुख्य तीन सिद्धांत होते हैं। पहला, न्यूनतम जुताई जिसमें मिट्टी की संरचना बनी रहती है। दूसरा, मिट्टी का स्थायी ढकाव या मल्चिंग जिसमें मिट्टी को प्लास्टिक की फिल्म या फसलों के अवशेषों से ढक दिया जाता है। यह पानी के वाष्पीकरण को रोकता है, खरपतवार पर नियंत्रण रखता है और जड़ों को गर्माहट देता है। तीसरा, फसल चक्र में विविधता भी लाता है। एक ही खेत में अलग अलग समय पर विभिन्न प्रकार की फसल उगाई जाती है।
2: जी, तो आपने सिद्धांत के बारे में बता दी। अब बताएं कि झारखंड में संरक्षित खेती का क्या महत्व है?
3: देखिए, झारखंड की भौगोलिक और जलवायु परिस्थितियों को देखते हुए यहाँ संरक्षित खेती का विशेष ही महत्व है। यह तकनीक राज्य के किसानों के लिए न केवल आय बढ़ाने का जरिया है बल्कि खेती की चुनौतियों का एक स्थायी समाधान भी है। संरक्षित खेती फसलों को प्रतिकूल मौसम से सुरक्षा करती है, यानी कि बेमौसम बारिश, ओलावृष्टि, अत्यधिक गर्मी और पाले से बचाती है। यह सीमित सिंचाई में भी बेहतरीन उत्पादन करता है। ज्ञात हो झारखंड की केवल 12% कृषि भूमि सिंचित है। इस तकनीक में ड्रिप सिंचाई का उपयोग होता है जिससे 20-35% पानी की बचत होती है और कम पानी में भी अधिक पैदावार संभव है। और छोटे और सीमांत किसानों के लिए तो यह एक वरदान ही है। राज्य के अधिकांश किसान के पास 1 हेक्टेयर से भी कम जमीन होती है। संरक्षित खेती छोटी भूखंडों पर 5 गुना तक अधिक उत्पादकता सुनिश्चित करती है जिससे छोटे किसान भी अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। इस तकनीक से साल भर खेती भी संभव है जिससे हमारे किसान भाई बेमौसम सब्जियां जैसे कि शिमला मिर्च, खीरा, टमाटर और महंगे फूल जैसे कि जरबेरा, गुलाब उगाकर बाजार में बेहतरीन दाम प्राप्त कर सकते हैं। और एक बात आप सभी को बता दे कि यह कीटों और बीमारियों को भी नियंत्रित करता है। नियंत्रित वातावरण के कारण कीटों का हमला कम होता है जिससे रासायनिक कीटनाशकों का प्रयोग कम हो जाता है और फसल की गुणवत्ता भी बढ़ जाती है।
2: जी, झारखंड में संरक्षित खेती को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा चलाई जाने वाली कौन कौन सी योजनाएं हैं?
3: इसको बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार और केंद्र सरकार की कई सारी सक्रिय योजनाएं भी हैं। झारखंड सरकार विभिन्न घटकों पर 50 से 90% तक की सब्सिडी प्रदान करती है। यदि हम बात करें राज्य सरकार की, तो राज्य उद्यान मिशन के तहत पॉली हाउस और शेड नेट हाउस के निर्माण पर सामान्य वर्ग को 50% और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के किसानों को 90 से 95% तक अनुदान दिया जाता है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत झारखंड में सूक्ष्म सिंचाई प्रणालियों पर किसानों को 90% तक अनुदान मिलता है। यदि बात करें किसान समृद्धि योजना की, तो उसमें सौर ऊर्जा आधारित सिंचाई पंपों की स्थापना के लिए 90% सब्सिडी प्रदान की जाती है। और आप सभी को और एक बात बता दूं, प्लास्टिक मल्चिंग में जो लागत हमें लगती है, उसमें भी 50% की अनुदान मिलती है।
2: हमारे किसान भाई अपने खेतों में पॉली हाउस और ग्रीन हाउस कैसे लगाएं, इसकी जानकारी दीजिए।
3: किसान भाई, पॉली हाउस को लगाने के लिए इसकी चरण दर चरण प्रक्रिया शामिल है, जिसमें आपको क्षेत्र का चयन करना है जो कि सबसे समतल भूमि हो। ढांचा तैयार करने के लिए जीआई पाइप का उपयोग करें। यह 100 से 150 किलोमीटर प्रति घंटा की हवा को झेलने की क्षमता रखती है। ढांचे की मजबूती के लिए आप M10, M8 और M6 क्लैंप्स का उपयोग भी कर सकते हैं। फाउंडेशन के नेचुरल वेंटिलेटेड पॉली हाउस के लिए टेलीस्कोपिक फाउंडेशन का प्रयोग करें। इसे 400 या 600 मिलीमीटर गहरा गड्ढा खोदकर स्थापित करें। वेंटिलेशन तापमान को नियंत्रित रखता है। यह 20 से 30 डिग्री सेल्सियस दिन में और रात को 15 से 18 डिग्री सेल्सियस तक के तापमान को नियंत्रित रखता है और आर्द्रता में 50 से 80% आर्द्रता को भी नियंत्रित करने में वेंटिलेशन सहायक होता है। सिंचाई प्रणाली में बात करें तो उच्च घनत्व वाली फसलों के लिए ड्रिप सिंचाई का प्रयोग करते हैं। रही बात ग्रीन हाउस की, तो स्थान का चयन हम उसी तरीके से करेंगे जैसा हम की पॉली हाउस में किए थे। समतल भूमि होनी चाहिए। ढांचे के लिए हम यहाँ लोहे की पाइप, जीआई पाइप या बांस का प्रयोग करेंगे, जो कि 3 से 4 मीटर की दूरी पर मेहरबान के आकार में ढांचा तैयार करें, जिसकी ऊंचाई लगभग 3 मीटर हो। कवरिंग के लिए ढांचे को पारदर्शी यूवी स्टेबलाइज्ड पॉलीथीन फिल्म, जो कि 200 माइक्रोन से ढक दें, और वातक या वेंटिलेशन तापमान नियंत्रित करने के लिए वेंटिलेटर, पंखे और फॉगर सिस्टम भी लगा सकते हैं।
2: जी, झारखंड में कौन कौन सी उपयुक्त फसलें संरक्षित वातावरण में किसान मुख्य रूप से उगा सकते हैं?
3: किसान भाई अपने खेतों में सब्जियां जैसे रंगीन शिमला मिर्च, चेरी टमाटर, खीरा और बेमौसम सब्जियां उगा सकते हैं। फूलों में जरबेरा और गुलाब, जिनकी बाजार में अत्यधिक मांग है, उनका भी खेती कर सकते हैं। और औषधीय पौधे, विभिन्न प्रकार की जड़ी बूटियों की भी खेती कर सकते हैं।
2: जी, तकनीक सीखने और सहायता के लिए किसान कहाँ संपर्क कर सकते हैं?
3: झारखंड में तो तकनीक सीखने और सहायता के लिए किसान हमें बिरसा कृषि विश्वविद्यालय, जो कि काके रांची में स्थित है, यहाँ संरक्षित खेती पर शोध भी हो रही है और किसानों को प्रशिक्षण भी दिया जाता है। जिलों के बेसिस पे बात करें तो कृषक पाठशाला में आधुनिक खेती की तकनीकों का प्रदर्शन और लाइव ट्रेनिंग भी दिया जाता है। जिला स्तर पर एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट एजेंसी किसानों को नई तकनीकों के प्रदर्शन और एक्सपोजर विजिट के लिए भी सहायता प्रदान करती है। अगर किसान भाई विस्तृत जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, तो वो अपने जिले के नजदीकी कृषि विज्ञान केंद्र या उद्यान अधिकारी से तकनीकी प्रशिक्षण और सहायता प्राप्त कर सकते हैं।
2: जी, तो ये तो तकनीक सीखने की बात हुई, लेकिन ये तकनीक सीखने के लिए आवेदन कैसे करें?
3: किसान भाई अपने नजदीकी प्रज्ञा केंद्र में जाएं और झारखंड कृषि विभाग की वेबसाइट, जो कि आधिकारिक वेबसाइट है, वहां रजिस्ट्रेशन, जिसे हम पंजीकरण कहते हैं, पंजीकरण करा सकते हैं। दस्तावेज में मुख्यतः आधार कार्ड, जमीन के कागजात, बैंक पासबुक और मोबाइल नंबर, जो कि आधार लिंक्ड हो, ये सारी दस्तावेज लेकर आप रजिस्ट्रेशन कराने जा सकते हैं। और अगर इस पे आप विस्तृत जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, तो जिला उद्यान अधिकारी से भी आप संपर्क कर सकते हैं।
2: जी, तो अंत में हमारे किसान भाइयों को संरक्षित खेती के बारे में कुछ अपने तरफ से संदेश देना चाहेंगे?
3: जी हाँ, आज के वातावरण और बेमौसम बारिश, ओलावृष्टि, और जैसे कि आप अपने इर्द गिर्द देख सकते हैं, मौसम कितना बदलता जा रहा है। पिछला दशक और इस शताब्दी की बात करें तो जमीन

0: आसमान का फर्क है। तो मैं सभी किसान श्रोताओं को अनुरोध करती हूँ कि आप सभी संरक्षित खेती का जरिया अपनाएं और अपने आय में वृद्धि लाएं।
1: तो किसान भाइयों, अगर हम आधुनिक सोच और सही तकनीक से संरक्षित खेती अपनाएं, तो खेती वाकई में एक मुनाफे का सौदा बन जाएगी। उम्मीद है कि इस बातचीत से किसान साथियों में एक नई दिशा मिलेगी। आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। फिर मिलेंगे एक नए विषय और एक नए विशेषज्ञ के साथ। तो कुष्मिता जी, आप हमारे स्टूडियो में आए और संरक्षित खेती के बारे में बहुत अच्छी जानकारी दी, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।
0: नमस्कार।
2: तो एखन हमरे जानकारी करत रही एगो संरक्षित खेती आजकल आवश्यकता काते रह के सके इके बतात रहे कुष्मिता धान और इनकर से बातचीत कर रहे कृष्ण जीवन पौराणिक सुपट नगद जानकारी रहे बहन ने।
3: हाँ बहन, और देखो अगर हमरे कर किसान भाई बहन मन अगर इस बात के जानकारी करके देखो हमरे कर जे खेती बाड़ी कर काम है सेकर उत्पादन सेकर में काम के बढ़िया से कर सके ना और बगरा से बगरा उत्पादन भी कर सके ना, है नहीं? और बगरा उत्पादन हुई तो परिवार भी खुशहाल हुई, देश और विकास का डर में आगे बढ़ी है।
2: एकदम एकदम।
3: तो जानकारी तो करबे करी। तो बहन रौरे बहुत स्वयं के गीत सुना ला ना, आज मोखो एक तो गीत सुना दे तो कैसन रही।
2: अच्छा गीत सुने के ए बहन
3: सोच लो कि एक बहुत बड़े सांधे भेट आते, चल कम से कम सामने से गवाज हुए तो का हुई, का खुश नसीब हो की।
2: अरे ऐसा कोई बात ना के, अच्छा कोनो देर एक ठो कोशिश करो थी, एक तने कुन बेरा है नहीं बस चल हमरे का
3: सीधे तो रोरे की कहली।
2: अच्छा ठीक है, तने कुन कोशिश करो थी नहीं।

0: बहुत नगद रहे बहन, और
1: कोनो तर
0: नहीं
1: खाली।
0: बहुत सुपर गीत रहे, और ये गीत कर माध्यम से भी हमारे के बढ़िया संदेश भेटालक है नी।
1: एकदम एकदम
0: और बहन एक रहे संगे हमारे कर खेती बाड़ी कर कार्यक्रम से डालक, और हमारे दुनिया कार्यक्रम में हमारे कर घर नी बहन मन के मोनिका बाटते फिर से
1: फिर से
0: जोहार।
1: जोहार, और सब भाई बहन मनकर फिर से एक बार स्वागत है हमारी दुनिया कार्यक्रम में। बहन है कि नहीं,
0: सही
1: तब
0: बात है बहन। तो देखो
1: हमारी
0: आज
1: दुनिया तो आज एकदम खास दिन नहीं, मतलब
0: हमारे
1: दिन
0: तो
1: तो हम लेकर हिसाब से रोजे खासे रहेला,
0: रोज खास
1: बनाए के
0: रहे।
1: ऊपर निर्भर करेला नहीं दिन
0: सही
1: के
0: बात
1: भी।
0: है। तो देखो आज कल युग में हम लेकर बहन मन भी बहन सोबत ले आगे बढ़ते ही जाते थे, है नी। और देखो हम लेकर जे बहन मन हथिन हम लेकर छोट छोट छुआ भाई बहन मन के

0: इतना बढ़िया बढ़िया बात मैंने बताकर कोशिश करती ला काली की। देखो हमारे घर छोट छोट भाई बहन मन के अगर हमारे मन
1: संस्कारवान
0: संस्कार
1: नहीं
0: देवा
1: बना।
0: थी,
1: हाँ
0: बढ़िया संस्कार देवा थी, तो देखो हमारे घर छोट भाई बहन मन है से मन के बढ़िया संस्कार भेटाई। और देखो कोनो ठाव भी कोनो जगह कोनो घड़ी अगर बढ़िया बात हमारे कर बताही हमारे उमन के बताही तो मन हमारे के बात सुनने का मौका नहीं दे पाए, है नहीं।
1: एकदम। और ओहे छो मन आगे बढ़वाए जेके घर कर जेकर घर में संस्कार अच्छा रहेला, देवल जायला, परवरिश बढ़िया रहेला, सेहे छो मन आगे बढ़े ना बहिन। जे
0: सही
1: मने माए बाप कर बात सुनत हैं, बढ़कर इज्जत करत हैं, है नी, और एकदम
0: समय के वैल्यू देवा था
1: समय के
0: तुम,
1: वैल्यू करत
0: नैतिक के
1: हैं।
0: शिक्षा कर बारे जाना था तुम,
1: हाँ
0: है नहीं।
1: ओहे मन आज कल आगे बढ़त छवा मन, और जरूरी है कि हमरे सब छवा पुता मन के संस्कारवान बनाए,
0: सही बात
1: है
0: है
1: कि नहीं।
0: बहन। और
1: जे मन
0: आजकल
1: गलत करत है नहीं, उके सही रास्ता दिखाए कर दरकार है। देखो कोई जरूरी नहीं कि छुआ मन के रौरे मार डपत के ही गरियाए के ही उके सिखाओ, नहीं, प्यार और दुलार से भी उके सिखाल जाए सकेला।
0: सही बात है
1: ज्यादा
0: बहन।
1: उके गरिया मारब नहीं तो छुआ मन ढीठ हो जाए ना, नहीं, सेलो के दुलार प्यार से भी समझाए के।
0: सही बात है। और देखो बहन जैसे 12 से 16 17 कर बीच में हो जाएगा जे हमरे कर छोट भाई बहन में का तीन अवस्था हुएला, है नहीं। तो से घरे तो हमरे के भाई बहन के बगरा ध्यान देवे है बहन, कह दे कि
1: एकदम
0: इस उम्र में हमरे कर छोट भाई बहन मन बिगड़ भी जाती ला और जेकर वजह से
1: उमरे ऐसन होवे ला नहीं बहन, उस समय कर उमरे ऐसन रहे ला नहीं कि आदमी तनिक गड़बड़ा जाए ना,
0: सही बात
1: डहर से मतलब भटई जाए ना, है नहीं।
0: है।
1: सेले ऐसन बेरा में हमरे के जरूरी है माए बाप मन के, चाहे घर कर सब बड़ मन के बड़ छोट सभी कोई के, कि वो मन के अच्छा से प्यार दुरा से समराए के राखे कहे,
0: और सबके
1: समझाए
0: जागे
1: के,
0: खे,
1: और
0: है नहीं।
1: सबके जागे खे, एकदम अच्छा शिक्षा देव, है नहीं,
0: सही बात है बहन। और देखो
1: संस्कार मन बनाओ एकदम।
0: और बढ़िया शिक्षा भेटा थे, बढ़िया संस्कार भेटा थे तो रोल कर नाम भी रोशन कर रहे थे, है नहीं।
1: घर कर नाम से लेके, समाज कर नाम से लेके, राइज कर नाम से लेके, गोटा दुनिया में मने परचम
0: अब
1: लहरात
0: सही
1: हैं,
0: बात है
1: तब
0: बहन।
1: प्रणाम कर
0: तो चलो बहन
1: तो
0: बातचीत करते हैं रहे, लेकिन बेरा सिरे अगर हमरे मन कार्यक्रम कर और भी करते जा तो बढ़िया रही, है
1: एकदम
0: नहीं।
1: चलो तब और करीला एगो नागपुरी लोकगीत से जेके गाए हैं जानकी देवी और संगीमा रे, बहुत सुपट मधुर गीत लागे बहन, वंदना गीत लागे, चलो।

0: कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: तो चलो अब बेरा है हमरे को जानकारी करे कर है ने हिंदी वार्ता लागे जलवायु परिवर्तन और उकर का दुष्परिणाम हो सके इके बताते हैं वार्ताकार वंदना मुंडा।
3: जलवायु परिवर्तन आज विश्व की सबसे गंभीर समस्याओं में से एक है। पृथ्वी के तापमान, वर्षा, हवाओं तथा मौसम के अन्य तत्वों में लंबे समय तक होने वाले परिवर्तन को जलवायु परिवर्तन कहा जाता है। पिछले कुछ दशकों में मानव गतिविधियों के कारण पृथ्वी का औसत तापमान लगातार बढ़ रहा है। इस बढ़ते तापमान को वैश्विक उष्मीकरण कहा जाता है। जलवायु परिवर्तन का प्रभाव केवल पर्यावरण तक सीमित नहीं है, बल्कि यह मानव जीवन, कृषि, अर्थव्यवस्था, स्वास्थ्य और जैव विविधता पर भी गहरा प्रभाव डाल रहा है। वैज्ञानिकों के अनुसार पिछले 100 वर्षों में पृथ्वी के औसत तापमान में लगातार वृद्धि हुई है, जिसका मुख्य कारण मानवीय गतिविधियां हैं। औद्योगिकरण, शहरीकरण, वनों की कटाई तथा जीवाश्म ईंधनों के अत्यधिक उपयोग से वातावरण में ग्रीन हाउस गैसों की मात्रा बढ़ रही है, जिसके परिणाम स्वरूप वैश्विक उष्मीकरण की समस्या उत्पन्न हो रही है। भारत जैसे कृषि प्रधान देश में जलवायु परिवर्तन का प्रभाव किसानों, ग्रामीण समुदायों और प्राकृतिक संसाधनों पर स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। अनियमित मानसून, बढ़ते तापमान और जल संकट के कारण कृषि उत्पादन प्रभावित हो रहा है तथा लोगों के जीवन यापन पर प्रतिकूल असर पड़ रहा है। यदि इस समस्या की ओर समय रहते ध्यान नहीं दिया गया तो आने वाली पीढ़ियों को इसके और भी गंभीर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। जलवायु परिवर्तन के कारण। जलवायु परिवर्तन के पीछे प्राकृतिक और मानवीय दोनों प्रकार के कारण होते हैं, लेकिन वर्तमान में मानव गतिविधियां इसका मुख्य कारण है। जीवाश्म ईंधनों का उपयोग, कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस जैसे जीवाश्म ईंधनों के अत्यधिक उपयोग से कार्बन डाइऑक्साइड तथा अन्य ग्रीन हाउस गैसें वातावरण में बढ़ रही हैं। ये गैसें सूर्य से आने वाली ऊष्मा को पृथ्वी के वातावरण में रोक लेती हैं, जिससे तापमान में वृद्धि होती है। वनों की कटाई। पेड़ पौधे वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करते हैं। बड़े पैमाने पर जंगलों की कटाई से कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है और पर्यावरण का संतुलन बिगड़ जाता है। औद्योगिकरण। कारखानों और उद्योगों से निकलने वाले धुएं तथा रासायनिक गैसों के कारण वायु प्रदूषण बढ़ता है, जो जलवायु परिवर्तन को तेज करता है। जनसंख्या में वृद्धि। जलवायु परिवर्तन के कारणों में से एक कारण जनसंख्या में वृद्धि भी है, जिससे ऊर्जा, परिवहन और संसाधनों की मांग बढ़ती है और इससे ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन भी अधिक होता है। कृषि गतिविधियों में उपयोग होने वाले रासायनिक उर्वरकों का अत्यधिक उपयोग तथा पशुपालन से निकलने वाली मीथेन गैस भी जलवायु परिवर्तन में योगदान देती है। जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभाव। जलवायु परिवर्तन के अनेक गंभीर दुष्प्रभाव सामने आ रहे हैं, जो मानव और प्रकृति दोनों के लिए चुनौती बन चुके हैं। आज के दिन में तापमान वृद्धि, असमय और अनियमित वर्षा, स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं, प्राकृतिक आपदाओं में वृद्धि जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभाव हैं। तापमान में वृद्धि। पृथ्वी का औसत तापमान लगातार बढ़ रहा है। इसके कारण गर्मी की लहरें या हीट वेव्स अधिक तीव्र और लंबे समय तक रहने लगी हैं। इससे लोगों के स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। हिमनदों का पिघलना। वैश्विक तापमान बढ़ने से ध्रुवीय क्षेत्रों और पर्वतीय क्षेत्रों के हिमनद तेजी से पिघल रहे हैं। इससे समुद्र का जल स्तर बढ़ रहा है जो तटीय क्षेत्रों के लिए खतरा है। समुद्र स्तर में वृद्धि, समुद्र का जल स्तर बढ़ने से तटीय शहरों और द्वीपों के डूबने का खतरा बढ़ रहा है। लाखों लोगों को अपने घर छोड़ने पड़ सकते हैं। अनियमित वर्षा, जलवायु परिवर्तन के कारण वर्षा का स्वरूप बदल रहा है। कहीं अत्यधिक वर्षा और बाढ़ आती है तो कहीं सूखा पड़ता है। इससे कृषि और जल संसाधनों पर गंभीर प्रभाव पड़ता है। कृषि पर प्रभाव, फसलों की उत्पादकता में कमी आ रही है। मौसम की अनिश्चितता के कारण किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ता है। खाद्य सुरक्षा भी प्रभावित होती है। जैव विविधता का ह्रास, कई पशु पक्षी और पौधों की प्रजातियां अपने प्राकृतिक आवास खो रहे हैं। कुछ प्रजातियां विलुप्त होने के कगार पर पहुंच गई हैं। स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं और प्राकृतिक आपदाओं में वृद्धि, बढ़ते तापमान और प्रदूषण के कारण श्वसन रोग, हृदय रोग तथा संक्रामक बीमारियों का खतरा बढ़ रहा है। मलेरिया और डेंगू जैसी बीमारियां नए क्षेत्रों में फैल रही है। चक्रवात, बाढ़, सूखा, जंगल की आग तथा तूफान जैसी प्राकृतिक आपदाओं की संख्या और तीव्रता बढ़ रही है। इससे जनधन की भारी हानि होती है। जलवायु परिवर्तन को रोकने के उपाय, वृक्षारोपण। जलवायु परिवर्तन को रोकने का सबसे अच्छा और सबसे आसान तरीका अधिक से अधिक पेड़ लगाकर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को कम करना है। नवीकरणीय ऊर्जा का उपयोग, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और जल ऊर्जा जैसे स्वच्छ ऊर्जा स्रोतों को बढ़ावा देना चाहिए। ऊर्जा की बचत, बिजली और ईंधन का विवेकपूर्ण उपयोग करना चाहिए। ऊर्जा

0: प्रत्यक्ष उपकरणों का उपयोग भी लाभदायक है। प्रदूषण नियंत्रण उद्योगों और वाहनों से निकलने वाले प्रदूषकों को कम करने के लिए सख्त नियम लागू किए जाने चाहिए। जन जागरूकता और सतत विकास लोगों को जलवायु परिवर्तन के प्रति जागरूक करना आवश्यक है ताकि वे पर्यावरण संरक्षण में योगदान दे सके। ऐसी विकास नीतियां अपनानी चाहिए जो पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना आर्थिक प्रगति सुनिश्चित करें। निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि जलवायु परिवर्तन आज मानव सभ्यता के सामने उपस्थित सबसे गंभीर चुनौतियों में से एक है। यह केवल पर्यावरणीय समस्या नहीं है बल्कि सामाजिक, आर्थिक और स्वास्थ्य संबंधी संकट का भी कारण बनता जा रहा है। बढ़ता वैश्विक तापमान, अनियमित वर्षा, सूखा, बाढ़, चक्रवात, हिमनदों का पिघलना तथा समुद्र के जल स्तर में वृद्धि इसके प्रमुख दुष्प्रभाव हैं, जिनका प्रभाव विश्व के प्रत्येक देश पर किसी न किसी रूप में पड़ रहा है। यदि इस समस्या पर समय रहते प्रभावी कदम नहीं उठाए गए तो आने वाले वर्षों में प्राकृतिक संसाधनों की कमी, खाद्य संकट, जल संकट तथा जैव विविधता के ह्रास जैसी समस्याएं और अधिक गंभीर हो सकती हैं। जलवायु परिवर्तन की चुनौती से निपटने के लिए केवल सरकारों के प्रयास पर्याप्त नहीं हैं, बल्कि प्रत्येक नागरिक की भागीदारी भी आवश्यक है। अतः हमें आज से ही जलवायु परिवर्तन को रोकने और पर्यावरण संरक्षण के लिए ठोस कदम उठाने चाहिए ताकि पृथ्वी पर जीवन सुरक्षित, स्वस्थ और समृद्ध बना रहे।
1: तो बहन अखन हमरे मने जानकारी करवाली जलवायु परिवर्तन और उकर दुष्परिणाम का तरी हुए ला और एक बतात रहे वंदना मुंडा। तो सही में बहन देखो हमरे कर पर्यावरण जे परिवर्तन हुआ थे जिक्रे में हमरे कर अहम भूमिका है नहीं,
2: अहम भूमिका है बहन। और तो और देखो ना जीव जहान भी उकरे से हमरे कर तबियत का मन खराब।
1: हम तो झेलवे करा थी कर में चारे चुनगुन भी झेला था थिन, जानवर झेला था थिन। तो हमरे के सबके जागिक है और पर्यावरण के हो बचा के रखे की है नी सेवा करे थे और बगरा से बगरा गाछ वृक्ष भी लगा कर और ये जलवायु परिवर्तन होते जाते से के भी रोके थे। तो बहन चलो समय बचल है तो हमरे गो नागपुरी में गीत सुन ले मिला।
2: हाँ
1: है नी का कही जरूरी
2: चलो तब एक ठो दादा मान ले एक ठो गीत सुनाए दे विला है कि नहीं।
1: देवदास विश्वकर्मा और संगमन गीत
2: सबका ले गीत है चलो

0: ओहो, एते सुपर नगद गीत की लागत है कि और सुनते रहते नहीं। इतना बढ़िया
1: लेकिन
0: गा रहा है नागपुरी लोकगीत जे देवदास विश्वकर्मा और संगी माननी बहिन। तो हमरे कर तो बेरा है जगह सिरात है, अगला दिन हमरे फिर से है जगह भेटा, फिर से सुना भी
1: नवा नवा
0: नवा नवा
1: जानकारी कर संगे
0: जानकारी
1: है
0: कर
1: नी।
0: संगे गीत। लेकिन जाए से पहले बताए चाहब कि इस कार्यक्रम पर प्रस्तुति रहे प्रभु शरण कर। तो चलो बहिन, अगला दिन फिर से है जगह भेटा, तब तक ले
1: जोहार।
0: जोहार।

0: घर घर तक पहुंचाएं आपका विज्ञापन, आकाशवाणी और दूरदर्शन के विभिन्न चैनल, देश के किसी भी कोने में विज्ञापन देने के लिए प्रसार भारती के मार्केटिंग प्रभाग से संपर्क कीजिए।
1: प्रसार भारती के पास है भारतीय संस्कृति की अनमोल धरोहर। इसमें शामिल हैं शास्त्रीय संगीत, नृत्य, साहित्य, नाट्य विधाएं, धारावाहिक, वृत्त चित्र और अन्य दुर्लभ रिकॉर्डिंग और अब आप आकाशवाणी और दूरदर्शन के खजाने की डीवीडीज और सीडीज हासिल कर सकते हैं भारत में अपने संग्रह के लिए। प्रसार भारती के कार्यक्रमों का खजाना अगर है आपको पाना, तो लॉग ऑन कीजिए www.prasarbhartiarchives.co.in। याद रहे www.prasarbhartiarchives.co.in।

0: से बेहतर कुछ नहीं।
1: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस RPLI की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।
2: आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं तृप्ति कुमारी। पहले मुख्य समाचार। झारखंड हाईकोर्ट का पारा शिक्षकों के हक में बड़ा फैसला। नियमित नियुक्ति से पहले की संविदा सेवा को भी माना जाएगा पेंशन योग्य। ब्याज सहित भुगतान का निर्देश। राज्य में विशेष गहन मतदाता पुनरीक्षण अभियान तेज। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने कहा, BLO ऐप का संचालन किसी भी हाल में नहीं करेंगे वॉलेंटियर्स। राज्य में कृषि संकल्प अभियान के तहत उन्नत और जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न जिलों से रवाना हुए डिजिटल रथ। पंचायतों में होगी किसान संगोष्ठी। जमशेदपुर में करणी सेना नेता की हत्या के खिलाफ भाजपा का 3 जुलाई को बंद का आह्वान। कांग्रेस ने आरोपियों को बताया बेबुनियाद। और राज्य के 7 जिलों के लिए मौसम विभाग का अलर्ट। चतरा, गढ़वा, गुमला, हजारीबाग, खूंटी, लातेहार और पलामू में अगले कुछ घंटों में वज्रपात और बारिश की चेतावनी। और अब समाचार विस्तार से।

0: झारखंड हाईकोर्ट ने पारा शिक्षकों के हक में बड़ा फैसला सुनाते हुए कहा है कि नियमित नियुक्ति से पहले संविदा के आधार पर दी गई सेवा अवधि को भी पेंशन योग्य माना जाएगा। अदालत ने 5 सेवानिवृत्त शिक्षकों की याचिका स्वीकार करते हुए राज्य सरकार को 8 सप्ताह के भीतर पेंशन और अन्य लाभ 6% वार्षिक साधारण ब्याज के साथ देने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि पेंशन कर्मचारियों का वैधानिक अधिकार है जिससे सरकार इनकार नहीं कर सकती। राज्य में भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर विशेष गहन पुनरीक्षण 2026 अभियान तेजी से जारी है। इसी कड़ी में रामगढ़ के उपायुक्त ऋतुराज ने बड़का गांव और रामगढ़ में प्रपत्र वितरण की समीक्षा करते हुए लापरवाह सुपरवाइजरों को कड़ी फटकार लगाई। उधर लोहरदगा में उपायुक्त संदीप कुमार मीना ने आज समाहरणालय से निर्वाचन जागरूकता रथ रवाना किया और हस्ताक्षर अभियान चलाया। उन्होंने बताया कि बीएलओ घर घर जाकर प्रपत्र संग्रह कर रहे हैं। प्रपत्र जमा करने वालों के नाम ही 5 अगस्त को प्रारूप सूची में शामिल होंगे।
1: हर एक मतदाता का तो एन्यूमरेशन फॉर्म यानी कि गणना प्रपत्र जनरेट हुआ है। हर एक बूथ के जो बीएलओ उनको हम लोगों ने वो गणना प्रपत्र उपलब्ध कराया है और 20 जून से लेकर के 29 जुलाई तक जो हाउस टू हाउस विजिट चलेगा उसमें जितने भी मतदाताओं का मतदाता सूची में नाम है हमारा बीएलओ जो है 324 जो बूथ में है उसका हर बीएलओ हर मतदाता के घर घर जाएगा।
0: इस बीच मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने कहा है कि विशेष गहन पुनरीक्षण में शिक्षकों और वॉलंटियर्स की तैनाती केवल बीएलओ के सहयोग के लिए की गई है। उन्होंने सभी जिला निर्वाचन पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि वॉलंटियर्स की जिम्मेदारियां स्पष्ट रखी जाए और वे किसी भी परिस्थिति में बीएलओ ऐप का संचालन नहीं करेंगे। पूरे प्रदेश में विकसित कृषि संकल्प अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत आज साहिबगंज, पाकुड़ और पलामू सहित विभिन्न जिलों से डिजिटल बिरसा कृषि जागरूकता रथ रवाना किए गए। ये रथ अगले 15 दिनों तक सभी ग्राम पंचायतों का सघन भ्रमण करेगा। अभियान के दौरान किसान संगोष्ठियों के माध्यम से खरीफ की उन्नत खेती, जैविक कृषि और सुखाड़ में वैकल्पिक खेती की जानकारी दी जाएगी। जमशेदपुर हत्याकांड के विरोध में भाजपा ने राज्य सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू ने आज रांची में घोषणा की कि 2 जुलाई को जमशेदपुर में मशाल जुलूस निकाला जाएगा और 3 जुलाई को जमशेदपुर बंद रहेगा। उन्होंने मामले की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट से कराने और पीड़ित परिवार को मुआवजा व सुरक्षा देने की मांग की है।
2: पुलिस का काम है कि जो भी दोषी है उसको गिरफ्तार करना, चाहे कोई भी कितना बड़ा आदमी क्यों ना हो। दोषी होगी तो कार्रवाई हम लोग करेंगी, इसमें कहीं कोई दुमत नहीं। भारतीय जनता पार्टी पक्षपात की राजनीति नहीं करती है, हमेशा न्याय के रास्ते पर रखती है। जहां अन्याय होगा, कोई भी अन्याय करेगा तो भाजपा एक पर भी पीछे हटने का काम कार्रवाई से नहीं करेगा।
0: प्रदेश कांग्रेस ने जमशेदपुर घटना को लेकर भाजपा के बंद को आह्वान के राजनीतिक अवसरवाद करार दिया है। कांग्रेस मीडिया प्रभारी राकेश सिन्हा ने भाजपा पर संवेदनशील मुद्दे का राजनीतिकरण करने का आरोप लगाते हुए कहा कि पुलिस और सरकार पर लगाए गए आरोप निराधार है। सरकार इस मामले में सख्त है और कोई भी दोषी बख्शा नहीं जाएगा। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIRNewsAlerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIRNewsRanchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIRNewsRanchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। देश में वस्तु और सेवा कर यानी जीएसटी लागू होने के आज 9 वर्ष पूरे हो गए हैं। इस ऐतिहासिक कर व्यवस्था ने कर संरचना को तर्कसंगत और मानकीकृत बनाकर एक भारत श्रेष्ठ भारत के दृष्टिकोण को मजबूत किया है। इसके तहत 17 विभिन्न करों और 13 उपकरों को एकीकृत किया गया था। नए जीएसटी सुधारों ने कम दरों और आसान प्रक्रियाओं के माध्यम से कर प्रणाली को और सरल बना दिया है, जिससे परिवारों, लघु उद्योगों और किसानों को सीधा लाभ मिल रहा है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से आज रांची में फेडरेशन ऑफ झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के प्रतिनिधिमंडल ने शिष्टाचार भेंट की। चैम्बर अध्यक्ष आदित्य मल्होत्रा ने नेतृत्व में हुई इस बैठक में राज्य में उद्योग, व्यापार और निवेश पर सकारात्मक चर्चा हुई। प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री को आगामी राज्य स्तरीय सम्मेलन में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होने का निमंत्रण दिया। हजारीबाग के सांसद मनीष जायसवाल ने अपने 2 साल के कार्यकाल का रिपोर्ट कार्ड जारी किया है। उन्होंने हजारीबाग और रामगढ़ जिलों में पीएम सड़क योजना, पीएम आवास और कुसुम योजना के तहत हुए विकास कार्यों की प्रगति साझा की। साथ ही उन्होंने बरकाकाना रेलवे स्टेशन के कायाकल्प और कोडरमा रेल मार्ग के दोहरीकरण कार्य की भी जानकारी दी।
3: पुस्तक में लिखा है 2 साल बेमिसाल, और वो मिसाल रहना ही है, इसलिए कि हम लोगों ने जनता के हित के लिए बहुत सारे कामों को किया। जो मेरी बेसिक जिम्मेवारी थी, जो एज ए सांसद केंद्र सरकार की योजनाओं का क्रियान्वयन करना, उस योजना के बारे में हमने अपनी पूरी बात रखी है। इसका डिजिटल वर्जन आपको वहाँ पर उपलब्ध है, इस पुस्तक के माध्यम से हम लोगों ने रखा है। आशा है कि लोग इसको जज करेंगे।
0: रांची पुलिस ने आम जनता की शिकायतों के त्वरित निष्पादन के लिए सभी थानों में साप्ताहिक जन शिकायत समाधान शिविर की शुरुआत की है। वरीय पुलिस अधीक्षक राकेश रंजन के निर्देश पर यह कार्यक्रम अब प्रत्येक बुधवार को आयोजित किया जाएगा। शिविर में डीएसपी स्तर के अधिकारी और थाना प्रभारी स्वयं उपस्थित रहकर जमीन विवाद, धोखाधड़ी, घरेलू हिंसा और चोरी जैसे मामलों की सुनवाई कर मौके पर ही समाधान का प्रयास किया जाएगा। रामगढ़ पुलिस ने मांडू के सब रजिस्ट्रार बालेश्वर पटेल हत्याकांड में त्वरित कार्रवाई करते हुए सभी 7 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस अधीक्षक मुकेश लोनायत ने बताया कि ये वारदात 11 डिसमिल जमीन के आपसी विवाद को लेकर हुई थी।
4: घटना का संज्ञान लेते हुए स्थानीय ग्रामीणों की मदद से जो घायल व्यक्ति था उसको अस्पताल भिजवाया गया। घटना की गंभीरता को देखते हुए एफएसएल की टीम को बुलाते हुए घटनास्थल से पुलिस द्वारा अनुसंधान प्रारंभ, वैज्ञानिक तरीके से साक्ष्य संकलन किया गया और अभी तक की पूछताछ में जमीन की विवाद में हत्या करने की बात सामने आई है।
0: मौसम विभाग ने चतरा, गढ़वा, गुमला, हजारीबाग, खूंटी, लातेहार और पलामू जिलों के लिए अगले 1 से 3 घंटों में मेघ गर्जन और वज्रपात के साथ हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश की चेतावनी जारी की है। इस दौरान कुछ स्थानों पर 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं भी चल सकती है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। झारखंड हाईकोर्ट का पारा शिक्षकों के हक में बड़ा फैसला। नियमित नियुक्ति से पहले की संविदा सेवा को भी माना जाएगा पेंशन योग्य। ब्याज सहित भुगतान का निर्देश। राज्य में विशेष गहन मतदाता पुनरीक्षण अभियान तेज। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने कहा बीएलओ ऐप का संचालन किसी भी हाल में नहीं करेंगे वॉलेंटियर्स। राज्य में कृषि संकल्प अभियान के तहत उन्नत और जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न जिलों से रवाना हुए डिजिटल रथ। पंचायतों में होगी किसान संगोष्ठी। जमशेदपुर में करणी सेना नेता की हत्या के खिलाफ भाजपा का 3 जुलाई को बंद का आह्वान। कांग्रेस ने आरोपों को बताया बेबुनियाद। और राज्य के 7 जिलों के लिए मौसम विभाग का अलर्ट। चतरा, गढ़वा, गुमला, हजारीबाग, खूंटी, लातेहार और पलामू में अगले कुछ घंटों में वज्रपात और बारिश की चेतावनी। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन कल सुबह 8:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
5: जिले में आज कर

0: इस अंक में आप सुनेंगे रांची जिले की ताजा गतिविधियों पर हमारे संवाददाता की रिपोर्ट। रिपोर्ट के साथ हमारे रांची संवाददाता।
1: रांची के कांकेर स्थित बिरसा कृषि विश्वविद्यालय का 46वां स्थापना दिवस समारोह मनाया गया। मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने कहा कि बिरसा कृषि विश्वविद्यालय केवल एक शैक्षणिक संस्थान नहीं बल्कि झारखंड के किसानों के आकांक्षाओं और आशाओं का केंद्र है। उन्होंने कहा कि कृषि अब सिर्फ परंपरागत खेती तक सीमित नहीं है बल्कि नवाचार, स्टार्टअप, खाद्य प्रसंस्करण एवं रोजगार सृजन का एक व्यापक क्षेत्र बन चुका है। राज्यपाल ने कहा कि किसान समृद्ध होंगे तभी गांव और देश समृद्ध होगा।
2: हमारे जनजातीय समाज ने सदियों से प्रकृति के साथ सामंजस्य स्थापित कर रहे हुए

0: टिकाऊ कृषि और संसाधनों के संरक्षण एक समृद्ध परंपरा विकसित की है। मुझे प्रसन्नता है कि विश्वविद्यालय जैविक खेती श्री अन्न मिलेट्स बागवानी पशुपालन मत्स्य पालन तथा जल संरक्षण जैसे क्षेत्रों में महत्वपूर्ण अनुसंधान कर रहा है।
1: राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान के तहत रांची में 28 से 30 जून तक विशेष अभियान चलाया गया। अभियान को सफल बनाने के लिए 15 प्रचार प्रसार वाहनों को जागरूकता के तहत चलाया गया। कार्यक्रम की औपचारिक शुरुआत सदर अस्पताल से की गई। इस अवसर पर रांची के विधायक सीपी सिंह ने कहा कि भारत पोलियो से मुक्त हो चुका है, लेकिन इस उपलब्धि को बनाए रखने के लिए लगातार सतर्क रहने की आवश्यकता है। स्वास्थ्य विभाग, नगर निगम, सहिया और संबंधित टीम अभियान को सफल बनाने में एकजुट दिख रही हैं।
2: सदर अस्पताल में पोलियो दिवस के अवसर पर इसकी शुरुआत की गई ताकि एक भी बच्चा इससे वंचित न रह जाए। दो बूंद पोलियो का जीवन की रक्षा करने का काम करता है और बूथों पर यहाँ के कर्मचारी पोलियो की खुराक देने का काम करता है। लोगों में जागरूकता आनी चाहिए कि अपने जो नवजात बच्चे हैं उन सभी बच्चों को पोलियो की खुराक अवश्य दिलाए।
1: अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के सिलसिले में रांची स्थित योगदा आश्रम में विशेष सत्र का आयोजन किया गया। इस मौके पर आश्रम के स्वामी ईश्वरानंद गिरी ने लोगों को ध्यान और योग के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि ध्यान के माध्यम से ईश्वर की अनुभूति प्राप्त की जा सकती है।
3: योगदा की जो शिक्षाएं हैं उसमें मानव की जो तीन पहलू हैं, मानव का एक शरीर है, मानव का एक मन है, मानव की एक आत्मा है, इन तीनों पहलुओं का एक सामंजस्यपूर्ण विकास करने की विधि हम लोग सिखाते हैं। ध्यान की विधियां हैं, उच्च कोटि के प्राणायाम हैं जिससे हम मन को अपने नियंत्रण में ला सकते हैं और व्यक्ति जो है अपनी चेतना को ईश्वर के साथ जोड़ सकता है।
1: रांची के आर्यभट्ट सभागार में विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग यंग प्रोफेशनल राउंड टेबल का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का आयोजन आत्मनिर्भर भारत, मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड विषय पर केंद्रित था। इस मौके पर माई भारत झारखंड की स्टेट डायरेक्टर ललिता कुमारी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2047 तक विकसित भारत का सपना देखा है, उसमें युवाओं की भागीदारी काफी महत्वपूर्ण है। 15 से 29 आयु वर्ग के युवाओं को आइडिया शेयर करने का मौका देता है।
4: मोदी जी का विजन है कि 2047 में हमारा भारत एक विकसित भारत के रूप में विकसित देशों के कतार में आ जाए। तो हमारे जो यूथ प्रोफेशनल्स हैं, यंग यूथ है 15 से 29 वर्ष के लोगों को, उनका आइडिया भी लिया जा रहा है ताकि उनका आइडिया को इंक्लूड किया जाए।
1: राउंड टेबल में अन्य युवाओं के साथ झारखंड की पीएम प्रेजेंटर आयशा फातिमा ने भी अपने विचार रखे। कर्मवीर, आकाशवाणी समाचार, रांची।
5: अभी आप सुन रहे थे रांची जिले की ताजा गतिविधियों पर हमारे संवाददाता की रिपोर्ट पर आधारित कार्यक्रम जिले में आज कल।

0: मुंडारी वर्तरबू अहिम तन तैकिना बदलते मौसम में रखे अपना ख्याल वर्तकार तैकिना अमिय सुरीन
1: आयर ते ओड़म कार्यक्रम रे ओड़म दुरंग बु आयुमिया एंडे को दुरंग तदा कृष्ण बड़ाई को ओड़ो संगे को आ दुरंग

0: ನಾವು ಅಹಿಂತನ್ ತಗ್ಗಿನ ಚೊಟ್ರಾ ಮುಂಡಾ ಅವರು ಸೋಂಗಿಕ್ಕು ಅದುರಂಗ್ ನೇ ದುರಂಗ್ ಲೋತೆಗೆ ತಿಸಿರ ಆದಿವಾಸಿ ಅಖಡಕರ ಕ್ರಮ ನಿತಾರೆ ಟುಂಡುಜಿನ ನೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ರ ಪ್ರಸ್ತುತಿ ಗೌರವ್ ಕುಮಾರ್ ಪಾಂಡೆ ಸಾತೆ ಹೋಬಾಜನ ಸಿನೋ ತಾನ್ಲೋಮಾರ್ ಅಂಜ್ ಬಿರ್ಸಪೂರ್ತಿ
1: ಹೊಡೋ ಅಂಜ್ ಸಂತೋಷಿ ನಾಗ್
0: ತಕಿನ್ ಸಾತೆ ಜುವಾ
2: इस समय आप सुन रहे थे कार्यक्रम आदिवासी अखड़ा, आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। आइए सुनते हैं प्रायोजित कार्यक्रम उड़ान।
3: नमस्कार, मैं एना कर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ कार्यक्रम हमारी बेड़िया में। तो श्रोताओं आइए कार्यक्रम को शुरू करने से पहले आप हमारा पता जरूर लिख लें, ताकि कार्यक्रम के दौरान अगर आपके जहन में कोई सवाल आता है तो आप हमें जरूर बताएं। हमारा पता है कार्यक्रम हमारी बेड़िया, पोस्ट बॉक्स नंबर 6, नई दिल्ली 110001। और हमारा फोन नंबर है 9311504004। जी हाँ, 9311504004।
4: इंसान के जीवन में ऐसे बहुत ही कम मौके आते हैं जब इंसान को कोई न कोई सीख दे जाता है, और जब सीख मिलती है तो इंसान के जीवन की दिशा और दशा दोनों ही बदल जाती हैं। हम अपने जीवन को बुराई से मुड़कर अच्छाई

0: की ओर चलाने में क्षणिक भी देरी ना करें। ऐसा ही हमारे नाटक में एक परिवर्तन बताया गया है जो बुराई से इंसान को अच्छाई के रास्ते पर लाता है। अब हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं ये नाटक जिसका शीर्षक है परिवर्तन।
1: अरे आ मगरू, बहुत दिन हो गए घर में बैठे बैठे। अगर इसी तरह बैठे रहे तो घर का सारा राशन पानी भी खत्म हो जाएगा।
2: हाँ यार बोला ना, बात तो तुम्हारी सही है और तुम्हारी भाभी भी रोज लड़ती रहती है। अब मैं कैसे समझाऊं उसे कि पहले जैसा धंधा नहीं रहा भाई चोरी में।
1: हाँ मगरू यार, वो भी क्या दिन थे, जब चोरी करने के लिए जाते थे तो आसानी से माल मिल जाता था।
2: बात तो सही है, अब लोग भी बहुत होशियार हो गए भाई, अपना रुपया पैसा सब बैंकों में रखते हैं और गहनों को तो उसमें रखते हैं, क्या बोलते हैं उसको, हॉकर में।
1: अरे यार वो बैंकों में हॉकर नहीं, लॉकर होता है, जिसमें लोग बाग अपना पैसा सोना चांदी रखते हैं।
2: अरे घरों में चोरी का धंधा बंद करवाकर बैंकों को लुटवाने का इरादा क्या भाई?
1: अरे यार मगरू, बूढ़ा मरे या जवान, हमें तो पैसों से काम। अब तू बता, ऐसी घर में खाते रही तो खाते खाते तो घर में बैठे बैठे महाराजों के खजाने खाली हो जाते हैं।
2: हाँ यार, अब तो दोपहर है, शाम होने दे, खाना पीना खा पी कर आज शाम अपने पुराने धंधे पर ही चलेंगे। चोरी से मस्त धंधा है ही क्या है।
1: हाँ यार, शहर में तो अब चौकीदार चौकसी करने लग गए, रात में गश्त लगाते रहते और ऊपर से पुलिस की गाड़ियां घूमती रहती हैं। अब तू बताया, शहर में चोरी करना कहाँ आसान रह गया है, अगर पकड़े जाओ तो हवालात, नहीं तो हवालात से सीधे जेल।
2: हाँ यार सही कह रहा है यार भोला नाथ, ये पेट है ना सब कुछ करा देता है, जान पर खेलने वाले काम भी, लेकिन मुझे तो चोरी से अच्छा कुछ काम लगता नहीं अगर पुलिस ना हो तो।
1: हाँ भाई, आजकल तो गांव देहात की चोरी भी आसान कहाँ रह गई है, कुत्ते भी तो इतने तादाद में बढ़ गए, जिधर जाओ भौंव करते रहते हैं और पूरी बारात की बारात पीछे पड़ जाती है।
2: कुत्ते भी पुलिस हो गए भाई, आज शाम को चार रोटी लेके चलना कुत्तों के आगे फेंकने के लिए।
1: हाँ भाई, कम से कम कुत्तों का मुंह तो बंद रहेगा, नहीं तो भौंव करने लगते और लोग समझ जाते हैं कि चोर आगे चोर आगे।
2: चल तो यार शाम हो गई है, अपने घर चले, खाना पीना खाया जाए, फिर निकलेंगे थोड़ा अंधेरा होने पर आराम से।
1: पिछली बार की तरह पी मत आना, नहीं तो प्लान चौपट हो जाएगा।
2: अरे यार पागल मत समझो मुझे।
1: ठीक है चल घर चलते, खाते पीते हैं।
2: चलो चले।
1: मगरू ओ मगरू, बाहर तो आ।
2: हाँ भाई आजा आजा, दरवाजा खुला हुआ है, भीतर आजा।
3: देवर जी जा तो रहे हो अपने भाई के साथ चोरी करने, जरा मोटा माल हाथ मार के लेके आना।
1: हाँ भाभी जी बिल्कुल चिंता मत करो, आज हम मोटा माल ही साथ लेके आएंगे, बस तुम भगवान से दुआ करो कि हम पकड़े नहीं जाएं।
2: आज कोई खास मोटा माल किसी अमीर आदमी के यहाँ से चुराना है भाई।
1: चलो ऐसा ही करेंगे बिल्कुल।
2: चलो तो चलो।
1: यार मगरू आज शहर में तो नहीं चल रहे भाई, तू बुरा मान या भला मान?
2: हाँ यार मैं क्यों बुरा मानूंगा, बहुत दिनों के बाद तो चोरी करने निकले, उसमें भी शहर जाकर पुलिस के या चौकीदारों के हाथ पकड़ना है क्या?
1: अरे यार मुझे तो पास में गांव दिख रहा है, उसी में चलते हैं।
2: चलो भाई चलो, बस कुत्तों से सावधान रहना, थोड़ी सी परछाई दिखते ही भौंव करने लग जाते हैं।
1: ये जो रोटी तू भाग कर लाया ना कब काम आएगी, ये तो कुत्तों की रिश्वत है मुंह बंद करने के लिए, कुत्ता सारे भौंव करते रहते हैं।
2: अरे भोला नाथ जरा बच के देखो, देखो कुत्ते आ गए, जल्दी रोटी फेंक।
1: अरे यार मगरू, तो कुत्ते भी ना मेरी जान के पीछे पड़ गए, रुक फेंकता हूँ।
2: यार बहुत समय हो गया, किस घर में चोरी करें कुछ पता भी नहीं चल रहा है, कुछ समझ में भी नहीं आ रहा है।
1: यार हम जहाँ छुपे हैं तो कोई ना कोई घर ही है, क्यों ना इसी दीवार को तोड़ के देखें, क्या पता मोटा माल मिल जाए, वैसे भी तुम्हारी पत्नी बोल रही थी मोटा माल लेके आना।
2: हाँ भाई चलो दीवार को तोड़ते हैं, सुन धीरे धीरे तोड़, कोई पता ना चल जाए किसी को।
1: यार सुन, इतना ही तोड़ना इतना कि हम भीतर घुस जाएं।
2: यार तुम भीतर घुस जाओ, मैं बाहर रखवाली करता हूँ।
1: ठीक है भाई। अरे यार बड़ी मुश्किल से अंदर घुसा जा रहा है। मगरू ओ मगरू सुन तो सही यार।
2: अरे क्या बात है, धीरे बोल कोई सुन लेगा, बता क्या बात है।
1: यार मगरू, अब तो मजा आ गया। देख मुझे तो बनिए की

0: दुकान सी लग रही है ये तो, इसमें छुहारे, बादाम, काजू और पैसे भी रखे। मुझे लगता है आप तो भाभी जी की दुआ सुन ली भगवान ने।
1: सच में शुक्र है ऊपर वाला तेरा, बड़े दिनों में मोटा माल हाथ लगा है। अरे भोलेनाथ सारा माल ले चल।
0: हाँ भाई हाँ भाई, मैंने सब मोटा मोटा माल ले लिया है। आप तो भाभी खुश हो जाएंगी क्योंकि बरसों का प्रबंध हो गया खाने के लिए।
1: चलो तो चलो चलते हैं। अरे यार माल बहुत ज्यादा है, कैसे लेकर चले इतना सब कुछ।
0: अरे यार मगुरु, तेरा काम तो बन गया, अब मेरी तो चिंता कर ले।
1: अरे तू क्यों चिंता करता है, बता क्या बात है, बता तो सही।
0: अरे यार क्या हमारे बच्चे रूखे सूखे बादाम छुहारे खाएंगे, दूध भी तो चाहिए इनके साथ।
1: अरे यार तू क्यों चिंता करता है, चल किसी के घर में जाके एक अच्छी दूध वाली भैंस को चुराते हैं ताकि तेरी पत्नी भी खुश हो जाएगी।
0: हाँ भाई चल, इसी गांव में देख लेते हैं, किसी ना किसी के घर तो भैंस मिल ही जाएगी।
1: अरे मिल गई मिल गई, यहाँ देख एक भैंस है, इधर आ, इस दीवार को तोड़, इस घर में भैंस है।
0: अरे नहीं यहाँ से नहीं तोड़ते, पीछे चलते, मुझसे भागने में आसानी होगी, पकड़े जाएंगे तो।
1: अरे भोलानाथ तोड़ो इस दीवार को, कोई जग ना जाए, देखो ईंट पत्थरों को आराम से संभाल के रख।
0: अम्बे यार धीरे धीरे तोड़ा, तसल्ली तो रख।

0: भूखे पेट चूहा कूद रहे हैं पेट में।
1: बेटा चिंता मत कर और थोड़े दिन धीरज कर ले।
0: माँ जब से पिताजी हमें छोड़कर इस दुनिया से गए हैं मैंने कभी बादाम छुआरे किशमिश नहीं खाए।
1: हाँ बेटा तेरे पिताजी को गुजरे पूरे 10 साल हो गए जब तू 2 साल का बच्चा था। वो ही तो इस घर को चलाने वाले थे जिनके बिना तो हमारी दुनिया ही वीरान हो गई।
0: माँ माँ पिताजी कितने अच्छे थे वो मुझे रोज अपनी गोद में उठाकर उस बनिया की दुकान पर ले जाते थे और मुझे खाने के लिए मन पसंद चीज दिलाया करते थे।
1: हाँ बेटा एक मैं हूँ कमबख्त जो अपने बेटे को कोई भी अच्छी चीज पेट भर कर नहीं खिला पाती।
0: माँ ऐसा मत कहो माँ देखो तुमने इतनी मेहनत मजदूरी से मेरे लिए ये भैंस खरीदी है। पूरे 3 साल से तुम साहूकार के घर काम कर रही हो और उन्हीं पैसों से तुमने ये भैंस खरीदी है मेरे लिए।
1: हाँ बेटा जब ये बच्चा डालेगी तब दूध देगी तो मैं तुमको पेट भर के दूध पिलाया करूँगी।
0: माँ मुझे मलाई खिलाया करोगी ना?
1: हाँ बेटा और कौन है मेरा इस दुनिया में जिसके लिए मैं ये सब कर रही हूँ।
0: माँ बहुत दिनों से मैंने घी दूध ना खाया बताओ हमारी भैंस कब दूध देगी।
1: बेटा बस 2 महीने और सबर कर।

0: से तुम क्यों छुपाती हो, बताओ ना माँ, जब हमारे घर में एक पैसा भी नहीं है तो तुम कैसे मुझे ये सब खिलाओगी माँ?
1: बेटा, मेरे कलेजे के टुकड़े, ऊपर वाला सब हमारा इंतजाम करेगा। कभी न कभी हमारे घर में भी अच्छे दिन आएंगे। कोई न कोई हमारी मदद के लिए जरूर दुआ कर रहा होगा।
0: माँ, सुना है भगवान जब भी देता है तो छप्पर फाड़ के देता है।
1: बेटा, एक दिन हमारी गरीबी इसी भैंस के सहारे खत्म हो जाएगी। जब दूध देगी ना, तो हम दूध बेचा करेंगे और उससे मिलने वाले पैसों से तेरे लिए सब चीज खरीद खरीद के लाया करूंगी मेरे लाल।
0: माँ, तुम कितनी अच्छी हो माँ।
2: यार नगरू, तुमने सुनी माँ बेटों की बातें?
3: यार भोलेनाथ, मेरे तो आंखों से आंसू भी नहीं रुक रहे भाई।
2: यार नगरू, मैंने इनके घर में घुसकर देख लिया है, मुझे तो कुछ नहीं पाया है। मुझे तो लगता है

0: उसके बारे में तो हमने कभी सोचा ही नहीं, और कभी हमारी पत्नियों ने भी नहीं कहा हमसे कि चोरी मत करो, ये गलत काम है।
1: इस विधवा और इस बेटे ने हमारी आंखें खोल दी है यार। देख बोला ना, जो उस बनिया की दुकान से हम चुरा कर लाए ना, उसको विधवा के घर में रख देंगे आज।
0: हाँ यार चलो, सब इसी घर में रख देते हैं, जब ये सुबह माँ बेटे देखेंगे तो।
1: यार भोलानाथ, जो हमने आज चुराया ना बनिए के घर से, रुपया पैसा बादाम छुआरे मसाले सब इस विधवा के घर में रख देते हैं, ये बेचारी ये कभी खरीद भी नहीं पाएगी, और इसके घर में कुछ है भी नहीं।
0: हाँ दोस्त मगरू, आज इस विधवा के घर में ही मैं और तू शपथ खाते हैं, आज के बाद कभी चोरी नहीं करेंगे यार।
1: भोलानाथ अपना हाथ पकड़ा मुझे।
0: ले मगरू।
1: मैं मगरू।
0: मैं भोलानाथ। हे ईश्वर,
1: इस गरीब विधवा के घर में ही आज शपथ खाकर जाते हैं, आज के बाद कभी चोरी नहीं करेंगे, ना कभी चोर कहलाएंगे, और कमाकर ही सदा घर चलाएंगे। हे ईश्वर हमारी मदद करना।
2: तो देखा श्रोताओं, चोरी एक बहुत बड़ा पाप है जो लालच में आकर किया जाता है। आज के दौर में इस पाप से बहुत ही कम लोग बच पा रहे हैं और दूसरों की चीजों पर अपनी नियत डिगा रहे हैं, और इस पाप में गिरकर वो अपने जीवन को सोचते तो हैं कि सुकून से जिएंगे, लेकिन वो अच्छे रास्ते से और ईश्वर की भक्ति से कोसों दूर ले जाते हैं। कहीं हमारे और आपके जीवन में तो नहीं कोई लालच काम कर रहा जो हमें चोरी की ओर अग्रसित करे? जी हाँ, ऐसा अगर है तो आज वो समय है कि आप अपनी गलती से क्षमा पाएं, गलती को मानें और स्वीकार करें, और अपने जीवन को अच्छे मार्ग पर लगाएं।
3: तो श्रोताओं, आशा करते हैं कि आपको ये कार्यक्रम पसंद आया होगा। अगर आप अधिक जानकारी चाहते हैं या आप अपने अनुभवों को हमसे बांटना चाहते हैं तो हमें जरूर बताएं। हमारा पता है कार्यक्रम हमारी बेड़ियां, पोस्ट बॉक्स नंबर 6, नई दिल्ली 110001, और हमारा फोन नंबर है 9311504004। जी हाँ, 9311504004। तब तक के लिए खुश रहें, स्वस्थ रहें। नमस्कार।

इस समय आप सुन रहे थे कार्यक्रम उड़ान। यह कार्यक्रम प्रायोजित था मीडियम वेव 546.45 मीटर यानी 549 किलोहर्ट्ज़ तथा FM 100.5 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। आइए सुनते हैं फिल्म संगीत। कार्यक्रम है रजनीगंधा। कार्यक्रम में सबसे पहले सुनते हैं फिल्म गोरा और काला में मोहम्मद रफी को। संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का है।

फिल्म संगीत के कार्यक्रम में आगे सुनते हैं मोहम्मद रफी, फिल्म जीने की राह में।

कार्यक्रम रजनीगंधा में आगे सुनते हैं फिल्म धर्मवीर में लता मंगेशकर और किशोर कुमार को। गीत रचना आनंद बख्शी की है, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

कार्यक्रम रजनी गंधा में आगे सुनते हैं लता मंगेशकर को फिल्म कारवां में। गायक कलाकार हैं लता मंगेशकर, संगीत राहुल देव बर्मन का, शब्द रचना मजरूह सुल्तानपुरी की।

फिल्म संगीत के कार्यक्रम को आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के रांची केंद्र से। कार्यक्रम में आगे सुनते हैं मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर को। शब्द रचना मजरूर सुल्तानपुरी की है, संगीत राहुल देव वर्मन का। फिल्म का नाम है मेला।

फिल्म लोफर के इस गीत के साथ ही आज का फिल्म संगीत का कार्यक्रम अब समाप्त होता है। मीडियम वेव 546.45 मीटर यानी 549 किलोहर्ट्ज़ तथा एफएम 102.5 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। अगला कार्यक्रम हम हमारे दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। सरकार ने दिल्ली और उत्तर प्रदेश में 14,000 करोड़ रुपए से अधिक की दो बड़ी राजमार्ग सड़क परियोजनाओं को मंजूरी दी। विकसित भारत जी रामजी अधिनियम देशभर में लागू। केंद्र सरकार ने योजना के अंतर्गत मजदूरी की नई दरें अधिसूचित की। सर्वोच्च न्यायालय ने मोटर दुर्घटना मुआवजे के दावों में एकरूपता लाने के लिए पीड़ितों की आय का आकलन करने संबंधी दिशा निर्देश जारी किए। जापान की प्रधानमंत्री सनाई तकाईची 3 दिन की भारत यात्रा पर नई दिल्ली पहुंची। कल 16वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगी। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की T20 क्रिकेट श्रृंखला का पहला मैच आज रात चेस्टर ले स्ट्रीट में खेला जाएगा। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में राउंड ऑफ 32 में आज रात इंग्लैंड का मुकाबला DR कांगो से होगा। अब समाचार विस्तार से। सरकार ने दिल्ली और उत्तर प्रदेश में 14,000 करोड़ रुपए से अधिक के दो बड़ी राजमार्ग सड़क परियोजनाओं को मंजूरी दी है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इसमें दिल्ली में द्वारका एक्सप्रेसवे को वसंत कुंज से जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग 148AE के लिए 6 लेन की सड़क सुरंग का निर्माण शामिल है।
1: पहला प्रोजेक्ट 6 लेन द्वारका टनल दिल्ली के लिए एक बहुत बड़ा वरदान साबित होगी। 8 किलोमीटर की ये टनल एक तरीके से कम्प्लीट ये एक नया कॉरिडोर बन जाएगा। ये रिज है, इस रिज को बिना डिस्टर्ब किए सारा काम करना है। इस रिज को, रिज हमारे दिल्ली की एक तरीके से लंग्स ऑफ दिल्ली है, इसलिए उसको बिल्कुल भी डिस्टर्ब किए बिना इसके नीचे से ही टनल लेके जाने का है।

0: ये प्रपोजल है।
1: श्री वैष्णव ने बताया कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने एम्स और महिपालपुर के बीच एलिवेटेड कॉरिडोर का भी प्रस्ताव किया है। परियोजना से लगभग 7,54,000 प्रत्यक्ष रोजगार और 9,80,000 अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित होगा। श्री वैष्णव ने बताया कि सरकार ने उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 34 के करीब एक्सेस कंट्रोल कानपुर कबरई खंड के निर्माण को भी मंजूरी दे दी है। इसकी अनुमानित कुल लागत 7,145 करोड़ रुपए है।
0: दूसरा प्रोजेक्ट है बुंदेलखंड क्षेत्र को जोड़ने वाला है उत्तर प्रदेश में। कानपुर से भोपाल का सेक्शन है, बीच में आज जो अप्रूव हुआ है 242 किलोमीटर का, ये कानपुर से कबरई, कानपुर से भोपाल की तरफ जो नेचुरल ट्रैफिक का फ्लो है उस सबको ये कैटर करेगा। 242 किलोमीटर का है ये, एक्सेस कंट्रोल रहेगा, कम्प्लीट एक्सप्रेस वे की तरह का है। 2.5 ईयर्स में कंस्ट्रक्शन करेंगे इसको। कानपुर, हमीरपुर, महोबा तीन जिले इमीडिएटली इससे कवर होंगे।
1: इस परियोजना से लगभग 1,20,00,000 प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित होगा। विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन जी रामजी अधिनियम आज से लागू हो गया है। अधिनियम के अंतर्गत प्रत्येक वित्त वर्ष में 125 दिन के रोजगार की गारंटी होगी। केंद्र सरकार ने योजना के अंतर्गत मजदूरी की नई दरें भी अधिसूचित कर दी हैं। एक रिपोर्ट।
2: वीबीजी रामजी योजना के अंतर्गत अब देश में कहीं भी तय की गई प्रतिदिन की मजदूरी 300 रूपए से कम नहीं होगी, जिससे राष्ट्रीय औसत मजदूरी 298.80 रूपए प्रतिदिन से बढ़कर 327.40 रूपए प्रतिदिन हो जाएगी। यह मजदूरी में 10% से ज्यादा की बढ़ोतरी को दिखाता है। इस कानून को पूरे देश में लागू करने के अवसर पर कल आंध्र प्रदेश के तिरुपति जिले में एक राष्ट्रीय स्तर का कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इस कार्यक्रम में केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू शामिल होंगे। इस कार्यक्रम में वीबीजी रामजी की औपचारिक शुरुआत, लाभार्थियों को ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्ड का वितरण, वीबीजी रामजी सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म का लॉन्च, अहम प्रकाशनों को जारी करना, लाभार्थियों के साथ बातचीत और कानून को असरदार ढंग से लागू करने के उद्देश्य से कई पहलुओं का उद्घाटन शामिल होगा। नीतिका गुप्ता, आकाशवाणी समाचार, नई दिल्ली।
1: गृह मंत्री अमित शाह ने जनसांख्यिकी परिवर्तनों पर गठित उच्च स्तरीय समिति से अपनी सिफारिशें शीघ्र प्रस्तुत करने को कहा है। नई दिल्ली में एक बैठक में समिति ने गृह मंत्री को बताया कि वह जनसांख्यिकी परिवर्तनों की जानकारी प्राप्त करने के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का दौरा करेगी और प्रशासनों के साथ समन्वय करेगी। गृह मंत्री ने केंद्रीय गृह सचिव को समिति के दैनिक कार्यों और राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के दौरों के दौरान हर संभव सहयोग उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। सर्वोच्च न्यायालय ने आज मोटर दुर्घटना में मृतक व्यक्तियों या घायल दावेदारों की वार्षिक आय का निर्धारण आयकर रिटर्न के आधार पर करने के लिए दिशा निर्देश जारी किए। मोटर दुर्घटना मुआवजे में एक रूपता लाने के लिए शीर्ष न्यायालय ने कहा कि वेतनभोगी व्यक्तियों के मामले में वार्षिक आय दर्शाने के लिए केवल पिछले वर्ष का आयकर रिटर्न ही पर्याप्त होगा। स्वरोजगार व्यक्तियों के मामले में न्यायालय ने कहा कि पिछले 3 वर्षों तक के आईटीआर में घोषित औसत आय को सामान्यतः संदर्भ बिंदु के रूप में माना जाना चाहिए। स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने दिल्ली सरकार के साथ टीबी मुक्त भारत अभियान और डेंगू की तैयारियों पर समीक्षा बैठक की। श्री नड्डा ने इस अभियान को गति देने के लिए जन भागीदारी बढ़ाने का आह्वान किया। श्री नड्डा ने कहा कि व्यापक जनसंचार सुनिश्चित करने के लिए अभियान से संबंधित सभी संचार सरल और आसानी से समझ में आने वाली भाषा में होना चाहिए। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में निरंतर बदलाव में विशेषज्ञों की भागीदारी, संस्थागत सहयोग, संवादात्मक शिक्षण और समयानुकूल विषय वस्तु पर बल दिया है। नई दिल्ली में श्री सिंह ने कहा कि 21वीं सदी में सुशासन के लिए ऐसे प्रशासकों की आवश्यकता है जो निरंतर सीखने, प्रौद्योगिकी, नवाचार और जनभागीदारी के युग में आगे बढ़ने में सक्षम हों। जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची भारत की 3 दिन की यात्रा पर आज शाम नई दिल्ली पहुंची। उनकी ये भारत की पहली आधिकारिक यात्रा है। वे कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ 16वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगी। ये शिखर सम्मेलन दोनों पक्षों को द्विपक्षीय सहयोग के सभी पहलुओं की समीक्षा करने के साथ साथ पारस्परिक हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान करने का अवसर प्रदान करेगा। दोनों नेताओं के बीच वार्ता के बाद कई समझौते

0: ज्ञापनों पर हस्ताक्षर होने की उम्मीद है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि जापान पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास के लिए भारत जापान एक्ट ईस्ट फोरम के माध्यम से काम कर रहा है।
1: पूर्वोत्तर भारत में संपर्क और विकास को बढ़ावा देने के लिए भारत और जापान मिलकर काम कर रहे हैं। दोनों देश बुनियादी ढांचे, शहरी विकास, ऊर्जा, कृषि, पर्यटन और कौशल विकास जैसे क्षेत्रों में सहयोग कर रहे हैं। पूर्वोत्तर क्षेत्र जापान की स्वतंत्र और मुक्त हिंद प्रशांत क्षेत्र की परिकल्पना में महत्वपूर्ण स्थान रखता है, क्योंकि यह दक्षिण एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया के बीच एक सेतु का काम करता है। 2025 से अब तक जापान और पूर्वोत्तर राज्यों के बीच कई उच्च स्तरीय दौरे हुए। इसी वर्ष फरवरी में जापान के विदेश मामलों के राज्य मंत्री इवाओ होरी ने भारत का दौरा किया था। इस दौरान उन्होंने मेघालय और असम के मुख्यमंत्रियों से मुलाकात की। इस वर्ष अप्रैल में मेघालय के मुख्यमंत्री जापान गए थे। इस यात्रा के दौरान एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए, जिसके तहत अगले 5 वर्षों में मेघालय के 5,000 युवाओं को जापान में कौशल प्रशिक्षण और रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे। सुपर्णा सैकिया की रिपोर्ट के साथ अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: भारत और पाकिस्तान ने आज एक दूसरे की हिरासत में मौजूद सिविल कैदियों और मछुआरों की सूचियों का आदान प्रदान किया। भारत ने अपनी हिरासत में मौजूद 386 कैदियों और 53 मछुआरों की सूचियां साझा की। पाकिस्तान ने अपनी हिरासत में मौजूद 52 कैदियों और 198 मछुआरों की सूचियां साझा की। भारत ने 188 भारतीय नागरिकों की रिहाई और 13 लोगों तक कौंसिलर पहुंच की मांग की। भारत ने पाकिस्तान के फरुखाबाद में 125 वर्ष पुराने पवित्र गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा साहिब को ध्वस्त किए जाने की कड़ी निंदा की है। भारत ने इसे अत्यंत निंदनीय और बर्बरता का कृत्य बताया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों और उनके पूजा स्थलों को निशाना बनाने का सिलसिला लगातार जारी है। सरकार ने आज देश में व्हाट्सएप पर यूजर नेम फीचर शुरू करने के संबंध में मेटा को नोटिस जारी किया है। सूत्रों के अनुसार सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने मेटा को 3 दिनों के भीतर यूजर नेम फीचर के बारे में विस्तृत जानकारी देने का निर्देश दिया है। मंत्रालय ने निर्देश दिया है कि इस मामले पर परामर्श पूरा होने तक यूजर नेम फीचर शुरू न किया जाए। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा ने कहा है कि केंद्र सरकार राज्य में परिवहन ढांचे के विकास को विशेष महत्व दे रही है। आज नई दिल्ली में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात के दौरान राज्य की राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई। डॉ साहा ने कहा कि केंद्र सरकार त्रिपुरा और पूर्वोत्तर क्षेत्र को देश के व्यापक विकास ढांचे से जोड़कर सड़क संपर्क को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान और किरेन रिजिजू ने अरुणाचल प्रदेश दौरे के दूसरे दिन राज्य के मुख्यमंत्री पेमा खांडू के साथ बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण किया। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि केंद्र सरकार की ओर से व्यापक वित्तीय और संरचनात्मक सहायता प्रदान की जाएगी। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों के दौरान दक्षिण पश्चिम मॉनसून के दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, उत्तरी अरब सागर, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में आगे बढ़ने की संभावना व्यक्त की है। 4 जुलाई तक तटीय कर्नाटक, गुजरात क्षेत्र, कोंकण, गोवा और मध्य महाराष्ट्र में मूसलाधार वर्षा का अनुमान है। छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, ओडिशा, सौराष्ट्र, कच्छ, उत्तराखंड और विदर्भ में भी अगले 3 से 4 दिनों तक ऐसी ही स्थिति रहने की संभावना है। इस बीच मुंबई में कल से तेज वर्षा हो रही है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि मौसम विभाग ने 5 जुलाई तक कई क्षेत्रों में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है।
2: बृहन्मुंबई महानगर पालिका के अनुसार आज सुबह 8 बजे से दोपहर 3 बजे के बीच मुंबई के पूर्वी और पश्चिमी उपनगरों में 100 मिलीमीटर से अधिक वर्षा दर्ज की गई। मूसलाधार बारिश के कारण अंधेरी, दादर सहित कई निचले इलाकों में जलभराव हो गया, जिससे यातायात और जनजीवन प्रभावित हुआ। मौसम विभाग ने कल के लिए पालघर जिले में रेड अलर्ट जारी किया है और अत्यधिक भारी वर्षा होने की संभावना जताई है। आकाशवाणी समाचार के लिए मुंबई से शैलजा तिवले।
0: वस्तु और सेवा कर जीएसटी से सरकार को जून महीने में 1,94,812 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त हुआ है। ये पिछले वर्ष जून की तुलना में 13.9% अधिक है। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं मनोज पाठक।
3: बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स आज 444 अंक बढ़कर 76,923 पर बंद हुआ। उधर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 140 अंक बढ़त के साथ

0: ने हमेशा से ही अपने कार्यक्रमों में संगीत की सभी विधाओं को स्थान दिया है और संगीत में रुचि रखने वाले कलाकारों को प्रोत्साहन दिया है और साथ ही श्रोताओं की पसंद का भी विशेष ध्यान रखा गया है। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत, कर्नाटक संगीत, सुगम संगीत, लोक संगीत, भक्ति संगीत, फिल्म संगीत, पाश्चात्य संगीत, रवींद्र संगीत, इस प्रकार अनेक विधाओं के संगीत को कोई सुनना चाहे तो आज भी उनके लिए आकाशवाणी सर्वश्रेष्ठ माध्यम है।
1: भारत और इंग्लैंड के बीच 5 T20 क्रिकेट मैच श्रृंखला का पहला मैच आज रात 10 बजे चेस्टरली स्ट्रीट में खेला जाएगा। दूसरा T20 मैच शनिवार को मैनचेस्टर में होगा। उधर फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 32 के मैच में आज रात 9:30 बजे इंग्लैंड और DR कांगो आमने सामने होंगे। देर रात 1:30 बजे बेल्जियम का मुकाबला सेनेगल से होगा। श्री अमरनाथ जी तीर्थ यात्रा कल से शुरू होगी। तीर्थयात्रियों का पहला जत्था जम्मू के भगवती नगर आधार शिविर पहुंच चुका है। तीर्थयात्रियों की सुरक्षा और आवास सहित सभी आवश्यक व्यवस्थाएं पूरी कर ली गई हैं। श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड के अध्यक्ष उपराज्यपाल मनोज सिन्हा कल सुबह 4 बजे पहले जत्थे को रवाना करेंगे। 57 दिनों की यात्रा 3 जुलाई से नुनवान, पहलगाम और बालतल मार्गो से कड़ी सुरक्षा के बीच शुरू होगी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सरकार ने दिल्ली और उत्तर प्रदेश में 14,000 करोड़ रुपए से अधिक की 2 बड़ी राजमार्ग सड़क परियोजनाओं को मंजूरी दी। विकसित भारत जी रामजी अधिनियम देश भर में लागू। केंद्र सरकार ने योजना के अंतर्गत मजदूरी की नई दरें अधिसूचित की। सर्वोच्च न्यायालय ने मोटर दुर्घटना मुआवजे के दावों में एकरूपता लाने के लिए पीड़ितों की आय का आकलन करने संबंधी दिशा निर्देश जारी किए। जापान की प्रधानमंत्री सनाई ताकाइची 3 दिन की भारत यात्रा पर नई दिल्ली पहुंची। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की T20 क्रिकेट श्रृंखला का पहला मैच आज रात चेस्टरली स्ट्रीट में खेला जाएगा और फीफा फुटबॉल विश्व कप में राउंड ऑफ 32 में आज रात इंग्लैंड का मुकाबला DR कांगो से। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: Good evening. This is Akashvani and I am Valsa Williams with the news at 9. The headlines. Government approves 2 major highway infrastructure projects in Delhi and Uttar Pradesh worth over 14,000 crore rupees. Vikasit Bharat G. Ramji Act comes into force across the country. Centre notifies revised wage rates under the scheme. Supreme Court issues guidelines on assessing income of motor accident victims for uniformity in compensation claims. Prime Minister of Japan Sanae Takaichi arrives in New Delhi on a 3-day visit to India to take part in 16th India-Japan Annual Summit tomorrow. In men's cricket, India to take on hosts England in first T20 international 5-match series tonight. And in FIFA World Cup, England to face DR Congo in round of 32 at Atlanta in US tonight. The government today approved 2 major highway infrastructure projects worth a combined over 14,000 crore rupees. The projects include a 6,969 crore rupee tunnel project in Delhi aimed at easing congestion and a 7,145 crore rupee greenfield highway corridor in Uttar Pradesh. Briefing media in the national capital about the Union Cabinet's decisions, Information and Broadcasting Minister Ashwini Vaishnav said the Cabinet has approved the construction of an 8.1-kilometre long 6-lane road tunnel in Delhi on NH-148AE, connecting the Dwarka Expressway with Nelson Mandela Marg in Vasant Kunj. Mr. Vaishnav said the Cabinet also approved the construction of the 117.7-kilometre long Kanpur-Kabrai section of National Highway 34 in Uttar Pradesh as a 4-lane access-controlled corridor.
3: Today the Cabinet approved 2 major decisions both related to highway infrastructure. The first addresses a long-pending demand in Delhi for improved connectivity between the National Highway Corridor and Vasant Kunj. Several efforts had been made over the years and today those proposals have finally been approved. The project involves the construction of 6-lane

0: चर्चा का विषय है। ये आकाशवाणी है, चर्चा का विषय है। कार्यक्रम में प्रस्तुत है डिजिटल इंडिया के 11 वर्ष, एआई, सेमीकंडक्टर और डिजिटल बुनियादी ढांचे में क्रांतिकारी परिवर्तन पर परिचर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं एआई विशेषज्ञ प्रसून शर्मा और एआई एवं तकनीकी विशेषज्ञ उत्पल चक्रवर्ती। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं आकाशवाणी संवाददाता निखिल कुमार।
1: श्रोताओं नमस्कार, चर्चा का विषय कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। और आज हम बात कर रहे हैं डिजिटल इंडिया के 11 वर्ष पूरे होने पर, जिसमें हम बात करेंगे एआई, सेमिकॉन और डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में। आज हमारे साथ जुड़े हैं दो खास मेहमान, जिनमें एक हैं प्रसून शर्मा जो एआई एक्सपर्ट हैं। हमारे साथ स्वागत है आपका।
2: नमस्कार।
1: और श्रोताओं हमारे साथ जुड़े हैं एआई एंड टेक एक्सपर्ट उत्पल चक्रवर्ती जी। उत्पल जी, कार्यक्रम में आपका भी बहुत बहुत स्वागत है।
3: नमस्कार जी।
1: उत्पल जी, सबसे पहले कार्यक्रम की शुरुआत में आपसे इस बारे में जानना चाहेंगे कि 2015 से लेकर के आज तक की इस पूरी यात्रा को अगर हम देखते हैं तो भारत के दृष्टिकोण से सबसे बड़ी उपलब्धि क्या रही और किस तरह ये जो उपलब्धि हासिल हुई है, जो भी हमने कार्य किए हैं उन पर आपके क्या विचार हैं?
3: जो ये टाइम फ्रेम जो है, इसके अंदर हम लोग टेक्नोलॉजी फ्रंट पे बहुत एडवांसमेंट किया है, चाहे वो हमारा डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे हमारा यूपीआई जैसा पेमेंट सिस्टम हो, या हम लोग ये भी देखे है कोरोना के टाइम पे अपना कोविन जो है, ये जो नया अभी प्लेटफॉर्म्स आ रहे हैं जो कि सिटीजन सेंट्रिक प्लेटफॉर्म है, ये क्षेत्र में बहुत बड़ी उपलब्धि है और बहुत एडवांसमेंट हुआ है, जो कि खाली देश के अंदर ही नहीं, ये विदेशों में भी ये एक मॉडल बन के आया है बाकी डेवलपिंग कंट्री के लिए, इवन की डेवलप कंट्रीज के लिए। क्योंकि हम लोग जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो तैयार किया है, वो इंफ्रास्ट्रक्चर इतना स्ट्रांग है और इतना वर्सेटाइल है कि अभी हम लोग कोई भी डिजिटल टेक्नोलॉजी, चाहे एआई हो, चाहे क्वांटम हो, या कोई भी डेटा इकोसिस्टम हो, सब कुछ हम लोग बना सकते हैं इसके। तो ये जो ग्राउंड वर्क किया गया है ये 11 साल में मतलब रिमार्केबल मतलब उपलब्धि है।
1: तो सुन जी, अगर आपसे मैं बात करूं, आपसे जानना चाहूं तो डिजिटल इंडिया की जब शुरुआत हुई 2015 में, तब शायद किसी ने इतना नहीं सोचा होगा कि दुनिया का एक बहुत बड़ा डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे देश में तैयार होगा। तो आपके हिसाब से इस बदलाव के पीछे सबसे बड़ी सोच क्या रही और कौन से ऐसे अहम फैसले थे जो इस बदलाव के भागीदार बने?
2: डिजिटल इंडिया के ये 11 वर्षों को ऐसा देखता हूं कि लाइन में लगने वाली अर्थव्यवस्था को ऑनलाइन अर्थव्यवस्था में परिवर्तित कर दिया डिजिटल इंडिया ने पिछले 11 वर्षों में। और उसके तीन महत्वपूर्ण जो उपलब्धियां या माइलस्टोन मैं कहूंगा, पहला डिजिटल पहचान जो हमारा आधार है, दूसरा हमारा डिजिटल भुगतान जो यूपीआई है, तीसरा जो सरकार की सेवाएं हैं, चाहे वो आप पासपोर्ट देख लीजिए, टैक्स देख लीजिए, शिक्षा का क्षेत्र देख लीजिए, मेडिकल सर्विसेज, उसका डिजिटल, ये तीन बड़े स्तंभ हमने ना सिर्फ खड़े किए, उसको सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट करके एक ग्लोबल बेस्ट केस सिनारियो हमने क्रिएट किया है।
1: डिजिटल इंडिया के स्तंभों की अक्सर चर्चा की जाती है। श्रोताओं आइए सुनते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस विषय में क्या कहा।
4: डिजिटल इंडिया के चार पिलर्स की पहचान की थी, डिवाइस की कीमत कम होनी चाहिए, दूसरा

0: सबकी पहुंच में होना है और चौथा डिजिटल फर्स्ट ही हमारा लक्ष्य होना चाहिए।
1: और हर स्तंभ की अपनी एक विशेष भूमिका रही है, तो आपको क्या लगता है कि सबसे प्रभावशाली स्तंभ कौन सा रहेगा, किसे आप चुनना पसंद करेंगे?
2: मुझे लगता है सबसे पहला है डिजिटल पहचान, वो सबसे बड़ा स्तंभ था और वो जिस तरीके से हमने इम्प्लीमेंट किया है, मुझे नहीं लगता कहीं पे भी पूरे विश्व में इतने बड़े लार्ज स्केल पे डिजिटल आइडेंटिफिकेशन का कोई प्रोजेक्ट हुआ है सक्सेसफुली। जब हमें डिजिटल पहचान मिली, उसी के बेस पे अब हम सर्विसेज दे रहे हैं, चाहे वो भुगतान हो, चाहे वो सब्सिडीज हो, चाहे वो स्कॉलरशिप्स हो, चाहे वो मतलब आजकल हेल्थ इंश्योरेंस हो या पेंशन हो। तो मुझे लगता है सबसे महत्वपूर्ण जो डिजिटल पहचान हमने दी अपने सारे नागरिकों को, वो सबसे बड़ा माइलस्टोन रहेगा इसका।
1: उत्पल जी, आप इस विषय पर क्या कहना चाहेंगे?
3: मैं सहमत हूँ सुन जी से, क्योंकि डिजिटल पहचान जो है, आइडेंटिफिकेशन इज वेरी इम्पोर्टेंट, और उसके बाद जो भुगतान जो है वो भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये जो मॉडल है, ये मॉडल कोई भी जगह नहीं है। इतना यूपीआई जैसा एक इंफ्रास्ट्रक्चर जो हमारा खड़ा हुआ है, और आज खाली यूपीआई नहीं, फ्यूचरिस्टिकली अगर हम लोग देखें तो अगर कोई भी अगर ऐसा जो कि कंट्री को एंटायर पॉपुलेशन को सर्विस देने जैसा अगर कुछ बनाना है कल को, तो वो कर सकते हैं। और वो एग्जाम्पल मैं बोला कि हम लोग कोरोना के टाइम पे देखा कि हम लोग कितना जल्दी, मतलब ये जो कोविन एप्लीकेशन है उसको हम लोग लॉन्च कर दिए, और हमारा जितना भी वैक्सीनेशन है ये कितना अच्छी तरीके से हो गया, और ये भी एक बहुत बड़ी मॉडल के जैसे बाकी देशों के सामने आ गया।
1: किशोर जी, आज भारत में अगर हम बात करते हैं तो मोबाइल कनेक्टिविटी बहुत ही लार्ज स्केल पर फैल चुकी है, गांव-गांव तक इंटरनेट की कनेक्टिविटी पहुंच रही है, 5G पहुंच चुका है लोगों के पास तक, तो असली चुनौती सिर्फ कनेक्टिविटी देना तो नहीं रहा होगा। हालांकि जो डिजिटल सेवाएं हैं हमारी, जिनको हमने शुरू किया है, जो आज बड़े पैमाने पर हम इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इनको सिखाने में खासतौर पर जो सरकार की भूमिका रही, उसे आप किस तरह देखते हैं कि सरकार ने कितना बढ़ चढ़कर किस चीज को किया?
2: सरकार ने इसकी नींव रखी, जैसे सड़कें हमारी फिजिकल अर्थव्यवस्था को चलाती है, वैसे ही डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर डिजिटल अर्थव्यवस्था को चलाती है। तो वो जो सारा इंफ्रास्ट्रक्चर सरकार ने क्रिएट किया, उसके ऊपर चाहे वो सरकारी सुविधाएं हों या हमारे तकरीबन 2 लाख स्टार्टअप्स हैं जो उसमें सुविधाएं प्रोवाइड कर रहे हैं, तो सरकार का जो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स में बहुत बड़ा योगदान रहा है, और वो फ्यूचरिस्टिक रहा है और वो बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव रहा है, ना सिर्फ कनेक्टिविटी, कंप्यूट एप्लीकेशंस भी रीजनल भाषाओं में दी जाए ताकि वो एकदम लास्ट माइल तक पहुंच सके, और लोकल सॉल्यूशन प्रोवाइडर्स जो कि स्टार्टअप या एमएसएमई के थ्रू हो। तो मेरे हिसाब से सरकार ने एक बहुत अच्छा अगले 100 साल के लिए एक बेस प्रोवाइड किया है डिजिटल अर्थव्यवस्था के लिए।
1: डिजिटल अर्थव्यवस्था की बात कर रहे हैं, मैं इस चीज को समझ पा रहा हूँ कि पहले एक दशक पहले की अगर हम बात करते हैं, बहुत ज्यादा दूर नहीं जाते हैं, तो सरकारी काम कराने या किसी भी तरह के काम कराने के लिए लंबी कतारें देखी जाती थी, कई सारे कागज हमें इस्तेमाल करने होते थे, पेपर वर्क बहुत सारा होता था, चक्कर भी लोगों को लगाने पड़ते हैं। आज जो हमारे पास डिजी लॉकर की हम बात करते हैं, सीएससी की बात करते हैं, सिंगल ऑन स्क्रीन की बात करते हैं, सिंगल विंडो की बात करते हैं, तो क्या आपको लगता है कि डिजिटल गवर्नेंस ने आज हमारे जीवन को पहले के मुकाबले बहुत ज्यादा आसान बना दिया है?
2: जी बिल्कुल, ना सिर्फ आसान बना दिया, अब हम उसमें एक लीडिंग एग्जांपल्स भी दे रहे हैं। हम डिजिटल इंडिया से अब एआई इंडिया मिशन की तरफ जा रहे हैं, जिसमें एआई से हमें समय कम लगेगा, हमारे काम जल्दी होंगे, और जो रूटीन काम थे जैसे पेपर वर्क वाले, और वो काफी हद तक कम हो जाएंगे, उसमें जो भी खर्चा था या समय था। तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, और ना सिर्फ भारतीयों के लिए, ये पूरे विश्व के लिए। ये पहले अगर आप डिजिटल अर्थव्यवस्था या इकोनॉमी की बात करें, सिर्फ 2 ही डिजिटल इकोनॉमी थी पूरे ग्लोब में। पहला था यूएस ओरिएंटेड, जिसको हम गैफैम बोलते हैं, गूगल एप्पल वो प्रोवाइड करते थे। तीसरा चाइना सपोर्टेड था, जिसमें बायदू अलीबाबा आते हैं। दूसरा और तीसरा अब हमारा है, भारत का जो ऑप्शन उन्होंने दिया है, जिसमें जो मेन कोर भारत के डिजिटल इकोसिस्टम का जो कोर है, वो है टू बेनिफिट कॉमन मैन। हमारा प्रॉफिट ओरिएंटेड एम नहीं है। इसके बेस पे ना सिर्फ हम भारत के कॉमन सिटीजन्स को इंक्लूड कर रहे हैं डिजिटल, फाइनेंशियल और अदर एस्पेक्ट में, हम ग्लोबली भी ये एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड कर रहे हैं डेवलपिंग नेशंस को, कि कॉमन सिटीजन्स को हम इंक्लूड कर सके बाकी सारी सर्विसेज।
1: इसमें एक चीज अगर ये हम जोड़े कि जैसे कुछ समय पहले तक टेक्नोलॉजी को एडॉप्ट करना सभी के लिए बहुत आसान नहीं था, लोग घबराते थे कि टेक्नोलॉजी को एडॉप्ट करें या ना करें, इससे हमारा नुकसान न हो, लेकिन अभी बीते एक दशक की हम बात करते हैं भारत सरकार के जो डिजिटल प्रयास हुए हैं, क्या आपको लगता है कि ये उसी का असर है कि आज टेक्नोलॉजी को ज्यादा से ज्यादा हम एडॉप्ट कर रहे हैं? आपने एआई का जिक्र किया था, बहुत ही तेजी से काम करने में बहुत सहायता हमारी पहुंचाता है। आज आम आदमी भी एआई को बड़ी तेजी से अडॉप्ट कर रहा है।
2: अगर आप सब्जी खरीदने भी जाते हैं और अगर आप क्यूआर कोड पे पेमेंट करते हैं और वो उस पर एक वॉइस कमांड आता है कि जिसमें आपका जो 200 रुपए का भुगतान हुआ वो भी एआई है, वो भी हमारे गांवों में अभी जाने अनजाने में लोग यूज कर रहे हैं, वो भी एआई के एक एप्लीकेशन है। ऐसे ही अगर आप किसानों के लिए कुछ एप्लीकेशन है जिसमें वो मतलब अपने एआई बॉट से बातचीत करके पता कर सकते हैं कि अभी किस तरीके का खाद डालना है, किस तरीके के बीज और कहां से लेना है। तो भारतीय सरकार ने ना सिर्फ इकोसिस्टम प्रोवाइड किया, उन्होंने जो सॉल्यूशन प्रोवाइडर्स है उनको अनेबल भी किया, और इसमें जो नॉलेज एस्पेक्ट था, जैसे भारत ही एक सबसे विभिन्न तरीके से जीपीयू प्रोवाइड करा जो सबसे सस्ता है
1: जी।
2: पूरे विश्व में वो एमएसएमईज और स्टार्टअप्स को प्रोवाइड किया जा रहा है। हमारा जो एआई कोश है उसमें जो हमारी रीजनल लैंग्वेजेस के जो एलएलएम्स या उसके रिलेटेड जो रिसोर्सेज हैं वो प्रोवाइड किए जा रहे हैं। तो अनेबलमेंट भी है और सॉल्यूशन एक्सेस भी है, नॉलेज शेयरिंग ग्लोबल लेवल पे, वो जो भी बेस्ट चिप्स हैं, सेमीकंडक्टर्स हैं और एक्सपर्ट्स हैं उनको भारत यहां ला रहा है।
1: उत्पल जी, स्वास्थ्य और न्याय की अगर हम बात करते हैं तो ई हॉस्पिटल, ई संजीवनी और ई कोर्ट्स जैसी पहल आज हमारे सामने बहुत ही आसानी से उपलब्ध है, तो आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे कि इन सारी चीजों ने आम लोगों के जीवन पर किस तरह से असर डाला, आप कैसे देखते हैं इसे?
3: ये तो बहुत ही अच्छी चीजें हैं, बिकॉज हम अगर इंडिया का बात करें तो हमारा जो दूर दराज का एरिया है जिधर के मेडिकल फैसिलिटीज नहीं है, तो टेक्नोलॉजी के थ्रू से हम लोग, वो स्टार्ट हुआ टेलीमेडिसिन से, लेकिन अभी अगर देखा जाए तो ऐसा भी स्टार्टअप्स और ऐसा भी इनिशिएटिव्स है जो कि डिजिटली उधर से डायग्नोसिस कर सकता है कुछ कुछ डिजीजेस का, और वो रिमोटली डॉक्टर के साथ उसको कंसल्ट करके उसका ट्रीटमेंट होता है। हमारा एक स्टार्टअप को जिसको कि यूनाइटेड नेशंस एआई फॉर गुड में जिसको अवार्ड भी किया गया है, जो कि प्रेगनेंसी का कॉम्प्लिकेशन को वो लोग डिटेक्ट कर सकता है एक छोटा सा डिवाइस, अफोर्डेबल डिवाइस से, और वो गांव का दूर दराज एरिया में लेके जा सकता है और उसको ये कर सकता है। और इसका पूरा श्रेय जाता है कि हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया हुआ है, क्योंकि वो बैकबोन अगर नहीं होते तो हम लोग ये बाकी जितना भी चीज है ये करने, तो बहुत ऐसा कंट्रीज है, डेवलप्ड कंट्रीज है जो कि बिट्स एंड पीसेस में स्टार्ट किया और मैक्सिमम जो काम किया वो प्राइवेट सेक्टर ने किया या प्राइवेट बड़ा बड़ा कंपनी ने किया, लेकिन इंडिया का जो मॉडल है ये एक यूनिक मॉडल है। इसमें क्या किया, जो बेस लाइन है और जो बेस है और जो बिल्डिंग ब्लॉक्स है ये गवर्नमेंट ने प्रोवाइड किया और इसको ओपन कर दिया पब्लिक के लिए, स्टार्टअप्स के लिए, बाकी कंपनीज के लिए कि इसको एक्सेस करें। तो इसीलिए आप अगर देखोगे आज ऑथेंटिकेशन करने के लिए हम लोग आधार का सर्विस यूज कर सकते, तो इट इज ए ओपन प्लेटफॉर्म, हम कोई भी एपीआई कॉल करके आधार से ऑथेंटिकेट, जो कि सबसे अच्छा ऑथेंटिकेशन मैकेनिज्म है। ऐसा कोई भी हमारा अगर कुछ भी जरूरत है, पेमेंट्स का, मैं अगर ई कॉमर्स साइट करना चाहता हूँ या कोई भी चीज ऐसा करना चाहता हूँ, अगर वीमेन इको सिस्टम चाहिए तो मेरे पास यूपीआई है, मैं इजिली इंटीग्रेट करके कर सकता हूँ। तो ये मॉडल जो है इट्स ए यूनिक मॉडल कि गवर्नमेंट ने आपको पूरा का पूरा बेसलाइन प्रोवाइड किया, इको सिस्टम प्रोवाइड किया, ऑन टॉप ऑफ द इको सिस्टम आप क्या कर सकते हो, आप कुछ भी बना सकते हो। एंड वही एआई का अभी कुसुम जी ने बात किया कि एआई कोशा में तो सब्सिडाइज रेट में जीपीयूज दे रहे थे, एंड ऑल अदर थिंग्स आर ऑल पार्ट ऑफ दैट।
1: उत्पल जी, जब सरकार की व्यवस्थाओं की हम बात कर रहे हैं तो आज कितना आसान हो गया है कि माई गॉव जैसे प्लेटफॉर्म जो है वो बड़ी आसानी से हमें जानकारी उपलब्ध करा देते हैं सरकार की चीजों के बारे में, और ये कितना आसान है कि लोग सीधे सरकार से जुड़ सकते हैं। तो आपको लगता है कि सरकार ने अब तकनीकी रूप से अपने नागरिकों के बीच संवाद करने की पहल को और ज्यादा खुला, पारदर्शी और सहभागी बनाया है?
3: डेमोक्रेसी में जो होता है, जो सिटीजन है सरकार के पास रहना चाहिए, तो वो पास का जो जरिया है वो है कम्युनिकेशन, वो कैसे हम लोग कम्युनिकेशन करते हैं ऐसे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मोस्ट ऑफ द कंट्रीज में जो होता है कि सरकार से जो जनता है वो दूर में चला जाता है, क्योंकि उसका वो जो जरिया है वो नहीं है। लेकिन ये जो सरकार हमारा है बीते 11-12 साल में, ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया है कि आप जो सिटीजन है वो सरकार के साथ जोड़ सके। और ये जितना भी है माइगॉव आप देख रहे हो, बाकी जितना भी है, ये चैनल्स है सरकार के साथ कम्युनिकेट करने के लिए। अपना कोई भी जो प्रॉब्लम्स है या कोई भी आइडियाज है या कुछ भी है उसको सरकार के पास तक के लेके जाना। तो मैं समझता हूँ ये जो दीज आर ओनली चैनल्स, आप देखोगे फ्यूचर में और भी ऐसा चैनल आएगा जो कि सिटीजन को सरकार के और पास लेके जाए, एंड दैट्स द रियल डेमोक्रेसी।
1: सुन जी, उमंग, जीएसटीएन, पोषण ट्रैकर और पीएम गति शक्ति जैसे जो प्लेटफॉर्म है आज अलग अलग क्षेत्रों में काम कर रहे हैं और सरकारी व्यवस्थाओं को लोगों तक पहुंचाने में बड़ी सहायता करते हैं, तो ये जो डिजिटल इकोसिस्टम है सरकारी सेवाओं को आगे पहुंचाने का, आपको क्या लगता है कि काफी आगे तक बढ़ चुका है या इसमें भी और भी काम करने की जरूरत है?
2: काफी आगे तक बढ़ चुका है और आगे डेफिनेटली और इवॉल्व होगा, क्योंकि एक ये कॉम्प्रिहेंसिव इकोसिस्टम डेवलपमेंट हो रहा है। अगर आप देखिए इसमें काफी सर्विसेज हैं, इवन प्रोक्योरमेंट जिसमें सबसे ज्यादा ट्रांसपेरेंसी चाहिए थी और एनेबलमेंट चाहिए थी। हमारे स्टार्टअप्स अब किसी भी सरकारी टेंडर में भाग ले सकते हैं, हमारे स्टार्टअप्स को जो भी ग्रांट्स हैं वो सब ऑनलाइन हो चुका है। इवन जो आपको सर्टिफिकेशन उद्यम सर्टिफिकेट चाहिए, DPIT रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट चाहिए, आप ऑनलाइन अप्लाई करिए और आपको निश्चित समय में वो उसका जवाब मिलता है। और अगर कोई क्लैरिफिकेशन भी होता है तो वो डिजिटल माध्यम से ही होता है। तो तकरीबन अगर आप देख रहे हैं, हम दुनिया की टॉप 3 स्टार्टअप इकोसिस्टम में इसीलिए ही आए हैं क्योंकि ये अनेबलमेंट हुआ है, ग्रांट डिसबर्समेंट हो रही है, प्रोजेक्ट्स में वो पार्टिसिपेट कर पा रहे हैं। अब हम डिजिटल यूजर से डिजिटल सॉल्यूशन प्रोवाइडर हो गए हैं ग्लोबल इकोसिस्टम में, ना सिर्फ कॉमन सर्विसेज में, अब रिसर्च ओरिएंटेड सर्विसेज में, जिसमें अब आजकल डीप टेक, जैसे हमारे भारत इनोवेट में प्रधानमंत्री ने भी कई फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड सॉल्यूशन दिखाए, जैसे 3D प्रिंटेड हमारा पहला रॉकेट दिखाया गया वहां पे। तो ये तभी संभव हुआ जब हमारे पास डिजिटल एक्सेस आया, ट्रांसपेरेंसी थी, रिसोर्सेज डिस्ट्रीब्यूट हुए इस डिजिटल एक्सेस के थ्रू और पार्टिसिपेशन मिला रियल प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए स्टार्टअप्स और MSME को।
1: जी उत्पल जी, जनधन, आधार और मोबाइल यानी कि जैम ट्रिनिटी जिसे हम बोलते हैं, वो हमारी डिजिटल इंडिया की एक तरह से मेरुदंड है। तो आपके हिसाब से इस मॉडल ने आम नागरिक तक सरकारी सेवाओं का लाभ पहुंचाने की बात हो तो किस तरह से इसमें बदलाव लाया है?
3: पहला जो है वो है आइडेंटिटी। आइडेंटिटी होना बहुत जरूरी था, क्योंकि आइडेंटिटी जब हो जाएगा तभी मिडिलमैन कोई नहीं रहेगा बीच में। और इसीलिए क्या हो रहा है, जितना भी गवर्नमेंट का बेनिफिट्स है, जितना कुछ है, डायरेक्टली सिटीजन तक के पहुंच रहा है। तो ये तो डायरेक्ट चैनल एस्टेब्लिश तभी हो पाया जब हम लोग आइडेंटिटी किया। सेकेंड थिंग है कि जो ये पूरा बैंकिंग सिस्टम को, बैंकिंग इकोसिस्टम जो है, और इसमें हमारा फाइनेंस मिनिस्ट्री प्लस हमारा RBI का एंड हमारा नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का बहुत बड़ा योगदान है कि ये जो इकोसिस्टम बनाया है, ये इकोसिस्टम को यूटिलाइज करके अभी पेमेंट्स या जो ट्रांसफर हम लोग बोलते हैं जी, बहुत इजी हो गया है, वेदर डोमेस्टिक और क्रॉस बॉर्डर। तो और भी बहुत बेनिफिट हो रहा है कि हम लोग का जो पहले बहुत कुछ जो ये हो रहा था, मतलब कि पैसे के लेन देन में बहुत कुछ जो गड़बड़ी हो रहा था, वो सब भी मनी लॉन्ड्रिंग केसेस जितना भी है, अभी वो इजीली कोई भी फ्रॉडुलेंट केस, मनी लॉन्ड्रिंग केस को आइडेंटिफाई कर सकता है। क्योंकि क्या है, जो फाइनेंशियल इकोसिस्टम है वो पूरा क्लीन हो गया है। उसके साथ साथ डिमोनिटाइजेशन का भी बहुत बड़ा हाथ है कि हमारा पूरा डिजिटल इकोनॉमी लाने जो आ गया, उससे बहुत कुछ करप्शन छोटे लेवल पे जो कुछ भी करप्शन ही सब है वो सब हट गया। तो ये जितना भी बेनिफिट्स आप देख रहे हैं, दीज आर ऑल सिटीजन सेंट्रिक, मतलब एक पहल है जो कि सिटीजन को मतलब मिडिल में रखते, सेंटर स्टेज में रखते हुए सब कुछ बनाया गया है। और आई थिंक इससे बहुत बड़ी दूरदर्शिता का काम किया है, जो कि अभी प्रसून जी ने बताया कि 100 साल के बारे में सोच के बनाया है, तो मैं भी सहमत हूँ उनसे।
1: अब प्रसून जी, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, सेमिकॉन की हम बात करते हैं, आइए सुनते हैं केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस संबंध में क्या जानकारी दी।
4: सेमीकंडक्टर चिप जो होती है वो पूरी की पूरी इसके ऊपर, इस डिजाइन को इसके ऊपर सिलिकॉन वेफर के ऊपर कंप्लीट फैब्रिकेशन किया जाता है, और उसके बाद में इसमें से इंडिविजुअल चिप्स को निकाल के सेमीकंडक्टर की चिप्स का उपयोग किया जाता है। तो बहुत खुशी की बात है कि भारत में पूरा इकोसिस्टम आ गया है। ये एक फाउंडेशनल इंडस्ट्री है, सेमीकंडक्टर है, तो आप बहुत सारी मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हो। हर चीज के लिए सेमीकंडक्टर चिप्स चाहिए, तो देश के लिए बहुत बड़ी एक जरूरत है। इसीलिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री पे बहुत फोकस दिया, और अब अपने 10 प्लांट में से 4 प्लांट की पायलट लाइन रेडी है। TG सेमी में प्रोडक्शन चालू हो गया, पहली मेड इन इंडिया चिप भी माननीय प्रधानमंत्री जी को भेंट की गई, और साथ ही साथ भारत में टैलेंट को डेवलप करने के लिए बड़ा काम चल रहा है। 278 यूनिवर्सिटीज में सेमीकंडक्टर की ट्रेनिंग दी जा रही है, और बहुत ही खुशी की बात है कि जो

0: सेमीकंडक्टर की ट्रेनिंग लिए हुए स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने 20 चिप्स ऑलरेडी डिजाइन की है, डिजाइन करके उसका मैन्युफैक्चरिंग हुआ है।
1: डिजिटल इंडिया को हम पूरा का पूरा तकनीक से जोड़कर देखते हैं और इसका कहीं ना कहीं एक पहलू रोजगार भी है, तो आईटी, एआई, सेमीकॉन और साइबर सिक्योरिटी जैसे क्षेत्रों में युवाओं के लिए जो अवसर निकल रहे हैं उन पर आपके क्या विचार हैं?
2: डिजिटल इंडिया ने हमें डिजिटल एक्सेस प्रोवाइड किया, एआई सेमीकंडक्टर हमें डिजिटल इंटेलिजेंस और सोवर्निटी प्रोवाइड करेंगे। और आपने बात की साइबर सिक्योरिटी और सेमीकॉन जैसे, इसका मूल है कि चिप, अगर आप देखिए मोबाइल, कार और जितने भी होम अप्लायंसेस है उसका जो भी प्रोसेसिंग है या इंटेलिजेंस यूनिट वो चिप होता है। तो पहले हम ऑलमोस्ट सारे ही चिप हम आयात करते थे, अब हम खुद बनाने लगे। नॉर्मली चिप बनाने में भी 10 से 15 साल लगते हैं, पर जिस स्पीड से भारतीय इकोसिस्टम में वो डेवलप हुआ है वो अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज जो लिया था भारत सरकार ने वो सक्सेसफुली डिलीवर किया। अब हम चिप बना रहे हैं यहाँ पे और उसके साथ जो पूरी सप्लाई चेन है वो भी हमने खड़ी करी। तो ये एक इंटेलिजेंस युग में हम जा रहे हैं जिसमें ना सिर्फ हम यूजर हैं, हम सॉल्यूशन प्रोवाइडर हैं, ना सिर्फ भारतीय नागरिकों के लिए पर पूरे विश्व के लिए। और अब सबसे बड़ी बात आजकल चल रही है टेक सोवर्निटी की, जरा सिक्योरिटी रिलेटेड एस्पेक्ट में अगर आप देखिए तो इन डिजिटल एक्सेस के थ्रू ये सिर्फ टेक्नोलॉजी की कहानी नहीं है, ये इंक्लूशन एम्पावरमेंट की कहानी है। अब हमारा खुद ऑपरेशन सिंदूर में हमारा एक स्टार्टअप था जिसने एंटी ड्रोन एक सॉल्यूशन बनाया जो यूज हुआ, वो इंडिजीनियस है, भारत में बना है। ऐसे ही जो डिफेंस रिलेटेड जो स्टार्टअप चैलेंजेस है आईडेक्स के थ्रू वो भी इस इकोसिस्टम के थ्रू अनेबल हो रहे हैं, उनको ट्रायल्स के लिए फील्ड प्रोवाइड किया जा रहा है और वो सारा ऑनलाइन सिस्टम है। डिजिटल प्लेटफॉर्म से आप अप्लाई करते हैं, अपना सॉल्यूशन दिखाते हैं, फिर आपको एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट असाइन होती है और अगर आपका वो सॉल्यूशन चल रहा है तो आपका प्रोक्योरमेंट भी किया जाता है। तो ये सारा एक एम्पावरमेंट की तरफ जो पूरा इकोसिस्टम गया है वो एक सराहनीय कदम है, ना सिर्फ भारत के लिए, अब हमारी टेक बाहर के देशों में भी उसकी डिमांड हो रही है। अगर आप देखिए डिफेंस रिलेटेड एस्पेक्ट में हमारे ड्रोन्स, हमारे सर्वेलेंस की मांग काफी बढ़ रही है, हमारे स्पेस टेक की बहुत ज्यादा डिमांड हो रही है।
1: कर रहे हैं हम
2: जी, और अभी जब प्रधानमंत्री यूरोप की यात्रा में थे तो काफी एमओयू साइन हुए स्पेस रिलेटेड स्टार्टअप्स के जरिए। तो ये एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन है भारत को एज अ डीप टेक रिसर्च ओरिएंटेड प्लेयर के रूप में स्थापित करने के।
1: उत्पल जी, अगर भारत की संभावनाओं को थोड़ा सा ध्यान में रखें तो एक समय था जब भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए आयात पर सबसे ज्यादा निर्भर करता था, लेकिन आज हम दुनिया के दूसरे सबसे बड़े मोबाइल फोन निर्माता बन चुके हैं। तो ये जो डिजिटल इंडिया की सफलता हमने प्राप्त की है इसके पीछे आप किन चीजों को मानते हैं, कि आपको क्या लगता है कि ऐसे कौन से बदलाव हुए जो ये सफलता हमारे देश को अर्जित हुई?
3: ये पॉलिसीज में है, पॉलिसीज में सुधार हुआ है। उसके बाद स्टार्टअप और बाकी कंपनीज को वो जो एनकरेजमेंट, एंडोर्समेंट जो मिलते हैं उसके वजह से भी हुआ है। तो आप देखिए अभी हम लोग इलेक्ट्रॉनिक्स का स्टार्ट कर दिए हैं, काम इलेक्ट्रॉनिक्स में हो रहा है, एआई में ऑलरेडी हो रहा है, हम लोग सोवरेन एआई का बात कर रहे हैं जो कि बहुत जरूरी है कि हम लोग खुद का हमारा इंडिपेंडेंट मॉडल्स रहे, एटलीस्ट हमारा क्रिटिकल सेक्टर जो है, चाहे डिफेंस हो, चाहे हमारा फाइनेंशियल सेक्टर, गवर्नमेंट कुछ कुछ सेक्टर हो, हेल्थ केयर सेक्टर से हो, तो इस सब में सोवरेन एआई का आ गया है। और जो भी सोवरेनिटी का बात कर रहे हैं मतलब हम लोग खुद प्रोड्यूस कर रहे हैं। उसके बाद अभी क्वांटम आ रहा है, अभी क्वांटम के लिए भी बहुत जगह पे क्वांटम प्रोसेसर, क्वांटम चिप्स जो है वो बनाने का काम चालू हो गया। हमारा जो क्वांटम इंडियन क्वांटम नेशनल क्वांटम मिशन है उसके तहत हम लोग क्वांटम हब्स बनाए हैं जिसमें कि अलग अलग तरीके का क्वांटम टेक्नोलॉजी के ऊपर रिसर्च हो रहा है, क्योंकि क्वांटम कंप्यूटिंग जो है या क्वांटम टेक्नोलॉजी जो है ये नेक्स्ट फ्रंटियर है, मतलब और ये एआई के साथ कन्वर्ज होगा, मतलब एआई के साथ एक साथ होके एक हम लोगों को नई दुनिया देखने को मिलेगा, क्योंकि क्वांटम वो स्पीड लेके आएगा, वो पैरालिज्म लेके आएगा, उतना सिक्योरिटी लेके आएगा जो कि आज हम लोग सिक्योरिटी के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं कोई भी जगह सिक्योर कम्युनिकेशन करने के लिए। तो क्वांटम कम्युनिकेशन, क्वांटम सेंसिंग, ये जितना कुछ भी चीज है ये पूरा सब कुछ ये इकोसिस्टम के ऊपर ही बनेगा। और मैं इसके लिए गवर्नमेंट का जो पॉलिसीज जो चेंजेस हुआ है ये बाकी सब कुछ बाई प्रोडक्ट है पॉलिसीज। आप जो भी पॉलिसी चेंजेस करेंगे तो ये सब ऑटोमेटिकली इसको बढ़ावा मिलेगा।
1: अभी मैंने प्रसून जी से बात की थी सेमीकॉन पर, तो आपको क्या लगता है कि सेमीकॉन की जो संभावनाएं हैं वो दिन प्रतिदिन हमारे लिए बढ़ती जा रही है?
3: सेमीकंडक्टर पे हम लोग निर्भर नहीं रह सकते हैं बाहर के कंपनीज को ऑलवेज, क्योंकि क्या हो गया अभी एआई के लिए भी हम लोग को जीपीयू चाहिए। अभी जीपीयू अगर जो देखा जाए तो दो तीन कंपनी है जो कि बाहर का कंपनी है उनके ऊपर हम लोग निर्भर रहे हैं, लेकिन हम लोग को खुद का जीपीयू चाहिए, हम लोगों को वो माइक्रो चिप्स, माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स, वो नैनो लेवल पे जो भी अभी काम हो रहा है, वो सब वो फैब्रिकेशन का जरूरत है। अगर हम वो नहीं कर पाएंगे तो एआई तो शायद हमारा खुद का हो जाएगा, हमारा बाकी भी चीज शायद खुद का हो जाएगा, लेकिन वो जो इंफ्रास्ट्रक्चर पे वो रन करता है, जो जीपीयू पे रन करता है, वो फिर भी बाहर के ऊपर हम लोग डिपेंडेंट रह जाएंगे। तो ये बहुत जरूरी है कि हम लोग जो इलेक्ट्रॉनिक्स जो है, ये इलेक्ट्रॉनिक्स रिवोल्यूशन एक इंडिया में आया है और इसको आगे लेके जाए और इसको पूरे इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिपेंडेंस के तक के जाए, सो दैट कि हम लोग किसी के ऊपर भी इलेक्ट्रॉनिक्स में डिपेंडेंट ना रहे।
1: जी, अब प्रसून जी, जैसे भी डिजिटल व्यवस्था की जो हम बात कर रहे हैं, जाहिर सी बात है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जब जिक्र होता है तो तमाम चीजें हमारे सामने आती है, किस तरह से हम अपने काम को करेंगे, जो सेफ्टी एक बड़ा पैरामीटर हमारे लिए, खासतौर पर जब हम बैंकिंग की बात करते हैं या फिर जहां पर पैसे से रिलेटेड चीजें होती हैं, वहां पर किस तरह की चीजें आपको लगती हैं कि और ऐड की जा सकती या फिर उन पर हम काम कर रहे हैं?
2: तो ये डिजिटल सिक्योरिटी या साइबर सिक्योरिटी के रिलेटेड एस्पेक्ट, आई थिंक काफी इनिशिएटिव भारत सरकार ले रही है, खासकर अवेयरनेस रिलेटेड कि कैसे इसको यूज किया जाए। जैसे अगर आप देखिए सरल भाषा में, हमें एड्स या वॉइस एड्स आते हैं कि ओटीपी शेयर नहीं करना है या ऐसे वो आ रहे हैं, पर उसको आगे और सुदृढ़ करने के लिए हमें ज्यादा से ज्यादा अपनी लैंग्वेजेस में कम्युनिकेशन करना चाहिए। जैसे इनिशिएटिव हुआ है कि जो बैंक्स भी आपको ट्रांजैक्शंस या एसएमएस या वॉइस बेसिस भेजते हैं, क्या वो अपनी रीजनल लैंग्वेज में भेज सकते हैं क्या, बंगाली, मराठी, गुजराती? क्योंकि जो भी ये हैकर्स हैं मोस्टली वो इंग्लिश या जो प्रेवलेंट लैंग्वेजेस हैं, थोड़ी बहुत हिंदी में वो अटैक कर सकते हैं, पर हमारे पास एक इनहेरिट स्ट्रेंथ है डिफरेंट लैंग्वेजेस की, हम उसको अगर यूज करने लगे तो वो हमारी सोवर्निटी, सिक्योरिटी और ट्रस्ट के लिए बहुत बहुत बेनिफिशियल होगी। और आई थिंक ये रिकॉग्नाइज हुआ भी है हमारे कुछ इकोसिस्टम में, रीजनल लैंग्वेजेस को डिजिटल कम्युनिकेशन में और सिक्योरिटी के एस्पेक्ट में यूज करना शुरू कर दिया गया है। तो आई थिंक ओवरऑल इसमें भारत सरकार काफी इनिशिएटिव्स ले रही है, जैसे हमने भी एक आईआईटीज के थ्रू एमएसएमईज को अवेयर करने के लिए कि इनको कैसे यूज किया जा सकता है और बेसिक साइबर सिक्योरिटी के क्या प्रैक्टिसेस हैं वो ली जा सकती है, उसके बारे में ट्रेनिंग दी जा रही है। पर उसमें मुझे लगता है कि प्राइवेट सेक्टर्स को भी आगे आके उसमें कॉन्ट्रीब्यूशन करना चाहिए अवेयरनेस में, ये सिर्फ गवर्नमेंट पे ही नहीं छोड़ देना चाहिए, यूजर प्राइवेट कॉर्पोरेट्स को भी आना चाहिए इसके आगे और कॉन्ट्रीब्यूट करना चाहिए।
1: आपने एमएसएमई का जिक्र किया, तो जब एमएसएमई की हम बात करते हैं तो ये कह सकते हैं कि छोटे कारोबारियों को ज्यादा मौके देने की बात होती है, इसमें ओएनडीसी जैसी पहल या फिर जीईएम जैसे हम जेम भी बोलते हैं उस तरह की पहल, तो डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपको लगता है कि सभी को अब आज के समय में पर्याप्त अवसर दिए जा रहे हैं और बराबर के अवसर दिए जा रहे हैं?
2: जी बिल्कुल, और ये सरकार की कॉम्प्रिहेंसिव इकोसिस्टम डेवलपमेंट है। अगर आप देखिए पहले उन्होंने वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट बनाया, वहां पे उन प्रोडक्ट्स के जो एमएसएमईज हैं उनको अनेबल किया, अब उनके प्रोडक्ट्स को वो डिजिटल कैटलॉग्स में ओएनडीसी पे ला रहे हैं। फिर अगर आप देखिए हमारी सरकार ने मल्टीपल एफटीए साइन कर रहे हैं, अब ओएनडीसी के थ्रू वो अपना एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं, और जो एक्सपोर्ट के लिए उनको चीजें चाहिए जैसे वहां की सर्टिफिकेशन चाहिए, क्वालिटी चेक्स चाहिए, उनके रीजनल भाषाओं में कंटेंट प्रोवाइड किए जा रहे हैं ताकि चाहे वो हमारे फार्मर्स हो या हमारे हैंडीक्राफ्ट मेकर्स हो, वो समझ सके और उनके ज्यादा प्रोडक्ट्स बिक सके। तो ये अगर आप देखिए सारे लेयर्स पे अनेबलमेंट सरकार कर रही है, पहले उनके प्रोडक्ट को हाईलाइट और ग्लोबल स्टैंडर्ड्स पे ला रही है, फिर डिजिटल प्लेटफॉर्म में डिस्प्ले कर रही है, फिर बाहर के मुल्कों के साथ एफटीए कर रही है और उसके थ्रू उनको एक नई मार्केट का एक्सेस दे रही है।
1: इसमें एक चीज मैं और जोड़ना चाहूंगा, आज का दिन पहले जुलाई का दिन है और आज से कुछ साल पहले जीएसटी हमारे देश में आज के दिन ही पेश किया गया था, इसी से मैं इसको जोड़ना चाहूंगा कि जीएसटी जैसी पहले पूरी तरह से डिजिटल थी या उसके साथ में जो टैक्सेशन की जितनी भी चीजें थी, इस तरह से उनको डिजिटल किया गया कि कारोबार करना हमारे देश में आसान हो जाए, चाहे छोटा व्यापारी हो, बड़ा व्यापारी हो, पूरे देश में कहीं भी व्यापार कर सके और आसानी से अपनी चीजों को फैला सके और उससे अपनी अर्निंग कर सके।
2: जी, टैक्सेशन और खासकर एमएसएमईज को ये कंप्लायंस के बर्डन से काफी हद तक मुक्त किया गया है, काफी हद तक उन चैलेंजेस को हटाया गया, बट अभी भी काफी चैलेंजेस हैं, पर आई थिंक वो इवॉल्व हो रहा है सिस्टम एंड सरकार आई थिंक ओपन है डिस्कशंस या इम्प्रूवमेंट्स के सजेशन के लिए और वो मल्टीपल फोरम्स में एंगेज हो रही है सभी स्टेक होल्डर्स के साथ, चाहे वो एमएसएमई हो, चाहे उनके रिप्रेजेंटेटिव हो और चाहे वो जैसे आप पॉलिसी एडवोकेसी वाले लोग हो, क्योंकि अगर हम हमारे एमएसएमई के जो प्रोडक्ट्स हमें बाहर बेचने हैं एफटीए के थ्रू बेचने हैं तो उसमें भी कुछ ट्वीकिंग चाहिए होंगी हमारे टैक्सेशन सिस्टम में। तो आई थिंक काफी इंप्रूवमेंट हुआ है, कुछ होना बाकी है, पर उसके लिए सरकार इंगेज है ग्राउंड लेवल पे।
1: उत्पल जी, माई भारत जो हमारी पहल है वो युवाओं को और एग्री स्टैक जो किसानों को डिजिटल रूप से सशक्त बना रही है, तो इस तरह की जो व्यवस्थाएं दी जा रही हैं, इनको आप इस तरह से देखते हैं कि लोगों के पास अब नए अवसर बड़ी आसानी से उपलब्ध हैं और ये एक तरह से व्यापक अभियान का रूप ले चुके हैं?
3: हाँ जी जरूर, जो अनएम्प्लॉयमेंट जो है उसका जो अल्टरनेटिव

0: हमारा जो जॉब के ऊपर जो हम लोग बोल रहे हैं, हम लोग जॉब सीकर्स से जॉब प्रोड्यूसर्स ज्यादा बन जाएंगे और क्या करेंगे, हमारा स्किल को हम लोग यूटिलाइज कर पाएंगे कि बाहर का काम करने के लिए, क्योंकि बहुत ऑनलाइन जॉब्स है, बहुत कुछ ये है जो कि हम लोग देख रहे हैं। तो दीज आर सम प्लेटफॉर्म्स, ये सब कुछ कुछ प्लेटफॉर्म्स है जो प्लेटफॉर्म्स के थ्रू से हमारा जो यूथ है, यूथ को एम्पावर करने का कोशिश किया जाता है। और इसका जो सेंटर स्टेज पे है वो है स्किल, क्योंकि अगर स्किल है तो हमारा जो एंटायर जो इकोसिस्टम है वो डिग्री बेस्ड या सर्टिफिकेशन बेस्ड इकोसिस्टम से अभी स्किल बेस्ड इकोसिस्टम पे ट्रांसफर हो रहा है। और ये खाली इंडिया का नहीं है, पूरा दुनिया में ये एक बहुत बड़ा ट्रांजिशन हो रहा है एक सिस्टम से। नाउ कमिंग टू हेल्थ केयर, जो आपने बात किया उसमें भी बहुत कुछ चीजें हमारा हो रहा है जो कि एक मॉडल होके निकलेगा। इंडिया ये अभी अलग तरीके से कर रहा है, बिकॉज मैं क्या देखता हूँ, इंडिया का जो मॉडल है ये यूनिक मॉडल देखता हूँ, ये कॉपी पेस्ट नहीं है कोई भी कंट्री के साथ, तो ये तो मैं बोल सकता हूँ।
1: श्रोताओं, चर्चा का विषय में आज बस इतना ही। हमने आज बात की डिजिटल इंडिया के 11 वर्ष पूरे होने पर, जिसमें चर्चा की गई एआई, सेमिकॉन और डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर। हमारे साथ खास मेहमान आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद।
2: धन्यवाद
3: धन्यवाद।
4: अभी आप सुन रहे थे डिजिटल इंडिया के 11 वर्ष, एआई, सेमीकंडक्टर और डिजिटल बुनियादी ढांचे में क्रांतिकारी परिवर्तन पर परिचर्चा। इसमें भाग ले रहे थे एआई विशेषज्ञ प्रसून शर्मा और एआई एवं तकनीकी विशेषज्ञ उत्पल चक्रवर्ती। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे आकाशवाणी संवाददाता निखिल कुमार।
5: चर्चा का विषय है।

मीडियम वेव 546.45 मीटर यानी 549 किलोहर्ट्ज़ तथा एफएम 102.5 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। आइए सुनते हैं हिंदी नाटक घरौंदा खुशियों भरा। लेखक हैं डॉक्टर अनिकेत भारद्वाज, निर्देशक आत्मेश्वर झा।

0: कौन कौन है भाई? सुबह सुबह? अरे तू
1: प्रणाम पापा, प्रणाम।
0: आ आ आ, खुश रहो, चिरायु हो, आ जा अंदर तो। हाँ, दरवाजा बंद कर दे। हाँ, बैठ। अरे बिना बताए अचानक।
1: बहुत दिन हो गए थे पापा आपको देखे हुए, बस मन बेकल हो गया, चला आया।
0: अच्छा किया, अच्छा किया। सामान अपने कमरे में रख दे।
1: अपना कमरा?
0: हाँ बेटा, तेरा अपना कमरा। तुम दोनों के, तेरे और ईशु के कमरे हैं ना?
1: पर पापा, उन्हें तो किराए पर लगा दिया है ना।
0: अरे ऊपर का हिस्सा लगाया है किराए पर। जगह की देखभाल, साफ सफाई हो जाती है और थोड़ी आमदनी भी। रास्ता भी अलग है और क्या। अच्छा तू आराम कर ले या सो जा थोड़ी देर। नहीं तो तू एक काम कर, तू नहा के फ्रेश हो जा।
1: ट्रेन में सोते

0: वही तो आया हूं पापा, मैं तैयार हो जाता हूं बस। पापा पापा, किचन में आप क्या कर रहे हैं?
1: अरे सैंडविच बना रहा हूं, आलू उबाले हैं, ब्रेड रात को ले आया था। रात में छोटा पैक नहीं मिला तो बड़ा ले लिया, देख काम आ
0: छोड़िए पापा,
1: गया।
0: छोड़िए छोड़िए छोड़िए,
1: अरे
0: मैं बनाता हूं, आप छोड़िए छोड़िए ये सब।
1: अरे प्रथम,
0: आप किचन से जाइए पापा, मैं बनाता हूं नाश्ता आपके लिए बस।
1: अरे नाश्ता बनाने आया है यहां तू?
0: मैं आपको नाश्ता नहीं बनाने दूंगा पापा, सैंडविच मैं बना देता हूं, आप जाइए नहाइए और तैयार होइए।
1: अच्छा बाबा अच्छा। अरे बढ़िया सैंडविच बनाया है तूने, भला मुझसे इतना टेस्टी बनता? अरे तू खा नहीं रहा है, मेरी ओर क्या देख रहा है?
0: बहुत कमजोर हो गए हैं पापा आप।
1: अरे नहीं अरे उम्र का असर है बेटा। अच्छा ये बता, कितने दिनों के लिए आया है?
0: जब तक आप मेरे साथ चलने को तैयार नहीं होते।
1: बेटा सुन, तेरे मन लायक सब्जियां ले आऊंगा, हाँ आशा बना देगी।
0: आशा?
1: हाँ, खाना बना देती है, साफ सफाई कर देती है, कपड़े धो देती है, रात का खाना बनाकर फ्रिज में रख देती है, गरम करके खा लेता हूं।
0: और दिन भर रात भर अकेले रहते हैं आप पापा?
1: अकेले? जीवन में कभी कोई अकेला नहीं रहता प्रथम, यादें किसी को अकेला नहीं छोड़ती, यादें रहती हैं साथ, उम्र भर की यादें, समझा?
0: यादें धीरे धीरे भुला दी जाती है पापा।
1: जो भुला दी जा सके वो यादें नहीं होती बेटे, यादें आखिरी सांस तक साथ रहती हैं, आखिरी सांस तक। शायद आशा आई है, देखता हूं।
2: नमस्कार दादा।
1: ओ रंजन,
2: हाँ
1: आओ आओ बैठो बैठो।
2: ठीक।
1: प्रथम ये मनोरंजन बाबू हैं, बगल वाला मकान इन्हीं का है, और ये बड़ा बेटा प्रथम पुणे
2: ओ
1: से आया है।
0: नमस्ते अंकल।
2: अरे सुखी रहो सुखी रहो दादा, आपका मनपसंद चीज लाया है, खीर।
1: फिर वही बात। अरे रंजन तुझे कितनी बार कहा है, पहले बता दिया कर। अब देख हमने सैंडविच बना रखे हैं।
2: सैंडविच? अरे बाबा फिर तो और भी मजा आएगा। खीर का साथ सैंडविच, आहा की जलखबर। अरे बेटा, अरे तुम भी खाओ, हम और लेके आता है।
0: इतना काफी अंकल, सफिशियंट।
1: अरे हाँ रंजन इतना काफी है, तुम बैठो बैठो और लो ये सैंडविच खाओ, प्रथम ने बनाए हैं, बहुत टेस्टी है।
2: अच्छा जरा हमको भी देना, देखो देखो।
0: लीजिए अंकल। कैसा लगा
2: वाह वाह,
0: अंकल?
2: खूब भलो सैंडविच बेटा। अरे हमको भी सिखाना तो, इतना टेस्टी कैसे बनता है?
3: गुड मॉर्निंग दादाजी।
1: मॉर्निंग, आओ आओ।
3: दरवाजा खुला हुआ है। अरे रंजन अंकल आप भी? नमस्ते।
2: नमस्ते नमस्ते।
1: ये आशा है, आशा
3: जी।
1: ये बड़ा बेटा प्रथम।
3: नमस्ते। मैं आपको भाई कहूं? कह
0: सकती हो।
2: अरे बाबा ये कैसा होगा, दादा का बेटा तो चाचा होगा ना।
0: अरे इतनी उम्र नहीं हुई है मेरी अंकल।
3: मैं भी तो छोटी नहीं हूं, मैं तो भाई ही कहूंगी।
1: तुम जानो और प्रथम जाने।
3: अरे

0: आपने खुद ही नाश्ता बना लिया दादाजी? मैं लेट भी नहीं हूँ लेकिन।
1: अरे सैंडविच प्रथम बना है
2: और अच्छा? खीर अंकल लाए हैं।
0: ओह माने नाश्ता फिनिश
2: जी।
0: ठीक है अब बताइए खाने में क्या बनाऊं?
3: जो प्रथम कहे,
2: जो आपका मन हो।
3: बता दो ना। अरे आशा खाना अच्छा बनाती है बेटा।
2: आप ही बता दीजिए ना पापा।
3: अच्छा ठीक है ठीक है। आशा
0: जी
3: ऐसा करो, मटर के पराठे, आलू की सब्जी, धनिया की चटनी, अचार और पापड़, है ना
0: जी।
3: मेरी तरह प्रथम को भी बहुत पसंद है ये सब्जियां सब हैं। और हाँ दही भी।
0: ठीक है भाई, साथ में टमाटर की मीठी चटनी कैसी रहेगी?
2: बहुत बढ़िया रहेगी। लेकिन लेकिन डिनर यानी रात का खाना हम बाहर खाएंगे। और अंकल आप भी फाइनल?
1: हमको कोई ऐतराज नहीं है।
2: आशा
0: जी
2: केवल दिन का खाना?
0: ठीक है भाई ठीक है।

0: अंकल अंकल अंकल,
1: अरे प्रथम क्या बात है, इतना घबराए हुआ क्यों है?
0: अंकल वो पापा
1: पापा, क्या हुआ पापा को?
0: पापा पापा घर में नहीं अंकल।
1: घर में नहीं है मतलब?
0: पापा घर में नहीं है।
1: क्या घर में नहीं है?
0: जी
1: चलो चलो तो देखे। दादा दादा दादा ईश्वर दादा, अरे ओ ईश्वर दादा, दादा तो नहीं है, कहाँ गया होंगे? अच्छा मॉर्निंग वॉक से आ गया थे ना?
0: नहीं अंकल, बिना बताए पता नहीं कहाँ चले गए, अभी तक नहीं आए हैं।
1: अच्छा सब्जी लाने तो नहीं चला गए? एक खाना का कोई सामान?
0: वो सब मैं शाम को ले आया था अंकल।
1: अरे फिर कोथाए जा सकते हैं?
2: अरे क्या बात है, चाचा भतीजा दोनों सुबह सुबह एक साथ?
1: एतो।
0: पापा पापा आप कहाँ चले गए थे बिना बताए?
2: अरे वो डॉक्टर के यहाँ चला गया था।
0: डॉक्टर? तबीयत खराब थी तो मुझे बताते पापा।
1: दादा ये प्रथम बहुत घबरा गया है।
2: अरे घबराने जैसी कोई बात नहीं है भाई। मॉर्निंग में डॉक्टर हेमंत भी आते हैं ना, वही अपने साथ ले गए थे, तुम तो जानते हो रंजन।
1: दादा आप ठीक तो हैं ना?
2: अरे हाँ भाई हाँ, डॉक्टर हेमंत से पूछ लो, प्रथम को जगाना ठीक नहीं समझा? सुबह देर से उठता है ना।
0: पापा मैं जल्दी उठता हूँ, टाइम से ड्यूटी पर पहुँचना होता है।
1: अच्छा दादा अभी आप आराम करो, हम चाय लाता है।
2: अरे डॉक्टर ने चाय बिस्कुट खिला दिया है, प्रथम ने चाय नहीं पी होगी।
0: पहले तैयार हो जाओ पापा फिर चाय पियो।
1: ठीक है ठीक है। दादा तो आप आराम करो, हाँ हम आता है, है? प्रथम ये ताड़ी तोरी होके चाय खाने वास्ते हमारे पास आओ।
0: हाँ जी अंकल। आशा
3: जी,
0: आशा
3: जी,
0: हम दोनों के कपड़े रोज साफ करती हो?
3: दादाजी का ऑर्डर है।
0: क्या
3: आशा, मेरा कमरा साफ हो चाहे नहीं हो, प्रथम और ईशु का कमरा रोज साफ करना, भूलना मत। ईशु आपके छोटे भाई का नाम है ना?
0: हाँ। आशा
3: जी
0: एक बात पूछूं?
3: जी
0: सच सच बताना।
3: भाई पहले कभी झूठ बोल भी लेती थी, पर जब से दादाजी का साथ मिला है सपने में भी झूठ नहीं बोलती। विश्वास ना हो तो पूछ लीजिए।
0: तो फिर पापा को कोई बीमारी?
3: आप बीना भाई, बस यही पूछना था।

0: दादाजी को कोई बीमारी सीमारी नहीं है, एकदम स्वस्थ है एकदम।
1: तो वो डॉक्टर?
0: अरे मॉर्निंग वॉक का उनका दोस्त है, जब तब चेकअप करते रहते हैं। पर भाई बुढ़ापा अपने आप में बीमारी होती है, उस पर से अकेलापन इस उम्र में। भाई मेरा घर परिवार है, दो बेटे हैं, पति है, ससुर है, नहीं तो मैं ही दादाजी के पास रह जाती। भाई उन्हें अकेला मत छोड़ना।
1: तुम यहाँ हो तो कपड़े धोने की आवाज आशा?
0: दादाजी अपनी गंजी नीकर मोजे रुमाल खुद धोते हैं रोज। हाँ
2: आई प्रथम प्रथम
1: जी अंकल।
2: अरे बाबा तुम आया नहीं, तुम्हारे आंटी चाय बना के रखा है, ताड़ी चलो।
1: लेकिन अंकल।
2: अरे लेकिन वेकिन कुछ नहीं, अरे तुम नहीं चलेगा तो तुम्हारे आंटी एतो राग करेगा जो हम बोलने नहीं सकेगा। ए आशा ए प्रथम चाय खा के आता है।
0: ठीक
2: अभी ठीक है।
1: प्रथम जी अंकल, तुम रात में कहाँ सोया था?
3: क्यों अपने रूम में?
2: एक बात तो बोलता है हाँ, देखो तुम ना दादा के रूम में सोया करो, अकेला मौत छोड़ो। रात में अकेला इस उम्र में?
3: रात में कौन सोता है? पापा के पास?
2: अरे हम सोता है, वो फोल्डिंग बेड रखा है ना उधर उस तरफ, उस पर हम सोता है, अकेला नहीं छोड़ता है।
3: फिर तो आंटी अकेली?
2: ओ बाबा, अरे लड़का बहु पोता है तो टूर पे गया है पूरी, चार पांच दिन में आ जाएगा। अरे सुनो तुम जब तक है दादा के पास सोना, ठीक है? यही बोलने के लिए तुमको हम इधर लाया, समझा? अकेला नहीं छोड़ना बेटा, हाँ ठीक है? ओ विभा विभा ऐसो ऐसो ऐ तुम्हारा आंटी। ऐ
1: नमस्ते आंटी।
4: खुश रहो, खूब खुश रहो। ऐ बोशो बोशो बोशो,
2: कैमन भालो चातो?
1: वाह बहुत बहुत अच्छी चाय है आंटी, इतनी अच्छी चाय आज तक मैंने नहीं पी।
4: रोज एक कप चाय दादा को खिलाता है। ए चिष्टो खाओ, अपना हाथ का बनाया है, बाजार का नहीं है, समझा?
2: बहुत जिद करना होता है तब शाम का चाय साथ में खाता है।
4: दादा बाबा की भद्र लोग, दारुण, बहुत अच्छा है,
2: बहुत अच्छा।
4: जानता है इबारिटो दादा दिलाया है।
1: पापा ने दिलाया है ये मकान?
2: अरे है, दादा दिलाया है बारिटो।
4: हम बहुत बोला है जो हमारे पास खाइए, कितना तो बोला बाबा।
1: तो फिर खाते क्यों नहीं?
2: देखो देखो बोलते हैं जे साफ सफाई कपड़ा फिचने के लिए तो किसी को रखना ही है।
1: जी, जी।
2: आशा तो अच्छा लड़की है, अरे एक ठो सेवा करने वाला आ जाता है उसका भी काज चलता है, हैं यही सब बात है।
4: और एक बात सुनो, जब तक इधर है रात का खाना ना, रात का खाना हमारे साथ खाना है।
1: लेकिन आंटी।
2: अरे बाबा हम दादा को बोल देगा, सब साथ में खाएंगे, ठीक?
4: हाँ, और अपना पसंद का कुछ खाना है ना तो बोल देना, हम बना देगा, एकदम बना देगा।
1: जी आंटी चलता हूँ, नमस्ते। पापा पापा पापा पापा दूध।
5: अरे तू अरे मैं खुद ही ले लेता, तू मेरी आदत बिगाड़ देगा। ला, ओ गरम है, गरम है। ज्यादा गरम दूध नहीं पीता मैं,
3: ठंडा कर देता हूँ पापा।
5: अच्छा अच्छा, हो जाएगा थोड़ी देर में, चिंता मत कर। आँख लग गई आज, जल्दी सो जाता हूँ ना। तेरा मन नहीं लगता होगा रात में ना अकेले।
3: आपका मन लग जाता है पापा रात में?
5: अरे मेरी रात 10 बजे खत्म हो जाती है, 10:15 बजे सो जाता हूँ, सुबह 4:30 बजे जागता हूँ, नींद आती है गहरी, रात बहुत आराम देती है।
3: सोने से पहले पापा, शाम के बबाद दोपहर के 3-4 घंटे अकेलापन।
5: अरे हम अकेले कभी नहीं रहे बेटे, हमारे पास समय था, भरपूर समय। देख, जीवन का आनंद तभी है जब हाथ में समय हो, अपने लिए, परिवार के लिए, समाज के लिए, समझा ना?
3: जी जी।
5: अब तुम लोगों के जीवन में समय रहा ही नहीं, ना अपने लिए, ना परिवार के लिए, ना समाज के लिए। अकेले तुम हो बेटे, एकदम अकेले।
3: हम आपको अकेला नहीं रहने देंगे पापा।
5: अच्छा प्रथम, तुम्हें जल्दी लौट जाना चाहिए, निधि वहां अकेली है ना?
3: रायपुर गई है पापा।
5: साथ ले आते यहाँ?
3: आपको हमारे साथ चलना है पापा।
5: मैं नहीं जा सकता बेटे।
3: ओ, मकान हमसे ज्यादा जरूरी है पापा।
5: मकान? ये केवल मकान नहीं है प्रथम, मकान तो ईंट गारे से बना एक ढांचा होता है, पर इस ढांचे में एक घर, एक परिवार रहता है बेटा। मकान एक आसरा है, सुरक्षा है, पहचान है, मकान सुख है, सम्मान है।
3: आप भी तो गांव से आए थे पापा।
5: हाँ, तुम्हारे दादा नहीं आए, आते जाते रहे, गांव नहीं छोड़ा। मैंने भी आज तक गांव नहीं छोड़ा, गांव का सुख अभी भी हम सबको मिल रहा है। पुरानी जड़ों के साथ नई पहचान, नया घरौंदा, नई ठाँव बनाई। ये ऐसी छांव है जो हर दुख तकलीफ में शरण देती है। इसे इसे कभी मत छोड़ना बेटा।
3: नहीं छोड़ी है पापा मैंने अपनी पहचान, गांव, घरौंदा, कुछ भी नहीं छोड़ा।
5: तो फिर मुझे यहां से जाने को क्यों कहता है? पेड़ कितना भी हरा भरा हो, जड़ से कट जाए तो हरा भरा नहीं रह सकता बेटे। डालियां चाहे जितनी दूर फैल जाए, जड़ से जुड़ी रहे तभी वो हरी भरी रह सकती है, समझा? तभी वो हरी भरी रह सकती है।
3: अब आपको नींद आ रही है पापा, आप सोइए।
5: अच्छा जा, तू भी सो जा।
3: मैं यहीं सोऊंगा पापा, आपके पास, मैंने बेड लगा लिया है पापा।
5: अच्छा।

0: पापा पापा चाय उठिए पापा। पापा चाय।
1: अरे कितने बज गए, अरे इतनी देर सोया रहा आज।
0: चैन की नींद सोए हैं पापा आज, जाने कितने दिनों के बाद।
1: देख शायद दूध वाला है, आज दूध लाने नहीं गया ना।
0: दूध वाला नहीं, दूध पीने वाला आया है पापा।
1: दूध पीने वाला?
0: जी
1: कौन?
2: गुड मॉर्निंग पापा। पापा
1: अरे
2: पापा
1: अरे
2: पापा
1: पापा इशू
2: पापा
1: इशू अरे इशू चाय गिर जाएगी बेटा।
2: पापा
1: अरे तू आया कब, सामान कहाँ है, और ये सब्जी भरा थैला?
2: सब्जी लाने गया था पापा, सामान कमरे में है।
0: सुबह ही आ गए थे और आप सोए थे पापा।
2: पापा एग्जाम एग्जाम सब कंप्लीट।
1: अच्छा
2: बस आराम ही आराम, मस्ती ही मस्ती।
1: अच्छा
2: खूब मस्ती करूंगा पापा आपके साथ।
0: और काम कौन करेगा?
2: अरे मस्ती के साथ काम करूंगा भैया। पापा पापा पापा आंख बंद कीजिए।
1: अच्छा
2: आंख बंद कीजिए ना पापा।
1: अरे अरे
2: हाँ
1: ले कर ली।
2: वन टू थ्री थ्री हाँ अब खुली भाभी।
1: निधि बेटा, निधि बेटा।
3: प्रणाम पापा जी।
1: सौभाग्यशाली हो बेटा, तू तो मायके गई थी ना।
3: इन्होंने फोन किया तो चली आई।
0: मैंने नहीं पापा, नहीं नहीं नहीं नहीं तो इशू ने किया होगा पापा।
2: सीधी सी बात है पापा, पापा अब अकेले नहीं रहेंगे आप।
0: बिल्कुल
3: हाँ पापा जी, मैं भी यहीं रहूंगी।
2: अरे भाई तो फिर भैया अकेले हो जाएंगे।
0: इशू
2: थोड़े दिनों के लिए चलेगा। वैसे पापा एक बात है।
1: क्या?
2: घर में एक नया मेहमान आने वाला है।
1: अरे कौन मेहमान?
2: ओहो पापा पापा है? आप दादा बनने वाले हैं। हाँ पापा आप दादा बन जाएंगे। पापा दादा बन जाएंगे। पापा दादा बन जाएंगे।
4: अरे बाबा यहाँ तो हल्ला गुल्ला क्यों करछो तुमरा? की होलो?
2: नमस्कार अंकल।
4: दुष्ट छेले इशु दुष्ट।
2: आपने मुझे कैसे पहचाना अंकल?
4: अरे बाबा हनुमान माफिक और कौन नाचेगा कूदेगा हल्ला गुल्ला करेगा
0: बंदर।
1: रंजन
4: हाँ
1: ये बहू है निधि।
4: ओ अच्छा।
3: प्रणाम अंकल।
4: अरे सौभाग्यशाली थाको सौभाग्यशाली थाको।
0: अंकल आज नाश्ता हमारे साथ करेंगे आप लोग?
3: नाश्ता बनाने के लिए मैं हाजिर हूँ। गुड मॉर्निंग दादाजी।
1: गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग।
3: नमस्ते अंकल।
4: नमस्ते नमस्ते।
3: नमस्ते भाई।
0: नमस्ते नमस्ते
3: भाई।
0: निधि तुम्हारी भाभी।
3: अच्छा अच्छा नमस्ते भाभी जी। नमस्ते
5: नमस्ते
3: नमस्ते छोटे भाई।
2: नमस्ते।
3: ये लीजिए नाश्ता।
4: हाँ हाँ हाँ। किंतु जल खबर तो हम लेके आया है।
3: हाँ?
4: खाटी बंगाली जल खबर मुड़ी। अच्छा। आलू चॉप चा और चिप्स।
3: नाश्ता आप लेकर आए अंकल?
4: अरे वो इशू आया है ना।
3: माने मेरी नौकरी
1: परमानेंट हो गई। निधि बेटा ये आशा है।
2: अंकल अंकल नाश्ता कहाँ है?
6: एई तो ये लो इशू नाश्ता तोरी करके लाया लो।
3: अरे आंटी आप?
2: आंटी নমস্কার।
6: হ্যাঁ নমস্কার ইশু বাবা, না দুষ্টু ছেলে।
4: আরে আরে এটা ওর বউ নিধি, এই যে
6: খুড়ি বাবা কি সুন্দর।
3: নাম আন্টি?
6: হ্যাঁ সাদা সুহাগিনগর, সাদা সুহাগিনগর। সুন্দর বউ, দারুন মিষ্টি।
2: পাপা পাপা আব মেরি ভি জলদি শাদি কর দিজিয়ে।
6: আচ্ছা আচ্ছা, কি বলছি?
2: নৌকরি শকরি করুঙ্গা নাই, হ্যাঁ আপনা কাম করুঙ্গা।
6: আচ্ছা,
2: মুঝে ইয়েহি আপকে পাস রেহনা হ্যায়, শাদি হোগি তো দোনো ইয়াহ রেহেঙ্গে আপকে পাস। ভাবি রেহেঙ্গি তো ভাইয়া অকেলে হো জায়েঙ্গে না।
3: মাই ইয়াহি রহুঙ্গি।
2: ভাইয়া ছোড়েঙ্গে তব না।
0: বদমাশ,
6: কি মিষ্টি দুষ্টু ছেলে শো।
4: আরে দাদা, আরে ইসকা লিয়ে তো হাম খাঁটি বাঙালি বউ আনেগা।
6: একদম বাঙালি বউ, একদম রসগোল্লার মতো।
2: ফিন তো হামকো ভি বাঙালি শিখনে হোগা।

इस समय आप सुन रहे थे हिंदी नाटक घरौंदा खुशियों भरा। लेखक थे अनिकेत भारद्वाज, निर्देशक आत्मेश्वर झा। अब आज का हिंदी नाटकों का कार्यक्रम समाप्त होता है। मीडियम वेव 546.45 मीटर यानी 549 किलोहर्ट्ज तथा एफएम 100.5 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। आइए शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में आज सुनते हैं बांसुरी पर पंडित हरिप्रसाद चौरसिया से राग वृंदावनी सारंग और राग मालकौस

अभी आप पंडित हरिप्रसाद चौरसिया से बांसुरी पर रचनाएं सुन रहे थे। अब आज का शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम समाप्त होता है। मीडियम वेव 546.45 मीटर यानी 549 किलोहर्ट्ज तथा FM 100.5 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। थोड़ी ही देर में आप क्रमशः हिंदी एवं अंग्रेजी में समाचार सुनेंगे, जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे।

0: दिल्ली और उत्तर प्रदेश में 14,000 करोड़ रुपए से अधिक की दो बड़ी राजमार्ग सड़क परियोजनाओं को मंजूरी दी। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इसमें दिल्ली में द्वारका एक्सप्रेसवे को वसंत कुंज से जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग 148 AE के लिए 6 लेन की सड़क सुरंग का निर्माण शामिल है।
1: पहला प्रोजेक्ट 6 लेन द्वारका टनल दिल्ली के लिए एक बहुत बड़ा वरदान साबित होगी। 8 किलोमीटर की ये टनल एक तरीके से कम्प्लीट ये एक नया कॉरिडोर बन जाएगा। ये रिज है, इस रिज को बिना डिस्टर्ब किए सारा काम करना है। इस रिज को, रिज हमारे दिल्ली की एक तरीके से लंग्स ऑफ दिल्ली है, इसलिए उसको बिल्कुल भी डिस्टर्ब किए बिना इसके नीचे से ही टनल लेके जाने का है, ये प्रपोजल है।
0: श्री वैष्णव ने बताया कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने एम्स और महिपालपुर के बीच एलिवेटेड कॉरिडोर का भी प्रस्ताव किया है। परियोजना से लगभग 7,54,000 प्रत्यक्ष रोजगार और 9,80,000 अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित होंगे। श्री वैष्णव ने बताया कि सरकार ने उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 34 के करीब एक्सेस कंट्रोल्ड कानपुर कबराई खंड के निर्माण को भी मंजूरी दे दी है। इसकी अनुमानित कुल लागत 7,145 करोड़ रूपये है। सरकार ने विदेश सचिव विक्रम मिश्री का कार्यकाल 14 जुलाई 2027 तक के लिए बढ़ा दिया है। मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने आज विदेश सचिव का कार्यकाल 1 वर्ष बढ़ाने की अनुमति दी। श्री मिश्री 1979 के बैच के भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी हैं। विदेश सचिव ने 15 जुलाई 2024 को अपना कार्यभार संभाला था। श्री मिश्री ने 3 प्रधानमंत्रियों इंद्र कुमार गुजराल, डॉ मनमोहन सिंह और नरेन्द्र मोदी के निजी सचिव के रूप में भी सेवाएं दी हैं। विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन जी रामजी अधिनियम आज से लागू हो गया है। अधिनियम के अंतर्गत प्रत्येक वित्त वर्ष में 125 दिन के रोजगार की गारंटी होगी। केंद्र सरकार ने योजना के अंतर्गत मजदूरी की नई दरें भी अधिसूचित कर दी हैं। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि ये अधिनियम लाखों ग्रामीण श्रमिकों के लिए गरिमा, आत्मसम्मान और आजीविका सुनिश्चित करने का नया अध्याय है। सर्वोच्च न्यायालय ने आज मोटर दुर्घटना में मृतक व्यक्तियों या घायल दावेदारों की वार्षिक आय का निर्धारण आयकर रिटर्न के आधार पर करने के लिए दिशा निर्देश जारी किए। मोटर दुर्घटना मुआवजे में एकरूपता लाने के लिए शीर्ष न्यायालय ने कहा कि वेतनभोगी व्यक्तियों के मामले में वार्षिक आय दर्शाने के लिए केवल पिछले वर्ष का आयकर रिटर्न ही पर्याप्त होगा। स्वरोजगार व्यक्तियों के मामले में न्यायालय ने कहा कि पिछले 3 वर्षों तक के आईटीआर में घोषित औसत आय को सामान्यतः संदर्भ बिंदु के रूप में माना जाना चाहिए। गृहमंत्री अमित शाह ने जनसांख्यिकी परिवर्तनों पर गठित उच्च स्तरीय समिति से अपनी सिफारिशें शीघ्र प्रस्तुत करने को कहा है। नई दिल्ली में एक बैठक में समिति ने गृहमंत्री को बताया कि वो जनसांख्यिकी परिवर्तनों की जानकारी प्राप्त करने के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का दौरा करेगी और प्रशासनों के साथ समन्वय करेगी। जापान के प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची भारत की 3 दिन की यात्रा पर आज शाम नई दिल्ली पहुंचे। उनका ये भारत की पहली आधिकारिक यात्रा है। वे कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ 16वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। ये शिखर सम्मेलन दोनों पक्षों को द्विपक्षीय सहयोग के सभी पहलुओं की समीक्षा करने के साथ साथ पारस्परिक हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान करने का अवसर प्रदान करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र

0: And in men's cricket, India were 124 in 13.3 overs against England in the first T20 international of the five-match series at the Riverside Ground in Chester Street when reports last came in. Earlier, Indian skipper Shreyas Iyer won the toss and opted to bat first. Spinners Varun Chakravarti and Ravi Bishnoi have returned to the playing 11 for India, while Vaibhav Suryavanshi has been kept on bench. The men in blue will look to bounce back from the shocking 2-0 defeat to Ireland in the last series. And that is the end of this news bulletin.
1: मीडियम वेव 546.45 मीटर यानी 549 किलोहर्ट्ज तथा एफएम 102.5 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। रात्रि के 11:10 हो रहे हैं। मीडियम वेव पर हमारी सभा यही समाप्त होती है, जबकि एफएम 102.5 मेगाहर्ट्ज पर आप हमारे कार्यक्रमों को सुनते रहेंगे। मीडियम वेव पर हम पुनः प्रातः 5:55 पर उपस्थित होंगे अपनी प्रातःकालीन सभा के कार्यक्रमों के साथ। तब तक के लिए हम आपसे अनुमति चाहेंगे। जय हिंद।